मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

ओम शांति। बाबा की हम सभी के लिए एक बहुत सुंदर टीचिंग है कि बच्चे याद का ऐसा लंबा अभ्यास करो कि अंत में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद न आए। ये बहुत ही ऊंची स्थिति है कि हम चारों ओर से ममत्व निकालते चलें, देहधारियों से भी अपनी बुद्धि हटाते चलें, मोह ममता को भी छोड़ते चलें, वस्तुओं पदार्थों और साधनों से भी अपनी आसक्तियों को समाप्त करते चलें, अंत में केवल एक की याद आए। यही कर्मातीत अवस्था है, यही पास विद ऑनर होने की पहचान है। क्योंकि अंत में यदि एक की याद नहीं होगी तो आत्मा इस देह में उलझ जाएगी, जबकि आवश्यकता होगी एक सेकंड में देह के त्याग करने की। बाबा हमें बुला रहा होगा, आओ बच्चे मेरे साथ चलो। और जिनको देहधारियों की याद होगी, जो मोह ममता में अटके होंगे, उनके वाइब्रेशंस, उनके बंधन उनको देह से जकड़े रखेंगे। विचार करें, एक ओर बाबा का आह्वान होगा, दूसरी ओर आत्माओं का और वस्तुओं का साधनों का बंधन होगा। ऐसे में आत्मा को बड़ा कष्ट होगा कि चाहते हुए भी आत्मा देह से मुक्त नहीं हो पाती। ऐसे समय में उसे धर्म राज की कड़ी सजाओं की अनुभूति होगी। और जो भगवान के साथ चलेंगे, उनकी वो अंतिम यात्रा बहुत सुखकारी होगी। इस अंतिम यात्रा का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि पुनर्जन्म भी मनुष्य का इसी आधार पर होता है हर बार भी, कि उसकी अंतिम स्थिति क्या है। अंतिम स्थिति जैसी होगी, अंतिम संकल्प जैसे होंगे, वैसा ही दूसरा जन्म प्राप्त होगा। तो ये कल्प का अंत है, इसमें अंतिम स्थिति हमारी जैसी होगी वैसा ही पूरा कल्प चलेगा। ये सूक्ष्म रहस्य हमें याद रखना है, इसलिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस करेंगे आज ही। देखो एक एक को जिससे आपका ममत्व है। पहले मनुष्यों को देखो, वो आपके प्रियजन होंगे। संकल्प करें, इन सब को छोड़कर हमें जाना है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हम अपने जीवन को निरस्ता से भर दें, उदासी से भर दें, लेकिन इसका अर्थ है कि हम डिटैच हो जाएं। ये डिटैचमेंट, ये देह से न्यारापन बहुत प्यारा बना देता है सबका। फिर वस्तुओं को देखें, साधनों को देखें, उन सब चीजों को देखें जिनसे आपका बहुत लगाव है, चाहे वो ज्वेलरी हो, धन संपदा हो, आपकी मकान, कार, कुछ और सुंदर चीजें हो। किसी को अपनी घड़ी से ही बहुत ममत्व होता है, किसी को अपने वस्त्रों से ही बहुत ममत्व होता है। उन सब पर एक नजर डालें और अपने को ये संकल्प दें कि इन सब को छोड़ना है। ये सब विनाशी चीजें हैं, ये हमारे साथ नहीं चलने वाली हैं, छोड़कर हमें जाना है। कुछ समय ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो चित्त अनासक्त वृत्तियों से भरपूर होता जाएगा। तो इस तरह हम अपने को ट्रेन करते चलें, अपने को न्यारा बनाते चलें, बुद्धि को निर्मोही और अनासक्त करते चलें। ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, इसमें बड़ा आनंद भी आएगा और जीवन ईश्वरीय रसों से भी भरता चलेगा। धीरे धीरे हमारी बुद्धि चार ओर से डिटैच होगी और ये हमारे लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ उपलब्धि होगी। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, सृष्टि का ये खेल पूरा हुआ, 84 जन्मों की हमारी यात्रा पूर्ण हुई, अब ये सब कुछ छोड़कर मेरे और मेरा सब कुछ छोड़कर ईश्वरीय शक्तियों से, खजानों से भरपूर होकर और व्यर्थ विकर्म अपवित्रता से मुक्त होकर मुझे घर वापिस जाना है।
अपने को जाते हुए देखेंगे। आत्मा उड़कर जा रही है परम धाम, पहुंच गई बाबा के पास। कुछ देर उनके पास बैठ गए, उनके वाइब्रेशंस हम में भर गए, फिर नीचे आ गए, देवता बन गए, सतयुग में आ गए। ये अभ्यास आज बार बार करेंगे। ओ

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। वह स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जिज्ञासु ने पूछा, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? गुरु ने उत्तर दिया, जब प्रश्न ही गलत हो तो मुझसे उसका उत्तर पाने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? प्रश्न होना चाहिए था, जब अच्छे लोगों का बुरा समय आता है तब उनका क्या होता है? और उसका उत्तर होता है, वे और अच्छे हो जाते हैं। यह हमारी प्रज्ञा नहीं बल्कि हमारी प्रज्ञा की दिशा है जो हमारी प्रगति की गति को निर्धारित करती है, बशर्ते हमें पता हो कि सही प्रश्न कैसे किया जाए। अपनी हर परेशानी पर पूछें, मैं ही क्यों, और फिर अपनी प्रज्ञा का उत्तर सुनें। खुद को प्राप्त हुई असंख्य कृपाओं के लिए पूछें, मैं ही क्यों, और फिर अपनी प्रज्ञा की आवाज को दोबारा सुने। अंतर पर ध्यान दें, प्रश्न की सशक्तता को अनुभव करें। प्रश्न में बहुत शक्ति होती है। सही समय पर पूछा गया सही प्रश्न हमारी प्रज्ञा की दिशा बदल सकता है और इस तरह हमारे जीवन की भी। यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को उस दिशा में मोड़ देता है जो आपको स्वयं पर तरस खाने की ओर ले जाती है। लेकिन उसी परिस्थिति में यदि आप यह प्रश्न पूछें, इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ, तो आपकी प्रज्ञा आपको उच्चतर परिपक्वता की ओर ले जाएगी। वह मुझे समझ क्यों नहीं रही है, यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को दूसरों पर दोषारोपण करने और खुद उत्पीड़ित होने की ओर ले जाएगा। इसके बजाय पूछें, वह मुझे समझ सके इसके लिए मैं क्या करूं? तो आप महसूस करेंगे कि स्थिति अभी भी आपके हाथ में है। यह प्रश्न आपको एक ज्यादा सूझबूझ वाला और ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बना देगा।

यदि आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आप उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी गति से आप बढ़ सकते हैं, यदि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने वाली नहीं है, यदि आपके सामने ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जिन्हें बार बार सामने आना ही है, तो आप यह जान लें कि निश्चित रूप से आप सही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं और इसी के चलते आप अपनी प्रज्ञा को सही दिशा नहीं दे रहे हैं। सीधे सरल प्रश्न जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं, जैसे कि अब क्या करना है, जो मैं अभी तक करता आया हूं उसे और बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूं, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। हमारी प्रज्ञा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होती है, चाहे वह प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया हो या संसार द्वारा। इसीलिए अपने प्रश्न को ध्यान से चुनते रहें और अपनी प्रज्ञा को रचनात्मकता के दिशा में मोड़ते रहें। अपने आणविक चुंबकीय अनुस्पंदन अन्वेषण के लिए सुविख्यात भौतिक विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इसिडोर आइजेक राबी ने कहा है, मेरी माँ ने अनजाने में ही मुझे वैज्ञानिक बना दिया। ब्रुकलिन में हर यहूदी माँ स्कूल से घर लौटकर आए अपने बच्चे से पूछा करती थी, तो आज स्कूल में तुमने क्या सीखा? लेकिन मेरी माँ ने यह कभी नहीं पूछा। वे हमेशा पूछा करती थीं, बेटा क्या तुमने आज कोई अच्छा प्रश्न पूछा? इस अंतर ने, सही प्रश्न पूछने ने मुझे वैज्ञानिक बना दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, सेब नीचे ही क्यों गिरता है? और इस प्रश्न के बाद दुनिया ही बदल गई। वास्तव में सभी अन्वेषण और सारे आविष्कार किसी न किसी प्रश्न से शुरू होते हैं। अर्जुन ने अपने प्रश्नों से कृष्ण की प्रज्ञा को एक दिशा ही तो दी थी, जो भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। चाहे आपके पास सारे उत्तर ना हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपके पास सही प्रश्न है। आपकी प्रज्ञा प्रतीक्षा कर रही है, सही प्रश्न पूछे तो सही उत्तर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स, यू नो, नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा ख़त्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

भले ही आप पर कोई विश्वास न करे, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। भले ही किसी को विश्वास न हो कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप कर सकते हैं। और आप खुद पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप खुद से प्रेम करते हों। तो भले ही आपसे कोई प्रेम करे न करे, आपको खुद से प्रेम करना होगा। वास्तव में जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तभी यह संसार आपसे प्रेम करना शुरू करता है। कुल मिलाकर इस बात से बहुत कम अंतर पड़ता है कि संसार आपको कैसे देखता है, लेकिन इस बात से बहुत अंतर पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हम ऐसा कहकर कब तक खुद को सांत्वना देते रहेंगे? मेरे पिता यदि धूम्रपान करते हैं, पान तंबाकू या गुटखा खाते हैं, तो क्या हुआ? वे हैं भी तो बड़े आदमी। हम यह कहकर कब तक खुद को संतुष्ट करते रहेंगे? हमें अपने शिक्षक के चरित्र से क्या लेना देना? वह तो उसका व्यक्तिगत जीवन है, हमें तो उससे पढ़ना है बस। संसार में क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय करने वाला मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि कोई चीज सार्वभौमिक तौर पर सही या गलत नहीं होती। किसी के द्वारा किए जा रहे चयन में हस्तक्षेप करने वाला मैं कौन होता हूँ? फिर भी साहस करके खुद से यह प्रश्न तो कर ही लें, यदि मेरे बच्चे वही ग्रहण कर लें जिसे मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, तो क्या मुझे इससे सुख और खुशी मिलेगी? क्या मैं कभी कह सकूँगा कि मुझे अपने आप पर गर्व है, क्योंकि मुझ में फलां लते और आदतें हैं? क्या मेरी चारित्रिक विशेषताएं अनुसरण के लायक हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा जीवन क्या एक आदर्श होगा या एक खतरा? किसी विशेष अंश रूप में नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण रूप में। हमारे बच्चे सब कुछ देख रहे हैं। हम उनसे जो भी कहते हैं, उसकी अपेक्षा वे इस बात से ज्यादा सीखते हैं कि हम क्या करते हैं। नैतिकता पुस्तकों से कभी नहीं सीखी जाती, वह तो अपने आसपास रहने वालों को देख देख कर सीखी जाती है। संसार आपके आचरण के उदाहरण पर चलेगा, न कि आपकी सलाह या उपदेश पर।

0: ओए रुको रुको ओए रुको ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

यह एक तथ्य है कि जब कोई गुरु मौन को शांति को प्राप्त कर लेता है तब ध्यान लगाने का उसका ध्येय पूरा हो जाता है और फिर उसे वैसी साधना की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अज्ञानी जिज्ञासु तर्क देता है, जब गुरुजी ही नियमित रूप से ध्यान नहीं लगाते तो मुझे नियमित होने की क्या जरूरत है। इसीलिए भगवद गीता हमें याद दिलाती है, कोई महान व्यक्ति जो कुछ करता है अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित कर देता है संसार उसी का अनुसरण करता है। दूसरों को उत्प्रेरित करने के लिए हमें कुछ तो प्रेरक कार्य करने ही चाहिए। अपने तर्क वितर्क एक और रखकर हम एक आदर्श बनने योग्य होना चाहिए। जो कर्तव्य है उसे किया जाना चाहिए और जो करने योग्य नहीं है उसे करना बंद कर दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक, एक बॉस, एक अभिभावक, किसी उद्योग के प्रमुख, किसी परिवार के मुखिया, किसी सरकारी कार्यालय के पदाधिकारी, किसी ऐसे या अन्य रूप में आपको, मुझे और हम में से हर एक को इस तरह से रहना और जीना चाहिए जो दूसरों के अनुकरण व अनुसरण के योग्य मानक स्थापित कर सके। आपका सोचना, बोलना, कार्य करना और रहना ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप दूसरों से चाहते हैं कि वे किस प्रकार बोलें, किस प्रकार कार्य करें और किस प्रकार रहें। जिस बात की अपेक्षा हम खुद से करने को इच्छुक नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, उस बात की अपेक्षा हम संसार से कैसे कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपके आसपास का संसार आप ही की कार्बन कॉपी लगने लगता है। इसीलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे मास्टर कॉपी बने जो इस योग्य तो हो कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सके। मार्क ट्वेन ने कहा है, नृत्य ऐसे करो जैसे आपको कोई भी नहीं देख रहा है। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जिएं, ऐसे रहें जैसे हर कोई देख रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। रेडियो मधुबन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो भी आप तक पहुंचाई जा रही है वो सिर्फ एक जानकारी के रूप में नहीं, मगर अपने आप को सजग करने के लिए, अपने समाज, परिवार और देश को स्वस्थ बनाने की ओर एक कदम उठाने की शुभ प्रेरणाओं के साथ की जा रही है। ये सिर्फ जानकारी समझकर लोग सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें ऐसी बात नहीं है। ये वो आवश्यक जानकारी है जिसे अगर हम जीवन में धारण करें, इसका उपयोग करें, तो हम देखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसी बदलाव को प्रेरित करने के लिए रेडियो मधुबन यह कार्यक्रम आपके सामने लेकर आता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की सिर्फ कामना नहीं है, उसकी ओर कदम दर कदम कैसे हम आगे बढ़ते जाएं और कैसे हम अपने घर, परिवार और समाज को स्वस्थ बनाएं, इस पे हम सभी की भागीदारी को याद दिलाने का एक प्रयास भी है। आइए आज सहज स्वास्थ्य में कुछ ऐसी ही चीजों को समझते हैं और समझकर जीवन में उनका पालन करते हैं। आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारे बीच स्वास्थ्य जगत के ही एक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जो हमें ये मार्गदर्शन देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। वे पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांत।
0: डॉक्टर साहब, जब हम स्वास्थ्य कहते हैं तो हमें समझ में आता है कि आज हमारे पास जानकारी के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं। हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, यहाँ वहां सुनते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया पर हम आज देखते हैं तो बहुत सारे वीडियोज, रील्स, अनेक चीजें आज देखने को मिलती है। तो ऐसे में लगता है कि व्यक्ति के पास जानकारी की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की बहुतायत है। अब ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित चीजों के बारे में जब व्यक्ति को कोई चीज अपने जीवन में करनी है तो वो सोचता है कि भाई इतना सारा है, इसमें से कहां से शुरुआत किया जाए, आप क्या राय देते हैं?
1: इसमें मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक राय देना चाहूंगा कि जब हम हिंदू समाज में भक्ति की बात करते हैं तो हम विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त, देवी जी के उपासक इस तरह से अपने आप को मानते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो शिव भक्त हैं वो शिवालयों का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, ये नहीं कि वो दूसरे भगवानों को नहीं मानते, मगर वो अपना एक दिन का जो पूजा का मेजॉरिटी टाइम है, ज्यादा समय है, वो उसी में लगा देते हैं। आप जो देवी भक्त हैं वो बड़े ज्यादा देवी का दर्शन करते हैं, शक्ति पीठों का दर्शन करते हैं, वो बहुत सी जो पूजा अर्चना है उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा भी स्वास्थ्य के लिए यही जो मेरी समझ है कि कृपा करके किसी एक चीज को फॉलो करिए। आप एक दिन नेचुरोपैथी, अगले दिन आयुर्वेद, तीसरे दिन एलोपैथी, चौथे दिन मैग्नेट थेरेपी, पांचवें दिन एक्वा प्रेशर, उसके बाद एक्वा पंचर, तो आप अगर इधर उधर भागते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं पा पाएंगे। आप जब भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपसे क्या कहता है कि इस गोली को कम से कम आपको 5 दिन लेना है या 3 दिन लेना है, अगर आप ठीक भी हो गए हैं तब भी पूरा कोर्स करिएगा, इसको बीच में मत छोड़ दीजिएगा। हम जब भी अगर मैं आपसे कहूं कि श्री भैया चलिए हम और आप उपवास किया जाए या फास्टिंग किया जाए, तो पता चला 9 बजे हम नाश्ता करने के बाद कह रहे हैं कि भैया आप हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, और दोपहर में 1 बजे हम लोग फिर खाने बैठ गए कि अरे भैया 3 घंटे की फास्टिंग तो हो गई, तो इससे हमें फास्टिंग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। फास्टिंग का मतलब है अपना मुंह बंद रखना और कोई भी भोजन का पदार्थ आपके मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप उपवास कर रहे हैं।

0: हैं तो पूरी लगन के साथ उपवास करिए। आप जिस भी पैथी को जानते हैं या मानते हैं या विश्वास करते हैं उस पैथी के अनुसार चलिए और एक दिन नहीं कम से कम 6-7 दिन चलिए। जहां तक आपने बताया सोशल मीडिया इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी इधर उधर मिल रही है, कृपा करके उस जानकारी को किसी भी योग्य व्यक्ति के साथ साझा करिए और पता करिए कि वो जानकारी ठीक है कि नहीं। कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी में नींबू पीजिए, गर्म पानी में सौंफ डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, सब्जी का बिया डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, करेले छिलका डाल दीजिए, आप उसमें नीम का पत्ता रगड़ के डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, लहसुन छील के डाल दीजिए। अरे हर आदमी अपने हिसाब से उसमें चीजें डालता चला जा रहा है। अगर आप ये सारी चीजें एक साथ पी लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, आपको उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है। तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छी है उसी का अनुसरण करें और सोच समझ के अनुसरण करें। और किसी चीज का यदि आप अनुसरण कर रहे हैं तो कृपा करके थोड़ा समय दीजिए। अगर आप थोड़ा समय नहीं देंगे तो आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।
1: जब हम इन चीजों को समझते हैं कि भाई हम थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा ये कर लें, तो इन सब चीजों से लाभ नहीं होता। किसी एक चीज पर हमें फोकस रहते हुए इन चीजों को करने की आवश्यकता है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर। अक्सर हम ये कहावत सुनते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो लोग आज अनेक अनेक चीजों को सुनकर प्रेरित होकर वो सब चीजें करने लगेंगे तो फिर वो सही नहीं होता। अब जब भी व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा होता है, जैसे किसी भी प्रकार का शरीर में व्याधि या रोग या असहजता व्यक्ति को महसूस हो रही होती है, तो स्वाभाविक रीति से व्यक्ति अनेक चीजों पर हाथ पैर मारने लगता है कि भाई जिस भी तरीके से ये समस्या ठीक हो जानी चाहिए, इस बीमारी से निजात हो जानी चाहिए। अक्सर हम ये भी कहावत सुनते हैं कि मरता क्या नहीं करता। तो लोगों को ये नेचुरली वो चीजें लगती है कि भाई 10 लोग 10 चीजें बता रहे हैं तो मैं सब कुछ ट्राई करके देख लूं, जितनी जल्दी से जल्दी मैं अपने आप को ठीक करूं। ये एक होड़ होती है। आप इस चर्चा में अनेकों बार ये बात बता चुके हैं कि हम एक दिन में बीमार नहीं पड़े हैं, कि बीमार होने के लिए भी हमें एक लंबा समय, गलत आदतें, गलत खान पान, गलत हमारा आहार विहार रहा है, तब जाके हम एक दिन वो बीमारी हमारे सामने मैनिफेस्ट होती है। तो ऐसे में जब बीमारी से ठीक होने के लिए भी हम जब जल्दीबाजी करते हैं तो इसमें भी हमसे गलतियां हो सकती हैं, या हमें एक पेशेंस को रखने की ज़रूरत है, धैर्य को रखने की ज़रूरत है जब हम ट्रीटमेंट या कोई प्रयास हम कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने में।
0: भैया जैसे आपने कहा कि एक साधे सब सधे, और अगर हम सब साधने लगेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर हूं, तो हम लोग जब कभी प्लेयर से मिलते हैं तो ये बात बोलते हैं कि अगर आप रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं, मतलब जैसे बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, लॉन टेनिस हुआ, तो आप कृपा करके रैकेट स्पोर्ट्स ही खेलिए। आप चाहे तो उस रैकेट स्पोर्ट्स में थोड़ा शिफ्ट हो जाए मगर उसी को खेलिए। आप अगर शूटिंग करते हैं तो प्लीज नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलिए, तो आप उसमें एक्सेल करेंगे। अभी जैसे मैं स्पोर्ट्स की परिभाषा लेकर बोलूं कि अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, और या आपके लैंग्वेज बोलूं कि नीचे से माउंट पे आना है, और वो डिस्टेंस जो है वो एक सोचिए 10 किलोमीटर का है, तो अगर हम 10 किलोमीटर एक लाइन में सीधे चलेंगे तभी हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे। पर अगर हम ये कोशिश करें कि हम 2 किलोमीटर सीधे चलें, फिर पता चला आधा किलोमीटर दाहिने चलें, फिर 1.5 किलोमीटर जिगजैग चलें, तो हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो जितने लोग आपको राय दे रहे हैं, कृपा करके अगर आपको उनकी राय समझ में आती है तो उस राय के साथ वो उस जो ज्ञान मिला है, जो अनुसरण मिला है, कृपा करके इसे कम से कम हफ्ते भर तो फॉलो करिए। आप अगर फॉलो नहीं करेंगे किसी चीज को तो आप कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। जैसे एक कहा जाता है, धतूरे के नशे में आदमी इधर उधर दौड़ता रहता है, या शराब के नशे में आदमी गोल गोल गोल गोल इधर भाग रहा उधर भाग रहा, इधर दौड़ रहा उधर दौड़ रहा। यही चीज आपके मन की भी है। वो एक बार एक का एग्जाम्पल लेके दाहिने भागता है, दूसरे का सजेशन लेके बाएं भागता है। तो इसीलिए कहा जाता है कंसंट्रेट होकर काम करिए और रेगुलर काम करिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आप किसी भी, जो जैसे मैंने बोला बीमार पड़ने में भी आपको समय लगा है तो ठीक होने में भी समय लगेगा। सालों की समस्या दिनों में नहीं जाती, उसमें कम से कम महीनों का समय लगता है तो, और महीनों की समस्या हफ्तों में जाती है। तो अगर आपका लंबा समय लगा है तो उसका निवारण में भी समय लगेगा।
1: ये बात समझ में आती है कि इसमें धैर्य की आवश्यकता है, और अंग्रेजी में जो शब्द है कि पेशेंट कहा जाता है एक मरीज को, तो समझ में आता है कि उसके लिए भी पेशेंस की जरूरत है, इसलिए शायद उसको पेशेंट कहा जा रहा होगा। अब हम पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे कि लोग कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन को कई लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, खासकर बच्चे भी इन चीज़ों को शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। एक प्रकार की शर्म है, एक प्रकार का संकोच है जब व्यक्ति इस समस्या के बारे में खुलकर नहीं बातचीत करता है या उसके बारे में राय मशवरा करने में बहुत देर लगा देता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाथरूम की जो हमारी प्रक्रिया है, शौच में जाना, ये एक प्राइवेट सी चीज़ है। और उसकी वजह से भी बहुत बार लोग इस समस्या के बारे में तब तक मुखर नहीं होते, तब तक वो आकर राय मशवरा नहीं करते या मदद नहीं लेते जब तक वो समस्या बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं हो जाए या व्यक्ति को उससे ज़्यादा कष्ट होने न लगे। तो क्या कारण है जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी समस्याओं के बारे में इस प्रकार की धारणाएं रखते हैं, और कब उन्हें इस बारे में एक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, कब राय मशवरा करना चाहिए?
0: मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय विट्ठल दास मोदी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रोगों की सरल चिकित्सा, और इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। इसका बहुत सारी लैंग्वेजेस में अनुवाद हुआ है। इस किताब में जो पहली बीमारी उन्होंने बताई है वो कब्ज, और प्रखर चिकित्सक ये मानता है सब रोगों की एक दवा मिट्टी पानी धूप हवा, और यदि पाचन तंत्र आपका ठीक है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हम लोग जो बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं वो ये सोचते हैं अरे ये क्या समस्या है, बाथरूम जाना है पेट साफ हो जाएगा, और वो जब अपने अगल बगल देखते हैं कि कोई व्यक्ति या उनके घर का सदस्य गया, उसने बाथरूम में गया और 5 मिनट 10 मिनट में बाहर निकला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे मेरा पेट साफ हो गया, तो उनको लगता है तो बड़ा इजी है, पर वो अपना पेट ठीक से साफ नहीं कर पा रहे। तो इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करते, और पहले व्यक्ति अपने मित्रों से बात करता था, अब उस हर चीज के लिए 1 मिनट में इंटरनेट पे टाइप करता है और उसका इलाज देख लेता है, और उस इलाज को भी वो बिना किसी की राय मशवरा के शुरू कर देता है। जो चीज अगर फॉर एग्जांपल कोई दवा या कोई गोली या कोई चूर्ण या कोई चीज अगर उसे खाना है और ये लिखा है रात में खा के सोना है, और वो अगर उसको भूल गया तो चुपचाप सुबह उठते ही खा लेता है। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो मानसिक रूप से आदमी को परेशान करती है, क्योंकि दिमाग में हमेशा उसके चलता रहता है मेरा पेट नहीं साफ हुआ, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मेरा पेट साफ नहीं हुआ। और दिमाग में उसके क्या चलता है, अगर घर के बाहर गया और मुझे लगा कि मोशन होगा या मुझे शौच जाना होगा तो मैं कहां जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति घर में रहना चाहता है, अगर बाजार निकलता है तो बड़ा संभल के निकलता है। ऐसे लोग भैया गाड़ी से यात्रा करने से हिचकिचाते हैं कि अगर निकले यात्रा पे और पेट खराब, मतलब जाना पड़ गया तो हम क्या करेंगे, और दिमाग में हमेशा सोचते विचारते रहते हैं कि हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है। तो यदि आपको नेचुरली एक दो दिन में शौच नहीं हो रही है, या जब आप शौच में बैठ रहे हैं और आपको घंटों लग जा रहे हैं पेट साफ होने में, या आप इतनी ताकत लगाकर भी अपने पेट को साफ नहीं कर पा रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आप कमजोर हो गए हैं, आपके पेट में गैस बन रही है, आपकी नींद परेशान हो रही है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आप कमजोर होते चले जा रहे हैं, आपको मुंह में गंदा स्वाद आ रहा है, आपकी आपकी जिह्वा जो है वो सफेद होती चली जा रही है, और आप मेंटली भी अब परेशान होने लगे हैं, तो कृपा करके किसी डॉक्टर को जरूर दिखा लें, क्योंकि वो अगर आपको देख लेगा, आपकी समस्या समझ लेगा, तो आपकी मदद कर पाएगा। अगर आप इसको जितना छुपाएंगे उतनी ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ये समस्या महीनों की है तो ये हफ्ते या दिनों में ठीक हो जाएगी, पर अगर आप इसको सालों पकड़ के रखेंगे तो फिर इसको सही होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा।
1: जैसे आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से संबंधित चीजों के बारे में बता रहे थे कि उस व्यक्ति के व्यवहार में क्या चीजें हम देखते हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर फिल्म बनी है। एक फिल्म आई थी जिसपे बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भूमिका निभाई। फिल्म थी पीकू, जिसमें ये कैरेक्टर वो निभाते हैं जहां पर वो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का शिकार है, तो उसकी वजह से उसके जीवन में और उसके साथ वाले लोगों के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसका बड़ा सुंदर चित्रण देखने को मिलता है।
0: भैया ये बहुत सुंदर आपने बात की भैया, पर आप देखिए वो भी व्यक्ति की उम्र हो गई थी, उस कैरेक्टर की उम्र हो गई थी, और जो भी उसके साथ थे उसको पॉजिटिव राय दे रहे थे इस चीज को लेकर। भैया ये बड़ी छोटी समस्या है। मैं एक बड़ी सीधी बात, मैं अपने इस ग्रैंडफादर की किताब के पहले कब्ज के ऊपर जो पहले उन्होंने तीन लाइनें लिखी वो पढ़ना चाहूंगा कि कब्ज हद दर्जे का परेशान करने वाला रोग है, पर जितना ही ये अधिक परेशानी देने वाला है उतनी ही आसान है इसका जाना, बशर्ते कि आप इसे हटाने के लिए कुछ करने को सचमुच तैयार हों। पीकू में तो बहुत एजेड व्यक्ति पे पहुंच गए। मैं आपको बड़ी बेसिक बात भैया लोगों के समस्याएं बताता हूं कि पहले अखबार को लेके जाते थे बाथरूम में और अब वो मोबाइल को लेके जाते हैं, और उनके पास इतना समय नहीं है कि इतने समय का अभाव है कि वो शौच में भी अखबार पढ़ रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। मतलब आदमी जो पेट साफ होने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हम अपने दिमाग को ठंडा रख ही नहीं पा रहे हैं। अभी मोबाइल का, मेरे ग्रैंडफादर के समय तो मोबाइल नहीं था, वो जब भी छात्र मिलते थे या यंग बच्चे जो पेट की समस्या, तो पहले सवाल यही पूछते थे, क्या तुम शौचालय में किताब या अखबार लेके जाते हो? और अगर उसने हाँ बोलता तो कहते थे, भाई इसको छोड़ दो, तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तुम उस 10 मिनट के लिए अपने दिमाग को, अपने ध्यान को, अपनी इंद्रियों को अगर अपने पाचन तंत्र की तरफ मोड़ दोगे, सोचोगे कि मेरा पेट साफ हो रहा है। आज भाई हम लोग अफर्मेशंस की बात करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन लिए, जो आप बोलेंगे वो होगा, जो आप सोचेंगे वो होगा। तो प्लीज आप अगर पॉजिटिव सोचिएगा अपने पेट साफ होने के लिए तो जरूर साफ होगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम किताब लेके, मोबाइल लेके वहां बैठे हुए। अरे भाई 10 मिनट छोड़ दो, जीवन में इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं है, इतना भी काम जरूरी नहीं है कि हम आज मैं सबको यही बोलता हूं कि अगर अपने पाचन तंत्र को ठीक करना है तो दो काम करना चाहिए, एक शौच में अखबार और मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, और दूसरा खाना खाते समय टीवी और मोबाइल नहीं देखना चाहिए। हमको भोजन का स्वाद लेना चाहिए, उसे चबाना चाहिए, वो क्या चीज बनी है देखना चाहिए। हम आपस में बातचीत करके भी भोजन कर सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि मुंह बंद करके 32 दांत हैं, 32 बार चबाकर अपने भोजन को करना चाहिए। अगर आप इतना कर देंगे तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत आराम दे देंगे। तो जितने यंग बच्चे या जो भी लोग हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप शौचालय में अपना मोबाइल फोन या अखबार लेके जा रहे हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए। 2-4-5 दिन 10 दिन लगेगा, उसके बाद देखिएगा एकदम ठीक हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा तो शायद आपको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है हो सकता है 50% वही दूर हो जाए। इतना ही करने से।
1: ये राय जो आप दे रहे हैं, जब एक डॉक्टरी सलाह के रूप में जब ये चीज मिलती है, तब लोगों के मन में, जैसे मेरे मन में अभी हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात, इससे ये समस्या में अगर हमें 50% तक, 50% तक लाभ हो सकता है, तो ये दो चीजें तो हम कर ही सकते हैं। अब अचानक से ये प्रश्न भी उठता है कि जैसे आप कह रहे थे कि भाई हम बस सोच लूं कि भाई मैं शौच पे गया हूं तो उस समय पर मैं अपने पेट पर, अपने पाचन तंत्र पर ध्यान केंद्रित करूं और ये पेट साफ हो रहा है इस पर मैं ध्यान केंद्रित करूं तो ये हो सकता है। भोजन करते समय मैं टीवी, मोबाइल इत्यादि न देखकर सिर्फ भोजन को देखते हुए, भोजन पर ध्यान देते हुए अगर मैं भोजन करूंगा तो इसमें मदद मिलेगी, तो लोग अक्सर चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या, बस इतना करने से हो जाएगा, क्या इसके पीछे की वजह है? ये भी तो सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा साथी और खासकर बच्चे इस बात पे हैरान होंगे कि भाई इससे क्या नुकसान हो रहा है, कि मतलब क्या मैं सिर्फ मोबाइल फोन छोड़कर भोजन कर लूं तो क्या इसमें, इसके पीछे का साइंस क्या है?
0: और बेसिक साइंस है, जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस भोजन के प्रति है, और आप भोजन चबा रहे हैं, आप भोजन का स्वाद ले रहे हैं। भैया आप नॉर्मल भारतीय हाउस होल्ड में आप जाइए तो आप देखेंगे कि भोजन जो है उसमें एक दाल बनती है, एक सब्जी या दो सब्जियां बनती हैं, रोटी बनता है, चावल बनता है, सलाद कटता है, हम चटनी बनाते हैं, और हम सबका अलग अलग स्वाद है। भैया बनाने वाला भी सब चीज अलग अलग बना रहा है, अगर उसको एक ही तरह से सब कुछ एक ही थाली में बना दे रहा था तो क्या करना था, सिर्फ सब कुछ एक जगह डाल के उसको उबाल देना था, उसको छोंक देना था, आपको खिचड़ी या पहेली की तरह बना के सर्व कर देना था, वो भी मेहनत से अलग अलग चीज बना रहा है, तो प्लीज उसका स्वाद लेके खाइए। आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है, मन के जीते जीत मन के हारे हार। आप अगर बिना मोबाइल देखे भोजन कर लेंगे तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। आप भैया बड़ी बेसिक चीजें हैं, आप खुद देख लीजिए, आप ब्रह्म कुमारी के किसी भी सेंटर पे जाइएगा, वो किसी के भी भोजनालय में टीवी नहीं लगा है, और अगर आप वहां मोबाइल देख के बात ऊंची आवाज में कर रहे होंगे तो कोई भैया या कोई बहन आकर आपको टोक देगी कि प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए। और हम लोग बात कर रहे हैं भैया डिजिटल डिटॉक्स, क्या जमाना आ गया है, यहाँ बॉडी डिटॉक्स से ज्यादा अब डिजिटल डिटॉक्स की, पहले बॉडी डिटॉक्स की बात हुई, फिर मेंटल डिटॉक्स की बात हुई, मतलब नेचुरोपैथी किया जाए, आयुर्वेद किया जाए, योग किया जाए तो उससे बॉडी डिटॉक्स होगी, फिर मेंटल डिटॉक्स की बात हुई, प्राणायाम किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, कहीं आश्रम में चला जाए उसकी बात की गई, और अब तो डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है। और लोग बड़े, मेरे भी भाई अच्छे मित्र हैं बहुत सारे, वो बड़े हंसते हुए किसी दिन कहते हैं, अरे डॉक्टर मैंने 3 दिन से ये सोशल मीडिया नहीं देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप अगर किसी चीज को कंसंट्रेट होके करेंगे या इवन उस पर थोड़ा ध्यान देके करेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। आप अपने बच्चे पे ध्यान देंगे तो वो ग्रो करेगा, आप अपने बच्चे को छोड़ देंगे तो वो भी भागने लगेगा इधर उधर। यही हाल है आपके पेट के साथ, अगर आप टीवी मोबाइल ये सारी चीजें बंद करके आपस में बैठ के भोजन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा वो भोजन पचेगा। हमारे घर में सब लोग भोजन एक साथ करते हैं, एक टेबल पे बैठ के करते हैं, और हम बात करते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या दिन भर हुआ हमारे साथ, छोटे बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग भी, तो वहां टीवी नहीं और सबका मोबाइल टेबल से दूर रखा रहता है।
1: ये बात समझ में आती है कि कितना इसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है, हम अपने मनोविज्ञान को न समझने के कारण शरीर पर इन चीजों का असर कैसे होता है इसे न समझने के कारण अज्ञानवश ऐसी गलतियां करते हैं। जिसके कारण हमारा भोजन सही तरीके से पचता नहीं है, सही तरीके से हम उसे खाते नहीं हैं, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी समस्याएं धीरे धीरे घर करने लगती हैं हमारे शरीर के अंदर। बहुत ही सुंदर आज का ये विषय रहा है जिस पर ये चर्चा हुई है। और भी प्रश्न है मगर समय यहाँ रुकने को कहता है, तो यहाँ इजाजत लेंगे। आज आपने हमारे श्रोता मित्रों को इतनी सुंदर जानकारी दी, उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार।
0: नमस्कार। ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीज सुनी है वो मैं समझता हूं आज हर घर के लिए आवश्यक सी बात है। आज से, अभी से आप इस बात को शुरू करें। अगर आप भोजन कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन, कुछ भी खा पी रहे हैं, तो उस समय पर मोबाइल फोन, टीवी या किसी भी प्रकार की स्क्रीन से दूर रहें। जब आप भोजन खा के पचा चुके हैं, जब शौच में जाना है, जब मलमूत्र विसर्जन करने जा रहे हैं, उस समय पर भी आप मोबाइल फोन इत्यादि को बाथरूम में लेकर न जाएं। इसे कर देखें और फिर बताएं कि आपको इससे क्या फायदे हो रहे हैं। आज के सहज स्वास्थ्य में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। जीवन एक उत्सव है, हर पल को हमें खुशी से जीना चाहिए। जिंदगी का हर पल हर लम्हा इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब बातें हम हर रोज सुनते हैं और उन्हें जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। कई बार तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ होते हुए भी कई बार हम अकेले हो जाते हैं और तब लगता है कि डिप्रेशन में है। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं? वो एम्प्टीनेस की फीलिंग, वो हॉलोनेस क्यों होती है? इसी विषय पर हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कई कड़ियों में हमने जानने की कोशिश की है। आज एक बार फिर डिप्रेशन के कॉजेज जानने की कोशिश करते हैं और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। और आपको बता दें कि डॉक्टर गिरीश पटेल आज हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि लगभग 40 देशों में 5,000 से भी ज़्यादा लेक्चर्स दे चुके हैं। डॉक्टर पटेल, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। आज डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो हमने अभी शुरू में ही कही है कि हम ये तो जान चुके हैं कि डिप्रेशन है, हम में से हर एक को ये फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, एम्प्टीनेस है। वजह क्या है? क्योंकि अगर हम वजह तक पहुँच जाएँ तो शायद उसे दूर कर पाएंगे।
2: मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है डिप्रेशन का, पर पहले तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं है। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे कि जब भी व्यक्ति भले माइल्ड प्रॉब्लम आए, मेजर प्रॉब्लम आए, किसी न किसी को दोष देता है। हमने एक छोटी सी स्टडी की थी जब मैं नायर हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, कहीं जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में आने वाले पेशेंट्स थे उन सबको पूछा कि भी आपको ये जो बीमारी हुई है उसका कारण क्या है। सिंपल एक ही क्वेश्चन था सिर्फ, तो हमने देखा कि 81% लोगों ने यह कहा कि भी मेरी ये मानसिक बीमारी का कारण और कोई
0: उसकी वजह से हुआ है। हाँ, उसने ऐसा किया, ये घटना हो गई थी तब मुझे हुआ।
2: जैसे नहीं कि भी एक यंग लेडी को डिप्रेशन था, उसको पूछा कि भी आपके डिप्रेशन का कारण क्या है, तो उसने तुरंत कहा मेरा डिप्रेशन, मेरी सांस ही उसका कारण।
0: तो डॉक्टर पटेल, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरे डिप्रेशन का कारण बाहर नहीं है। आपकी पूरी बातचीत से हमें ये साफ तो हो गया कि बाहर नहीं है, कहीं अंदर है। कहाँ तलाशें वो अंदर, क्या है वो कारण?
2: मतलब मेन चीज है आपके थॉट्स। कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई डिप्रेशन वह बीमारी है या कॉज है। तो मैं समझता हूँ वास्तव में वो कॉज नहीं है किसी का, कॉज इज योर थॉट्स। मूल विचारों को परिवर्तन करना होगा तो तब डिप्रेशन भी खत्म होगा। और कहीं हमारे रिएक्शंस भी ऐसे होते हैं, नो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, नॉट सो इजी, लेकिन जो हमारे नेगेटिव रिएक्शंस है वो अल्टीमेटली डिप्रेशन क्रिएट करते हैं।
0: तो हमने जो वो तीन तरह के डिप्रेशंस की बात की थी पीछे, तो उन सबको हम थॉट को चेंज करके उन, और सबसे बड़ी बात, उन सबका कारण भी थॉट हो सकता है, उन सभी डिप्रेशंस का।
2: जैसे मेजर तो हमने सोचा था रिएक्टिव डिप्रेशन, जो रिएक्टिव डिप्रेशन 100% योर थॉट्स जो है वही कारण है। दूसरा जो एंडोजिनस डिप्रेशन, एंडोजिनस डिप्रेशन में कहेंगे कि भी विचार शायद सबसे मूल कारण नहीं, लेकिन फिर भी विचार कारण है। क्योंकि हो सकता है कि मेरे फादर को डिप्रेशन था तो मेरे में भी वह जीन्स है, और वह जीन्स होने के कारण मेरे में वो केमिकल इम्बेलेंस कोई ना कोई एक लेवल पर होगा। लेकिन तब भी अगर मैं टोटली पॉजिटिव हूँ, मैं मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, तो वह केमिकल्स को डिस्टर्ब होने से मैं बच जाऊँगा। तो वहाँ भी वह एक थॉट ही अल्टीमेटली तो रीजन है। साइकोटिक डिप्रेशन भी कहे, वहाँ भी थॉट है, लेकिन वह क्या है, परवर्टेड थॉट्स हो गए,
0: तो वो भी हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं
2: अल्टीमेटली। हाँ, वो मुश्किल जरूर है,
0: मगर वो
2: मोस्ट डिफिकल्ट, कि वे करना इजी नहीं है, परंतु उसका जो रूट कॉज कहेंगे वह थॉट्स ही है।
0: सिस्टर शिवानी, हम थॉट्स के ऊपर इतनी बार बात कर चुके हैं, थॉट लीड्स टू डेस्टिनी, ये एक पूरी हम साइकिल से गुजर चुके हैं कि किस तरह से हमारा थॉट जो है वो कन्वर्ट होता हुआ डेस्टिनी हमारी क्रिएट कर सकता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डिप्रेशन का मेजर रूट कॉज सामने जो आता है वो है नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ना हम कर चुके हैं उस जर्नी के थ्रू, लेकिन बार बार, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, मैंने अपनी जिंदगी में अब देखा इतने दिनों में भी कि पहला थॉट जो आता है वो नेगेटिव ही आता है, कुछ भी कर ले हम, मतलब बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, फर्स्ट थॉट विच विल कम टू आवर माइंड इज नेगेटिव. ओनली थिंग विच आई थिंक द चेंज विच हैज कम इन मी, आई फील एम से, हो सकता है हमारे ऑडियंस में भी आया हो, कि आई स्टार्टेड रजिस्टरिंग इट कि मेरा थॉट नेगेटिव आया है.
1: दैट्स बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस.
0: यस,
1: पहले अवेयरनेस नहीं थी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यू नो अवेयरनेस ही नहीं है. जैसे कलर्स बहुत सारे हैं लेकिन एक बच्चे को पता ही नहीं है ये ब्लैक है ये वाइट है ये रेड है. जब सिखाया जाता है तब वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है ना, दिस इज डिफरेंट, सो देन ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग दैट बेटर. लेकिन नहीं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, यू नो एवरीथिंग इज द सेम. तो अब हम अपने थॉट्स की अवेयरनेस में आ गए, ये नेगेटिव है ये वेस्ट है इसका फायदा नहीं है, रिजेक्टेड, दिस इज अ गुड थॉट, दिस इज एन एलिवेटेड थॉट.
0: लेकिन एक बात है, क्या थॉट में हम प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट पे जा सकते हैं? बीच में कई बार ग्रे होते हैं,
1: बहुत सारे शेड्स आ जाएंगे.
0: हाउ टू डिफरेंशिएट, एक्चुअली
1: इट विल नेवर बी परफेक्ट 100 या परफेक्ट 0, यू नो.
0: तो सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मेरा ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ग्रे में क्या है, तो तब मैं सही और गलत के थॉट पे कैसे आऊंगी?
1: मोस्टली तो ये भी हो सकता है कि हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हम फील करते हैं वो राइट है,
0: पॉजिटिव है,
1: वो राइट है, एटलीस्ट वो राइट है. बिकॉज हम मोस्टली अभी तक अपने थॉट्स की या अपने व्यवहार की जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से दे पाते हैं. वी आर वेरी गुड लॉयर्स अपने लिए एंड वेरी गुड जज फॉर द अदर पर्सन. तो अपने लॉयर में हम सब बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी हर थॉट और हमारी हर बात के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है, चाहे सारी दुनिया समझा दे कि वो गलत है. तो उस टाइम हम अपने आप को ही नहीं रियलाइज कर पाएंगे कि ये नेगेटिव है ये हार्मफुल है. तो उसके लिए शायद थोड़ा साइलेंस में अगर हम बैठ के चेक करते हैं कि वेदर यू नो दिस इज गिविंग मी कम्फर्ट, ये मुझे फील कैसा कराती है, बिकॉज थॉट के बाद फॉलोड विद फीलिंग, जो हमने साइकिल भी देखा कि थॉट के बाद फीलिंग, फीलिंग के बाद एटीट्यूड, फिर वो एक्शन में आ रहा है. तो अगर थॉट लेवल पे नहीं इवैल्यूएट कर पा रहे कि क्या ये राइट थॉट है या नहीं, तो उसको एटीट्यूड या एक्शन तक लेकर जाइए, या फिर उसको पर्सनालिटी तक, डेस्टिनी तक भी लेकर जा सकते हैं. सपोज आई से कि नहीं आपने किया ही गलत है, तो मुझे आपके लिए इस तरह सोचना ये मेरे लिए सही है, आप हैं ही गलत, आई एम जस्टिफाइड. फिर उसको मैं आगे ले जाऊं कि आपके बारे में ऐसा सोचते सोचते धीरे धीरे मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा होता जा रहा है, शुड आई कॉल दिस पॉजिटिव. अच्छा, उसको भी अगर मैंने जस्टिफाई कर दिया, मेरी पर्सनालिटी कैसी बनती जा रही है कि मैं बार बार आपसे किस तरह से बात कर रही हूँ, और वो एंगर फिर सिर्फ आप तक नहीं सीमित रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी मैं अपने अंदर जेनरेट कर रही हूँ आई कैन नॉट गिव दैट ओनली टू यू, सो आई टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर पीपल दैट आई गो. फिर उसके बाद जो एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ वो एनर्जी वापस
0: किस
1: मुझ पर आ रही है, तो मेरी डेस्टिनी धीरे धीरे क्या बनती जा रही है, मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, गुड विशेस मिल रही हैं, या ऑपोजिट उसका, तो मेरे रिलेशनशिप्स बनते जा रहे हैं बिगड़ते जा. इफ आई देन गो थ्रू द चेन देन आई अंडरस्टैंड दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ अ रॉन्ग थॉट
0: व्हिच आई थॉट इज
1: वाज राइट. तो देन एटलीस्ट या तो फिर उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करें, यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी लाइक दिस, तो ठीक है. अगर आप स्वीकार करते हैं कि आपकी यू नो जीवन में चिड़चिड़ापन, तनाव, एंग्जाइटी, गुस्सा ये भरा रहे, क्योंकि मैं जो नो काफी लोगों को आज ये कड़वाहट भी अच्छी लगती
0: है, आदत हो जाती है,
1: हाँ, दे आर यूज्ड टू इट, सो दे आर लाइकिंग इट. बट ये प्रोग्राम हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे जीवन में खुशी चाहिए, सो चाहिए कुछ और, उसके लिए कर कुछ और रहे, इट विल नॉट हैपन.
0: इनफैक्ट अपने आप को खुद को बार बार ये याद दिलाना है कि तुझे क्या चाहिए, बिल्कुल क्या चाहिए एक्चुअली. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस,
1: तो फिर जो फल चाहिए उसी का बीज बोना शुरू कीजिए. बीज कोई और बोए और फिर कहे फल कोई और चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल,
0: वी डोंट गेट इट. इनफैक्ट डॉक्टर पटेल, हम फिर कॉजेस पर आते हैं. एक बात, सबसे बड़ी बात ये कि थॉट्स हमारे जनरेट करते हैं, जिस भी डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, और थॉट को चेंज करना, अगेन ग्रे में रहते हैं, ग्रे होते हैं थॉट. कई बार हम नेगेटिव थॉट है वो हम मान ही नहीं पाते कि नेगेटिव है, सो देन दिस होल जर्नी वी टेक एंड देन वी रियलाइज कि ओहो दिस थॉट वॉज रॉन्ग एक्चुअली व्हाट पीपल हैव बीन ऑल्सो सेइंग. अब बात यहाँ आती है कि क्या इतना आसान है हर कदम पे अपने उस नेगेटिव थॉट को जान पाना और उससे अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाना.
2: एक तो अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करने लगे, इसको अवेयरनेस की बात शिवानी बेन ने कही, ऐसे सिंपल भाषा में अवेयरनेस कईयों को मुश्किल लगता है, उसको सरल भाषा में हम कहेंगे कि वी स्टार्ट वॉचिंग योरसेल्फ. एक जो सरल चीज है वह है कि अपनी फीलिंग्स को वॉच करना, कि मेरे दिमाग में क्या फील हो रहा है उसको वॉच करो, इन आंखों में क्या फील हो रहा है हाँ उसको वॉच करो, मुंह में क्या हो रहा है हाँ, कई बार जब टेंशन में आते हैं ना स्पेशल फीलिंग होती है, यू मे बी टाइटनिंग योर जॉज और समथिंग एल्स, शोल्डर्स में यू मे बी नो लिफ्टिंग योर शोल्डर्स, थाइस को भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पेट में क्या फीलिंग हो रही है, नहीं अगर उसको वॉच करना भी हम प्रारंभ कर देना, देन यू विल कैच नेगेटिव थॉट जब इमर्ज हो रहा है उससे पहले ही आपको पता चल जाए,
0: आपकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है उसी तरह से, बिल्कुल।
2: आई हैव सीन सम टाइम, ऑल्दो इट्स वेरी रेयर, लेकिन कभी ऐसी अगर माइनर भी डिप्रेसिव फीलिंग आने लगी तो देन आई हैव रियलाइज व्हाट हैपेंस, मे बी स्टार्टिंग इवन 0.1% स्टार्ट होना अब मुझे पता चल जाता है, एंड देन नो आई बिकम अलर्ट, नो लेट मी वर्क विथ माई सेल्फ। तो वो जब बडिंग स्टेज में है तभी उसे दूर कर दो तो सदा के लिए मुक्ति मिलेगी।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं यूजुअली तो हम लोनली हो जाते हैं, ये एम्प्टीनेस हॉलोनेस की फीलिंग जो होती है, लेकिन कई बार हम सैड होते हैं, यू नो दुखी हो रहे होते हैं, कुछ कोई इंसिडेंस ऐसा हो जाए, कोई कुछ और ऐसी बात हो जाए जो हमें दुखी कर जाती है, सो इज इट लाइक कि जब हम सैड हैं मतलब कि हम डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं लोगों को वो दुखी से लगते हैं हम तो हमें बोलते हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड क्यों हैं, तो जैसे नहीं नहीं हम डिप्रेस्ड नहीं, ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा दुख हो गया है, सो हाउ टू डिफ्रेंशिएट, क्या दुख और डिप्रेशन इकट्ठा है या सैडनेस एंड डिप्रेशन इज लाइक सेपरेट एंटिटी?
2: नो, इट इज सेपरेट। कनुप्रिया जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, इवन इट शुड बिकम क्वाइट क्लियर। अगर ये क्लियर हो तो सैडनेस तो जीवन में आनी है थोड़े समय के लिए, डिप्रेशन वो लंबा चलता है, एक जो बात है। दूसरी है कि सैडनेस वो एक्टिव स्टेट है, जो डिप्रेशन है वो पैसिव है, नहीं जो चीज एक्टिव है ना उससे आप बाहर निकल सकते हैं, जो पैसिव है उससे बाहर निकलना मुश्किल है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सैडनेस में भी आप खुश रह सकते, यू नो यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आप कहीं देखिए कि कोई व्यक्ति रो भी रहा है फिर जोर से हंसने भी लगेगा कुछ हो गया तो ही इज नॉट डिप्रेस्ड, ही इज ओनली सैड। अगर डिप्रेस्ड व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो हंस नहीं पाएगा, कितना भी उसको कोई अच्छा सीरियल दिखा दो, कुछ जोक्स कट करो, वो थोड़ा उसके चेहरे पर उन्हें मतलब वो हंस नहीं पाएगा वास्तव में, इवन कई बार तो रो भी नहीं पाता है। डिप्रेस्ड व्यक्ति आप देखेंगे तो वो रो नहीं पाएगा, जब सैडनेस है तो आप रो लेंगे एंड देन आफ्टर क्राइंग यू फील बेटर,
0: दिस इज अ कैथारसिस व्हिच हैपेंस, निकल जाता है वो, निकल जाता है ना, कहते हैं कि रो के निकल गया।
2: डिप्रेशन में वो कैथारसिस कई बार है वो मुश्किल हो सकता है, तो ये कुछ एक वास्तव में डिफरेंसेस है बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन
0: एक्चुअली। लेकिन एक बात ये बताइए सचिवानी कि सैडनेस इज नेचुरल,
1: हैप्पीनेस इज नेचुरल,
0: तो बट सी अगेन सैडनेस लाइक इज डिफरेंट फ्रॉम डिप्रेशन, बट सैडनेस भी जो है क्या लीड कर सकती है,
1: हैप्पीनेस इज 98 व्हाटएवर ऑन द नॉर्मल टेम्परेचर, सैडनेस शायद थोड़ा सा बुखार बढ़ जाए 101 तक आ जाए तो वो सैडनेस, और डिप्रेशन इज प्रोबेबली व्हेन इट गोज बियॉन्ड 105-106।
2: दैट्स हाउ मैं कहना चाहता हूँ कि नो व्हाट इज सैडनेस एंड डिप्रेशन, कि भी सैडनेस आपने करना नेचुरल है वो ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे तो ठीक है, बट इफ इट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन, सदैव आपका जीवन साथी अगर बन गया तो दैट इज देन इट्स डिप्रेशन।
1: लेकिन उसकी एक आदत सी पड़ जाती है ना, क्योंकि उसको एक्सेप्ट, क्यों हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसको नेचुरल कहे, क्योंकि उसको नेचुरल कहते हैं तो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि कभी कभी तो उदासी ठीक है, कभी कभी तो ठीक है, फिर वो कभी कभी जो परसेंटेज है वो धीरे, जैसे हम कहते हैं कभी कभी गुस्सा ठीक है, तो वी आर गिविंग आवर सेल्फ द मार्जिन, इट्स लाइक सेइंग कभी कभी बीमार होना ठीक है, अपना क्या इतना क्या ध्यान रखना, तो फिर वो अब हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमेशा ठीक रहे, हमेशा ठीक रखने का जब ध्यान रखते हैं तब जाकर कभी कभी बीमार पड़ते हैं, यू नो। लेकिन अगर हम अपने आप को ये लॉजिक देना शुरू कर दें कि कभी कभी बीमार रहना ठीक है, कोई बात नहीं, चलते चलते कहीं भी पानी पी लो, थोड़ा सा ही तो बीमार पड़ेंगे, देन द फ्रीक्वेंसी कि हम जितनी बार बीमार पड़ेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जो अपने लिए वो रखना पड़ेगा टारगेट वो है कभी गुस्सा नहीं करना, फिर जाकर होगा कि कभी कभी गुस्सा आएगा, लेकिन अगर वो रखा कि कभी कभी गुस्सा अलाउड है तो बार बार, तो बहुत बार आएगा।
2: व्हाट शी इज सेइंग इज कि आप योग का अभ्यास करो ताकि वो सैडनेस भी ना आए, And that has to be the goal.
0: And that is a higher state which we have talked, you know, हर लम्हा जिंदगी जीने की हम बात जो करते हैं कि जिंदगी एक उत्सव है जिसे हमें मनाते रहना है वो कहीं ना कहीं उसी स्टेट पे जाकर पहुंच सकता है. डॉक्टर साहब एंगर पे छोड़ा, एंगर की बात की तो देखा कई बार ये भी गया है कि गुस्सा पी जाते हैं लोग, इंटरनलाइज हो जाता है अंदर, वो फिर कचर पचर बहुत अंदर करता जाता है. तो दो ओपिनियंस ये हैं, वन ऑफ कोर्स द आइडियल इज लाइक आपको एंगर करना ही नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि गुस्सा कर दो, वेंट आउट कर दो, कम से कम अपने अंदर मत रखो क्योंकि वो डिप्रेस्ड करेगा आपको, अंदर काट देगा. हाउ इम्पॉर्टेंट इज कि आपको आउटलेट देना है अपने एंगर को भी या जो भी एनर्जी किसी भी रूप में जनरेट हुई है.
2: आउटलेट देना है वो ठीक है, बट हाउ यू गिव आउटलेट इज इम्पॉर्टेंट. एक ज़ेन गुरु ने बहुत अच्छा कहा है, उन्होंने कहा है कि बे गुस्से को दबाओ नहीं, ये तो ठीक है उसको गुस्से को दबाना नहीं है, है ना, तो और उसको गुस्से में भी ना रखो, नो डोंट एक्सप्रेस इट एज एंगर बट डू समथिंग डिफरेंट. और जो क्या डिफरेंट कहे तो एसर्टिव योर फीलिंग. एसर्टिवनेस में स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, एंगर में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती. इफ आई कॉम्प्लीमेंट यू, आप एक दिन में

0: भूल जाएंगे, बट इफ आई क्रिटिसाइज यू, यू विल रिमेम्बर इट थ्रू आउट योर लाइफ. तो इसके कारण गुस्सा नहीं करना है. और जो डिप्रेशन का इससे संबंध है, क्रोध का भी डिप्रेशन से. सेगमंड फ्रॉइड वाज सपोज्ड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ साइको एनालिसिस, जिसने कहा है कि व्हाट इज डिप्रेशन, डिप्रेशन इज एंगर टर्न इनवर्ड. अपने आप पे गुस्सा करते हैं. वो दबाना एक और चीज है, एक अपने जो कहा ना गुस्सा पी जाना, वह है कि भी क्रोध को आपने दबा दिया. क्रोध को दबाना भी बुरा है, उससे कैंसर हो सकता है, ऐसी बीमारियां होने की संभावना है. और अगर आपने अपने आप पे गुस्सा किया तो आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं. देन यू विल स्टार्ट रिजेक्टिंग योरसेल्फ, नो, देन यू विल डिसलाइक योरसेल्फ, एंड उसके कारण फिर डिप्रेस्ड भी फील करेंगे.
1: एक और एस्पेक्ट अगर हम देखें तो व्हेन वी वांट समथिंग, यू नो, जब हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमें कुछ प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं वो हमें नहीं मिल पा रही हैं, मतलब हम ये भी ले लेना चाहते हैं, वो भी ले लेना चाहते हैं, वो भी, दैट आल्सो लीड्स टू डिप्रेशन मे बी, यू नो, समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट एबल टू गेट
0: इट्स डीपर. इट्स अ वंडरफुल थिंग, नो, इट्स अ डीपर थिंग. ऐसे तो ये लगता है कि भी उससे क्या होगा, कि भी मुझे ये भी चाहिए, भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. But when it is like, no, much more, या तो ना it's beyond something which is reasonable, तो क्या होता है, जब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो एक अपोजिट एनर्जी क्रिएट करती है, नो, इट इज अपोजिट एंड ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. और ये जो उससे अपोजिट एनर्जी है ना, वो आपको डिप्रेस्ड करेगी. यू विल लूज योर एनर्जी, अंदर में भी खोखलापन आएगा, मैंने कुछ चला गया मेरे में से, और वह जो बात है वह डिप्रेशन भी लीड कर सकती है. और इसीलिए जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल हैं ना, दे डोंट फील सो मच डिप्रेस्ड, क्योंकि उसमें जो लोभ की वृत्ति है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो वृत्ति कम होती है, तो उनमें डिप्रेशन भी कम पाया गया.
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, यहाँ स्पिरिचुअलिटी की भी बात अगर हम करते हैं तो ऑफकोर्स टू टेक थिंग्स, यू नो, ये जो लोभ की हम बात कर रहे हैं कि ये एक्चुअली इनहेरेंट ओपनली अगर नहीं भी है तो इनहेरेंट तो है ही आज के वक्त में, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये नहीं कि किसी और से छीन के अपने लिए ही काम में करता जाऊंगा. लेकिन वहाँ वो जो कहा कि जब हमारी इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक ऑपोजिट एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं वो आने नहीं देती है उसको, वो रियलाइजेशन कैसे हर
2: जहाँ चाहिए की भी बात हुई, इट्स लोभ नॉट ओनली कि मुझे स्थूल चीज़ें चाहिए, यू नो, धन चाहिए, पोजीशन चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे मान शान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए,
1: प्यार तो बहुत,
2: मुझे ट्रस्ट चाहिए, इवन ये सारी जो चीजें हैं ये भी सारा दिन चाहिए. ज्यादा डिप्रेशन शायद इन वजह से हो जाता होगा कि मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए. दैट इज वेयर दैट फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, निग्लेक्ट, वो सारी चीजें आती हैं, क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि मेरे पास ये नहीं है, अब मुझे जब मिलेगा तो देन आई विल फील कंप्लीट. एंड ह्यूमन नेचर इज यू ऑलवेज वांट टू फील कंप्लीट, बिकॉज वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है. जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं. अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है. जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए. तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो, यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी. नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, एंड इट विल नेवर गेट फिल्ड. एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप. अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो. हम यू वर्ड भी ये यूज़ करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मेरी खुशी को वो गायब हो गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी. उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है. जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट.
1: एंड इनफैक्ट नाउ व्हेन आई रियलाइज दैट मेरा इतना ज्यादा भरा हुआ है, तो मैं फिर देने को भी तैयार हूं.
2: वो अपने आप जाएगा, वो अपने आप जाएगा. जो आप किसी फंडन, जैसे उन्होंने कहा कि डिप्रेशन इज एंगर टर्नड इनवर्ड्स, जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं. लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप किसी को दे रहे हैं, मैं सोचूं कि आपने गलत किया तो आई एम जस्टिफाइड इन गेटिंग एंग्री विद यू. बट आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट हियर. तो द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव. आपको भी गुस्सा देने के लिए पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है, फिर वो आपके पास जाता है.
1: इट शोज ना फिजिकली आल्सो, हम आंखें लाल हो जाती हैं.
2: तो सबसे पहला डैमेज तो मेरा है. सो इट्स फॉरगेट व्हाट आई वांट टू गिव टू पीपल, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कि मुझे अपने आप को क्या देना है. नहीं मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए. बट ओनली रिमेम्बर कि सबसे पहले आप अपने आप को कर रहे हैं. तो अगर आप अपने आप को गुस्सा करना चाहते हैं फिर औरों को गुस्सा करना शुरू कीजिए.
1: अल्टीमेटली बात वही आती है सिस्टर शिवानी कि एंगर अगर मैं किसी पे कर रही हूँ जिसे मैं जस्टिफाई भी कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझसे ही होता हुआ गुजर रहा है. तो ये बात, ये एहसास इसीलिए याद रखना है. डॉक्टर साहब एक बात और चलते चलते आज इस कड़ी में ये जानना चाहेंगे कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब बच्चा होता है, तब वो एक प्योर सोल जो हम जिसे हम तलाश रहे हैं खुद वो है. धीरे धीरे जिंदगी में पहुंचते पहुंचते जिस भी जितना बड़ा होता जाता है ये सेंसिटिविटी आने लगती है, यू नो लाइक एहसास कि मेरे को इसने ये किया, हर्ट होने का सारा. ये कितना सेंसिटिव है क्या ये बच्चे को तो नहीं पता होता ना. तो ये कैसे कहाँ तक पूरा हमारा जो जिस तरह से बड़े हो रहे हैं पूरा एटमोसफेयर जो है समाज है वो वहां तक पहुँचा देता है.
0: बड़ा अच्छा आपने बताया ये. मैं हमेशा कहता हूँ ये कि भी डॉक्टर ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चा बड़ा क्यूट है लेकिन डिप्रेस्ड होने वाला है ना. तो उसके चेहरे पे नहीं लिखा था तब. वो आगे चल के हुआ और क्यों हुआ आप ये पूछ रहे, बहुत अच्छी बात है. कई इसके फैक्टर्स हैं. एक तो है पेरेंटल टीचिंग ना, बहुत बड़ा फैक्टर पेरेंटल टीचिंग है. और वो भी पहले 2-3 साल में, जन्म से 2-3 साल में माता पिता का जैसा व्यवहार है, जो बातें पेरेंट्स उसको सिखाते हैं ना, दैट एक्चुअली गवर्न्स द होल लाइफ. और टीचर्स की टीचिंग्स भी हो सकती है ना. और सारा एनवायरनमेंट उसको क्या मैसेज देता है उससे वह एटीट्यूड जनरेट होती है. और एक बहुत बड़ी बात है कि जिसको साइकोलॉजी में भी अब तक हम समझ नहीं पाए हैं क्योंकि उसे अंडरस्टैंड ही नहीं किया, वह है कि वह बच्चा अपने संस्कार भी लेकर के आया है
1: जो चल रहा है इतने टाइप से.
0: नहीं, या तो जिसको कहेंगे कि भी आत्मा में ही संस्कार है. इसका एक सरल सा उदाहरण में कई बार, मेरे एक बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर है, वो फ्रेंड है, तो उनका एक बेटा है और बेटी है. तो उनकी वाइफ कई बार ये बताती है कि देखो हमने तो एक जैसी बात बताई है, हमारे में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बेटा बड़ा लोभी है ना, एक एक्सट्रीम नो इज नेगेटिव लोभी है. और बेटी जो वो एकदम जनरस है, एकदम पॉजिटिव है, शी इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक. तो कहते ये क्यों हो रहा है. तो उनको मैंने यही समझाया कि भाई जो फर्क है ये दोनों अलग अलग आत्माएं अपने संस्कार लेकर के आपके घर में आई है.
1: लेकिन अगेन पॉजिटिव थॉट्स कैन चेंज दैट आल्सो.
0: इट कैन,
1: बिकॉज पॉजिटिव थॉट्स अगेन लीड्स टू आवर पॉजिटिव डेस्टिनी. हम यही बात करते आ रहे हैं. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का थैंक यू सो मच. आपको भी बता दें कि हो सकता है आपके पास भी कोई सवाल हो. एक और बात आपको बता देते हैं कि अपनी अगली कड़ी में हम विक्टिम्स के बारे में बात करेंगे कि किसी भी हादसे के जब विक्टिम्स हो जाते हैं तो जो डिप्रेशन तब सेट इन होता है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे हाथ में वो सिचुएशन नहीं होती है, तब कैसे उस डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है, अगली कड़ी पर उस पर ज़्यादा हम बातचीत करेंगे. लेकिन फिलहाल आपको बता दें अगर आपके पास कोई सवाल है जो कि कहीं अंदर छुपा है, कह रहा है कि मैं भी बाहर निकलना चाहता हूं, तो आपका स्वागत है. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी आपसे मुलाकात, कुछ और खास मुद्दों पर नजर डालेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। ढेर सारी खुशियों के साथ चलिए, भूल जाओ गम, आ गए हम। 11 अगस्त 2026 आज का तारीख है साथियों, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 11 अगस्त आते आते हम लोग जो है 15 अगस्त की बातें भी करते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में थोड़ी सी तैयारी इसकी शुरुआत हो जाती है अगस्त महीने में, और 15 अगस्त के लिए कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं। तो हम जहां भी स्कूलों में कभी इस महीने में जाते हैं तो निश्चित तौर पे वहां हमें बड़ा चहल पहल लगता है। बच्चे जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने में लगे हुए हैं, टीचर्स उनको सिखाने में लगे हुए हैं, और पढ़ाई के साथ साथ जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा होता है। तो ये देखकर हमें भी अच्छा लगता है, और हम जाते हैं तो वो हमें 15 अगस्त के लिए इनविटेशन भी देते हैं, और हमारे बच्चों ने ये तैयारी की है, वो तैयारी की है, इस तरह की बातें सुनाते हैं तो हमें भी बेहद खुशी होती है, और हमें लगता है कि हमें ज़रूर जाना चाहिए बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। तो आइए, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार
0: जी जी।
1: जिसका राम है रखवाला, उनका कौन बिगाड़े काम। हाथ लंबे। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी
0: जी जी
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका याद करने के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए, 11 अगस्त की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक 1948, 20 गते 26 श्रावण मंगलवार आज है, विक्रम संवत 2083 श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मंगलवार पुनर्वसु आज है, इस्लामी हिजरी 1448 27 सफर मंगल जीरा आज है, और सावन शिवरात्रि आज है, और डॉक्टर सुब्बा राव लालमणि मिश्र निर्देशक जॉन अब्राहम और यशपाल शर्मा, इन सभी के बारे में कुछ कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आज इन सभी का जन्मदिन है। और ऐसे बहुत सारे लोगों का जन्मदिन होता है, लेकिन कुछ खास लोगों के बारे में हम बात करते हैं। और आज हर महीने आने वाली शिवरात्रि है, और उसमें भी खास श्रावण महीने का ये शिवरात्रि है, तो ये खास ओकेशन बन जाता है, दिन बन जाता है। और सोमवार को आपने शिव जी को याद किया होगा, तो ये एक मंगल का दिन भी आप शिव जी को ही याद करेंगे, तो आपका ये जो दिन है और पवित्र हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इस हर महीने आने वाली ये जो शिवरात्रि है उस पे कुछ बातें ज़रूर शेयर करिए। आप अगर मासिक शिवरात्रि का उपवास करते हैं तो बताइएगा हमें। और चलिए, आज विशेष दिन है तो आप सभी को ले चलता हूँ मैं आप सब के लिए। अब हनुमान जी का एक बहुत ही प्यारा सा जो है गीत भी सुनाएंगे धीरे धीरे करके, और आपको बहुत आनंद मिलने वाला है, क्योंकि खूबसूरत भजन जो है मैं आपको सुनाने वाला हूं, और हर भजन में कहीं ना कहीं अंतर ध्यान की बातें बताई जाती हैं या हमारी चेतना को जगाने की बात की जाती है। तो ये जो चीज़ है, सिर्फ सुनना वो एक पहली सीढ़ी ज़रूर है, लेकिन दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो सीढ़ी होता है, वहाँ पर आपको अपने आप से और ईश्वर से कनेक्ट होने की बात होती है, क्योंकि बिना कनेक्शन आपके अंदर लाइट नहीं आएगी, है ना। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में सुख शांति के साथ लाइट भी बना रहे, लेकिन लाइट लाने के लिए या लाइट होने के लिए खुद से जुड़ना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद से जुड़ना ये भी अच्छी बात है, लेकिन भूलना और अच्छी बात है। ऐसा कहा जाता है कि भाई सब कुछ किसका, ईश्वर का, तो ईश्वर को ही सब कुछ समर्पण करना, खुद को भी उनके ऊपर वारी करना, ये और डेप्थ मेडिटेशन का एक गुण है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इन चीज़ों को करने की शुरुआत करेंगे तब जाके रास्ता पार कर पाएंगे, है ना। जब रास्ते में चलेंगे ही नहीं तो मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहला शुरू कीजिए चलना। तो आइए इस गीत के साथ अपने अंतर यात्रा की शुरुआत करते हैं, और शिव परमात्मा का गुण गाते रहे, सुनते रहो और प्यार से मुस्कान देते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बातें कर रहे थे हम लोग, कैसे हम लोग जो है अपने आप से कनेक्ट होकर परमात्मा को याद कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा भजन आपने सुना, जो आप खुद से कनेक्ट होने की सुंदर जो है अनुभव किया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल फिर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा इस जो भाव को है अपने आप से जुड़ना और उस परम शक्ति के साथ जुड़ना, इसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन चलना शुरू कर दिया आपने तो मंजिल मिल ही जाएगी, है ना। तो चलते रहिए, इस प्रयोग में कुछ चीज़ें हो जाती है, कुछ आ जाती हैं, ठीक है। तो आइए एक और गीत आपके लिए अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी खुशियां आप सभी को। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर। नमस्कार
0: मदन जी, बोलिए, कैसे हैं आप?
1: जी जी जी, बड़ा खुश होकर बोल रहा हूँ। आपकी आवाज सुनी है, मगर गाड़ी आगे टकरा गई बुरीलाल जी की और हमारी।
0: जी जी जी, जी।
1: मैं कि अभी निकला हूँ और बारिश थोड़ी थोड़ी चालू है।
0: जी जी जी, जी, जी, जी, जी।
1: चल रहा हूँ और मैं बस आपको थैंक्स कर रहा हूँ।
0: जी,
1: जैसे सादा थैंक्स, सुबह नाश्ता करते फिर खाना खाएगी उसके बाद में बड़ी बात होगी। जी जी जी। और
0: नारी
1: किरण सुबह की पहली किरण को, अरे मैं भूल गया जरा।
0: कोई कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए, थे मदन जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और बहुत ही अच्छी बातें बताते रहते हैं। और अभी हमारे साथ विशेष मेहमान जिनसे कल मिले थे, वर्षा जी भी हमारे साथ हैं जो बच्चों के लिए ब्रेन जीन एक्सरसाइज वगैरह कराती रहती हैं। तो आज हमने खास बुलाया ताकि वो शाम को निकल जाएंगे तो फिर आपसे रूबरू होना नहीं होगा और फिर हम लोग भी 9:30 के करीब जो है स्कूल में जाने वाले हैं, तो शेड्यूल बड़ा टाइट है लेकिन फिर भी आपसे रूबरू होते हैं। 8:30 होने वाले हैं, 55, 56, 57, 58 सेकंड हो रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वर्षा जी से। वर्षा बहन, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, ओम शांति।
0: ओम शांति, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमारा हर महीने का आने वाला शिवरात्रि जो है आज है, तो आपको माँ श्रावण का ये शिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को किस तरह से संबोधन करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए।
2: बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर ब्रेन जिम एक एक्टिविटीज़ है जिसमें हम पहले बच्चों को मेडिटेशन के माध्यम से हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को किस तरह काबू में रख पाए वो नॉलेज देते हैं, ताकि बच्चे अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा पाए, अपनी एकाग्रता, क्योंकि आजकल समय अनुसार बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, पर राजयोग मेडिटेशन के द्वारा उनमें बहुत स्थिरता आती है। और ब्रेन जिम एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बहुत बच्चों को मज़ा आता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी, आप पहले मेडिटेशन के माध्यम से मन को साइलेंट कीजिए और ब्रेन जिम अपने माइंड को एक चालना देने वाली क्रिया है। तो उसमें हम कराते हैं कि अपना राइट हैंड जो है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। बहुत गौर से सुनिएगा, अपना जो राइट हैंड है उसे क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर उसे रिलैक्स करना है, फिर मन को कहना है चलिए लेफ्ट हैंड को हमें सामने लेना है और उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब ब्रेन को सिग्नल देंगे, मन को सिग्नल देंगे कि हमें लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब पुनः अपने माइंड को पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ कहेंगे कि राइट हैंड हमें क्लॉकवाइज घुमाना है और लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये दोनों क्रियाएं हमें साथ साथ करनी है, राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाना है, लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। चलिए प्रयास करते रहिए, आखिर मंजिल में पहुंच जाएंगे। राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाना है, लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाना है, लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉक। तो बच्चों के मन में बहुत जंबलिंग होती है कि अरे मन क्या कह रहा है, राइट घुमाओ लेफ्ट घुमाओ, राइट घुमाओ लेफ्ट घुमाओ, पर निरंतर प्रयास करने से हम उस मुकाम तक, उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और बहुत अच्छा ये माध्यम है ब्रेन जिम का, जिससे हमारा मोबाइल का जो एडिक्शन है वो भी छूट सकता है। बीच बीच में आप ब्रेन जिम की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो मोबाइल एडिक्शन से दूर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा और आपके जीवन में स्थिरता बहुत आएगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ब्रेन जिम के लिए। तो ज़रूर आज ट्राई करिए, फोकस कीजिए कि मुझे राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाना है और लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो जरूर प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच।
0: हाँ, बड़ा वो अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है हमें कंफ्यूज भी कर देता है।
2: जरूर जरूर।
0: तो बड़ा अच्छा आपने बताया और मैं चाहूंगा कि आप भी इसको जो है बैठे बैठे अगर रेडियो सुन रहे हैं तो लेफ्ट हैंड अपने छाती के सामने लाइए और उसको घुमाइए और फिर राइट हैंड भी अपने छाती के सामने लेके आकर उसको भी रिवर्स में घुमाइए, तो आपको जो है पता चलेगा कि दोनों हाथों को अगर अलग अलग डायरेक्शन में घुमाना हो तो दिमाग का बत्ती कैसे चमकने लगता है वो आपको पता चलेगा। हेलो जी, नमस्कार। हेलो,
3: ओम शांति, गुड मॉर्निंग अमित जी।
0: गुड मॉर्निंग, बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: ये जो दीदी
0: वर्षा दी, वर्षा बहन आई है,
3: दीदी वर्षा जी, आपको भी ओम शांति,
0: ओम शांति।
3: और आपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एग्जरसाइज सुनाया, इसके लिए थैंक। और रमेश जी और सभी श्रोता भाई बहनों को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रमेश जी आपने स्टार्ट में बहुत ही शॉर्ट में स्लोगन बनाया कि आज अगर आपका ध्यान परमात्मा या अच्छी बातों पर लक्ष्य पर जाने रहा है तो प्रयास कीजिए, कोई ना कोई बातें आती है जाती है, आज नहीं तो कल जरूर करना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सभी को नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।
0: शुक्रिया शिवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और आप ध्यान से कार्यक्रम को सुनते हैं और हर कार्यक्रम का हर एक चीज़ आप जो है उसको बताते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप हर चीज़ को याद रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए 8:35 हो रहे हैं और वर्षा जी हमारे साथ हैं, मुंबई से है आप और आरएलयू में रहते हैं। तो वर्षा बहन, मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज करते हैं, इसमें जैसे चैलेंजेस क्या रहते हैं, आप उन तक पहुँचते कैसे हैं?
2: आजकल मेरे एरिया में सारे टीचर्स लोग मुझे पहचानते हैं और टीचर्स ही बहुत सारी डिप्रेशन की शिकार होती है, तो माध्यम बनती है कि हमें भी मेडिटेशन सीखना है, आप कुछ ऐसे टेक्निक बताइए जो कि हम हमारा माइंड स्टेबल रखे और बच्चों को हम हैंडल कर पाए। तो टीचर्स के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचते हैं। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना सुंदर योगा डे का हमें मौका दिया है सेवा करने का, तो उसके जरिए हम बच्चों तक पहुँचते हैं। और मेरे पास जूनियर सीनियर के ये ब्रेन जिम एक्सरसाइज है, जूनियर सीनियर के बच्चों को मैं 5-6 महीना रेगुलर वीकली वंस योगा सिखाती हूँ, तो उसमें हमारे ये ब्रेन जिम एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज और राजयोग मेडिटेशन के जो 7 वैल्यूज है वो बच्चों को पूरी तरह बाहट हो चुके हैं। वो कहीं पर भी रास्ते में मुझे मिलते हैं तो योगा मैम और 7 वैल्यूज मुझे सुनाते हैं। तो ये अगर बच्चों में बीज ही अगर बचपन से डाला जाए तो बच्चे बहुत ही सुंदर बनते हैं।
0: जी जी जी जी, वर्षा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ब्रेन इंजन के बारे में। और 21 जून जो है एक ऐसा दिन आता है जहाँ पर हम सभी लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो आप अपने इस चैलेंज को इस तरह से पूरा करते हैं और उस दिन जाके लोगों से मिलते हैं, उसके पहले से शायद कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और लोगों को भी अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है चीज़ें। और जब हम लोग टीचर्स से मिलते हैं उनकी भी ड्यूटी रहती है, हमें लगता है टीचर्स को क्या पढ़ाना है और काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ माताएँ बहनें भी होती हैं जो टीचिंग फील्ड में रहती हैं, तो उन्हें डबल काम करना पड़ता है, एक तो घर का भी काम करना पड़ता है और साथ ही साथ उन्हें टीचिंग का फील्ड जो है उसमें भी काम करना पड़ता है। हेलो जी नमस्कार।
4: हेलो नमस्कार, ओम शांति रमेश भाई जी और हमारे रेडियो मधुबन स्टूडियो में वर्षा दीदी पधारी है तो उसका मैं तह दिल से स्वागत करता हूँ। मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ।
0: दयाराम जी स्वागत है आपका।
4: सीमा से राजस्थान से रामपुरा गांव से, और आपको और बहन जी को और सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और वर्षा दीदी ने बहुत ही अच्छी बात बताई और हम सुबह ही उठते हैं तो हम इस तरह की जो ये करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम शाम को सोते हैं तो हमारा शरीर सिकुड़ जाता है, तो सुबह उठ के दर्द होता है, तो हम जो कसरत करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है ना, हमारे शरीर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे हाथ को घुमाना, लेफ्ट हैंड राइट हैंडल और
0: बिल्कुल,
4: हम ऐसे ही घुमाती है तो हमारे जो बाजुओं में ताकत भी आती है और बाजुओं में खून की जो रक्त नलियां भी संचार रूप से अपनी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को और आपको और सुनने वाले मित्रों को।
0: जी ओम शांति दयाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जिक्र करने के लिए। बहुत सारी बातें आपने बताया और खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, ये सुनकर और अच्छा लगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 8:38 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ यानि नई किरण के साथ। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत भजन की तरफ ले चलते हैं, उसके बाद फिर कुछ आपको सवाल पूछना हो या कुछ पूछना हो वर्षा जी से या बच्चों के ब्रेन जिन के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा 94-1415-1415 इस नंबर पर। तो आइए एक और खूबसूरत सा गीत जो आपके मन को या आप अपने आप से और परमात्मा से या ईश्वर से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम है। इस भजन के माध्यम से मैंने कहा रास्ता पर आइए और चलना शुरू कीजिए, मंजिल धीरे धीरे आपके करीब आना शुरू हो जाएगा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। और कहते हैं कि जीवन में सब कुछ आने के बाद भी, लेकिन अधूरा अधूरा तब लगता है जब हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि कंप्लीटनेस जो है वहीं से आएगा। संपूर्णता संपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ने के बाद ही आता है। जीवन जीते रहते हैं हम लोग, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को इकट्ठा करने से संपूर्णता नहीं आती। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, ओम शांति। और सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: बस अच्छे हैं, बैठा है, काम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, बातें सुन रहे हैं। बातें अभी जो हमारे वर्षा जी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बारे में। और बताओ सर, के जो बच्चों की जो आप बात कर रहे हैं, सर बच्चों, आज बच्चे पता नहीं सर जो मोबाइल के
0: चक्कर में ज्यादा है,
1: वो यूज कर लेते हैं बच्चे, पता नहीं चलता। हमको कुछ मोबाइल में थोड़ा कम आता है, इतने बड़े हैं फिर भी। और जो बच्चे, छोटे बच्चे, इतने आसानी से वो जो मोबाइल में से वो गेम है, कुछ बातें हैं, बच्चों की बातें सब कुछ निकाल देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक्चुअली में जो है ना, बच्चों के हिसाब से ही बनाया गया है। हर चीज़ को टच करना है और बच्चे उसको करके आराम से सीख लेते हैं, और हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई इसको टच करने से कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँ, ऐसा करूँ।
1: वो तो सही है सर, लेकिन आजकल के सर 2-3 साल के बच्चे हैं,
0: वो भी समझ लेते हैं,
1: वो भी समझ लेते हैं मोबाइल की बातें। पता नहीं, हमने तो आज तक इतने साल भी
0: नहीं, वो बच्चा जो है पहला बड़ा था, उसके पास मोबाइल था, इसलिए बच्चा जल्दी से सीख लेता है, उसके संस्कार है।
1: आज जो बच्चे की एजुकेशन, जो बच्चे चढ़ गए मोबाइल, पता नहीं आगे क्या होगा। दीदी को मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये मोबाइल का जो यूज हो रहे हैं बच्चे, तो ये बच्चे आगे जाके क्या करेगा पता नहीं। वो अभी खाना खाना हो तो मोबाइल चाहिए, सोना हो तो मोबाइल से सोना है,
2: क्योंकि मम्मी ही आदत लगाती है ना जब गर्भ में बच्चा होता है।
1: वही सही आपकी बात, मुझे यही कहना था कि ये आदत हमने ही लगवाई है,
2: तो गर्भ में ही हमने राजयोग सीख लिया। अगर मम्मा अपनी दिनचर्या सुबह से लेके रात तक राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी चीजें पढ़ना, सुनना, देखना, और फिर अगर बच्चे को उसी गर्भ में ही वो संस्कार दिए जाएंगे, तो बच्चा बाहर आने के बाद अपनी दिनचर्या बहुत सुचारू रूप से
1: कर पाएगा। वही हाल है आज, माँ और जो डैडी वही कर रहे हैं कि बच्चे देख रहे हैं, देखते हैं, चलो भाई हम यूज नहीं करेंगे मोबाइल का, थोड़ा सा कम करेंगे। तो बच्चे, हम बच्चे को बोलते हैं यहाँ पूरा दिन मोबाइल देखता है, ऐसा करता था, लेकिन हमको छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, हमको मोबाइल से दूरी रखना है।
2: बच्चों से एक्टिविटीज कराइए, बच्चों से घर में, माता पिता शाम के समय ऑफिस वर्क करते हैं तो बच्चों के लिए आधा घंटा कराइए, कुछ अलग अलग क्राफ्ट का, पेंटिंग का, बच्चों के साथ आप बच्चे बनकर रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। क्योंकि मेरे एरिया में मैं हर संडे को कुछ ना कुछ बच्चों को एक्टिविटीज़ कराती हूँ, और फिर उसको राजयोग से कनेक्ट कराती हूँ, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मा कहती है कि अरे आज दीदी ने क्या अच्छा सीखा, बच्चा आज तुरंत घर में फॉलो कर रहा है। कई बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो उनको फ्रूट्स के बारे में वो अवेयरनेस दिलाते हैं, उसके न्यूट्रिशंस के बारे में अवेयरनेस दिलाते हैं, वो कैसे भगवान को समर्पित करके खाया जाता है, तो बच्चों को आनंद आता है। तो ऐसी चीज़ें मम्मा को करनी बहुत चाहिए। अगर मम्मा ही रील्स, यूट्यूब, मोबाइल में, सोशल मीडिया में लगी रहेगी तो बच्चों को समय नहीं दे पाएगी,
1: वही हाल है दीदी आज, वही हाल है आज, माँ बाप वही कर रहे हैं, बच्चे को वक्त भी नहीं देते, समय नहीं देते, बच्चे के साथ खेलते नहीं है, बच्चे के साथ बातें नहीं करते, बच्चे के साथ ऐसे कोई बातें नहीं करते, तो बच्चा क्या करेगा?
2: हाँ, करेगा जी, जरूर, जरूर,
1: आज
2: जरूर।
1: वही हाल है, हमने सीखा है और हमको भुगतना पड़ता है आज। और हम बच्चे को डांटते हैं, लेकिन बच्चे को डांटना नहीं, हमको सीखना है, बच्चे क्या करे क्या नहीं, हमको बताना है बच्चों को। बस वही दीदी बात है। और सर बता, एक गाना भी मैंने सुना है, ऐसा एक गाना है
0: जी,
1: तो मैं आपको दो लाइन सुना दूंगी
0: जी।
1: जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत मारे मत बैठो, एक गाना है, वो बच्चों का ही गाना है। तो चलो सुना देना सर हमारी तरफ से आपको।
0: तो क्या क्या गाना है जीवन में?
1: जीवन में कुछ करना है तो मन के मारो मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत मारे मत बैठो।
0: अच्छा ठीक है,
1: ठीक है सर।
0: ओम शांति जी। चलिए, थे सुरेश जी जोटाना से जो अपनी भावनाएं विचार हमें सुना रहे थे, और निश्चित तौर पे उनकी जो बातें हैं वो जीवन को समझ रहे हैं और लोगों को जो है बताना भी चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसी काम करती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को 8:51 हो रहे हैं तो उस गीत से जोड़ना चाहूँगा जो अभी सुरेश जी ने याद कराया था। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का और थोड़ी देर में आपको समाचार सुनने को मिलेगा और समाचारों के बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर

0: स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त चुनाव भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार

0: है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
4: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। समाचारों के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नई किरण इस कार्यक्रम में। और निश्चित तौर पे हम सभी को अच्छा लग रहा है आज, और आप सभी को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज श्रावण का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। श्रावण महीना तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये खास क्या कहते हैं हम लोग, शिवरात्रि भी है, मासिक शिवरात्रि जिसको कहते हैं। और हम लोग अभी हमारे साथ कमलेश जी हैं जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा मीडिया पर्सनालिटी हैं। और जो बिजनेस आपका अगर थोड़ा डल चल रहा है, उसको ब्रांडिंग करके हाईलाइट करना और आपका बिजनेस को ग्रो करने का काम कमलेश जी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि एक पॉडकास्ट शुरू किया है, तो उनके पॉडकास्ट के भी बारे में सुनेंगे और उनसे मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन क्या है वो जानेंगे। आप सभी की तरफ से कमलेश जी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में।
1: जी नमस्कार। नमस्कार
0: कमलेश जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें।
1: मेरा नाम कमलेश सोनी है और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और ओम शांति। पिछले 20-22 साल से मैं छोटे बड़े जो भी SMEs है उनको मैं ब्रांड ग्रोथ के लिए उनको स्ट्रेटेजी प्रदान करता हूँ। उनके लिए अच्छी सी एडवर्टाइजिंग्स बनाकर उनके देना, या फिर उनके लिए कुछ ऐसे मीडिया प्लानिंग देना, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग देना, ताकि उनका ग्रोथ 2x से 5x, 5x से 10x हो सके। और मेरा यही काम है क्योंकि मुझे ये काम में बहुत मज़ा आता है, और जिस काम में जो मज़ा आता है उसको पैशन बोलते हैं, और पैशन को मैंने अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है। तो मेरा काम है ब्रांड कंसल्टेंसी का। किसी भी छोटे बड़े उद्योग को मुझे अगर मेरे पास आता है तो मैं उनको डिज़ाइन सपोर्ट्स, क्रिएटिव सपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट देकर उनको मैं आगे बढ़ाता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। कमलेश जी, ये जो शुरुआत है वो कैसे हुई, आपको ये सब आइडिया कैसे आया थोड़ा? क्योंकि ऐसा किसी चीज़ को लेकर, किसी बिजनेस को ब्रांडिंग करना, पूरा मार्केट का सर्वे लगता है, पूरा मार्केट की जानकारी भी लगता है। तो आपने इसको कैसे अचीव किया और कैसे शुरुआत की वो ज़रूर बताइए।
1: जी बेसिकली मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग से भी है और कंप्यूटर बैकग्राउंड भी है मेरा।
0: जी
1: तो इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर आई हैव स्टडीड अ लॉट एंड हैविंग एक्सपोजर टू बी लेक्चरर इन द BCA कॉलेज। एंड BCA कॉलेज में मैं एक क्रिएटिव पर्सन के तरह से मैं काम करता था। वहाँ लॉजिकल डेवलपमेंट बच्चों के लिए करना, वहाँ पे उनके साथ रह के उनको डेवलपमेंट करवाना, उनके क्रिएटिविटी में और उनकी लॉजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ करा के उनको प्रोग्रामिंग सिखाना मेरा काम था। उसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट, आई एम अ वेरी गुड लॉजिकल एंड क्रिएटिव पर्सन, सो व्हाई नॉट टू क्रिएट माय ओन थिंग्स व्हिच इज वेरी मच सुटेबल विद द मार्केट। तो मैंने अपने ही शहर में मैंने थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई किया, रिसर्च किया और मैंने सर्वे भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत डिजाइनिंग वगैरह जानते हैं, लेकिन अगर डिजाइनिंग विद ब्रेन अगर करनी है जो इफेक्टिव भी हो और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड भी आपके लिए काम आए, तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं हम कुछ ऐसा बनाते हैं। मैंने शुरुआत की किसी भी बिजनेस का लोगो वगैरह डिजाइन करने के साथ, और किसी भी ब्रांड को अगर डेवलप भी करना है और उनको आगे मार्केट में बढ़ाना भी है तो उनका फेस चाहिए, और जो फेस होता है वही उनका लोगो होता है। तो लोगो को डिजाइन करना, उनकी आइडेंटिटी बनाना, उनके लिए स्लोगन वगैरह डिजाइन करना, वो सब मेरा काम है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो हमारी आइडेंटिटी भी बढ़ाए और अपने ग्राहकों की, अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी भी बरकरार रखे और मार्केट में उनका नाम हो जाए।
0: बहुत बढ़िया कमलेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपने शुरुआत किया और ब्रांडिंग बनाने के लिए किस किस तरह की ज़रूरतें हैं उसको आप पूरा करते हैं, और इसके लिए आपको मेन होता है लोगो जिसके बारे में आपने जिक्र किया। और कई बार हमारे जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता।
1: जी
0: तो इसमें अगर हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, जैसे कोई किराना का दुकान है, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और फिर उनको अगर अपना ब्रांडिंग बनाना है तो किन किन चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ेगी?
1: सबसे पहले जरूरत होती है उनके ब्रांड माइंडसेट की।
0: जी
1: अगर वो दुकान ही करना चाहते हैं तो वो सालों तक दुकान ही करते रहेंगे।
0: हाँ।
1: अगर उनका एक्सपांशन ब्रांड माइंडसेट नहीं होगा तो वो अपने दुकान से बाहर निकल के छोटा बहुत स्टोर भी नहीं बना सकते, ना तो वो सुपर मॉल भी बना सकते हैं।
0: सही बात है।
1: तो किसी भी आदमी को अगर ब्रांड के साथ साथ उनका पूरा उनका ग्रोथ भी करना है तो उनका माइंडसेट अगर नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं ब्रांड कंसल्टेंसी के साथ जुड़ा हूँ, पिछले 20-22 साल में मैंने 250 से 300 जितनी ब्रांड और एसएमईज को मैंने सपोर्ट किया है. तो मैं उतना तो जानता हूँ कि अगर आपके पास ब्रांड माइंडसेट नहीं होगा ना, तो आप ब्रांडिंग भी नहीं कर पाएंगे और ना तो आप 2-5 साल से ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे.
0: जी जी.
1: क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि लोग काफी एक्साइटमेंट में आके डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, ब्रांडिंग वगैरह करवाते हैं, और फिर 2-3 साल के बाद उनका जो एक्साइटमेंट है वो जो खत्म होता रहता है, तो फिर वो ब्रांड को आगे बढ़ा नहीं सकते और ना तो मार्केट में टिक भी सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर आपको ब्रांड बनानी है, अगर आपको छोटा बिजनेस को बड़ा करने में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपका ब्रांड माइंडसेट होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो वो हम आपको डेवलप करके देंगे, लेकिन आपको हमारे तरीके से हमारे मार्गदर्शन के साथ चलना चाहिए. और वही अगर आप हमारे साथ चलते हैं, हमारे दिए गए सुपथ को अगर आप डेवलप करते हैं, तो उसी सुपथ में हम आपको आगे ले जाते और आगे बढ़ाते भी हैं.
0: क्या बात, क्या बात. चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कमलेश जी. और मुझे लगता है कि सबसे पहला अगर आपको अच्छा मार्केट पकड़ना है या मार्केट में नाम करना है, तो आपको अपना ब्रांडिंग माइंडसेट जो है वो तैयार करना होगा, तब जाके आप इन चीज़ों को कर सकते हैं. तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को भी ये बात अच्छी लग रही है. तो कमलेश जी, मैं चाहूँगा कि कुछ एग्जांपल, आपने जिस चीज़ को ब्रांडिंग किया है उसके बारे में कुछ बातें बताइए, कुछ एक दो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने ब्रांडिंग के बारे में.
1: जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई. क्योंकि कभी कभी अभी जो मैंने बात बोला कि ऐसा होता है ना कि सबको अपना नाम करना है, नाम बरकरार भी करना है, और मार्केट में उनका नाम आगे लॉन्ग लास्टिंग वे में सालों तक दुनिया याद रखे ऐसा भी करना है, तो उससे होता क्या है कि ये करने के लिए अगर आपके पास ब्रांड माइंडसेट है, तो उससे आगे बढ़ के हम करते क्या है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं कि चलिए आपकी ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए.
0: जी, जी,
1: हम
0: जी,
1: वहां
0: जी.
1: से उनका हाथ पकड़ते हैं.
0: अच्छा.
1: क्योंकि मेरा काम है नेम टू फेम सॉल्यूशन देना. आपको नाम भी देना, आपकी प्रोडक्ट का नाम भी देना है, और आपको नामांकित भी करना है, आपको नाम भी देना है बाजार में.
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: वो
0: जी.
1: हमारा काम है, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे वी आर प्रोवाइडिंग नेम टू फेम सॉल्यूशंस. तो हम वहां से शुरुआत करते हैं. तो आपने जैसे बात छेड़ी है ना कि
0: जी, जी, जी,
1: कैसे काम करते हैं, कोई एग्जांपल अगर हो, तो जैसे कि आपने पीनट बटर आप खाते होंगे, तो पीनट बटर अभी जो पॉपुलर है पूरे इंडिया में, टॉप 3 में जो पीनट बटर है उनमें से एक है पिंटोला.
0: पिंटोला, अच्छा अच्छा.
1: शायद आपने नाम सुना होगा.
0: हाँ, हाँ,
1: तो वो पिंटोला ब्रांड जो है उसका नामकरण हमने किया है.
0: जी, क्या बात है.
1: और अगर आप अहमदाबाद जाते हैं ना, तो चिलोड़ा शहर आता है, वहां पे एक जेब्राटा ब्रांड है.
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: वो जेब्राटा का वहां पे टाइल स्टूडियो भी है, वहां उनका होम डेकोरेशंस वगैरह का काम भी है, इमिटेशन ज्वेलरी का भी काम है. तो वो हमने 15 साल पहले उनको नाम दिया था. तो हम नाम ऐसा देते हैं कि जिससे उनका नाम बाजार में हो जाए. तो नाम देना एक बहुत बड़ी चैलेंज है.
0: बिल्कुल,
1: काफी
0: बिल्कुल.
1: कुछ स्टडी करना पड़ता है, नाम उनको कैसा चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, वो उसकी लैंग्वेज के साथ साथ उनका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ डिजाइन करके हम उनको देते हैं, ताकि उनका नाम बहुत ही मार्केट में पॉपुलर भी बने और लोग उनके साथ भावनात्मक तरीके से जुड़े. क्योंकि एडवर्टाइजिंग में अगर इमोशन नहीं होगा तो आपके एडवर्टाइजिंग में कोई मोशन नहीं होगा. क्योंकि एडवर्टाइजिंग में इमोशन से ही मोशन आता है. अगर आपकी एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ड्राई है, विदाउट एनी स्लोगन, विदाउट एनी थीम, अगर आप मार्केट में एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उसमें कोई मोशन नहीं होगा. बिकॉज यू आर मिसिंग द इमोशन इन टू द एडवर्टाइजमेंट. So there is no motion without emotion in your promotion. This is what my slogan is. Yes.
0: बहुत बढ़िया. इमोशन, प्रमोशन
1: एंड मोशन.
0: मोशन,
1: यस,
0: तीनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताया आपने. एक मार्केट में अगर आपको जाना है तो इन तीनों चीज़ों को समझना है, उसके बाद अगर आप इस पे काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप तेज़ रफ्तार से जो है आपकी ब्रांडिंग की ओर बढ़ेंगे और अच्छा कमाएंगे और अच्छा नाम करेंगे. तो इसमें मेन जो बात आती है, एक लाइन में हम लोग कैसे करेंगे कि उस ब्रांडिंग को पॉपुलर करने का, एक लाइन में कुछ अगर थीम बता सकते हो तो.
1: मैं आपको बताऊं कि मेरा एक स्लोगन है कि फोटो तो एक सेकंड में आप खींच लेते हैं, लेकिन अगर इमेज बनानी है तो आपको सालों तक इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि इफ यू रियली वांटेड टू बिल्ड योर इमेज, देर इज नो एनी शॉर्टकट. अगर आप शॉर्टकट में बिलीव करते हैं तो आप लॉन्ग लास्टिंग कोई इमेज नहीं बना सकते. इमेज मीन्स ब्रांड इमेज की मैं बात कर रहा हूँ. इमेज मेरी कंपनी का भी नाम है, इमेज एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसी, लेकिन इसी नाते से मैंने ये नाम रखा है कि अगर आपको लॉन्ग रन प्ले करना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको आपको अपना पूरा ब्रांड फोकस मार्केट में लगाना पड़ेगा. हम एक साल से लेके दो साल पांच साल तक हम उनको स्ट्रेटेजी बना के देते हैं ताकि वो अपना काम बखूबी कर पाए और उसी रोड मैप के साथ वो करके आगे बढ़ सकते हैं. यही हमारा काम है. क्योंकि आपने बताया कि आपने बोला कि नहीं हमें कुछ ऐसा शॉर्टकट या एक लाइन में अगर बताते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि फ्रेश कंटेंट होगा, फ्रेश सोच या विचारधारा होगी, तो आदमी खींचे चले आएंगे आपकी तरफ. लेकिन अगर आपने अपना ही अपना नाम बनाने के लिए अगर आपने शॉर्टकट पसंद किया, ना आपके पास एथिक्स है, ना आपके पास क्वालिटी कोई स्टैंडर्ड है, और आप सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में सोचेंगे, तो आपकी ब्रांड ज़्यादा नहीं चलेगी. मेरा एक ही स्लोगन है, आप ये एक ब्रांड सक्सेस फॉर्मूला है अगर आप याद रख पाए. अगर आपके पास गुड प्रोडक्ट है और बैड ब्रांडिंग है, तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: अगर आपके पास बैड प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और आप बहुत ही बढ़िया ब्रांडिंग करते हैं, गुड ब्रांडिंग करते हैं, तो भी आप सक्सेस नहीं होंगे. ये एक फॉर्मूला है.
0: जी जी.
1: अगर आपके पास आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरी प्रोडक्ट बहुत ही सही है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किए हैं, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड में मैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहता हूं, तो अगर आपके पास गुड प्रोडक्ट है और गुड प्रमोशन है, अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपकी ब्रांड लॉन्ग लास्टिंग बन सकती है. सो हमेशा याद रखिए, गुड प्रोडक्ट प्लस गुड ब्रांडिंग इज इक्वल टू सक्सेस. अगर बैड प्रोडक्ट है और अगर आप ब्रांडिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो एक साल दो साल में आप अपना रेपुटेशन भी लॉस करेंगे, आपकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, उसके साथ साथ आपको लोग बिल्कुल बाजार से निकाल देंगे.
0: हेलो जी, नमस्कार. एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं. जी
2: राजू सर, नमस्ते. नमस्ते सर.
0: नमस्ते जी. नमस्ते. गुजरात से हमारे साथ कमलेश जी हैं, उनसे हेलो हाय कर लीजिए. जी
2: राजू सर, नमस्ते. सर कमलेश भाई नमस्ते.
1: नमस्कार. नमस्कार भैया.
2: बस बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और हमारा भाग्य है आपसे बात हो रही है हमसे.
1: जी जी.
2: जब आप बात बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं बात की. हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी सेल्समैन करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो पहले तो हमको ऐसा सोचना है कि हमारी जो मार्केटिंग में हम कहीं भी जाए तो हमको याद करे लोग, और हमारी ऐसी क्वालिटी भी हमको देनी पड़ती है गाइस. और क्वालिटी के साथ साथ ऐसा एक स्वभाव भी रखना पड़ता है. देखो आज ऐसे तो कोई बिजनेस चलता नहीं है. हमको स्वभाव भी अच्छा रखना पड़ता है, क्वालिटी भी अच्छी देनी पड़ती है, और साथ साथ में हमको टाइम पर उसको माल भी पहुँचाना पड़ता है. हमारे यहाँ कई सेल्समैन आते हैं, कई लोग आते हैं, और उसका नाम भी बना लेते हैं, ऐसे नहीं, नाम के साथ साथ क्वालिटी भी देते हैं. तो ऐसा रखना चाहिए सर. जो आप बात
0: जी जी जी
2: बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं.
0: जी.
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका.
1: आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए.
2: जी
0: आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो ब्रांडिंग के बारे में?
2: सवाल तो सर आप बता. हम तो कोई ऐसा देखते हैं, हमारे कई लोग मार्केटिंग में आते हैं, इधर हमारे बाजार में आते हैं.
0: जी जी.
2: बिजनेसमैन भी आते हैं, तो बस हम तो सर एक ही बात करेंगे कि जो आप कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो सामने वाला दोबारा हमको ऐसा बोले कि नहीं भाई क्वालिटी आप बहुत अच्छी लाते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल.
2: तो बस हम तो ऐसा कहेंगे.
1: सही बात, बिल्कुल सही बात, सही बात.
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच सुरेश जी, अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए. चलिए अब कमलेश जी से आखिरी एक छोटा सा जो है मैसेज के साथ हम पूरा करेंगे. और बहुत ही अच्छा ब्रांडिंग के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में बताया, और ब्रांडिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी बात जो लास्ट में उन्होंने बताया उसको कोट करना चाहूँगा. आपकी क्वालिटी अच्छी हो और अच्छी ब्रांडिंग हो तो आप बिजनेस सक्सेस होते हैं. अगर आपकी क्वालिटी बेकार है, ब्रांडिंग अच्छी है तो भी नहीं होंगे, और ब्रांडिंग ख़राब है और क्वालिटी अच्छी है तब भी सक्सेस नहीं हो सकते. तो एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रांडिंग इज इक्वल टू सक्सेस.
1: जी बिल्कुल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है. यही तो सक्सेस का फॉर्मूला है.
0: जी जी.
1: अगर आप हाँ, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है, तो आप आपकी अपनी प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, या फिर अपनी सर्विस पे फोकस कीजिए. वेदर यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विसेज, गुड प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, सो दैट पीपल आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम योर सर्विसेज और प्रोडक्ट. अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस इन योर बिजनेस. सो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वही फॉर्मूला मैं दोहराऊंगा कि अगर आपके पास सही प्रोडक्ट है तो आप सही ब्रांडिंग कीजिए, वरना उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके प्रमोशन में इमोशन नहीं है तो मोशन भी नहीं होगा. तो यही भी ये मेरा दूसरा ब्रांड फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला है सही प्रोडक्ट सही बिजनेस करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला है मेरा कि इमोशंस इन द प्रमोशंस. प्रमोशन मीन्स एड प्रमोशंस में अगर आपके पास भावनात्मक जुड़ान नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से स्लोगन डिजाइन करते हैं, अच्छे से मार्केट में स्ट्रेटेजी डिजाइन करके हम देते हैं, तभी आपके ब्रांड में मोशन आएगा, वरना नहीं आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर बातें और बहुत ही क्रिप्सी नॉलेज आपने ब्रांडिंग के बारे में बताया। मुझे लगता है कि ये मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कमलेश जी का एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आप सुन सकते हैं। और आप लकी हैं कि आप आपने ब्रांडिंग के बारे में सही चीज़ और सही चाबी आपको मिल गया, तो इसके इस्तेमाल करें और अपने जीवन में सक्सेस हो जाए, ऐसी शुभ आशा के साथ एक बार आप सभी की तरफ से कमलेश जी का भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं चाहूँगा कि आप आबू आते रहें और हमारे सभी लोगों को जो यहाँ पर आदिवासी है, यहाँ के लोकल कम्युनिटी हैं, सभी को अपलिफ्ट करते रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी नमस्कार। हेलो
3: जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: मदन जी स्वागत है आपका, बताइए।
3: बस बढ़िया हूँ और बस बुच्ची के नजर में हूँ।
0: अच्छा
3: कब खत्म हो जाए, मगर बुच्ची खत्म नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है, सही बात है।
3: तो मैं रेडियो मधुबंश से बहुत खुशी से नमस्कार करता हूँ।
0: जी जी,
3: नवीन किरण को नमस्कार करता हूँ और आपको रमेश जी को नमस्कार करता हूँ। और आज सुबह जितने भी प्रोग्राम किया है
0: जी,
3: सभी को, सभी शो को और सभी प्रोग्राम करने वालों को फिर से नमस्कार करता हूँ। और बहुत खुश रहते हैं और खुश रहते हैं हम सब और हमारे सभी दोस्त खुश रहे और मस्त रहे और अच्छा अच्छा हमें ज्ञान मिलता है।
0: जी जी,
3: हमारी बैटरी दिन भर
0: चार्ज हो जाती है, क्या
3: और
0: बात?
3: शाम को मुरली सुनते तो और भी हमारी बैटरी फुल पावर ओवर हो जाती है। और रात को बड़ी ईश्वर की याद लेके बड़ी नींद से सोते हैं, भले रात को 12 बजे सोते हैं
0: लेकिन अच्छे से
3: 3 बजे उठा देता, कभी 2 बजे उठाते, कोई बर्तन गिर जाता तो कोई कुछ, इसी तरह से उठा देते। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ रेडियो मधुबन का,
0: धन्यवाद। मदन जी हम लोग अभी थोड़ा सा जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
4: हेलो भाई और बहनों, मैं हूँ स्वप्निल शाह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।
0: नमस्कार, बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ महाराष्ट्र से दीक्षा शाह उपस्थित हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे। तो दीक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
5: हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, थैंक यू।
0: जी जी जी जी, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
5: मेरा नाम दीक्षा शाह है, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए IT इंजीनियर काम करती हूँ, पुणे में अभी हूँ, डेलॉइट मेरे कंपनी का नाम है।
0: जी जी जी, कितने समय से काम कर रहे हैं?
5: अभी मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है।
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी। एक और बात पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि आप यहाँ पर 3 दिन के लिए मेडिटेशन शिविर अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या सीखा, थोड़ा सा वो हमें बताएं।
5: मैंने ये सीखा कि मैं बॉडी कॉन्शियस नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और मैंने ये जाना कि परमात्मा कौन है, वो कैसे निराकार है, मैं निराकार हूँ, वो मेरे बाबा है और मैं उनकी तरह ही हूँ, जो शक्तियाँ उनमें हैं वो मुझ में है।
0: जी जी जी जी। इसके अलावा और क्या बातें जो आपको बहुत अच्छा लगा, जो ज्ञानवर्धक बातें रही हैं, उसमें से कुछ अगर आप बता पाएं तो?
5: मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे कि कार्मिक अकाउंट होता है, कि जैसा हम किसी के साथ बिहेव करेंगे सेम वो हमारे पास आना ही है। तो मैंने ये सीखा कि हमेशा सबके साथ अच्छा ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो और यहाँ से जाने के बाद आप क्या प्रैक्टिसेस करेंगे, किस तरह की सेवाएं करेंगे, वो थोड़ा सा बताइए हमें।
5: हाँ, जैसे कि मैंने बताया मैं IT कंपनी में हूँ, तो मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है देने के लिए, तो पर मैंने सोचा है कि अभी मैं अमृत वेला स्टार्ट करूँगी और मुझे पता चला है कि उसका बहुत फ़ायदा है।
0: बिल्कुल।
5: जो मैंने यहाँ आके फील किया पीस, तो मैं घर जाके करने वाली हूँ अमृत वेला।
0: जी जी जी जी जी। चलिए दीक्षा, बहुत ही अच्छी बात थी आपने बताया। और इसके अलावा जो जिस एरिया में आप रहते हैं महाराष्ट्र में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
5: वैसे तो मैं 2 सेंटर्स को जानती हूँ, एक अकोला सेंटर, क्योंकि मेरा जन्म वही हुआ है, तो अभी रिसेंटली ही 2-3 साल हो गए मैं ज्ञान में हूँ। और पुणे में मैं जॉब करती हूँ, तो मैं वहाँ के सेंटर पर भी जाती हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
5: तो दोनों सेंटर्स।
0: अकोला और पुणे में कितना टाइम लगता है जाने आने में?
5: 10 घंटे लगते हैं।
0: अच्छा, 10 घंटे पूरे?
5: हाँ, मतलब बाय बस 10 लगते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तो चलिए, रेडियो के माध्यम से आपको काफी लोग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप, एक संदेश लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
5: कि जो पीस जो मुझे लाइफ में चाहिए था, जिसकी मुझे तलाश थी, वो मुझे यहाँ आके मिला है. और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार यहाँ आए, मधुबन की शांति पीस आना एक बार फील करें, और आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है,
0: जी,
5: आपको
0: जी,
5: कैसे
0: जी.
5: करना है अपने लाइफ में आगे इसको.
0: अच्छा, कोई एक आध गीत आपको जो बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए एक लाइन.
5: ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल.
0: चलिए दीक्षा, बहुत ही सुंदर गीत आपने याद कराया है. तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम. लीजिए गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं. और दीक्षा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं आपके इस न्यू बिगनिंग के लिए. और जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, उसे आप वहाँ पर जाके भी एप्लीकेशन में लाएंगे, और जो चीज़ें आपने सुनी हैं उसको पूरी तरह से आत्मसात करेंगे, ऐसी शुभ आशा के साथ आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं.

0: नमस्ते भाई और बहनों, मैं हूँ दिव्या ढहाके और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।
2: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ विशेष एक और मेहमान आ गए हैं दिव्या ढाके, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। दिव्या ढाके नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हो।
2: जी जी जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या करते हैं आप?
0: जी, मैं छोटी मोटी कलाकार हूँ। मेरे नृत्य से, अभिनय के माध्यम से और गायन, इससे मैं लोगों का मनोरंजन करती हूँ। जो भी दिन भर में मुझे, मतलब इससे अच्छा लगता है कि जो दिन भर की उनकी चिंता होती है, तनाव होता है, उससे मेरे मनोरंजन करने से उनके चेहरे पे अगर मुस्कान आती है तो मुझे बहुत सुकून होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डांस कब से आप कर रहे हैं?
0: जी, मैं डांस बचपन से कर रही हूँ, मैंने कभी सीखी नहीं है। बस अच्छा, अच्छा। स्कूल परफॉर्मेंस से लेकर जैसे अभी आगे बढ़ी हूँ तो लोग मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस है किसी इवेंट में या कोई शादी वगैरह रहा, ऐसी जगह पे मैं परफॉर्मेंस देती हूँ अपनी। अच्छा, किसी वेलकम अच्छा, अच्छा। किसी के वेलकम के लिए रहे।
2: तो आप कैसे सीखते हैं फिर?
0: मैं खुद से सीखती हूँ, मतलब पता नहीं कैसे मैंने अगर गाना लगा लिया तो आ जाते हैं स्टेप्स मेरे अच्छा, दिमाग अच्छा, में अच्छा, जैसे। हाँ,
2: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जो आध्यात्मिक जो समागम हुआ आर्ट एंड कल्चर का, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
0: जो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, पहली बात तो मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ मधुबन में पहले भी, मतलब मैं बचपन से, मैंने बचपन में ही कोर्स किया था। मैं यहाँ पर आई इस साल इसलिए कि मेरी मासी भी शिविर में आई है, उनके साथ में चाहिए था कोई, जैसे तो मेरी मम्मी या मैं साथ के लिए, तो मेरी मम्मी का आना नहीं हुआ, जैसे उनको छुट्टी नहीं मिलती, वो कोर्ट में जॉब करती है। और मेरा जैसे कि मैं, मेरी एग्ज़ाम थी, बाबा ने मेरी एग्ज़ाम कैसे पोस्टपोन कराई और मासी के साथ भेजा, और मुझे यहाँ पे आगे पता चला कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चरल का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं उसी के लिए यहाँ पे, मैंने डांस परफॉर्मेंस भी किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आके मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पे जैसे आर्टिस्ट लोग आते हैं बड़े बड़े, जो उनके बारे में बताते हैं, उनको भी यहाँ से कुछ सीख के मिलता है, उनको यहाँ से जो भी उनकी जो स्ट्रेस होती है, जैसे अभी हम आर्टिस्ट हैं, सबको लगता है कि आर्टिस्ट लोग जैसे खुश होते होंगे अपनी लाइफ में, उनको कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, पैसा भी आता है, खुशी, उनका जो हैबिट है, जो उनका छंद है, वो उनको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा सबको लगता है। पर ऐसा नहीं लगता, हमें पता रहता है कि हमें कौन से प्रॉब्लम, मतलब फेस करने पड़ते हैं, जैसे रिलेटिव्स की नज़रें, जैसे समाजों की नज़रें, वो हमें फेस करनी पड़ती है। पर हम लोगों के मनोरंजन के लिए खुद को नौचार करते हैं, सिर्फ उनकी एक स्माइल, उनका सुख देखने के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो यहाँ पे जैसे सभी आर्टिस्ट को बुलाए तो जाते हैं, पर यहाँ पे अगर वो आते हैं तो अगर वो अपनी आर्ट के माध्यम से ये इस अपने ओम शांति का जो है, शिव बाबा का प्रचार अगर अपने आर्ट के माध्यम से करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। उनको अगर ये बात पता चले कि उनके आर्ट के माध्यम से वो ऐसी कुछ बातें ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, जिन पीस मिले उनके, मतलब पूरे लाइफ में एक पीस उनको मिल जाता है सभी को।
2: जी जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने यहाँ सीखी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सीखा आपने यहाँ पर?
0: मैंने यहाँ पे सीखा कि जैसे मेडिटेशन के बारे में, मेरा, मैं पहले भी मेडिटेशन करती थी, मैंने इमेजिन किया, मेडिटेशन मतलब इमेजिन करना होता है, मतलब मैंने खुद से डिसाइड किया कि यार सब लोग करते हैं, मैं कैसे पूछूं कि मेडिटेशन कैसे करना है। मैंने पूछा भी तो वो बोले कि आ जाता है आपको, गॉड दिख जाते हैं, शिव बाबा दिख जाते हैं, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं फ़ोटो देख के उनको इमेजिन करती थी, और इस बार मुझे दीदी से ये बात पता चली कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, शिव बाबा को इमेजिन नहीं कर सकते, आप उनको याद कर सकते हो। जैसे कभी आप आपको पापा की ज़रूरत पड़ी, अपने आपकी मम्मी की ज़रूरत पड़ी, अपने भाई की ज़रूरत पड़ी, तो क्या आप उनको इमेजिन करते हो? नहीं, एक सेकंड में याद आ जाते हैं. तो वैसे आपका जुड़ाव होना चाहिए कि एक सेकंड में आपको आपके सामने शुभाबा आने चाहिए, उनकी किरणें आनी चाहिए. अगर आपको बात करनी है तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ऐसा सोचो कि शुभाबा उनके तन में आए हैं, उनके प्रकृति में समाए हैं और उनकी नज़रों से और उनके मुख से आपसे बात कर रहे हैं. और जैसे शुभाबा से अगर आपको किरणें लेनी है तो डायरेक्टली आप शुभाबा से किरणें ले सकते हो.
2: जी जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को भी यहाँ पर जो है, जो आपने अनुभव किया, वो भी ये अनुभव कर सकते हैं जब एक बार यहाँ आएंगे, मेडिटेशन सेशन अटेंड करेंगे. तो दिव्या जी, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज कोट करें.
0: जी, मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ, बहुत बड़ा मैसेज है, शायद मैंने ये अनुभव किया है मेरी लाइफ से और मैं ये पहुँचाना चाहती हूँ सभी के साथ.
2: जी,
0: मैं लिखती भी हूँ, मैंने कविता लिखी है.
2: जी,
0: कविता का नाम है मेरा साथ निभाना. और अभी ये साथ निभाना शिवाबा से नहीं है, क्योंकि शिवाबा तो बाबा है मेरे, वो तो हमेशा साथ निभाएंगे ही. कविता मैं पेश करती हूँ.
2: जी.
0: शिकायत नहीं है अब जमाने से, उम्मीद नहीं रही अब अपनों से, शायद वक्त भी रूठ गया है अब हमसे, बस अब करनी है दोस्ती वक्त से, और पूरी करनी है हर ख्वाहिश खुद से, तभी मिलेगी खुशी जिंदगी से, बस बहुत हुई लड़ाई दिमाग से, अब करना है सब मन से, तभी मिलेगी खुशी जिंदगी से, हर एक मुश्किल हर एक तूफान का सामना करना होगा डट से, अगर हिम्मत हारी तो हार जाएंगे खुद से, पानी हो मंजिल तो बनानी पड़ेगी हिम्मत से, तभी मिलेगी खुशी जिंदगी से, क्यों मांगनी मोहलत जब हो सकती है दोस्ती वक्त से, किसने कहा है और है, किसी ने कहा है और है ये सच भी, कि बंद पड़ी घड़ी भी दो बार सही वक्त बताती है, यानी किसी के काम ना होते हुए भी किसी के काम आना, ए वक्त बस अब तू ही है मेरा साथ निभाना, मेरा साथ निभाना, मेरा साथ निभाना. इस कविता से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बाबा के ऊपर सब छोड़ देते हैं कि बाबा आप संभालो, आप ही हो, कुछ भी सिचुएशन आए, कुछ भी हमें करना हो आगे बढ़ने के लिए, तो हम सब बाबा पे सौंप देते हैं. तो नहीं, मेरा ये कहने का मतलब, मेरा मैसेज ये है कि आप वक्त से दोस्ती करो. मतलब अगर आप वक्त पर कुछ काम नहीं करोगे, अगर आपका वक्त पीछे छूट रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. इस मामले में आपको बाबा भी आपसे मदद नहीं कर सकते. बाबा और वक्त में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अगर आप वक्त के साथ रहकर अपना कदम बढ़ाते हो तो अगला कदम बढ़ाने में बाबा आपकी मदद करेंगे ज़रूर.
2: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया दिव्या जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM. चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. और जहां आपको लग रहा है कि इनकी बातें बहुत अच्छी हैं, तो अपने लिए भी उसे यूज़ कीजिए अपने लाइफ में और अपने जीवन को बेहतर बनाइए. इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में. तब तक आप बने रहिए हमारे साथ. सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति. सुनते रहो मस्कर.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम सा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। कैसे, जरा विचार करिएगा। और आज आपको मैं ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ। अब कौन सी वाली, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे, ठीक है। और आज सिखाएंगे आप सभी को मट्ठा बनाना और मक्खन बनाना, लस्सी बनाना। गर्मी का जो मौसम है तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हमें मौसम के अनुसार बना करके पीनी चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। और खुशनुमा जीवन की तो ढेर सारी बातें करेंगे ही, साथ ही साथ आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा, जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि एक बार दो भाई होते हैं। दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं, माता पिता नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे की पूरी केयर करते हैं। उनका व्यवसाय है जंगल में से लकड़ी काट के लाना, उसको बेचना और उससे जो पैसे आते हैं दोनों भाई अपना गुजारा चलाते हैं। खाना पीना कपड़ा उसी से ही उनको मिलता है। तो इसी तरह बड़ा भाई गया हुआ था जंगल में लकड़ी काटने, लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की काट करके दूसरे पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ थोड़ा जादुई था। उसने कहा, अरे भाई कृपा करो हमारे ऊपर, मेरी टहनियाँ मत काटो। उसने कहा, क्यों नहीं काटूं? जब दूसरे पेड़ की अन्य पेड़ों के मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ तो आपके टहनियाँ क्यों नहीं काटूँ? तो उस पेड़ ने कहा कि भाई मत काटो, इसके बदले में मैं आपको सेब दे दूँगा। बोला, ठीक है दे दो। तो सेब एक दी। अब उसको गुस्सा आ गया कि भाई तो हम दो हैं, एक सेब से क्या होगा, सेब माने एप्पल, इससे क्या होगा। उसको गुस्सा आ गया, उसने टहनी काट दी। टहनी काट दी तो उस पेड़ को भी गुस्सा आ गया और उसने उसके ऊपर सुइयां चुभो दी। तो वो पूरा सुइयों से लिपट गया और असहनीय दर्द उसको होने लगा, वहीं पर गिर पड़ा। अब ऐसे होते होते शाम का समय हो गया। छोटा भाई को चिंता होने लगी कि क्या बात है, बड़ा भाई तो समय पर

जाता है, आज नहीं आ पहुंचा, क्या बात है, मैं जाता हूँ। और छोटा भाई ढूंढने चला बड़े भाई को। देखा जंगल में इस तरह बड़ा भाई करा रहा है, चिल्ला रहा है दर्द से, तो उसने झा करके प्यार से उसकी सारी सुइयां निकाली। ठीक है, फिर सुइया निकालने के बाद बड़े भाई ने पेड़ से क्षमा याचना की कि पेड़ मुझे माफ़ करना, आपके मना करने पर भी मैंने आपकी टहनी काट दी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पेड़ को भी दया आ गई, पेड़ ने उसको बहुत सारी एप्पल दे दी कि ये लो तुम एप्पल खाओ। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम किसी पर रहम करेंगे तो बदले में हमारे ऊपर भी कोई रहम करेगा। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो बदले में हमें भी प्यार मिलेगा। अगर हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो बदले में हमको भी सम्मान मिलेगा। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर ब्यूटी टिप्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी पलके, आपकी भौहें थोड़ी चमकदार और घनी बने, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर आपको टिप्स सुना रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि सप्ताह में 2-3 बार रात को सोते समय एरंडी का तेल लगाइए। एरंडी, जिसको हम दिवेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तेल को आप हल्के हल्के, मतलब उंगली पर लगा करके हल्के हल्के घिसना है, ठीक है, पलकों पर और भौहों पर, तो बाल नए उत्पन्न होंगे और भौहें घनी बनेगी, ठीक है। फिर से इस नुस्खे को दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आँखों की पलकों और भौहों पर बहुत जनों के बाल कम होते हैं और वो चाहते हैं कि थोड़े से बड़े, क्योंकि भौहें नहीं होती है तो भी कैसा लगता है ना, अटपटा लगता है ना। तो ऐसी स्थिति में, या फिर बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में भी आप सप्ताह में 2-3 बार रात को सोते समय एरंडी का तेल लगाइए। हल्के हल्के उंगली से आप थोड़ी सी हल्की हल्की मालिश करिएगा, ठीक है, तो पलकों और भौहों पर बाल आना शुरू हो जाएगा, बिरोनिया घनी होगी। अगला नुस्खा भी बहुत अच्छा है कि भौहों की सुंदरता बनाए रखने के लिए सिर में तेल लगाते समय उंगलियों को भौहों पर रोज फेरिए, इससे भी भौहों की सुंदरता बढ़ेगी। भौहे की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप सिर में तेल लगाते हो ना, तेल लगाने के बाद इन उंगलियों को थोड़ा सा अपनी भौहे पर भी फेर दीजिए, तो भौहे की सुंदरता बढ़ेगी। देखिए, बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे माताएं बहनें बिंदी लगाती है, बिंदी का निशान रह जाता है, और आजकल का समय ऐसा है कि आजकल की बहनें बिंदी बहुत कम लगाती है, क्योंकि ड्रेसेस पहनते हैं ना, तो बिंदी नहीं लगाती है, लेकिन वो साड़ी के ऊपर रोज़ लगाती है तो उसका निशान तो रह जाता है। अब ड्रेस के ऊपर बिंदी नहीं लगाते हैं लेकिन निशान देख करके घबरा जाती है कि अरे ये निशान कैसा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पता चल जाएगी ये बिंदी का निशान है, या तो आप बिंदी लगाओ या नहीं लगाओ, तो फिर निशान नहीं दिखना चाहिए। अब निशान हो गया उसका क्या करे, है ना, निशान भी देखिए गोल दाग भी पड़ जाता है कभी कभी, और कभी सांवला सांवला भी निशान हो जाता है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, थोड़े पानी में आप ये जो बावची होती है ना, बावची जिसको बाकुची भी कहते हैं, बाकुची के बीज आप पंसारी की दुकान से ला सकते हैं। ये थोड़े पानी में आप इसको पीसिए, पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना करके जो बिंदी का निशान है उस स्थान पर आप लगाइए। आपको रोज रात को लेप करना है, और फिर आप भले तो 1 घंटे बाद मुंह धो लीजिए या नींद आ जाए तो सुबह धो लीजिए, तो ऐसे करने से दाग आपका गायब हो जाएगा और जो स्किन है वो पहले जैसी चमकदार ही रहेगी। बिंदी का निशान अगर पड़ गया है तो आप उस निशान को मिटाने के लिए बाकुची के बीज को आप थोड़े से पानी में पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना करके रात को सोते समय इसको लगाइए, सुबह चेहरा धो लीजिए। ऐसा थोड़े दिन लगातार करने से बिंदी का निशान खत्म हो जाएगा। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि होठ की सुंदरता के लिए क्या करेंगे, क्योंकि होठ भी देखिए, भले गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन किसी भी मौसम में होठ फट जाते हैं। सर्दी के मौसम में तो अक्सर हम ध्यान रखते हैं, है ना, तो आजकल उल्टा हो गया है, सर्दी के मौसम में पूरी केयर करते हैं तो होठ नहीं फटते, नहीं करते तो फिर फटते ही है, ज़्यादा ही फटते हैं। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है उसमें हम सोचते हैं कि अरे ऐसे मौसम में क्या ध्यान रखना है, तो ऐसे मौसम में भी होठ फट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दूध की मलाई में हल्के से चुटकी भर हल्दी डालिए और फिर आप उंगली पर थोड़ा सा घिस करके होठों पर लगा दीजिए, फिर चेहरा धो लीजिए। और अगर चेहरा नहीं धोना है तो खाली दूध की मलाई आप तर्जनी उंगली और अंगूठे से थोड़ा सा घिस करके लगा दीजिए, वो चिकनाई है ना, उस चिकनाई को लगाइए, तो सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहेगा चिकनाई, उसके अंदर भी घी की मात्रा ही होती है दूध के अंदर, पर आप ये जो दूध की मलाई लगाएंगे तो ये सॉफ्ट भी रहेगा और होठ इससे नरम भी रहेंगे, फटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहो तो आजमा करके स्वयं के ब्यूटी को बढ़ा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हाई, अब एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आपको नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे, परंतु आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ऐतिहासिक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? आपके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल पड़ेगा। तो ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालबेलिया, डी तेरहताली। अब ये चार में से एक सही है, कौन सा सही है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अगर आप सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं तो आप फोन कॉल्स करके फिर से प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है? और आइए अब हम आपको छाछ, मट्ठा ये सब सिखा देते हैं। देखिए, मट्ठा का दूसरा रूप छाछ ही होता है। छाछ पतली होती है, मट्ठा गाढ़ा होता है, ठीक है? तो पहले आपको मट्ठा सिखा रही हूँ कि आप दही ले लीजिए, और दही में अब आप थोड़ा सा आप डाल सकते हैं इसमें पुदीना पाउडर, सिका हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल करके आप भले तो बिलोनी से बिलो दीजिए, भले ग्राइंडर से आप ग्राइंड कर लीजिए, और बस आप पिरस सकते हैं। तो इसको मट्ठा भी कहते हैं। दूसरा रूप यह है कि दही में से आपको मक्खन निकालना है, तो दही को बिलोइए, अच्छी तरह बिलोइए। ज़रूरत पड़े तो इसमें से आपको थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं या फिर आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं मौसम के अनुसार। सर्दी का मौसम हो तो हम गर्म पानी डालते हैं, सर्दी का मौसम है आप बर्फ़ डालिए। बर्फ़ डाल करके इसके मक्खन को निकाल दीजिए। तो मक्खन निकालने के बाद ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा पतला तो हो गया है, लेकिन फिर भी इसको हम मट्ठा भी कहते हैं। इसमें फिर आप स्वाद के अनुसार वही जीरा पाउडर, जीरा आप छाछ में या मट्ठा में यूज़ करते हैं तो सेक करके फिर इसको पीस करके डालिए, इससे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा मट्ठा या छाछ जो भी आप पी रहे हैं, टेस्टी लगेगा। तो मक्खन निकाल दीजिए, जैसे आप दही है ना, दही को आप अच्छी तरह बिलोइए। बिलोने के बाद इसमें आप बर्फ़ डाल दीजिए। बर्फ़ डालने पर जो मक्खन होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो मक्खन निकाल दीजिए। फिर बचा हुआ जो दही की छाछ है इसमें आप जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काला नमक डाल करके आप इसका आनंद ले सकते हो। तो ये बन गया मट्ठा। तीसरा रूप है कि कोई कोई क्या है, श्रीखंड को भी मट्ठा कह देते हैं। तो फिर आपने दही बनाया है, उसका आप कपड़े में बांध दिए, कपड़े में बांध करके इसका जो पानी का भाग है कपड़े में बांधेंगे स्वच्छ कपड़े में, तो ये पानी टपक करके निकल जाएगा बाहर, ठीक है? फिर गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा दही। फिर इसमें आप थोड़े से स्वाद के अनुसार शक्कर डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको फेंट लीजिए, ठीक है? एक चौड़ी थाली में या परात में लेकर के फेंटिए। फेंटने के बाद बस आप एक सकड़े बर्तन में, भले भगोने में, आप भले बड़े कटोरे में आप इसको भर दीजिए। तो इसको ऐसे श्रीखंड भी कहते हैं और मट्ठा भी कहते हैं। तो ऐसे हम घर पर ही बना सकते हैं और इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। फिर इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, इलायची फ्लेवर पसंद है तो इलायची पाउडर आप डाल सकते हो, और फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। नॉर्मल खाना चाहते हो तो मत रखिए फ्रिज में, लेकिन सचमुच ये मट्ठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप दही लीजिए, दही को आप एक स्वच्छ कपड़े में रख करके चारों तरफ पोटली बना करके किसी हैंडल पर आप लटका दीजिए, ठीक है? इससे जो पानी होगा दही के मात्रा में जो पानी है ना वो निकल जाएगा, फिर ये गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा। फिर इसको आप एक चौड़े बर्तन में निकाल करके स्वाद के अनुसार शक्कर डाल करके आप हाथ से हथेली से अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटने के बाद आपको लगे कि शक्कर एक में एक हो गई है, फिर आप किसी पतीली में है या बाउल में है भर दीजिए। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करके बारीक बारीक और डाल दीजिएगा, इलायची पाउडर भी आप डाल दीजिए, अच्छी तरह फिर मिक्स करके पहले आप भरते हो ना, उसके पहले चौड़े बर्तन में ही सब कुछ डाल दीजिए। पहले शक्कर डाल करके तो आपको मथना है, अच्छी तरह फेंटना है। फिर आप को लगे कि अब शक्कर एक में एक हो गई है, फिर ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा और अच्छी तरह मिक्स करके आप एक बाउल में भर दीजिएगा। तो ये बन गया श्रीखंड, जिसको हम मट्ठा भी कहते हैं, ठीक है। और आपने देखे अलग अलग प्रकार से छाछ मट्ठा सीखा है। अब मैं और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु एक ब्रेक के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ खो गए हैं? कोई कहीं फंक्शन में तो नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं अभी अभी। देखिए मुंडन का प्रोग्राम भी जारी है, शादी ब्याह भी चल रहे हैं, तो कहीं कहीं अपने जो नए घर खरीदे उसकी भी ओपनिंग चल रही है, और साथ ही साथ भजन कीर्तन, सुंदरकांड के पाठ वगैरह वगैरह, ये तो सब चलते ही रहते हैं ना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे श्रोता बंधु व्यस्त हो गए हैं। कोई बात नहीं, अगर समय है आपके पास तो आप जरूर जुड़िएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और आज का प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल है? कौन सा नृत्य, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है। हेलो, पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग उषा बहन जी।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी की और सभी मित्रों की कृपा है, और अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
1: जी,
2: कहीं
1: जी, जी,
2: नहीं
1: जी।
2: गए हैं, मधुबन से जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ बहन
1: अच्छा। जी जी जी तो आज का प्रश्न आपने सुना?
2: जी जी जी सुना मैंने।
1: हाँ जी, तो जवाब आप देंगे या मैं ऑप्शन दूं?
2: बिल्कुल देंगे जवाब।
1: हाँ जी,
2: और अभी मैं ऑफलाइन ऑनलाइन हूँ?
1: अभी आप ऑन एयर है।
2: तो सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, प्रणाम है। और आज का जो आपने सवाल का जवाब है, तो कालबेरिया सही जवाब है। जो कालबेरिया राजस्थान का जो नृत्य है, तो वो विश्व स्तर पर अपना प्रतियोगिता में भाग लेके आए हैं, और उन्होंने अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज की थी। कालबेरिया सही जवाब है।
1: ठीक है, तो दयाराम जी आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम जरूर आपका जवाब सुनाएंगे, ठीक है?
2: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत आभार। और आइए यहीं पर हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्यों को अपाहिज बना देता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ खुशनुमा जीवन का, कि कैसे हम तनाव में आते हैं, दुखी होते हैं, और कैसे हम तनाव से मुक्त रह करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो आज का ये विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ कि हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्यों को अपाहिज बना देता है। क्या कहेंगे आप? जरूर जुड़िएगा और इस विषय पर आप चर्चा में भाग जरूर लीजिएगा। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है। फिर से दोहरा रही हूँ कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? अब मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे श्रोता बंधु को लग रहा है कि ये मुश्किल प्रश्न है, तो मैं आपको जवाब के लिए चार ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से एक सही है। वो कौन सा सही है जवाब आपको देना है। परंतु हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, तो उनसे बात जरूर करेंगे। हेलो,
2: हाँ दीदी, हम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, बताओ।
1: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई।
2: जी, बहुत अच्छे हैं और सभी मित्र भी हमारे बहुत अच्छे हैं, और विषय भी बहुत अच्छा है दीदी की। हद से ज्यादा दीदी हम आराम करते हैं
1: जी,
2: कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता ही है। देखो, अब कई लोग ऐसे हैं दीदी, इतना आलसी हो गए कि कुछ करने की कुछ सोचते भी नहीं।
1: जी,
2: हमारे जो गुजराती में कहावत है कि आड़स जीवता मानस की कब्र थी।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: तो हाँ, तो आड़स हम आराम तो करते थे, आराम करना भी जरूरी है, लेकिन इतना आराम ना करो कि हम कुछ कर ना पाए।
1: जी,
2: अब इससे ज्यादा कोई भी बात है जिससे ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो, हम काम करते हैं, काम भी करने का भी तरीका चाहिए। एक काम करते ही रहो, करते रहो कुछ खा, तो हमारे शरीर का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम रहता है।
1: जी,
2: काम करना भी जरूरी है और आराम करना भी जरूरी है, लेकिन हम काम से उठते काम करेंगे, आराम से उठते आराम करेंगे। हम कभी आराम नहीं करते, हम पूरे दिन काम करते हैं, रात को ही आराम करते हैं।
1: क्या बात है,
2: दिन को रोटी खाते भी मैं आराम नहीं करता।
1: अच्छा,
2: सुबह से 7:30 बजे से रात को 7:30 बजे में काम करता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोजन के बाद अगर समय मिलता है और सिचुएशन ऐसी हो तो 10 मिनट आप आराम कर सकते हो।
2: वो तो सही दीदी, हम 2 चक्कर लगा देते हैं, हम बाहर तो जाते हैं 2 चक्कर लगा देते हैं, तो हमारा जो भोजन खाया हुआ भोजन है वो अच्छी तरह से पहुँच जाता है।
1: जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है।
2: तो आराम करते हैं, लेकिन जब काम होता है तो आराम नहीं करते।
1: जी जी, हमारा काम जैसे वो तो सही है, काम होता है उस समय तो 1 सेकंड भी ऐसा लगता है कि वेस्ट नहीं करना है।
2: वेस्ट नहीं करना, और मैं कभी वेस्ट करता, मैं 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, मैं काम समझ से घड़ी से काम से घड़ी से काम साथ में काम करता हूँ।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है,
2: घड़ी चलती है, घड़ी के साथ साथ में काम करता हूँ।
1: जी, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आलस्य के मारे उठने को तैयार नहीं होते, कुछ ज्यादा ही आराम करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आराम कीजिए, लेकिन थोड़ा काम भी करना जरूरी है। मैं बताऊँ तो हमारे कई सारे भाई यहाँ भी हैं कि काम करते हैं लेकिन आराम ज्यादा करते हैं। तो आराम करना भी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जब आप काम करेगा तो आपका बॉडी भी अच्छी रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आपका आपको थोड़ा पैसा भी ज्यादा मिलेगा। इसी काम
1: हर तरह से फायदा है,
2: हर तरह से फायदा है, लेकिन ज्यादा आराम करना भी सही नहीं है।
1: जी,
2: दिन को, रात को तो आप कुछ आराम कर लो, कोई बात नहीं, 10 से 5-6 बजे तक
1: नहीं। जैसे आपने कहा ना कि काम करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसा भी मिलेगा, इसलिए कह रहे हो कि सब तरफ से फायदा है।
2: फायदा है, मैं बताऊँ तो मैं सुबह रात को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ हर रोज।
1: जी, बहुत अच्छा,
2: करना है काम करना है, काम के समय काम करना है, हम काम आराम करेंगे लेकिन आधा घंटे से ज्यादा नहीं।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है, आप भी इस विषय को स्पष्ट कर सकते हो। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। तो हमारे श्रोता बंधु फोन कॉल्स कर सकते हैं, हम थोड़े से बोल रहे होते हैं तो फोन उठाएंगे आपका, ऐसा नहीं कि नहीं उठाएंगे, इसलिए आप जरूर जुड़िएगा। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालबेलिया, डी तेरह ताली। ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, उसमें से एक सही है। कौन सा सही है जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है 94-1415-1415। और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, किसी की आप मदद कर रहे हैं, है ना, अच्छी बात है, मदद करना बहुत अच्छी बात है, हमारा फर्ज है मदद करना, लेकिन सामने वाला अब हमारे ऊपर ही निर्भर हो गया, ये गलत है। समय सभी के साथ आता है, ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है, उस समय इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती ही है। कभी तन के द्वारा, कभी धन के द्वारा, कभी परिवार के द्वारा मदद की आवश्यकता रहती है ना। जैसे कोई गिर गया है तो उस समय इंसान चाहिए उठाने के लिए, एक दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति जरूर चाहिए उठाने के लिए। और कभी धन की जरूरत पड़ जाती है तो भी यार दोस्त या फिर मित्र संबंधी इन सभी की याद आती है। तो मदद करना बुरी बात नहीं है, मदद करना ही चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं। परंतु मदद करने पर सामने वाला व्यक्ति पूरा ही डिपेंड हो जाता है तो क्या कहेंगे? हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे हैं।
1: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई।
2: आज का विचार, तो एक गीत मेरे को याद आया है।
1: हाँ जी,
2: ये पुराना गीत है, आराम है हराम, आराम है हराम, भारत के नौजवानों आजादी के दीवानों, इस देश के कोने कोने पर पहुंचा दो ये पैगाम,
1: आराम है हराम, आराम है हराम। वाह वाह वाह, क्या बात है, समय पर आपने भी नहले पर दहला मारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत सुनाया, बिल्कुल इसके ये गीत स्पष्ट कर रहा है कि आराम करना भी, ज्यादा आराम भी हराम है।
2: जी, आराम के टाइम आराम भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम हो तो उसमें आराम नहीं करना चाहिए।
1: जी
2: हाँ, ऐसा एकदम अपने को कि चलो भाई अभी आराम करेंगे तो ये नुकसान होने वाला है, तो आराम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी काम है।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका फिरोज भाई। जी, तो देखिए दो, वो कहते हैं ना कि गीत की पंक्तियों में ही फिरोज भाई ने समझा दिया कि आराम कहाँ तक आवश्यक है। कितनी बार देखिए कोई बिजनेस करते हैं, 12-12 एक एक दो दो बजे घर में ही रहेंगे, और घर वाले कहेंगे अरे भाई जाओ बिजनेस पर जाओ, तो बोलेंगे कि अरे हमारा तो फोन पर बिजनेस चलता है, हो जाएगा, आपकी शॉप है, और आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं। अब बोले कितने कस्टमर आ करके चले जाएंगे, सोच ही नहीं सकते हो, आधा दिन तो आपका घर में ही बीत गया। हम अपने श्रोता बंधु से बात करना चाहेंगे क्योंकि वो जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन से। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार दीदी, कैसे हो?
1: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप? धानेराव से बोल रहे हैं ना?
3: जी जी जी
1: जी जी जी, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
3: आपने एक अच्छा विषय रखा है, तो हमेशा मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा हटके बात करता हूँ, कि जो व्यक्ति बहुत हद से ज्यादा आराम करने लगता है ना, तो फिर उनको पैसे की तो जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है, तो वो लालच आ जाती है, कैसी कि किसी के सगे वालों से पैसा मांगना, कोई बहन है भाई के पास, ऐसी आदत पड़ जाती है, फिर लोग उनको ताना देते हैं कि अरे ये आलसी है, उसको घर वालों को भी ताना, उसको सगे वालों को ताना देते है कि तुम्हारा जो जमाई है, मतलब हर तरह से उनकी जो थूथू रहती है।
1: बिल्कुल,
3: आलस्य क्या नहीं करती, सिर्फ ऐसा नहीं कि कमाने में या घर चलाने में नुकसान है या मुश्किल आएगी, लेकिन जीवन में हर तरह की नुकसान आएगा। तो किसी ने कहा भी है कि आराम हराम है, मतलब आराम भी करनी चाहिए, लेकिन अगर काम पर रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करेंगे ना तो हमारा गाड़ा जैसे तैसे चलता रहेगा। और हमेशा जो धंधे में अगर मन लग गया ना तो वो इंसान कभी आराम करने की सोच नहीं सकता, अगर मन लगा तो। और मन नहीं लगता ना वही जो ये आलसी बन जाते हैं। हर काम में मन लगा कर करना चाहिए।
1: जी बहुत सुंदर
3: जी। और आपने जो प्रश्न पूछा था वो ऑप्शन में क्या क्या बताया था दीदी?
1: जी घूमर हाँ जी घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया और तेरह ताली।
3: हाँ कालबेलिया हो सकता है।
1: अच्छा ठीक है, तो आप सुनिएगा कार्यक्रम, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
3: जी, थैंक यू दीदी
1: जी, बहुत बहुत आभार। और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सुनते एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबनी।

0: You are listening to Sister Dipti from Johannesburg, South Africa, and you are listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. This is being heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa, but you can tune into this wherever you are in the world and stay tuned into this wonderful fragrance.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे इंसान दुखी होता है अपने ही संस्कारोंवश, और कैसे इंसान सुखी होता है अपने ही संस्कारोंवश। अब किस तरह के संस्कार हमें धारण करने हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम, क्या करेंगे। विषय बहुत ही अच्छा है, आराम मनुष्य को, ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि ज्यादा निर्भरता भी अच्छी बात नहीं है। हर कार्य में बहुत सारे लोगों की आदत होती है निर्भर रहना, आता है उसके बावजूद भी नहीं करेंगे। अरे ये काम कर लेना, अरे सुनो सुनो इधर आओ ये काम कर लेना, खुद सोए सोए ऑर्डर देंगे और दूसरों से करवाना चाहेंगे। अब कितना समय आपके कोई मदद करेगा सोचिए आप। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ठीक है कोई परिस्थिति वश किसी को मदद चाहिए, हर कोई करने को तैयार रहेगा और करना भी चाहिए उस समय। लेकिन जब इंसान आत्मनिर्भर बन चुका है या वो उन परिस्थितियों में से निकल चुका है तो फिर तो उसको संभलना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अच्छा मेरे को तो आज दिन तक मदद मिली है तो आगे भी मिलती रहेगी, फिर इंसान आलसी हो जाता है। आलसी हो जाता है तो वो आराम ज़्यादा करता है और काम कम करता है। ज़्यादातर वो लोगों से ही काम लेना पसंद करता है। धीरे धीरे लोग भी उस स्वभाव के से थोड़ा सा परिचित होने लगते हैं कि भाई इसकी तो आदत पड़ गई। कोई भी हो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कोई भी कितना भी अच्छा हमारा रिश्ता क्यों न हो, लेकिन एक लिमिट होती है हर मदद की, है ना। लिमिट के बाहर अगर कोई किसी का ज्यादा ही परेशान करता है या ज्यादा ही उससे मदद लेना चाहता है या काम कराना चाहता है तो फिर धीरे धीरे उससे डिटैच हो जाएंगे, धीरे धीरे संबंधों में दरार आने लगेगी और कभी कभी तो रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं कि भाई उसके सामने तो जाना ही नहीं, गए नहीं कि बस वो ये कर दो वो कर दो, ये दे दो वो दे दो, ये बातें रहेगी तो फिर उस इंसान से लोग दूर भागते हैं। इसलिए देखिए जरूरत से ज्यादा निर्भरता अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति आ गई है तो आप मदद लीजिएगा, लेकिन जब परिस्थिति टल गई है, चली गई है, आपके जीवन से निकल गई है तो फिर से आप अपने आप को संभालिए और हो सके तो आप दूसरों के मदद करिए। क्योंकि देखिए ये फैक्ट बात है कि आज मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो कल मुझे भी थोड़ी सी इच्छा रहेगी कि कुछ तो मदद आपके द्वारा भी मुझे मिले, है ना। तो ऐसे होते हैं रिश्तों में भी। तो फिर आप अगर आत्मनिर्भर बन गए हैं तो दूसरों की मदद करिए। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो नमस्कार, ओम शांति दीदी।
1: हाँ जी नमस्ते दयाराम जी।
2: और जो लोग आलसू ज्यादा होते हैं तो अपने काम सही तरह नहीं कर पाते हैं तो वो खुद का तो भी नुकसान कर देते हैं, लेकिन उनके संगत में और भी आते हैं तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम तो हमेशा ऐसे लोगों से कभी दूर ही रहा करते हैं और उनको भी अच्छी सलाह भी देते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी गृहस्थी अच्छी तरह चलेगी। और हमेशा अब किसी पर निर्भर नहीं रहता है और खुद पर डिपेंड करता है तो वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। और जैसे हमारे घर में कोई गृहस्थी है तो अपना काम सही तरह अच्छी तरह करती है तो सब उसका जो भले भले करते हैं और नहीं करते हैं तो उनके घर में ही झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही किसी पर निर्भर नहीं रहना है, अपने अपने काम में हमेशा तत्पर रह के करते रहना है और दुगने जज्बे के साथ करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे
1: जी।
2: और कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं ही किसान हूँ तो कृषि का कार्य करता हूँ तो मैं किसी दूसरों पर निर्भर रहूंगा कि वो आएगा मुझे काम कराएगा, तो कोई नहीं, हम समय तक कोई नहीं आ पाता है, नहीं आता है
1: जी।
2: हम अपने काम में लगातार जुड़े रहते हैं और व्यस्त रहते हैं करते हैं तो हम उस काम को अपने जो काम को अपनी समय सीमा निर्भर होती है तो उन पर हम पहुँच जाते हैं। तो बस सभी को नमस्कार है, ओम शांति, खम्मा गणी सा
1: जी, गणी खम्मा सा, आभार। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही अच्छी तरह आपने भी स्पष्ट किया है। ये थे दयाराम जी लाखनी से, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम भी किसान हैं, अगर हम किसी के ऊपर आश्रित रहेंगे तो खेती कैसे करेंगे। हर व्यक्ति अगर इसी तरह सोच ले कि हमें डिपेंड नहीं रहना है, स्वयं का कार्य स्वयं करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। नहीं आता है तो सीखा जा सकता है, लेकिन सीखने के बाद भी अगर हम निर्भर रहते हैं तो फिर वो अपाहिज की तरह ही है ना। इसलिए हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ किसी को पचती नहीं है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना कि अगर हम ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, आलसी बनेंगे, तो बस दुख का न्योता तो हम खुद ही दे रहे हैं दुख को, है ना। तो अगर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो स्वावलंबी बनिएगा और आलस्य को त्याग दीजिएगा, तभी अपने जीवन को हम सुंदर और श्रेष्ठ बना पाएंगे, खुशनुमा बना पाएंगे। यही खुशनुमा जीवन का राज है। यहीं पर हम फिर से एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना।

0: मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
1: माँ अब तो बस करो।
2: बहू क्या सोच रही हो, घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो।
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशियाना, और बहुत ही आज का कार्यक्रम अच्छा रहा, विचार भी आज का बहुत ही सुंदर था। तो नुस्खे भी आपको जो ब्यूटी टिप्स दी है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेसिपी में भी आपको अलग अलग प्रकार से छाछ मट्ठा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके इसका आनंद लीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? लगभग हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है, एक को छोड़ करके। नाम सुनाना चाहूंगी दयाराम जी लाखनी से, फिरोज भाई पालनपुर से, सुरेश भाई जोटाना से, उम्मेद सिंह जी ओसिया से और सुरेश भाई धानेराव से। आप सभी ने सही जवाब दिया है, काल बेलिया जो नृत्य है वो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने जवाब दिया है कच्ची घोड़ी, जो गलत है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी कि कहते हैं कि उजालों में तो मिल जाएंगे बहुत से, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। अब मैं आपको गृहस्थ गीता सुना रही हूँ, ठीक है? तो गृहस्थ गीता का आनंद लेंगे, उसके बाद कुछ श्लोक भी सुनाऊंगी। आतिथ्य ही घर का वैभव है, आतिथ्य ही घर का वैभव है, प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है, व्यवस्था ही घर का सुख है, समाधान ही घर की शोभा है, सदाचार ही घर की सुवास है, ऐसे ही घर में सदैव प्रभु का वास है। ऋण हो ऐसा खर्च मत करो, पाप हो ऐसी कमाई मत करो, क्लेश हो ऐसा मत बोलो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो, रोग हो ऐसा मत खाओ। अब मैं आपको पुष्पांजलि सुना रही हूं। मैं अपराधी जन्म का नकशिक भरो विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार, भक्ति दान मोहे दीजिए सब देवन के देव, और कछु मांगत नाही निश दिन तुम्हारी सेव, सफल द्वारे छोड़कर आई तेरे द्वार, शरणागत की जात रखियो है नंद कुमार, पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो यदुराज, कृपा दृष्टि अवलोकिये शरण पड़े की लाज। अब मैं आपको बहुत ही सुंदर श्लोक सुना रही हूँ। काल बलि सन्मुख खड़िया होय चलन को त्यार, भजन भाव कीन्यो नहीं किस विधि उतरे पार, सुमिरन दीप जलाए के धरु तिहारा ध्यान, शरण पड़े की लाज रख ए मेरे भगवान, शरण पड़े की लाज रख ए मेरे भगवान।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और जिंदगी से प्यार करना हो तो क्या करना होता है। जिंदगी क्या है, कितनी बड़ी है, कोई कहता है कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखती, पर उसे जिया कैसे ये मायने रखता है। और सच में जिंदगी से प्यार हो तो हर लम्हा खूबसूरत हो सकता है, पर क्या ये सच है, क्या ये संभव है या सिर्फ किताबी बातें। आइए एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और रेडियो मधुबन पर भी हमारा गाइड बन के हमेशा साथ देते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है जब भी हम अपने श्रोताओं से मिलते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच।
2: और साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। लव्यू जिंदगी की एक और कड़ी में आप सभी से चर्चा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं कि आज की इस कड़ी में भी हम सभी इस चर्चा से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझकर जिंदगी से प्यार करना सीखें।
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये करना, और कैसे करना है उसके प्रैक्टिकल और इजी टिप्स आपको इस कार्यक्रम में मिलते हैं। और हम पिछले कुछ एपिसोड से भावनाओं के बारे में बहुत बात करते आए हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर किस परसेंटेज में हम उसे फील कर रहे हैं वो भी जानना, फिर किस तरह से उसे डील करना, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं मैं भावनाओं में बह गई थी, मेरा ये मतलब नहीं था पर मुझसे ये हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे हो गया। तो डिस्टर्बेंस आ जाता है लाइफ में, कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं भावनाओं में बहकर, और वो गिल्ट हमेशा साथ रहता है। कई बार तो लोग लास्ट जो ब्रेथ होती है वहां तक भी उसको लेकर जाते हैं और वहां भी वो पेन एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे भी कई बार इंसिडेंट्स हुए। तो इतना लंबा वो ना जाए, उसको हम हील कैसे कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है, क्या कहना चाहेंगे आप?
3: बहुत सुंदर और साथ साथ बहुत डीप सवाल है ये। भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, समझना शुरू करते हैं, वैसे ही हम दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगते हैं। तो इसको ही हम कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। जब हम अपनी भावनाओं को समझकर सही जगह पर सही व्यक्ति के साथ सही इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो मैच्योरिटी की लेवल पर आ जाता है। लेकिन भावनाओं को न समझने की वजह से जो गलतियां हम कर लेते हैं, न खुद की भावना समझते हैं, न दूसरों की भावना समझते हैं, और बिना समझे हम जो आया जैसा व्यवहार कर लेते हैं, जो आया सो बोल देते हैं, और फिर बाद में पछताना पड़ता है, और ये शायद उम्र भर का घाव बन जाता है। घाव अगर शरीर पर होता है तो दिखाई देता है, लेकिन भावनाओं में जो घाव लगता है वो गुप्त भी रहता है लेकिन बहुत गहरा भी होता है। तो जैसे शरीर के घाव को ठीक करने के लिए कुछ विधि है, उसी तरह से मन के घाव, भावनाओं के घाव को भरने के लिए सबसे पहले इन्हें प्रेम से, समझ और समय की आवश्यकता होती है। पहली बात, प्रेम से समझना और समय देने की आवश्यकता। भावनात्मक उपचार क्या होता है, हीलिंग का मतलब क्या है, कि मन में दबे हुए दर्द, दुख है, क्रोध है, भय है, अपराध बोध है, अस्वीकृति है और नकारात्मक भाव है, इनको पहले समझकर स्वीकार करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर गुस्सा है या मुझे किसी बात का दुख है तो मैं एक्नॉलेज करूं कि हाँ मुझे इस बात का दुख है, मेरे किसी आपदा स्वकीय ने शरीर छोड़ा है इसलिए मुझे दुख है, मुझे किसी ने धोखा दिया है इसलिए मुझे दुख है, या मुझे गुस्सा है, या मुझे भय है, या मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तो इस एक्नॉलेजमेंट के साथ हम उसका उपचार कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट के साथ ही हीलिंग की शुरुआत होती है।
2: इंटरेस्टिंग, मतलब पहले तो ये माने एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, नहीं तो वो होता है ना डॉक्टर के पास जाते ही नहीं अगर पता ही नहीं है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए, तो पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट
3: जी। फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होकर हम पुनः अपनी ओरिजिनल शांति, प्रेम और आत्मबल के अनुभव में पहुंचते। जैसे जैसे हम भावनाओं को स्वीकार करते जाते हैं, उसको मैनेज करना हमें अपने आप आने लगता
2: है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि स्वीकार करते हैं तो मैनेज करना आने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं सही ऑर्डर पता होना चाहिए कि हमको चलना कैसे है। श्रीनिधि जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि कैरी फॉरवर्ड करके जो हम भावनाओं को अपने पास रखते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक इंसान को देख के वो भावनाएं वापस आने लगती हैं, हो सकता है हमने वो पीछे कहीं दबा दी होती है, तो वो दबा देना या हील होना, दोनों में से क्या हुआ है हमारे साथ, ये कैसे पता करें?
4: सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि हम सभी ना कुछ बैगेज लेके चल, सीधे मुंह इसे बर्डन कहना शायद थोड़ा अप्रिय लगे, पर हम सबके साथ एक इमोशनल बैगेज हमारे साथ होता है, और ये इमोशनल बैगेज हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के कारण होता है, कि हम जिस प्रकार की परवरिश होती, जिस प्रकार के दोस्त हमारे होते, तो उसके आधार पर हमारी जो ये इमोशनल बैगेज है बनते। कभी कभार कुछ अप्रिय घटनाएं ऐसी हुई होती, लोगों ने कुछ कहा होता है या हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया होता है, तो उसकी वजह से एक हर्ट है या एक पेन को तो हम बहुत ही आसानी से पेन कह सकते हैं, तो बहुत सारे इमोशंस हम कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग फियर कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी कैरी करते हैं, कई लोग वो जो सैडनेस है वो कैरी करते हैं, हालांकि आज वो चीज नहीं है उनके लाइफ, मगर अतीत में पास्ट में कभी ऐसा हुआ है, किसी ने उनको ऐसा ट्रीट किया है, या कभी कभार हम इंटीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि भाई किसी ने आपको छोटा दिखाया है, छोटा महसूस कराया है, आपको इनसिग्निफिकेंट महसूस कराया है, तो आप आज भी उसी इमोशन में जी रहे हैं, जब भी शायद हर घड़ी नहीं जी रहे हैं, जब भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो उन सिचुएशंस से मिलते जुलते हैं, तो आप इमीडिएटली अपने आप को इनसिग्निफिकेंट या छोटा महसूस करते हैं या डरा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे अनेकों इमोशनल बैगेजेस हम कैरी करते हैं, और ये कहना आसान नहीं है कि भाई हाँ हम उस बैगेज को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जब वो चीजें वो घटनाएं घटी हैं उस समय पर मेरे मन पर उसका बहुत प्रभाव रहा है, मैंने काफी देर तक उस चीज को महसूस किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप समझ लो, आप में से बहुत सारे मेरे साथी जो युवा साथी हैं शायद वो रिलेट कर पाएंगे, अगर आप एक बैकपैक ट्रिप पे जाते हैं, बहुत सारे हमारे युवा साथी बस कंधे पे पिट्टू बैग लादे हुए ट्रिप्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, समझ लो आपने वो 10 kg का बैग पहन के रखा है, तो 10 kg कोई ज्यादा नहीं लगता युवा शरीर के लिए, तो आपको लगता है अरे 10 kg क्या है ऐसे उठा, बट अगर आप 10 दिन की यात्रा उस 10 kg बैग के साथ कर रहे हैं और हर दिन पहाड़ चढ़ते उतरते ट्रेन से हर जगह जब उसको लेके आपको चलना पड़ता है, और जब 10 दिन बाद आपकी यात्रा पूरी होती है और आप उस बैग को उतारते हो, अब आपने वो बैग पहना नहीं है, अगर फिर भी कंधे पे वो दर्द महसूस होता है क्योंकि आपने इतने दिनों तक उस बैग को कैरी किया हुआ है कि आपने उसको अपने कंधे को आराम नहीं दिया था। सिमिलरली हमारे मन के साथ, तो इस बात को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अगर मैं वैसा पेन फील कर रहा हूँ, तो ये जो पेन है, ये जो इमोशनल बैगेज मेरे पास है, ये इतनी देर तक कैरी करने की वजह से और करने की वजह से हुआ है, इसे एक्सेप्ट कर लेना आवश्यक है, ठीक है मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसकी वजह से ये चीजें हुई। अब आता है उसका दूसरा हिस्सा, जब आपने उस बोझ को उतार दिया है तभी भी दर्द महसूस हो रहा है, आपको अब उसके हीलिंग के लिए, रिकवरेशन को रिक्यूपरेट करने के लिए अब आपको कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी, जिससे आपका वो जो 10 दिन तक बैग ढोने का जो बोझ है, जो दर्द आज महसूस हो रहा है, उसे आप हील कर सकें। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए समय देना जरूरी है, एक तो बैगेज को ऑफ लोड करना भी आवश्यक है, और फिर उसके बाद हीलिंग के लिए समय देना, और हीलिंग के लिए थेरेपेटिक चीजें हमारे पास है, चीजों का इस्तेमाल करना भी आवश्यक है।
2: ओके, अगेन हम मुझे लगता है एक्नॉलेजमेंट पे आ गए, जो बहुत जरूरी है, और फिर दीदी आपने कहा था समझ और समय दोनों ही जरूरी है, तो वो कैसे काम करता है हीलिंग में, थोड़ा उसके बारे में भी अगर आप बताएं।
3: सबसे पहले जो श्री जी ने एग्जांपल दिया, मुझे वो बहुत अपील किया कि जो हम बैकपैक लेके घूमते हैं, एक छोटी सी बात है, कितना इजीली हम वो चीज कर पाते हैं, लेकिन उसको जब हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, तो उस बैकपैक में क्या क्या कैरी करते हैं, किस किस चीज के घाव कैरी करते हैं, उनको इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक एक करके बताते जाती हूँ। बचपन में जब से हमें समझ आती है तब से हमारी कोई अपेक्षा करता है, उपेक्षा करता है या आलोचना करता है, हमें टॉन्ट कसता है। जैसे स्कूल में बुलिंग होती है, टीचर्स नेग्लेक्ट करते हैं जब हमें टीचर्स का अटेंशन चाहिए होता है, या दूसरे बच्चे किसी कारण से हायरार्की की वजह से या फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से आपको बुली करते हैं या आपको टॉन्ट करते हैं, तो वो हर्ट हम लेकर चलते हैं। फिर कभी कभी हमारे माता पिता का हमारे प्रति जो व्यवहार होता है, बचपन में मुझे नहीं समझता कि ये मेरे भले के लिए, परंतु मुझे हर्ट होता रहता है कि मेरे पापा ने मुझे मारा, मेरी मम्मी ने मुझे मारा, मुझे ये नहीं दिया, मेरी बड़ी बहन या बड़े भाई को दिया, मुझे नहीं दिया। बचपन से ही ये चीज हम कैरी करते हैं। कुछ असफलताएं होती है हमारे लाइफ की, हम जो चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाते, तो वो एक तीस जो होती है अंदर से जो दुख होता है उसे कैरी करते हैं। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में हमें विश्वासघात होता है, कोई हमारा दिल तोड़ता है, वो कैरी करते हैं। रिश्ते हमारे कई बार टूट जाते हैं, अच्छे खासे फ्रेंड्स छोटी सी गलतफहमी की वजह से दूर हो जाते हैं और उम्र भर एक दूसरे को दूर रहकर याद करते हैं। कभी कभी हमारे जो अपने हैं उनमें से किसी बहुत क्लोज का अचानक मृत्यु हो जाता है। ये सारे बैगेजेस है जो बैकपैक कहा श्री जी ने, वो अंदर में है, वो हम कैरी कर रहे हैं। कभी हमारा अपमान होता है, कभी कभी हम बहुत लंबा समय तक टेंशन में रहे हैं, हमें कई बार गिल्टी फील हुआ है, कई बार हमें अपने आप को स्वीकार करना, जो चेहरा लोगों के सामने है मेरा अंदर में एक चेहरा है जो सही नहीं है, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है, वो कैरी करते समय मुझे उसका दुख होता है, पेन होता है। तो अब बैकपैक में हमने क्या क्या कैरी किया है बचपन से लेकर अब तक, वो तो हमने समझा। अब धीरे धीरे करके हम उसके साइंस को पहचाने, समझो कि मुझे बचपन में मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो अभी मुझे तकलीफ दे रहा है, उसकी निशानियां क्या हो, है ना, इस बात पर हमें सोचना चाहिए कि अब क्या निशानी दिखाई देगी कि पता चले कि मैं बैगेज कैरी कर रहा हूँ।
2: मतलब उस समय तो था, लेकिन उस समय समझ में आया, हर्ट हुआ, भूल गए, लेकिन वो बैगेज है, कहीं ना कहीं उसके साइंस क्या होंगे, ये तो जरूर जानना चाहेंगे।
3: बिल्कुल, उसके साइंस है कि कभी कभी बिना कारण उदासी आना, सैडनेस फील करना। मेरे पास कई बहने आती है, लड़कियां आती है जो कहती है कि बिना कारण के हमें रोना आ रहा, कोई कारण ही नहीं है, फिर भी बोलते बोलते आंखों से अश्रु धारा निकलती। तो छोटी छोटी बातों पर रोना आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, जैसे लड़कियों में रोना है, लड़कों में बहुत ज्यादा गुस्सा आना और गुस्से को एंजाइटी का रूप मिलना, जब गुस्सा एंजाइटी में बदल जाता है तब तोड़ फोड़ खुद को नुकसान या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की तरफ चलता है, है ना। फिर बहुत ज्यादा चिंता होना फ्यूचर को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, सारी इनसिक्योरिटीज होना, फिर किसी चीज का डर लगना, डर की एक आदत बन जाना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकेलापन महसूस करना, है ना। ये लास्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे साइंस हैं। जैसे अगर आप मेंटल लेवल पर देखेंगे तो बार बार वही चीज सोचते रहेंगे, उसको हम ओवर थिंकिंग करते हैं। बात छोटी है बट मैं उसको सोच सोच सोच सोच के इतना बड़ा बना देता हूँ कि मुझे उसका टेंशन होने लगता है।
2: ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है दीदी, ओवरथिंकिंग के बारे में तो बहुत कहते हैं कि हम बहुत ओवरथिंक करते हैं, रात को सोने से पहले ओवरथिंक करना है जैसे पार्टी बन गया है।
3: जी, दैट शोज बैगेजेस क्लियर नहीं हुए, नेगेटिव सोच होना, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं मैं नहीं करता, तुम लोग करो, क्योंकि मुझमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ काम करने, मुझे लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हमारे यहाँ जो नर्सिंग स्कूल है, कॉलेज है, तो नर्सिंग स्टूडेंट से जब हम मिलते हैं तो कई बार मैं पूछती हूँ उनको कि आपने ये नर्सिंग क्यों चुना, तो वो कहते हैं कि मम्मी पापा ने कहा इसलिए चुना, मुझे आना था नहीं आना था मुझे नहीं पता, बट मम्मी पापा ने कहा इसलिए चुना। अभी भी मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, 10th के बाद मेरे जैसे मार्क्स थे उस अकॉर्डिंग मुझे कॉमर्स कॉलेज में डाला गया
2: जी।
3: अब मैं कॉमर्स में जाकर बैठी हूँ एक साल भर, मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई वॉज लिटरली कंफ्यूज्ड कि ये मेरा नहीं है पार्ट, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सो उस एक साल में मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकती हूँ, अगर मैं कॉमर्स नहीं कर सकती हूँ तो मैं और क्या कर सकती हूँ। सो बचपन से मैंने देखा था कि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। सो मैंने एक साल के बाद अपना स्ट्रीम चेंज किया, मैंने आर्ट्स लिया और बाद में टीचर बनने का निर्णय लिया। पर मेरा एक साल गया था क्योंकि मैं खुद के बारे में खुद डिसीजन नहीं ले पाई थी। तो निर्णय लेने में कठिनाई होना, ये कुछ मानसिक और भावनात्मक संकेत हमने देखे, आगे चल के शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक संकेत भी हम देखेंगे।
2: और ये सारे संकेत जब आप बोल रहे थे, मुझे लगता है हम रिलेट कर पा रहे होंगे। किसी को लग रहा होगा ये होता है, किसी को लगता है ये होता है, बट अभी कारण समझ में आया कि वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो बैगेज के रूप में है मौजूद। तो हील सिर्फ उसको सिम्टम को नहीं करना है, उस प्रॉब्लम को करना है। श्रीनिधि जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने वही बैकपैक का एग्जांपल दिया आगे, तो आपको क्या लगता है कि आप यूथ को बहुत क्लोजली देखते हैं, जनरेशंस चेंज हो गई है, अभी का जो यूथ है आपको लगता है वो थोड़ा कम कैरी करते हैं, ज्यादा कैरी करते हैं, क्या कुछ चेंज नजर आता है आपको?
4: मैं समझता हूँ, मैं यूजुअली इंटरजेनरेशनल टॉपिक्स पे कमेंट नहीं करना पसंद करता, क्योंकि ये मैंने अपने युवा साथियों से ही सीखा है, जो मेरे हम उम्र हैं और मेरे से छोटे भी हैं, उनसे मैंने ये चीज सीखा है। वो इस बात को बहुत बुरा मानते हैं जब उन्हें उनके जनरेशन के आधार पर कमतर आता जाता है कि अरे आपके जनरेशन से तो क्या ही उम्मीद है, अरे आपके जनरेशन तो क्या ही समझ पाएगी। हमारे जमाने में ऐसा होता था, जब ये चीजें उनको सुनने को मिलती हैं तो बिल्कुल असहज महसूस करते हैं, जैसे उन्हें अज्ञानी या उन्हें इग्नोरेंट लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है, या हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस करते हैं। हालांकि कहने का भाव वो नहीं होता, इसलिए मैं इंटरजेनरेशनल चीजों पे कमेंट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हर एक पीढ़ी के अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, अपने समय के अनुसार उनके पर्यावरण बदलते हैं, उनको जो स्टिमुलस मिलता है या जो चीजें उनको इनपुट्स के रूप में मिलती हैं, उसके आधार पर हर एक जनरेशन चीजों को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और लोग हालांकि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जेन जी, मिलेनियल्स, जेन अल्फा, ये ठीक है कि हम बच्चों को किस समय पर वो पीढ़ी आई है उसके अनुसार उनके आसपास टेक्नोलॉजी कैसा था, वातावरण कैसा मिला है, परवरिश कैसी मिली है, उसके आधार पर हम इन चीजों को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये बात सत्य है कि इन चीजों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और पीढ़ी पर पड़ती है। मगर ये भी बात मैं मानता हूँ कि आज मैं ऐसे युवाओं को जानता हूँ जो जेन जी के कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे साथी में देखने को मिलता है कि वो लोग शराब नहीं पीते।
2: हाँ, एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या सिम्टम कुछ अलग है, जैसे दीदी ने सिम्टम बताए जो ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं उसके, क्या कुछ और साइंस दिखाई देते हैं, कुछ अलग तरीके के भी साइंस दिखाई देते हैं, क्या उसका फर्क पड़ता है या नहीं?
4: डेफिनेटली मैं समझता हूँ उसका प्रभाव तो पड़ता ही होगा। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आज हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ इश्यूज की राइज देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमारा ऑनलाइन बिहेवियर हो गया है कि हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर आश्रित हो गए, हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। वहीं अगर आप देखेंगे कि कोविड के समय पर भी जो ऐसे पीढ़ी के लोग हैं, जैसे मेरे माता पिता की उम्र के लोग हैं, उससे भी थोड़े और उम्र दराज लोग हैं, वो इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कोप कर पाए, क्योंकि उनको उस चीज की आदत है कि भाई वो सोशल इंटरेक्शन को ज्यादा महत्व देते रहे हैं, और वो कारणवश कोविड में वो नहीं कर पाए, मगर बाद में वो उन चीजों को उन्होंने तुरंत बाउंस बैक कर लिया उन चीजों। मगर हमारे युवा साथी, जो खासकर ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे या 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो वो 2 साल के लिए ऑनलाइन स्कूलिंग की, तो उनके सोशल स्ट्रक्चर टूट गए, तो उस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करने में आज डिफिकल्टी होती है। तो मैं समझता हूँ ये जनरेशन की बात से ज्यादा वो किस परिवेश और किस एनवायरमेंट में है, वो चीजें ज्यादा मायने रखती है। इसका उदाहरण देने के लिए मैं ये चीज कहूंगा कि अगर भारत में ही ग्रामीण परिवेश के बच्चे होंगे, वो भले जेन जी क्यों ना हो, वो कुछ चीजों को बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे मुकाबले इसके कि जो शहरों में रहने वाले, बहुत ही अर्बन लैंडस्केप में रहने वाले बच्चे उन चीजों को बेहतर नहीं समझ पाएंगे। इसमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं।
2: बिल्कुल, और जैसा आपने कहा परिवेश डिफरेंट है तो कई बार एक्सप्रेशन करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। कई बार पुरानी जनरेशन चाहे शायद वो चीज सोच रही थी, अभी जनरेशन शायद वही चीज सोशल मीडिया में दिखने लगी है, मगर साइंस तो सब जगह है। हो सकता है वो थोड़े से बदल जाए, पर डेफिनेटली यदि आगे बढ़ेंगे हमारे पास, जैसा आपने कहा बहुत सारी चीजें सोशल साइंस और क्या क्या है, और भी टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, लेकिन क्योंकि इस एपिसोड में हम पहुंच गए हैं, हमारे समय हमें जहां तक इजाजत देता है वहां, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कुछ ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं, हमने जो पहले स्टेप की बात की थी कि उसको हम समझ पाए, वहां पे कैसे खुद को ला सकते हैं एक पॉइंट पर।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें उसको समझकर उसको अपने जीवन में इन्वॉल्व करने के लिए, शामिल करने के लिए सोच के लेवल पर कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता है। सोच के लेवल पर जो अभ्यास करते हैं उसे ही मेडिटेशन कहा जाता है या ध्यान कहा जाता है। सो हम अपने विचारों में किस तरह से सकारात्मकता ले आए, ताकि हमारा ये जो बैगेज हम कैरी कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम रिलीज भी करते जाएं और हम हील भी होते जाएं। तो मैं अपनी श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वे जहां कहीं भी हैं, रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट के लिए आप साइलेंस में किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाएं। अगर वो स्थान बालकनी हो, कोई आरामदायक ऐसी जगह हो जहां से खूबसूरत नजारा दिख रहा हो, या अपने कमरे का एक कुर्सी जहां पर आप शांति से बैठ सकें, तो आराम से बैठ जाएं। अपने शरीर को रिलैक्स पोजीशन में रखिए, गहरी और लंबी सांसें, गहरी और लंबी सांसों का ये अभ्यास हमारे माइंड, ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। इसलिए मेडिटेशन की शुरुआत गहरी और लंबी सांसें लेते हुए किया जाना चाहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। हर सांस के साथ अपने मन को, शरीर को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स फील करें। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप में एक विचार को दोहराएं, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं खुद का स्वीकार करती हूं। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। कुदरत ने मुझे विचारों के साथ भावनाओं की सुंदर शक्ति दी है। उसमें कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं तो बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं भी हैं। गहरी और लंबी सांस ले। मुझे खुशी है कि मेरी नकारात्मक भावनाओं की तुलना में सकारात्मक भावनाएं बहुत अधिक है। जो भी नकारात्मक भावनाएं आज तक मुझ पर असर कर रही है, आज मैं उनको अच्छी तरह से जानने की, समझने की कोशिश करती हूं। मैं अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूं। गहरी और लंबी सांस ले। जैसे ही मुझ में नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं, मैं अपनी अलमारी में से उन सकारात्मक भावनाओं को निकाल कर उनकी जगह उनको स्थान देने का प्रयास करती हूं, और मेरा ये प्रयास मुझे सफलता दिलाता है। मैं अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक शक्ति में बदल सकती हूं। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। उससे भी ज्यादा मुझे परमात्मा शक्ति और ब्रह्मांड पर संपूर्ण भरोसा है। मेरी इस उपलब्धि के लिए मैं परमात्मा, प्रकृति और खुद का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।
2: धन्यवाद दीदी, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं आपका और श्रीदेवी जी का, दोनों का, कि हमें आप जैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं। और स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, ये भी हमने समझा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हीलिंग के लिए हमने पहला कदम आज बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस कार्यक्रम से आपको वो मदद मिली होगी जो आपको जरूरत है, और इस वादे के साथ कि नेक्स्ट स्टेप्स को लेकर भी जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन नहीं।
1: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे,
2: क्या बात कर रहा है?
1: हाँ देख,
2: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
1: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
2: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
1: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं, क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
1: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

0: बाबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 ईयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था, खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी

0: पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
1: अच्छा,
0: आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए? 7 साल की। अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे पुणे में।
2: कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
2: हाँ, कभी जाते थे, कुछ हुआ तो बीच बीच में।
1: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
2: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
1: अच्छा, तो
0: पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था उस समय? आप कौन सा खेल खेला करते थे?
2: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे। हम बिंदास मना, हमारा पेशवे कालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे। ताश खेलने का खेलते थे और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसे खेल खेलते थे हम।
1: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था?
0: खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
2: झगड़े नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहां पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
2: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस। तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, मना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। म्यूनिसिपल स्कूल में कभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
2: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी। मैं मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडी स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
2: पढ़ाई में मना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
2: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो और जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
2: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
2: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहे कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ। है
2: खेल भी, पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
2: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविता वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
2: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
2: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
2: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को पहले से। पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रगीत आप सुनाते थे?
2: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
2: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़ी करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थी ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
2: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
5: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
4: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
5: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
4: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
5: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे है ना?
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना,
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता था।
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे?
1: हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी जी जी और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी।
0: अच्छा।
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं नहीं रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: 2 बरस तक की।
0: अच्छा,
1: और 400 रुपये था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपये
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी जी जी आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15-17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी, सोना 140 रुपए है तोला।
0: तोला जी जी बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुनः छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
1: तो छोड़ के बम्बई में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बॉम्बे में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोंकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोंकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोंकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोंकण में कभी?
1: हाँ, इस बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई क्योंकि सास को दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई।
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई।
1: बचपन से ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां और एक बेटी, वो तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम आप बॉम्बे में, मतलब 3 बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
3: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उन्हों को, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
2: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना, तो आप क्या क्या करते थे घर में?
3: हम घर में सब थैलिया पर्दा ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी, मना हमने कोर्स किया था
2: सिलाई का।
3: हाँ,
2: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
3: पुणे में किया था।
2: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
3: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
2: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
3: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
2: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
3: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
2: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
3: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
2: तो पूरे आपका ग्रुप था?
3: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना भजन गीत सिखाते थे हमको।
2: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
3: सत्संग नहीं इतना किया हम।
2: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
3: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
2: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
3: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
2: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
3: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
2: अच्छा, तो मतलब 3 बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, 5 जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
3: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
2: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
3: 1-2 बरस तक गई।
2: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
3: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
2: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन जैसे आप सीखे साल 2 साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
3: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
2: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल 2 साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
3: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
2: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
3: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरीका विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
2: अच्छा, पर सारे मराठी में।
3: हाँ,
2: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने दो लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
3: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
2: अच्छा, गाना अच्छा लगता था लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
3: नहीं,
2: कभी कोशिश नहीं की?
3: नहीं, याद भी नहीं आए।
2: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
3: ज्वेल एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
2: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
3: हाँ।
2: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
3: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
3: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
3: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
3: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
2: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
3: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
2: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
3: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए, और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
2: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
3: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
2: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
3: नहीं, उसने नहीं किया।
2: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
3: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो, तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया उसकी शादी की, दूसरी ने भी फोन किया उधर देखो, तो दूसरी के भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियाँ भी की है।
2: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
3: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
2: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
3: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: तेजश्री।
0: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहनें हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
1: जी हम बड़े हैं।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आप किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
1: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा, ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेली प्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था, तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
0: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
1: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है, जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
0: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
1: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
0: 55 के आप, क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है, वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
1: जी देखो, ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी, और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से, मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है। तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
1: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
1: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा। इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना? तो ये मेरी सदिच्छा है।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
2: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
0: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए?
2: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
0: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
2: 2 साल हुए।
0: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
2: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
0: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
2: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
0: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
2: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मन।
0: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
2: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
0: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में खड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी अगले रही

0: घर में सुबह शाम अच्छाई का आह्वान होता है, जहाँ पर नित भगवान को याद किया जाता है दिल से मन से, वहाँ पर कभी कोई बुराई आ नहीं सकती। इसी पॉजिटिव नोट के साथ दोबारा से हम सब मिलने वाले हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, जिसे आप सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज दुनिया ढूंढ रही है, चाह रही है कि कैसे सुकून की जिंदगी मिले, कैसे शांति की जिंदगी मिले, कैसे सुख चैन से जिया जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मन में हमें ज्ञान के घृत डालने हैं और भगवान की याद से अपने जीवन को, अपने घर को, समाज को, पूरे राष्ट्र को महकाना है। तभी हम किसी भी व्यसन से, किसी भी बुराई से मुक्त हो सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं स्वर्ण लता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में।
1: आप हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, हबरता रेडियो ने, मुस्कुराता रेडियो।

0: दिलों में यही तड़प है कि हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, बस नेक काम हो। बुराई क्या है? असत्यता का हाथ पकड़ना, गलत मार्ग पर चलना। गलत मार्ग क्या है? गलत मार्ग वही है जो हमें भटकाए, जो हमें भारी करे, पथ भ्रष्ट करे, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाए, स्मूथ, आराम, सहज, सरल, कोमल जीवन की धारा में एक अवरोध है व्यसन। आइए हम सब व्यसन मुक्त जिंदगी जिए, और उसके लिए कदम हमें ही उठाना है। हम कदम उठाएंगे तो सारा जग हमारी कॉपी करेगा, है ना? कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग ब्रिंग्स फॉल इन लाइफ, अति सर्वत्र वर्जय। किसी द्रव्य पर आश्रित हो जाना, परवश हो जाना ही व्यसन है, चाहे वो कोई भी चीज हो। इवन कोई अच्छे से अच्छा व्यंजन भी जिसके प्रति आप आश्रित हो जाते हैं, वही किसी न किसी दिन अवरोध का कारण बन सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में, और इसीलिए इसी गीत में इसका सलूशन भी दिया गया है कि इस जमी पर ऐसा तेरा इंतजाम हो, तेरा नाम सबके लव पे सुबह शाम हो। यानी किसका नाम हो? परमात्मा का, भगवान का।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: साथियों, यह बिल्कुल सही कहा गया है कि न सुन बुरा, न देख बुरा, न बोल बुरा। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अगर कोई बुराई का शिकार है, कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत मार्ग पर चल रहा है, हम उसका मार्गदर्शन करें, उसकी सहायता करें, उसको वापस अपनी उस जगह पर लाएं, उस स्थिति पर लाएं, जो उसके लिए सर्वाधिक सही है। हम उसकी चर्चा कर उसकी ग्लानि न करें, है ना? ऐसा करने पर वह बुराई हमारे में ही समा जाता है। तो हम इस पर पूरा अमल करेंगे हम सब मिलकर कि अब से हम इस भारत को ही नहीं पूरे विश्व को व्यसन मुक्त बनाने के लिए, बुराई रहित बनाने के लिए हम सब प्रतिज्ञा ले रहे हैं और इसके लिए हम सब जोर शोर से कदम बढ़ा रहे हैं। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने लक्ष्य पर अडिग रहें।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

व्यसन एक बुराई है, व्यसन एक अंधकार है। जीत की सुबह तक पहुंचने के लिए इस व्यसन रूपी रात्रि को हटाना है, दूर करना है। इसके लिए सामूहिक रूप से जब कदम उठाया जाता है तो सभी उसमें शामिल होते हैं जोर शोर से, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। स्वस्थ सुखद संसार में ही सर्वस्व सुख शांति समाहित होती है। तो इसके लिए एक और कदम भी उठाना है जो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन है? कॉस्मिक एनर्जी, खुदा, भगवान, ईश्वर। उसके साथ हम जब अपने दिल का तार एकदम मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तब उससे वो पॉजिटिविटी संचार होती है। और पॉजिटिव कदम उठाने के लिए उस पॉजिटिविटी के साथ भी दिल का तार हमें क्या करना है? मिलाकर चलना है। तो बने रहिएगा इस कार्यक्रम में और भी बातों को जानने के लिए और व्यसन मुक्त होने के लिए। हम आज सामूहिक तौर पर इस कार्यक्रम में भी प्रतिज्ञा लेंगे।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: चलती खेलती जिंदगी में यह व्यसन एक अवरोध है। यह हमारी जीने की जो गति है उसे रोक देता है, उन्नति को अवनति की ओर लेकर जाता है। तो ऐसे में इस बुराई को हमेशा के लिए हम अपने जीवन से निकाल दें और दूसरों को भी हम कहें कि आइए हम सब मिलकर इस बुराई को रोक दें, हमेशा के लिए खत्म कर दें। दोस्तों, यह बुराई कई बुराइयों का आह्वान करता है। अगर किसी को इसकी लत लग जाती है तो वह कई और पाप कर्म करने लगता है। तो एक बुराई कई बुराइयों को न्योता देता है। तो आइए ना हम सब मिलकर इसको हम अपने जीवन की डिक्शनरी से बिल्कुल हटा दें, है ना। ऐसा करने पर हम अपने राष्ट्र को, इस विश्व को एक सुखद मंजिल की ओर लेकर जाने में मदद कर सकते हैं, हम मददगार बन सकते हैं।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जागरे मनवा जागर, समय बड़ा बलवान है, इसलिए प्रभु का नाम लिए जा, प्रभु का नाम लिए जा। देखा, कोई भी व्यसन को दूर करने के लिए, कोई भी बुराई को दूर करने के लिए, उस एवर पॉजिटिव सोर्स के साथ हमें अपने दिल के तार को तो जोड़ना ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। सामूहिक कदम तो उठाएंगे, एक दूसरे को मदद भी देंगे, पर जब तक हम उस सुप्रीम के साथ दिल का तार न जोड़ लें, तब तक यह एवर पॉजिटिविटी की जो किरणें हैं, वह कैसे फैलेंगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जहां हम आत्म ज्योति जगा रहे हैं, ताकि हमारा यह जीवन सुखद हो, समृद्ध हो, और हम अपने इस जीवन में हमेशा के लिए उजियारा लेकर आए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भगवान के घर आ। जब भगवान हमारे साथ है तो डर काहे का। फ्रेंड्स, आजकल व्यसन को लोग एक स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं, इसको एक फैशन का जरिया मानने लगे हैं। उनको लगता है कि अगर हम अपने संग से बाहर आ जाएंगे तो हमें कोई भी मानेगा नहीं, इसलिए वो उस अशुद्ध संगठन में ही पड़े रहते हैं। पर उनको हम कहें, नहीं, आप हमारे संगठन में आओ, यह सुरक्षित है, यह भरोसेमंद है। तो आइए आज हम सब एक बीड़ा उठाएं, संकल्प लें कि ऐसे लोगों का हम मार्गदर्शन करेंगे जो घबराए हुए हैं, जो बुराई को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम उसको छोड़ेंगे तो हमें कोई अपनाएगा नहीं। उनको अपनाने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। और भगवान का जो ये संगठन है, हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ब्रह्मा कुमारी का, तो वह आप सबको कह रहा है, आइए हम सब मिलकर इस व्यसन को दूर करें।
1: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माँ खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अशांति के पिंजड़े से तन मन को आजाद करो। जब हम इन व्यसनों के शिकार हो जाते हैं, इनसे ग्रसित हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपनी आजादी को ही खुद खो बैठते हैं, इनके कैदी हो जाते हैं। कैदी होना माना पराधीन हो जाना, कहीं न कहीं हमारी शक्तियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए तो अभी पूरे भारत में, विश्व में एक ही नारा है, व्यसन मुक्त हो भारत। वैसे नशा मुक्त भारत भी इसे कहा जा रहा है। पर साथियों, ये हमारा व्यक्तिगत एक पर्सनल फीलिंग है कि नशे शब्द में ही एक नशा है, तो इस नशे शब्द को ही हम अपने डिक्शनरी से दूर कर दें। और व्यसन शब्द बहुत सुखद है, इसमें एक सुंदरता है, तो इस सुंदर शब्द को लेकर अपने जीवन की डिक्शनरी को सुसज्जित करें और हमेशा के लिए उस शब्द को दूर रखें अपने जीवन से। तो बने रहिए स्वर्णलता के साथ, अगला गीत सुनेंगे। और अब जाने से पहले आपके लिए हम वही प्रतिज्ञा दोहराना चाहते हैं और हम सब मिलकर इस प्रतिज्ञा को लेंगे। ईमानदारी से यह प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं स्वयं को सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रखूंगा। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को व्यसन मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने समय, ऊर्जा, क्षमताओं एवं संसाधनों का सर्वोत्तम सदुपयोग करूंगा। मैं व्यसन मुक्त, स्वस्थ एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान हमेशा दूंगा, सदा दूंगा। इन्हीं शुभ बोलों के साथ, शुभ प्रतिज्ञा के साथ और जीत के साथ हम आज विदा ले रहे हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी इसी म्यूजिकल मंच पर, जिसको हम कहते हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: खूब मजे फिर आते हैं, दोस्त जो सब मिल जाते हैं, साथ में मिलके खाते खाना और मजे से गाते गाना, वक्त यूं बीते हंसते हंसते, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। है ना बढ़िया मेरी नई कविता। चलो अब मिलते हैं मीना से। मीना भी आज बहुत खुश है, साथ वाले गांव से उसके श्याम चाचा जो आ रहे हैं। और पता है मीना के श्याम चाचा अखबार के रिपोर्टर हैं। चलो हम भी जल्दी से उनसे मिलते हैं।
1: श्याम चाचा,
2: श्याम चाचा नमस्ते।
3: अरे वाह राजू, मीना कैसे हो मेरे बच्चों?
2: हम तो ठीक हैं चाचा, आप?
4: मीना, मीना जरा देख तो। अरे श्याम भैया।
3: नमस्ते भाभी।
4: नमस्ते, आप कब आए?
3: बस भाभी अभी आ ही रहा हूँ।
5: पसीना सुखा ही रहा हूँ।
3: भाई लगता है अपने अखबार में मिट्टू का इंटरव्यू भी छापना ही पड़ेगा, बहुत शरारती हो गया है।
4: आप हाथ मुंह धो लीजिए भैया, मैं चाय लेके आती हूँ।
3: जी भाभी।
2: श्याम चाचा पता है मीना भी स्कूल में एक दिन के लिए आपकी तरह अखबार की रिपोर्टर बनी थी।
3: अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। मीना बेटी रिपोर्टर बन के क्या किया तुमने, किसी का इंटरव्यू लिया था क्या?
2: हाँ चाचा जी, मेरी सहेली रोशनी और मैंने गुड्डी दीदी का इंटरव्यू लिया था।
3: अरे वाह मीना, और इंटरव्यू था किस बारे में?
2: स्कूल में देर से दाखिला लेने के बारे में।
3: अच्छा, और सवाल क्या क्या पूछे तुमने अपनी गुड्डी दीदी से?
2: हमने उनसे पूछा कि सही उम्र में दाखिला ना लेने पर आपको कौन कौन सी मुश्किलें आईं? आप स्कूल के कार्यक्रमों में हिस्सा क्यों नहीं लेती थी? जब आपके पिताजी ने आपका स्कूल बीच में ही छुड़वा दिया तो आपको कैसा लगा?
3: भाई वाह, सवाल तो बिल्कुल सही पूछे तुमने।
2: पता है चाचा जी, हमारे सवालों के जवाब देते देते गुड्डी दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे।
4: अरे भाई किसकी आंखों में आंसू आ गए थे? ये लीजिए भैया चाय।
3: भाभी आप देखना, एक दिन बहुत बड़ी रिपोर्टर बनेगी अपनी मीना।
4: अच्छा अच्छा भैया, अब आप चाय पी लो वरना बातों बातों में ये जरूर ठंडी हो जाएगी।
3: क्या भाभी खाली चाय? मेरी मनपसंद जलेबिया कहाँ है?
4: अभी लो भैया। मीना राजू ये लो पैसे और भाग कर लाला जी की दुकान से गर्मा गर्म जलेबियाँ ले आओ।
2: ठीक है माँ।
0: मीना और राजू लाला जी की दुकान पे पहुँचे।
2: लाला जी 250 ग्राम जलेबी दे दीजिए।
6: थोड़ा समय लगेगा मीना, तुम वहाँ बैठो, मैं 5-10 मिनट में वहीं भिजवाता हूँ जलेबियाँ। चिंटू, चिंटू।
7: जी मालिक।
6: चल जल्दी से जलेबी तैयार कर।
7: जी मालिक।
0: मीना और राजू लाला जी की दुकान के सामने लगी कुर्सियों पे

0: गाना गाया था।
1: चिंटू, तुम अपना स्कूल छोड़ के यहाँ लाला जी की दुकान पे, तुम्हारा स्कूल जाने का दिल नहीं करता?
0: बहुत दिल करता है मीना, मुझे स्कूल की, अपने दोस्तों की बहुत याद आती है, लेकिन वो मेरे पिताजी यहाँ इस दुकान पे।
2: अरे ओ चिंटू, कितनी बार कहा है तुझसे कि ग्राहकों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चल जा, सामने चाय दे। क्या
0: जी मालिक, मुझे जाना होगा मीना।
3: और जब घर पहुंचकर मीना और राजू ने श्याम चाचा को पूरी बात बताई तो वो बोले,
4: क्या लाला जी के दुकान पर काम करने वाला वो लड़का अभी सिर्फ 10 साल का है?
0: हाँ चाचा जी।
4: अच्छा, इसका मतलब लाला जी एक नाबालिग बच्चे से काम करा रहे हैं। क्या नाम बताया तुमने उस बच्चे का?
0: चिंटू।
5: चाचा जी, चिंटू का स्कूल जाना भी छूट गया।
4: चलो बच्चों।
5: कहाँ चाचा जी?
4: लाला जी की दुकान पे। मैं उसे समझाऊंगा कि बाल श्रम यानी छोटे बच्चों से काम कराना एक कानूनी अपराध है।
3: मीना और राजू श्याम चाचा को लाला जी की दुकान की तरफ ले चले। दुकान से थोड़ी दूर पहले मीना ने श्याम चाचा से कहा,
5: श्याम चाचा वो देखिए, वो रहा चिंटू, लगता है किसी को चाय देने जा रहा है।
4: मीना, राजू, तुम दोनों भागकर चिंटू के पास जाओ और इस डायरी में उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, घर का पता वगैरह सब लिख लाओ। तब तक मैं जरा लाला जी से मिलके आता हूँ। और सुनाइए लाला जी, क्या हाल है?
2: लो जी लो, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे कौन हो भैया और मुझे कैसे जानते हो?
4: अजी आपको कौन नहीं जानता लाला जी, आप तो वही मशहूर दुकानदार है ना जो गैर कानूनी काम करते हैं।
2: क्या बोल रहे हो जी, मैं और गैर कानूनी काम?
4: क्यों, बाल श्रम गैर कानूनी नहीं है?
2: बाल श्रम?
4: जी हाँ, बाल श्रम यानी छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना। चिंटू की बात कर रहा हूँ मैं।
2: अरे तो मैं क्या करूँ, उसका बाप मेरे यहाँ नौकरी करता था, कर्जा लिया था उसने मुझसे, अब उसकी तबीयत खराब है तो उसने अपने चिंटू को भेज दिया मेरे पास काम करने, समझे? जबरदस्ती नहीं रखा चिंटू को नौकरी पे। हाँ,
4: लेकिन अपराध तो अपराध है लाला जी, चिंटू की उम्र स्कूल जाके पढ़ने लिखने की है, ना कि मजदूरी करने की।
2: अरे तो तुम कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले?
4: अखबार का रिपोर्टर।
2: क्या रिपोर्टर?
4: जी हाँ, और अगर कहो तो तुम्हारी खबर भी छाप दूं कल के अखबार में, तस्वीर के साथ, फिर पुलिस ही पूछेगी बाकी के सवाल।
2: ऐसा गजब मत करना भाई साहब, मैं बेटा गोलू, गोलू
5: जी। पिताजी।
2: भाई साहब, मैं अपने गोलू की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा।
4: लाला जी, जैसे आपके बेटे गोलू को स्कूल में जाकर पढ़ने लिखने और खेलने का अधिकार है, वैसे ही चिंटू को भी तो वो सब अधिकार हैं। उसके बचपन को क्यों कुचल रहे हैं आप?
2: आपने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब, आज से चिंटू भी स्कूल जाएगा और उसकी वर्दी और किताबों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा।
6: खर्चा मैं उठाऊंगा, जलेबियां खुद बनाऊंगा।
3: भाई वाह, सचमुच चतुर चपल है अपनी मीना। आज उसने हम सबको ये सिखा दिया कि बच्चों से मजदूरी करवाना ना सिर्फ कानून की नजरों में एक गुनाह है, बल्कि वो मानवता के प्रति भी एक अपराध है। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्टू क्या नया कर रहे हैं।
0: बहुत जरूरी बात बताऊं, सारे रखना याद।
6: बच्चों से मजदूरी करवाना बहुत बड़ा अपराध।
3: भाई वाह, क्या कविता लिखी है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया, अब चलते हैं। बिल्कुल ठीक, अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार मिठाइयों के नाम बताऊंगी और उन चार मिठाइयों में से एक मिठाई किसी खास वजह से बाकी तीन से अलग है। तुम्हें मुझे उसी अलग मिठाई का नाम बताना है। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो उन चार मिठाइयों के नाम हैं लड्डू, रसगुल्ला, बर्फी और गुलाब जामुन। फिर से बताती हूँ, लड्डू, रसगुल्ला, बर्फी और गुलाब जामुन। अब सोच के बताओ इन चारों में से वो कौन सी मिठाई है जो है बाकी की तीन मिठाइयों से अलग।
3: लड्डू।
1: लड्डू कैसे अलग है दीपू?
3: क्योंकि लड्डू मीठा होता है इसलिए।
1: अच्छा, और रसगुल्ला, बर्फी और गुलाब जामुन नमकीन होते हैं। दीपू बेटा ये सही जवाब नहीं है। चलो चलो जल्दी से सोचो, लड्डू, रसगुल्ला, बर्फी या गुलाब जामुन।
4: मैं बताऊं बहन जी?
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
4: सही जवाब है बर्फी।
1: बिल्कुल सही मीना, लेकिन ये तो बताओ कि बर्फी लड्डू, रसगुल्ले और गुलाब जामुन से अलग कैसे है।
4: बहन जी लड्डू, रसगुल्ला और गुलाब जामुन गोल होते हैं जबकि बर्फी चौकोर होती है।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
1: डिटेक्टिव गोपीचंद। गोपीचंद के खास दोस्त सलीम की बेटी का आज जन्मदिन था। वह शहर का बड़ा रईस, व्यापारी और प्रसिद्ध व्यक्ति था। रीटा गोपीचंद से इस बारे में बात कर रही है।
2: सर, हमें सानिया की जन्मदिन की पार्टी में जाना है, आप तैयार हैं ना? सलीम जी ने खास तौर पर हमें बुलाया है।
1: वहाँ शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, वाकई यह अमीरों की पार्टी थी।
3: आइए आइए, चाहे कितने व्यस्त क्यों ना रहे, पर मुझे मालूम था आप आएंगे।
2: सानिया, आज तो तुम पूरे 10 साल की हो गई हो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, तुम्हारी अंगूठी तो बड़ी सुंदर है।
1: थोड़ी देर बाद सानिया हैरान परेशान रोती हुई अपने पापा सलीम के पास आकर उन्हें कुछ बताती है।
4: सलीम, क्या हुआ? कुछ देर से तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है?
3: सानिया की कीमती अंगूठी अचानक गायब हो गई, वो बच्चों के साथ खेल रही थी। गोपी, अंगूठी की कीमत 5 लाख है।
2: सर, सानिया ने मुझे बताया था कि उस अंगूठी में सोने पर हीरे का नग चढ़ा था, वह बड़ी भारी थी।
1: गोपीचंद की नज़र चारों ओर थी, अधिकतर लोग घर जा रहे थे। तभी सलीम की इंडस्ट्री के सुपरवाइजर मिस्टर शर्मा हड़बड़ाते हुए आते हैं।
5: सलीम साहब, आपको तो मालूम है मैं आज बैंगलोर जा रहा हूँ। मैंने केक का पीस रख लिया है, सोनिया ने बड़े प्यार से मुझे दिया है, मेरी ट्रेन ठीक 15 मिनट बाद ही है।
4: शर्मा जी, क्यों ना हम मिलकर केक खाएं? केक तो मैंने भी नहीं खाया है।
5: अरे भाई, यह सोनिया ने मुझे बड़े प्यार से दिया है, यह मैं आपको नहीं दे सकता।
4: अरे साहब, ऐसी भी क्या जल्दी, जरा अपना केक मुझे भी तो दीजिए।
1: सभी हैरत में थे कि अचानक ही गोपीचंद केक पीस छीन लेते हैं और उससे वे अंगूठी निकालते हैं।
4: सलीम, मैंने देखा शर्मा ने सानिया से कुछ अलग अंदाज में ही हाथ मिलाया था और इसी बीच इन्होंने अंगूठी पर हाथ साफ कर लिया होगा और अंगूठी को केक पीस के बीच में छिपा कर ले जा रहे थे। मैंने देखा कि इनके हाथ के केक पीस में एक कट था, तभी मुझे शक हो गया था।
2: कीमती अंगूठी के लिए इस लालची आदमी का मन डोल गया और यह चोरी पर उतर आया। 5 लाख की बड़ी रकम ने इसे चोर बना दिया।
1: चाहे चोरी कितनी भी हेरा फेरी से की जाए, पर अपना निशान जरूर छोड़ती है और इस निशान के जरिए ही डिटेक्टिव गोपीचंद चोर को पकड़ लेते हैं।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खिदमत है एक नज्म। उन्वान है तितली, शायर है शौक किदवई। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: पर खोल के तितलियों की परवाज, पर जोड़ के बैठने का अंदाज, इस फूल से उड़ के उस पे बैठें, रस ले के उड़ें वो जिस पे बैठें, नाजुक नाजुक वो खुशनुमा पर, उड़ती हुई पत्तियां हवा पर, वो नक्शो निगार और वो बूटे, पर उनके छुओ तो रंग छूटे, रंग इनमें बहुत मिले हुए हैं, पर क्या है चमन खिले हुए हैं, है रंग कई हर एक पर छोटा सा चमन है उनका हर पर, हर खाल है पर ये एक नगीना, सोने चांदी पे या है मीना, कुदरत देखो के गुले चमन में, गुलदस्ते हैं तितलियों के तन में, जो नक्शो निगार से है खाली, वो भी दिल को लुभाने वाली, है रंग किसी का जर्द गहरा, इतना गहरा कि बस सुनहरा, कोई जिसके सफेद हैं पर, जैसे चांदी के साफ पत्थर, ताऊसी संदली गुलाबी थानी कासनी सियाह आबी, पीले ऊदे जमरुदी लाल, हर रंग के पर हैं बेखत तो खाल, परवाज भी हुस्न है भवन भी, रंगत भी है हुस्न सादापन भी।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष और अनुजा बिसारिया। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है राकेश पंडित और उनके साथियों ने।

0: दर्शन करवानी तरसे आखड़ी।
1: प्रोडक्शन सूरज ने चांद लाना, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, सूरज ने चांद लाना, दाऊद चतुर्वेदी।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए बच्चों के मनोस्थिति पर, ये मनोविज्ञान पर हम लोग कार्यक्रम आपको दे रहे हैं और जिसमें डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमेशा की तरह हमारे साथ उपलब्ध हैं और बाल संसार बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम के विशेष राइटर हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जनरल एक एपिसोड में बातें की थी पिछली बार। अब हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कुछ बातें ज़रूर बताएंगे। तो बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्माण, तो ये सबसे पहला लेसन है जिसमें बच्चों की मनोस्थिति की विविधता को समझना। तो आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी।
0: बाल संसार में आपका स्वागत है और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बाल मन के प्रति जो संवेदनशील बातें करते हैं या दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चों की मनोस्थिति को अलग अलग ढंग से समझना, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से उस चीज़ को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उस पर बताइए बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए।
1: बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रश्न है और सामान्य तौर पर एक आम परिवार में इस प्रकार की समस्या रहती है और बड़े चाहते हैं कि इस मनस्थिति को हम समझें। और ख़ासकर जब संवेदनाओं की बात आती है तो हमें लगता है कि मानवीय संवेदनाएं केवल बड़ों तक सीमित हैं, लेकिन उसका जो रेंज है वो बच्चों के पास ज़्यादा है। कारण उसके पीछे है कि जो भावनाएं और विचार उनकी मनस्थिति में उत्पन्न होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास में जो माध्यम है वो बहुत कम है, लेकिन वो अपनी भाव भंगिमाओं से, व्यवहार से और कई बार अलग अलग अपने स्वभाव को वो व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब आपके परिवार में कोई आता है बड़ा और अपने बच्चों को आप बुलाते हैं तो उनके मन में रहता है कि अभी ये बड़ों से हमको मिलवाएंगे तो हमारा खेलने का समय है, हमारा पढ़ाई का समय है। अर्थात उन बच्चों के उन मनोभावों को वहाँ उस लेवल पर स्वीकार नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये बच्चे आएंगे और बड़ों को प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे और वो अभिवादन बहुत प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, बहुत आनंदपूर्वक होना चाहिए, जिससे बड़ों की डिग्निटी या उनके डेजिग्नेशन को कोई धक्का नहीं लगे। मैंने बड़े सोच रहे हैं कि हमारी संवेदनाएँ तो प्रोटेक्ट रहें, लेकिन उस स्थिति में बड़ों को चाहिए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो जब हमारे मित्रों से मिलने आ रहा है तो उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, उनकी संवेदनाएं क्या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जो गेस्ट हैं वो कुछ गिफ्ट उनके लिए लेके आए हैं या कुछ फल या मिष्ठान लेके आए हैं, तो उनका मन लगेगा, जुड़ाव होगा और आप चाह रहे हैं कि वो अभिवादन भी करें और कोई पोएम भी सुनाएं और कुछ अपनी बात भी रखें, तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वो आएगा, हो सकता है कि वो आके प्रणाम करके और तेज़ी से वहाँ भाग जाए, लेकिन बड़ों को लगेगा देखो ये बड़े हैं और हमारे मित्र हैं, उन्हें कुछ एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, रुकना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था बच्चों को हमसे जहाँ से जाने के लिए। तो इस प्रकार के जो फ्लैक्चुएशन है उस पर हमें बड़ा सटीकता से अध्ययन करना होगा, उनकी संवेदनाओं को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि जब बच्चा हमारे पास आया है, बड़ों से हम जुड़ाव करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है। उसको सहजता से जुड़ने दें, उसके भाव को समझें। वो चला भी जाता है तो नाराज़गी व्यक्त नहीं करें, उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करें, उसे बलपूर्वक रोकने का भी प्रयास नहीं करें, बल्कि उसको सहजता में कन्वर्ट होने दें। और ये हो सकता है कि आपकी उस सहजता या बाल मनोविज्ञान को समझने के बाद वो बच्चा 10 या 5 मिनट के बाद में वापस आ जाए। उसको लगेगा कि अभी बड़ों के पास में बातचीत मुझे करना था और मेरी बात वहां नहीं हो पाई, मैं अपना कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सका, लेकिन अब मैं उनसे पुनः जुड़ता हूं और उस जुड़ाव के वसीभूत वो अपने आप को वहां उपस्थित भी करेगा और अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उस समय तक जान चुका होगा कि मेरे प्रति भी बड़ों की संवेदनाएं जागृत हैं और वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ना या जोड़ना चाहते हैं। जी,
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए। तो सिंपल और सहज तरीके से अगर इसको समझा जाए तो बड़े अच्छी तरह से आपने बताया कि हम अपनी मनोस्थिति को भी समझ लेंगे तो शायद बच्चों के मन को समझने में आसान होगा। कई बार अवलोकन भी करना ज़रूरी है कि बच्चों के व्यवहार कैसे हैं, वो खेलते कैसे हैं, खेलने के साथ साथ उनकी बातचीत का तरीका क्या है, इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे या फिर कभी कभी वो बात करते हैं भले ही उनकी बातों में कुछ शब्दों का कमी हो सकता है, कुछ सटीक शब्द आपको नहीं मिलेंगे, समझने में थोड़ा देर होता होगा, लेकिन भाव तो ज़रूर समझ सकते हैं। खुले प्रश्न उनसे पूछिए, सोचने समझाने की बात प्रोत्साहित करें। और सहानुभूति और स्वीकारता जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए और एक विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों पे शुरुआत में हम लोग जो है कई बार कुछ हो जाता है तो सीधे डांट डपट के उनको चुप करा देते
1: जी, जी।
0: तो शायद वो मनोस्थिति हमारी नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय हम, मुझे लगता है कि किसी पिताजी का या माँ का जो व्यवहार है शायद ये उनको नहीं सिखाया गया होगा।
1: जी जी।
0: दूसरी बात, अगर सीख भी गए होंगे तो या तो उनके पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पेशेंट है,
1: बिल्कुल,
0: या फिर पेशेंट भी नहीं होगा। कई बार होता है कि ये बच्चा है मेरी बात क्यों नहीं समझता है,
1: जी
0: ऐसा उनको लगता है। तो बच्चे को समझाने से ज़्यादा हमें उनके पास टाइम निकाल के उनको समझने के लिए टाइम देना होगा।
1: बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यही मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे मेरी बात को समझे और चला जाए।
1: जी जी।
0: लेकिन वो समझने के लिए नहीं आया, शायद आपकी हेल्प करने भी आया हो।
1: बिल्कुल, यही पक्ष होना चाहिए।
0: तो कई बार हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि हमारा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का टाइम इम्पॉर्टेंट है। टाइम को इंग्लिश में मनी कहा गया, अंग्रेजी में टाइम इज़ मनी कहा गया। अगर समय ही पैसा है तो फिर समय को सफल करो, पैसा सफल होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम इन चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो शायद टाइम को हम लोग वर्क में लगा देते हैं या वेस्ट हो जाता है, तो वो हमारा मनी भी काम में लग जाता है और या तो वेस्ट हो जाता है।
1: जी जी जी।
0: तो उसको सफल करने के लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा बियॉन्ड ओके सोचना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुनाए हैं बाल बच्चों के मनोविज्ञान पर बाल संसार इस कार्यक्रम को। आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लगता हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम आपको अपने अनुभवों को या फिर आपके अनुभवों को साझा करने में हमें हेल्प मिले। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। बाल मनोविज्ञान पर बातें हो रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे बातें हो रही हैं और अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग जब इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा अजय जी ने बड़े अच्छे पाठ्यक्रम को जो है शुरुआत किया है, बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्णय। तो इसमें एक और चैप्टर आता है जहाँ पर बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए, जिसके बारे में हमने बातें की। तो दूसरा जो इसमें भाव आता है, दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो उसमें सब टाइटल है, वो है पवित्र संवेदनाओं की गरिमा का ध्यान रखना। तो इस बात को कैसे हम लोग समझे, अजय जी बताइए।
1: बहुत अच्छी यहाँ बातचीत चल रही है और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पवित्र शब्द का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्य संवेदनाओं के प्रति तो हम जागृत रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जैसा पहला एपिसोड में हमने बातचीत भी किया कि बच्चे मन के सच्चे हैं और हम कहते हैं कि भाई ये भगवान के समकक्ष हैं और इनके जो मनोभाव हैं वो इतने पवित्र हैं कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कई बार बड़ों के निर्णय के बीच में जब बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा आप बताओ कि ये हम सारी उलझन में हैं तो आपका इसमें क्या ओवरव्यू है या क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया या क्रिया आपके मन में आती है, तो उस समय आप देखेंगे एक निष्पक्ष सुझाव उसका आएगा और वो इतना कारगर होता है कि ऐसा लगता है कि उसे अपना लिया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, एक विद्वान विदुषी बहन है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया और कहा कि अभी बच्चे को मैं बुलाती हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रणाम करो क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मैंने बच्चे को मैसेज दिया कि ये आपके गुरु नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं, तो इनको आप प्रणाम करो। अब वो बच्चा जैसे ही प्रणाम करता है और मैं उसको ब्लेसिंग देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ तो बच्चों के अंदर एक चंचलता होती है, बहुत जल्दी वो मेरे स्पर्श के पहले ही वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब यहाँ हमें समझना होगा कि ऐसी स्थिति में एक काउंसलर की भूमिका दोषारोपण की नहीं है बल्कि ये समझने की है। और मैंने माँ से, उनके बच्चे की माँ से कहा कि आप मुझे बताइए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बड़ा अपमान फील हुआ कि बहुत अच्छे से वह बच्चा नहीं मिला आपसे या मैं उसको सिखाने में असफल रही। मैंने बोला ऐसा नहीं, हम बच्चों के मनोभावों को बड़ों जैसे विश्लेषण नहीं करें, हम उनकी प्योरिटी को समझें। उस बच्चे के अंदर जो परसेप्शन का लेवल है वो इतना पवित्र है कि वो बच्चा आता है, प्रणाम करता है और वो भाग जाता है। उसको ये विश्वास है कि जब मेरी माँ के गुरु बैठे हुए हैं तो ये मेरे लिए कितने हम्बल हो सकते हैं, कितने कितना स्नेह प्यार हमको इनसे मिल सकता है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए वो बच्चा चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद में जब हमारी कुछ बातचीत हुई तो बच्चा वापस आता है और वो बड़े प्यार से मेरे पास आके बैठ जाता है। अब बच्चे की माँ को ये विश्वास हो गया कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो जो पवित्र संवेदनाएं हैं वो वापस लौटी हैं, हमने अपेक्षा नहीं की लेकिन ब्रह्मांड में हमने एक संकल्प भेजा कि बच्चा आएगा और हमसे जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम उस बच्चे के साथ में कैदी जैसा बिहेव नहीं कर सकते, उसको कुर्सी पर बिठा के बांध के बाई फोर्स नहीं कह सकते कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, ये सम्मान देना ही पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं हमारी मनस्थिति में चल रही हैं, लेकिन अगर हम पवित्र मनोभाव को देखेंगे तो बच्चे का निश्चल मन, बच्चे का निर्मल हृदय वापस ले आया। और उस पवित्र मन की विशेषता देखिए कि मैंने बड़े धीरे से कहा कि बेटा ये बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है और खेलने में कितना मन लगता है। अब बच्चे के पास में कोई मेजरमेंट टूल तो है नहीं, ये मन को कैसे बताए। हम सोच रहे हैं कि वो शायद बच्चा बोल देगा कि अभी मेरा पढ़ने में कम मन लगता है और खेलने में ज़्यादा लगता है। अब कम और ज़्यादा को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चे से मैंने कहा, बच्चे की उम्र के हिसाब से कि बच्चा 3 या 4 साल का है, उस समय मैंने कहा बेटा आप हाथ से बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है। तो आप आश्चर्य करेंगे भाई जी कि वो बच्चा छोटी सी मुट्ठी दोनों हाथों को ऐसे बंद करके बोल रहा है कि इतना सा मेरा मन पढ़ने में लगता है। अब मैंने बोला खेलने में कितना लगता है, तो वो बिल्कुल पीछे घूम गया और दोनों हाथों को पूरा वो फैलाता है और कहता है कि इतना सारा मन मेरा खेलने में लगता है, और इतना कह के वो फिर भाग गया। अब माँ ने कहा कि आप एज ए काउंसलर बच्चे की मनस्थिति को समझ गए, आपने पवित्र संवेदनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि ये छोटी सी मुट्ठी बता रहा है कि इतना मन पढ़ने का में लगता है, तो ये थोड़ा सा 50% ये हो जाए और खेलने वाला 50% कम हो जाए, तो शायद बैलेंस हो सकता है। तो हमने बाकी प्रोसेस करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हमको मिली, और बच्चे के मनोभाव को समझते हुए उन्हें को फिर अलग अलग तरीके से मदद के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं मैंने उनकी मदर को बताया, और वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया। तो कुल मिला के कहने का अर्थ कि हमें बच्चों के उस समय त्वरित क्रिया या प्रतिक्रिया को प्योरिटी के फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को और गहरा करके और समाधान के लिए छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और जिस मनोस्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार हम लोग चीज़ों को समझ के भी कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन सारी चीज़ों को ठीक से समझे जाने। और जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे ख़ास मनोस्थिति के बारे में, और इसमें जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर हम बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि हमने अभी बात की विशेष पवित्र संवेदनाओं की गरिमा को, यहाँ पर अजय सर ने बड़ा अच्छा बताया कि सम्मान और विनम्रता दोनों होनी चाहिए आपकी बातों में, साथ साथ अगर ध्यान और एकाग्रता पर आप अगर जोर देते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा, और कृतज्ञता जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप उस पवित्र भावनाओं के साथ ऐसे जुड़ जाए कि आपको हर चीज़ जो है स्पष्ट रहे और आपको आईने की तरह हर चीज़ दिखाई दे, आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आसानी से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम लोग हो सकता है कि वो चीज़ें कर पाए नहीं कर पाए
1: जी,
0: थोड़ा सा मैकेनिज्म वाली बात है, देखिए ट्रायल एंड एरर सारी ज़िंदगी चलती रहती है
1: जी जी जी,
0: लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं कंप्लीट कर दूंगा तो वो गड़बड़ है। यू शुड ऑलवेज मना हमेशा ये देखिए कि ट्रायल एंड एरर, और ये चीज़ हमेशा काम करती हैं, भले आपने सीखा हो लेकिन सीखने के साथ साथ आपको जो है हमेशा जब भी आप बच्चों के मनोस्थिति से जुड़ जाते हैं तो आपको पता नहीं कि बच्चा क्या करेगा, है ना, क्योंकि उसके स्वभाव के आधार पे कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप उसको जान ले, लेकिन कुछ जगह पे आप नहीं जान पाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे डील करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक और सवाल, एक और भावनाएं जो है हम इस चैप्टर में ले रहे हैं, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना। तो अजय जी मैं चाहूँगा कि कैसे हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं।
1: सकारात्मक दृष्टिकोण के संबंध में जो मेरा यहाँ चिंतन है वो ये है कि बच्चे के मनोभाव को हम समझ रहे हैं, लेकिन उस मनोभाव को समझने और समझाने की क्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा आती है कि थोड़े समय तक हमारा प्रयास स्नेह और प्यार को लेके होता है, हम अच्छी केयरिंग भी कर रहे हैं, नर्चरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है हमारी वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक अच्छी अपेक्षा है हमारे से कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि दबाव और तनाव क्या करता है, बच्चे को एक द्वंद में डाल देता है और वो माता पिता से जुड़ने की बजाय उनसे अलग होने का प्रयास करता है, अर्थात एकांत की ओर जाता है। ऐसे समय में हम ये परिस्थिति घटित होने दें, उसके बाद हम सकारात्मकता को फॉलो करेंगे या सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपनाएंगे, तो उस समय तक हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, इससे पहले कि बच्चे के मन में हमारे प्रति कोई दूसरे भाव पैदा हों और उस भाव के कारण वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए। उससे पहले ही हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बच्चे हैं और उस बच्चे को माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति ये गहरी आस्था है और वो ये सोचता है कि ये तीन लोग मिलके हमारी पालना करते हैं, तो वो मैक्सिमम एफर्ट करता है कि मैं बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकूँ। जैसा आपने भाई जी ने बताया कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीज़ में परफेक्शन नहीं हो सकता है, परफेक्शन के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कंप्लेंट एंड सजेशन की गुंजाइश हमेशा होती है। बड़ी से बड़ी व्यवस्था में इस बात के लिए आर्गुमेंट किया जाता है कि आप बहुत सारे अच्छे सजेशन और कहीं अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो वो दीजिए, तो वहाँ परिवर्तन करने की स्थिति ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई इंसान कर सकता है। यही वस्तु स्थिति हमारे मन में भी होना चाहिए कि बच्चे की बात जब हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रयास करें कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख के चल रहे हैं, और उस सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिफल क्या है कि अपने बच्चे की अच्छाइयों, विशेषताओं, गुणों, उस बच्चे का जो इनर पावर है, साहस है, इनिशिएटिव पावर है, कुछ अच्छी बातें जो आपके मन में अपने बच्चे को लेकर गर्व पैदा करती हैं, गौरव पैदा करती हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में बच्चे के इस गुण के कारण बड़ी मदद मिलेगी, तो उसको हम प्रमोट करेंगे और उसके साथ में बहुत सारी क्वालिटी या बहुत सारी विशेषताएँ धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी, तो बच्चों के अंदर एक उत्साह होगा, उमंग होगा, और उसे लगेगा कि बड़ों के सामने हमारी केवल यहाँ प्रेजिंग नहीं हो रही है बल्कि कुछ अच्छी चीज़ों को शेयर किया जा रहा है ताकि इसको और बच्चे को अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो हमारा उद्देश्य किसी अच्छाई को बताने के पीछे ये है कि उसमें हम अभिवृद्धि करें और उसको प्रमोट करें और सकारात्मकता को अंत तक बनाए रखें, जिससे कि बच्चे का मनोबल किसी भी स्थिति में अगर कहीं टूट रहा हो तो उसे हम संभाल सकें, संवार सकें और एक नई दिशा दे सकें। जी
0: अजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो बातें हम लोग कर रहे हैं पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा पाठ्यक्रम को ले रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही है हमारी है हम दोनों की कि आपको अपने लाइफ के साथ जो रियलिटी है उसके साथ जुड़े और उसमें और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी के बजाय बच्चों को हम लोग उसकी क्रिएटिविटी समाप्त कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आपके शब्दों में बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए। जिस तरह से आप सम्मान चाहते हैं वैसा बच्चा भी सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान से उसकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो आपको उतना ही सम्मान से देख रहा है। बालक आपको एक पिता समान, माँ समान, बड़े के रूप में आपको देख रहा है, तो उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है वो भाव से अगर बच्चे को देखना शुरू करेंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएगी। कई बार हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में उन चीज़ों का कहीं मायने बना ऐसा कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेते कि हम बच्चों के साथ कैसे बात करें, है ना। हम सोचते हैं कि मेरा लड़का है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर बोलने का, वो सोचते हैं, तो वहाँ सारा जो है खेल बिगड़ जाता है। तो रियलिटी को ज्ञान जो है दूसरों के लिए नहीं अपने लिए होता है, तो स्वदर्शन से परमात्मा दर्शन होगा। ज्ञान को अपनाए नहीं किया है वो फिर आप ज्ञान सुनने सुनाने तक रहेंगे लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंट जीरो है, तो उसका यूज़ भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज्ञान खुद के लिए उपयोग में लाए और अपने जीवन को बेहतर बनाए, अपनी भावनाओं को समझे, अपनी भावनाओं को ठीक करे, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं।

उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू।

0: मधुवन खुशबू देता है, मधुवन खुशबू देता है।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: पता है शिक्षा, मैंने ना एक बहुत पहले तोता पाला था और फिर बहुत केयर भी करती थी इसकी, मुझे बहुत पसंद था। तो क्या आपने भी कोई पेट्स पाले?
4: यस।
3: क्या पाला था?
4: मैंने एक रैबिट पाला था।
3: हाँ, आपको पसंद था वो?
4: बहुत पसंद।
5: अरे अरे, क्या बात हो रही है भाई, क्या पसंद है बहुत? और किसको पसंद है?
3: हमें हमारे पेट्स बहुत पसंद है।
4: यस।
5: वाह, क्या बात है। तो अमन भी यहाँ पे है, शिक्षा भी यहाँ पे है, भाई बाकी दो लोग नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? अच्छा अच्छा, तुम लोग भी यही हो, तो आपको भी पेट्स पसंद है?
6: हाँ दीदी।
5: तो चलो आज हम पेट्स के बारे में ही बात करते हैं।
3: फेवरेट
5: वाले
3: एनिमल्स।
5: ओके, ठीक है रोशन।
6: और दीदी एनिमल के बारे में भी तो बता सकते हैं, अपना फेवरेट एनिमल?
3: हाँ।
7: हाउ इट पेट्स हुआ?
6: अरे पेट्स सिर्फ जो पालते हैं।
5: हाँ, ये भी सही बात है, फेवरेट अलग भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं कि पेट ही फेवरेट हो। अच्छा, आज कौन कौन बात करने वाले अपने बारे में तो बता दो।
3: मेरा नाम है अमन और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम है शिक्षा, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ।
6: और मेरा नाम है आयुष, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
8: और मेरा नाम है रोशन और मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
5: हाँ, और मेरा नाम आरुषि है, मैं काम करती हूँ आज शिक्षा के साथ, क्लास 4th में पढ़ती हूँ। है ना शिक्षा, सब लोग बड़े बड़े हो गए, मैं आपकी क्लास में आ जाती हूँ, ठीक है? ओके।
4: यस।
5: हाँ, आप शिक्षा ने बुला लिया तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा बच्चों, आप लोग अपने फेवरेट पेट के बारे में बता रहे थे, लेकिन फेवरेट एनिमल कौन सा है, अगर पेट छोड़ दिया जाए?
3: मैं बताऊं दी पहले?
5: हाँ, सब लोग अपना एक एक फेवरेट।

0: बताना। हाँ,
1: मुझे सबसे ज्यादा ना बहुत ज्यादा पसंद है लायन।
0: लायन पसंद है अमन को। और शिक्षा को?
2: डॉग।
0: शिक्षा को डॉग पसंद है, ओके। और कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है ना फेवरेट।
3: मुझे तो टाइगर पसंद है।
0: ओके।
4: और मुझे तो पैंडा पसंद है।
3: और वैसे रोशन, ये जो पैंडा होता है ये खाता क्या है?
1: मैं बताऊं, बैम्बू, उसका फेवरेट होता है।
3: बिल्कुल सही जवाब।
4: अच्छा।
3: अरे आपके फेवरेट के बारे में आपको नहीं पता? रहा
4: ज्यादा नहीं पता,
0: बस देखने में अच्छा क्यूट लगता है।
1: हाँ,
3: बहुत क्यूट। मैंने इसकी वीडियो देखी है।
0: अच्छा शिक्षा, आपको डॉग क्यों पसंद है? आपको क्यों अच्छा लगता है डॉग?
2: क्योंकि डॉग बात भी मानते हैं, और है ना, ज्यादा उनके साथ खेलो तो भी वो अपने साथ खेलते हैं और बात मानते हैं सबकी।
0: अच्छा। हाँ। आपकी भी बात मानते?
2: पहले हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे दो डॉगी थे, तो वो एक डॉगी था वो मेरे को बहुत पसंद था, उसको भी मैं पसंद थी। वो डॉगी भी जब भी मैं कहीं पर भी जाती थी वो बाहर जाने के लिए ऐसे वो बाहर जाने के लिए ना करता था मेरे से।
0: अच्छा। और वो आपको ऐसे काटने के लिए तो नहीं भागता था?
2: नहीं
0: नहीं, दोस्ती हो गई थी आपकी?
2: हाँ।
0: वाह।
2: जब वो छोटे में जब उसे बुआ लेके आई थी तभी से उसको बहुत खिलाया था।
0: क्या नाम था उसका?
2: उसका कैंडी था।
3: बड़ा क्यूट नाम है।
2: और एक और था डॉगी, उसका नाम मिलन था, कैंडी मिलन।
1: कैंडी मिलन।
0: तो आपका फेवरेट कौन था, कैंडी की मिलन?
2: दोनों।
0: चलो ठीक है। अच्छा आपको अमन, आपको क्यों पसंद है लायन?
1: एक्चुअली वो बहुत डरावने तो होते हैं लेकिन मुझे वो बहुत क्यूट से लगते हैं। पता नहीं किसी को क्यों क्यूट नहीं लगते लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं उनको।
0: वो क्यूट लगते हैं,
1: बड़े होते हैं, और अगर हम बचपन से शायद उन्हें पाले तो हम उनको अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं, शायद वो हमें ना खाएं।
3: हाँ बचपन से पालेंगे तो ठीक है लेकिन
0: शायद वो हमें ना खाए।
3: और अगर जंगल में मिल गया,
1: अगर खा भी लिया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी।
3: वाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। तालियां बजा दो भाई इसके लिए। देखो दीदी कुछ भी नहीं होगा, खून निकलेगा, मर जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और क्या है, अजीब है।
4: अगले जन्म में वापस लाइन को।
1: हाँ, अगले जन्म में दोबारा मिल जाएगा।
0: ओके। अच्छा मतलब कोई
1: और उसके जो बड़े बड़े बाल होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कभी उसको टच नहीं किया ना कभी इतने पास से नहीं देखा, बहुत दूर से देखा था।
0: अच्छा,
1: लेकिन मुझे बहुत पसंद है।
0: ओके चलो, अमन को लायन बहुत क्यूट लगता है। ओके आयुष, आपको क्या पसंद है और क्यों? उन्हें आपको ने तो बताया आपको टाइगर पसंद। हाँ। है क्यों पसंद है?
3: दीदी वो बहुत ही तेज दौड़ता है, एकदम बहुत ही अच्छा होता है, उसकी शेप बहुत अच्छी होती है और
0: स्ट्राइप्स।
3: हाँ। और बहुत ही ताकतवर भी होता है वो। मैंने उसकी पता मसल्स भी देखी एक फोटो में।
0: वो इसलिए ताकतवर होता है इसलिए अच्छा लगता है आपको?
3: हाँ, तेज दौड़ता है, अच्छा दिखता है, ताकतवर होता है इसलिए।
1: दीदी टाइगर तेज दौड़ते हैं?
3: बहुत तेज।
1: टाइगर
4: चीता।
3: तो चीता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टाइगर ही तो कहते हैं।
1: नहीं।
3: हाँ?
1: हाँ।
3: तो मतलब
1: टाइगर
0: तो आपको चीता पसंद है?
3: हाँ चीता पसंद है। टाइगर को क्या बोलते हैं दीदी बताना हिंदी?
4: टाइगर को टाइगर ही कहते
1: हैं।
3: नहीं, टाइगर एक इंग्लिश वर्ड है।
0: ओके तो हम ये मान सकते हैं कि आयुष को टाइगर चीता मतलब जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है और तेज दौड़ते हैं वो पसंद है।
1: हाँ।
0: ओके।
3: हाँ।
1: तरुण
0: ठीक है। और अब रोशन है, तो रोशन आपको क्यों पसंद है? पांडा।
4: पांडा तो बहुत क्यूट है दीदी। मेरे को तो पहले से इच्छा था कि वो एक छोटा वाला पांडा रखूं घर पे, पर इलीगल था इसीलिए मना कर दिया।
0: अच्छा तो आपको क्यों अच्छा लगता था, कब आपने पहली बार देखा है?
4: मैंने तो पहली बार वीडियो में देखा था, उसके बाद मैंने जू में देखा। मैंने पहले उसको एक वीडियो पे देखा, उसके बाद एक जू में देखा। जू में तो बहुत क्यूट था इसीलिए मेरे को पसंद है।
0: क्यों? तो आपने उसे दोस्ती की हाय हेलो किया उसको?
4: हाँ,
0: जूम में।
4: हाँ, पर वो मेरे को ऐसे घूर रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था वो मेरे बारे में।
0: प्यार से घूर रहा था।
4: हाँ, प्यार से।
0: प्यार से
3: दीदी वैसे होते,
0: यानी वो बोल रहा होगा रोशन मेरे दोस्त।
3: होते तो सच में बहुत क्यूट है, मैंने वीडियोस देखी है। उसमें बताया जैसे बच्चे को जैसे पालते हैं ना वैसे उनको उनका ख्याल रखते हैं। देखो जो पालने वाले होते हैं उनको उनके कलर की जैकेट पहन के रखते हैं, और फिर एक बच्चे को उठा के कहीं पे ले जाते हैं, और फिर जब दूसरे बच्चे को ला रहे होते हैं ना तो वो वहां से भाग जाता है, फिर उसको भी ऐसे उठा के लाते हैं। इतना मजा आता है देखने में वीडियोस में।
0: ओके और शिक्षा, आपको डॉग्स तो आपको बहुत पसंद है ना, तो आप उनसे दोस्ती कैसे करते हो? आप क्या आप करते हो जैसे जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, उनसे तो हम बात कर सकते हैं ना, तो आप डॉग्स से कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे बात करते हो?
2: डॉग जब छुट्टे में आता है ना, जब उसे लेके आते हैं मार्केट से, तब है ना वो छोटा ही छोटा हो तब से ही उसको अपन है ना अच्छे से रखें, प्यार से रखें, तो वो थोड़ा थोड़ा अपन को समझता है.
0: अच्छा,
2: तो अपन कुछ बोले जैसे कि हम बोलेंगे चलो डॉग अपन बाहर चलते हैं, तो वो थोड़ा समझेगा. से अगर समझ नहीं आए तो भी चलेगा.
0: तो आप कितने बड़े थे जब आपने पहली बार आपके डॉग से आप मिले?
2: तब मैं 5 साल की थी.
0: 5 ईयर्स के थे?
2: हाँ.
0: ओ, तो तब आपको उससे डर नहीं लगा था? बिल्कुल
2: नहीं.
0: बिल्कुल नहीं. तो आप प्यार से क्या बात करते थे, उसको क्या बोलते थे आप?
2: वो कैंडी था ना, तो उसको मैं ना चॉकलेट बोलते थे, क्योंकि कैंडी एक चॉकलेट ही होती है.
0: ओके. तो वो आपकी बात सुनता था?
2: छोटा था तब इतना नहीं सुनता था, जब थोड़ा बड़ा हुआ था तब सुनने लगा था. पर उसने ना छोटे में काटा कभी, ना बड़े में काटा.
0: अच्छा, मतलब वो आपकी बहुत केयर करता है ना, है ना? तो आपकी क्या बातें सुनता है, क्या बोलते हो आप उसको जो सुन लेता है?
2: अगर उससे बोलो कि कैंडी खाना खाओ तो खाना खाएगा, जिस चीज की बोली वो करेगा, हर एक बात करेगा, बुआ जो बोले वो करेगा. पर मेरी दीदी है वो उससे बहुत डरती थी, तो वो है ना कैंडी उनके पीछे पड़ जाता था, तो उसे बोलना पड़ता था कैंडी इधर आओ, तब वो उनका पीछा छोड़ जाता.
0: अच्छा, मतलब शिक्षा की बात मान लेता है वो.
2: और बुआ की बात मानता था.
0: ओह, मतलब एनिमल्स को प्यार करें तो बात सुनते हैं. ओके. और अमन, आप लाइन को प्यार करोगे तो आपके पास सुन लेगा?
1: हाँ,
0: ऐसा लगता है आपको?
3: लेकिन अगर वो भूखा होगा तो?
1: तो कोई बात नहीं, मैं उसे कुछ और खिला दूंगी, जरूरी थोड़ी ना मुझे खाए.
3: तेरे पास खाने के लिए कुछ होगा?
2: को आप है ना पालोगी, तो छोटे से ही अगर आपने उसको वेजिटेबल खाने खिलाया तो वो बड़े होके भी?
1: ऐसा नहीं हो सकता, लॉयन वेजिटेबल नहीं खाते, वेजिटेरियन नहीं होते.
2: अगर छोटे से किसी को?
0: ओके, कोई बात.
1: लॉयन के मतलब जैसे उनके मॉम डैड होते हैं, वो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं.
0: बहुत सारे एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, बहुत सारे हर्बीवोरस होते हैं. लेकिन जैसे शिक्षा, आपने कुछ वीडियो देखा है क्या ऐसा कभी, क्योंकि लॉयन को वेजिटेबल खिलाते हुए? क्योंकि मुझे लगता है मैंने एक वीडियो देखा था, हो सकता है शिक्षा इसलिए बोल रहे हो.
2: मैंने देखा था एक, वो एक बार मैंने एक वीडियो आई थी ना टीवी पे, कई बार आती है लाइन वगैरह की, तो उसमें आया था. उसने एक बच्चा था, उसने छोटे से ही उसको लाइन पसंद था, जैसे अमन दीदी को पसंद है.
0: मतलब अमन की तरह और भी लोग हैं.
2: हाँ, तो उन्हें भी लाइन पसंद था, तो उसने एक लाइन का बच्चा उठा लिया था जंगल में, तो उसने जंगल में से उठाया था, तब से ही वो छोटे से ही उसको जबरदस्ती वेजिटेबल ही खाना देता था. उसको वैसा खाना बिल्कुल नहीं देता था, तो उसने छोटे से ही फिर वैसा खाना सीखा.
0: ये ऐसा
1: हो सकता,
0: ऐसा एक्चुअली बात जो आप बोल रहे हो. और वैसे भी जो आप लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं ना बेटा, बहुत बड़ा एग्जेम्पशन है. हाँ, कुछ लोग हैं दुनिया में, बहुत मुश्किल होता है.
1: कोई बात नहीं, मैं उसके लिए प्यारा सा बाड़ा बना दूंगा. बहुत घूमेगा.
0: हाँ, आप उनको देख सकते हो टेलीविजन में, डिस्कवरी में, है ना?
3: पर वो इलीगल है बता.
1: हाँ, उसको पालना इलीगल है, पर कोई बात नहीं.
0: पर जो लोग लाइन के, अब सोचो, ध्यान रखते हैं उनका जंगल्स में या सफारीज में, जो लोग ध्यान रखते हैं, तो उनका अंदर से तो अगर वो प्यार नहीं होगा, जैसे शिक्षा ने भी बोला, एनिमल्स के लिए, या डर होगा,
1: तो वो डर को सेंस कर लेते हैं.
0: आपको ऐसा लगता है?
1: इन लोग के अंदर तो डर होगा ही.
0: टाइगर से दोस्ती कैसे करोगे आप? चीता से दोस्ती कैसे करोगे बताओ?
3: देखना, व्यक्ति है वो ना, डेली उसकी कार है, स्पेशल तरीके की कार है, उसके जाली लगी हुई है, वो डेली जाता है और वहाँ पे टाइगर्स को खाना दे के आता है, और वो उसको कुछ भी नहीं कहता है.
1: चीता
3: क्योंकि उनको
0: क्यों नहीं कहते?
3: क्योंकि उसको पता है, उनको पता है ये अच्छा इंसान है, मैं खाना देता है, तो वो उसको क्यों मारेंगे, इसलिए
1: नहीं. अच्छा, जी कभी कभी हम जब खाना भी देते हैं ना, अगर वो जंगली है तो हम पे अटैक कर सकते.
3: नहीं, हम डेली दे रहे हैं उसको, वो ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल
1: फर्स्ट टाइम दिया होगा तो शायद,
3: तो उसको दिख रहा होगा ना खाना दे रहा है, वो ट्रिक होती है, ऐसी कोई बात
1: हाँ,
3: नहीं.
1: शायद किसी और वैसे भी होती है.
2: वो जैसे कि खाना दे रहे होते हैं, वो खाना छोड़ के उसी के पीछे पड़ जाते हैं.
1: हाँ, ऐसा होता है.
0: मुझे लगता है हमें ना उन लोगों के इंटरव्यू सुनने चाहिए जो लॉयन को, चीता है, इन लोगों को खाना देते हैं ना, तो उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस क्या था, उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा.
1: हाँ,
0: है ना?
1: वो तो है. लेकिन बचपन से अगर किसी जानवर को पाले ना, तो सच में वो हमारी फीलिंग्स को सेंस कर सकता है.
0: अच्छा,
1: हम अगर उससे नहीं डरेंगे तो.
3: टाइगर अच्छा, की तो मैंने बहुत वीडियोस देखी है, वो मतलब इतने प्यार से उसको रखते हैं, इतना बड़ा टाइगर होता है, और वो उसको एकदम ऐसे चाटता है.
1: हाँ, लॉयन भी ऐसे होते हैं.
0: और पांडा से दोस्ती कैसे होगी फिर रोशन की? अब बाकी तो चलो, हमने लायन चीता से दोस्ती कर ली.
4: पांडा से तो फिर हम बचपन में उसको पालना पड़ेगा. और पता है वो पांडा के बच्चे होते हैं ना, इतने क्यूट होते हैं, उनकी मम्मी उसको उठा के गोद में रखते हैं, मतलब उनके पीठ में जो भी चिपका होता है उसको निकालता है, और छोटे बच्चे को उसको दर्द होता है तो भागने के लिए ट्राई करता है, वो भाग नहीं पाता, मम्मी पकड़ लेती है,
0: मम्मी पकड़ लेती है, वो तो मुझे लगता है सबकी मम्मी पकड़ लेती है
1: सबकी मम्मी अपने बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव होती है।
0: हाँ।
3: और वो तो दीदी हार्मफुल भी नहीं, मतलब हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे किसी तरीके, वो तो वेजिटेरियन होते हैं,
1: लेकिन वो अटैक कर सकते हैं,
3: अटैक नहीं करते पांडा, नहीं करते,
1: लेकिन दीदी हम मार तो सकते हैं ना, नहीं खाएंगे तो भी
3: क्या
0: मार सकते हैं,
1: मतलब मारेंगे नहीं, मतलब हम पे अटैक नहीं कर सकते, अगर उनके बच्चों को हम कुछ करे तो,
0: बच्चों को कुछ करे तो
1: एग्रेसिव हो जाएंगे,
0: कोई भी मम्मी पापा बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो उनका तो अच्छा नहीं लगेगा ना,
4: वो क्यों करेंगे,
3: वही तो।
0: अच्छा कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके घर पे हैं और आपकी उनसे दोस्ती हो गई, वो बर्ड्स भी हो सकते हैं,
1: पैरट,
0: वो कोई भी हो सकते हैं, कैट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता
3: है। मेरे चाचा के घर पे दो एनिमल्स हैं, एक तो पैरट और एक डॉग।
0: अच्छा तो आपकी किससे दोस्ती है, पैरट से कि डॉग से?
3: देखो डॉग से भी पैरट से भी है, पैरट को तो खाना खिलाता हूँ मैं, डालता हूँ जाली से, वो आ जाता है और उंगली करता हूँ तो वो उंगली को खाने की कोशिश करता है, और वैसे किच किच करता है पर कुछ नहीं होता उंगली को, और जो घोड़े वाला है ना वो थोड़ा बड़ा हो गया, वो एकदम से बहुत तेज मारता है वो तो डंग, और जो हमारा सैंडी है डॉगी, उसका नाम सैंडी है, वो बहुत ही क्यूट है।
0: ओके और आपको क्या, कौन से? रोशन
4: दीदी हम एक बार एक बीच पे गए थे, उसके नाम था रैबिट बीच।
0: ओके
4: वो एक छोटा सा बीच जैसा है जिसके अंदर बहुत सारे रैबिट रखे हैं, वो अपने आप रखे हुए, कोई भी उसको ले जा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है।
3: अच्छा
4: हाँ नहीं ले तो नहीं जा सकते हैं पर हम तो लेके आ गए थे। क्या हुआ था हम वहाँ, हाँ तो हम एक बार गाड़ी में गए थे, वहाँ बहुत सारे रैबिट थे, हम देखे थे, उसमें एक रैबिट था वो था ग्रे कलर का रैबिट।
0: ओके
4: वो क्या क्या, जैसे ही मैं कार से उतरा मेरे पैर के पास आया और खड़ा हो गया, हाथ ऊपर करके मेरे को उठा लो, बहुत छोटा, बहुत छोटा था तो मैंने उसको उठा लिया, मैंने मतलब गाड़ी में ही था, मैं उसको उठा के उसको सहला रहा था, तो मम्मी को पूछा, मम्मी इसको ले चलते, बोला ठीक है तो मैं लेके आ गया था।
0: तो उसका नाम क्या रखा फिर?
4: मोबी।
1: मोबी
4: अभी भी है?
0: अभी भी है। मोबी के साथ खेलते हो आप?
4: मेरे घर पे
0: लगता है आयुष को नई इन्फॉर्मेशन मिली आज अब आयुष ओके अच्छा अब मैं ये पूछ रही थी आप लोगों से, अच्छा आप लोगों का पूछना है, शिक्षा का और आपका बाकी था ना, कौन से ऐसे पेट्स हैं जिनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, जो आपकी जिनसे आप मिले हो? डॉग के अलावा कुछ और ऐसा है क्या?
2: ऐसे कई पेट हैं जिनसे हम मिले हैं। अच्छा? और हमारे घर पे वो रहे हैं, फिर पर ये हो जाता है कि उनको छोड़ के भी आना पड़ता है, कभी कभी उनका उनकी तबीयत सी बिगड़ रही होती है तो कई बार उन्हें छोड़ के आना पड़ता है।
0: अच्छा
2: तो हमारे घर पे पैरेट भी आया था, एक बार रैबिट आया था, रैबिट के साथ भी बहुत खेला था हमने।
0: अच्छा
2: और एक बार कैट,
0: कैट से भी दोस्ती कर ली थी आपने?
2: हाँ पर वो तो हमारे मामी के घर पे थी तो बस उसके साथ हम है ना छुट्टियों में एक महीने रहे थे मामी के यहाँ, वो एक महीने तक ही वहाँ पे रही थी, उसकी हालत बिगड़ रही थी तो उसको छोड़ के आना पड़ा। ऐसे कई पेट हैं जो हमारे घर पे बहुत बार रहे हैं पर उनकी पता नहीं क्यों हालत बिगड़ती रहती है।
0: क्योंकि बेटा वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होते ना,
1: इसलिए
0: है ना, और बहुत सी चीजें उन्हें हो भी जाती है, जैसे ह्यूमंस को भी तो बीमारियां होती है ना।
1: हाँ
0: आप उनको मिस करते हो? बहुत मिस करते हो?
2: सबसे ज्यादा तो कैंडी और मिलन को
0: मिस करते
2: क्योंकि वो तो अभी भी वहाँ पे होंगे।
0: तो आपको याद आती है, उनसे मिलने का मन करता है?
2: कई बार हम गए हैं वहाँ पे, उसी घर से गुजरते, पहले रहते थे वहाँ पे, अब नहीं रहते।
0: अच्छा
2: तो वो वहाँ पे हमें शटर पे हमेशा दिखते है।
0: तो आप उनको हेलो करके आते हो?
2: अब कैसे याद रखेंगे, अब पता भी नहीं है उन्हें हम याद है भी कि नहीं। हम तो है ना बहुत पहले से ही है ना, कम से कम हमें तो है ना उनसे मिले 3-4 साल हो गए होंगे।
0: कोई बात नहीं, अब दूर से हेलो कर दिया करो उनको, है ना।
2: कई बार है ना गए हैं तो उनने काटा तो अभी नहीं, वो काटते वैसे कम है, कोई कोई लोग ज्यादा ही उनपे उनको कुछ करे, जैसे कि उनकी पूंछ वगैरह कुछ खींची, परेशान किया तो वो काट सकते हैं, वैसे कोई उनसे कुछ ना करे तो वो बिल्कुल नहीं काटते।
0: तो कितने अच्छे डॉग्स हैं कैंडी और मिलन दोनों।
4: नहीं याद रखते हैं डॉग्स।
0: अमन, हाँ अमन बहुत देर से इंतजार कर रही है बोलने के लिए। हाँ।
1: मैंने पेट्स पाले हैं बचपन से, मतलब बहुत बचपन से भी नहीं, छोटे, थोड़े से छोटे, और मेरी एक नानी का पैरट था, उससे पहले मेरी मम्मा ने भी बहुत पैरट पाले अपने बचपन में, मैंने भी पाले हैं।
0: आपकी दोस्ती किससे हुई बताओ?
1: पैरट से। हम पता दी, हम ना जब भी किसी नए पैरट को लाते हैं, जब भी मतलब बहुत कम लाते हैं, फिर भी एक बार लाए, वो पहला पैरट था हमारी इतनी बात मानता था दी, हम उसको खुला छोड़ते थे, खुला मतलब उसको हाथ से पकड़े पहले प्यार करते थे, बहुत प्यार करने की उसको आदत डाल दी। वो खुला घूमता था, खुला चलता था, हमने उसके नहाने के लिए बताया एक जैसे एक बहुत बड़ा सा वो होता है जिसमें हम जैसे छोटा सा होता है एक टब टाइप का जिसमें हम सब्जियां वब्जियाँ ऐसे धोते हैं, उसे पानी भर देते थे, ऐसे थोड़ा फ्लैट होता है, थोड़ा सा डीप होता है, तो उसमें वो नहाता भी था। और फिर मैं हम पिंजरा बगल में रख देते थे और नहा धो के जब गर्मियों का मौसम था ना उसके ऊपर जाके बैठ जाता था, फिर छिड़कता था ऐसे करके पानी।
0: अच्छा बच्चों, आप लोग कभी, आपको ऐसा लगता है कि एनिमल्स को अगर पेन हो रहा है, वो तो हमारी भाषा में बात नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते ना,
3: नहीं।
0: तो क्या हम उनका पेन, हमें पता चलता है कि क्या वो पेन में है, क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा है, पता चलता है
1: उनके एक्शन से?
3: हाँ बिल्कुल दीदी, पालते हैं ना तो पता चल जाता है। देखो अब हम क्या,
0: अगर आप पेट कर रहे हो या आप नहीं भी कर रहे हो, मान लो रस्ते पे देखते हो एनिमल्स को, तो आपको कभी लगता है कि उनका पेन
1: रस्ते पे तो नहीं, बट जो हम घर में पालते हैं ना उनका पता चलता है, जैसे
4: उनके रिएक्शन से पता।
1: हाँ, उनके
0: पता चलता है रोशन,
4: जैसे कि एक बार हमने क्या किया, मतलब उसको एक बार हमने केज में रखा, रात में, नहीं तो घूमते रहता, सोता नहीं है, इसलिए हमने रात को उसको केज में रख देते, वो अंदर सो जाता है। और एक दिन तो वो सुबह तक मतलब जगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, मतलब वहीं बैठा है, अगर तुमने केज खोल भी दिया वो बाहर नहीं आ रहा, बाकी समय बाहर आता है, कूदता है, बेड पे कूदता है, तो वो कुछ भी एनर्जी नहीं, वैसे ही पड़ा था, तो हमको कुछ लगा तो हम डॉक्टर के पास लेके।
0: और शिक्षा, आपको पता चलता है एनिमल्स का पेन?
2: एक बार हमारे घर पे पैरट था तो वो रात भर सोता रहा और सुबह देखा, सुबह भी सोता रहा, अब पता नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, उसे उठाया तो उसने थोड़ी आँख खोली थी, पर वो उठा नहीं, लेटा रहा बिल्कुल, फिर उसे लेके जाना पड़ा वहाँ पे, हमारे घर के है ना थोड़े दूर होगा एक डॉक्टर अंकल रहते हैं, उनको दिखाया था, उनने कुछ है ना दवाई वगैरह कुछ दी थी उसको, एक इंजेक्शन लगा था, पर वो सही हुआ था, फिर उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि क्या पता फिर हालत बिगड़ती उसकी।
0: तो डॉक्टर अंकल के अकॉर्डिंग करना पड़ा। हाँ आयुष।
3: हाँ दीदी, हमारे यहाँ पे भी ना अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक साल पहले की, एक डॉग था वो बहुत चिल्ला रहा था, तो वो ना एक नदी टाइप थी, नहीं मतलब एक नाला टाइप है बहुत बड़ा था, उसके अंदर वो डॉग फंसा हुआ था, तो पूरे दिन ऐसे चिल्ला रहा था, मैं गया, फिर मैंने भैया को कहा, मैंने कहा निकालते हैं ना, बोले हाँ ठीक है, तो हम तीन चार लोग गए और बड़ी मुश्किल से उसको फिर अंदर गए, निकाला, हाथ दिया, हम पहले तो उसे लकड़ी दे रहे थे पकड़े बाहर आए, लेकिन नहीं, फिर एक भैया थे वो अंदर ही चले गए और उसको एकदम उठा के लेके आए।
0: मतलब उनकी आवाज से, रिएक्शन से ऐसे
1: पता चलता है।
3: एक बार रात को हमारा सैंडी सो रहा था तो वो अजीब तरीके की हरकतें कर रहा था, पता नहीं, तो हमें कुछ लगा, उठे, लाइट जलाई तो देखा मकोड़े आ गए थे उसके इस पे बहुत सारे, तो फिर हमने एक एक मकोड़े को हटाया, मारा, फिर साफ करा और फिर उसको बिठाया, तो बहुत चैन की नींद सोया और फिर सुबह को लेट उठा।
0: नींद पूरी नहीं हुई थी ना उसकी। ओके अच्छा बच्चों, अब मुझे लास्ट में आप लोग एक बात और बताओ कि आप लोग अगर बड़े हो चौके तो कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ, सब लोग अलग अलग चीजें बनोगे ना आप लोग। आप लोग एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहोगे?
1: हाँ,
0: क्या?
1: मैंने बचपन से, मतलब मेरा कुछ बनने का इतना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में इतना ज्यादा, साइंस में है बट ये नहीं कि इंजीनियर बन जाओ या
0: फिर बात नहीं। आप एनिमल के लिए क्या करना चाहोगे?
1: तो एनिमल्स के लिए ना मैंने सोचा था कि मैं बड़ी होके जैसे जहाँ वो केयर करते हैं ना जो लोग एनिमल्स की, वो वैसे ही केयर करूंगी एनिमल्स की, और जैसे बड़ी हो जाऊंगी तो फिर इधर उधर जैसे जो भी एनिमल्स पकड़ के अपने घर में रखते हैं, मतलब घर पे जब रखते हैं ना उनकी सही से केयर नहीं कर पाते हम लोग उन्हें, मतलब अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं और वो वैसे रह नहीं पाते, तो सबसे ज्यादा ऐसा पैरट्स के साथ होता है जैसे घर पे रहते हैं ना।
0: तो आप क्या करोगे फिर?
1: तो मैं ऐसा कुछ करूंगी ऐसे
0: उनके राइट्स के लिए।
1: हाँ, सरकार को भी बोल सकती हूँ ऐसा कुछ की एनिमल्स पैरट्स को या फिर ऐसे कोई बर्ड्स को ना पाले।
0: हाँ, मतलब आप उनके राइट्स के लिए कुछ करना चाहोगे?
1: पाल करना, उनको बहुत बुरा ट्रीट करते हैं उनके साथ,
0: पालना नहीं चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना
1: चाहिए, वो अच्छा नहीं होता उनके लिए।
0: ओके, तो आप बिल्कुल इनके राइट्स के लिए आवाज उठा सकते हो।
1: और मैं
0: और ये बात आप ध्यान रखोगे?
1: हाँ,
0: ओके नहीं तो हम अमन को उसके बाद क्या सुना देंगे बच्चों की दुनिया
3: ऐसे तो दीदी सरकार भी करती है इसके लिए जैसे कोई
0: लेकिन आप क्या करना चाहोगे
3: प्रजाति होती है अच्छा मैं दीदी ऐसे तो सच्ची बताऊं तो मैंने कुछ कभी ऐसा सोचा नहीं
0: ठीक है कोई बात नहीं आप सोच लेना इस एपिसोड के बाद
3: ठीक है
0: हाँ रोशन
4: मैं बड़ा बनू बड़ा होके पैसे कमाऊंगा और मैंने सोचा कि उसके लिए कोई सेंचुरी खोल सकते
1: हैं
4: बर्ड सेंचुरी से
0: ओके ठीक है और शिक्षा आप कुछ करोगे एनिमल्स के लिए क्या करोगे
2: मैं एनिमल्स के लिए जितने भी एनिमल्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं बड़ा सा एक है ना जैसे जू में रहता है वैसे ही मैं भी कुछ बनाऊंगी जिसमें है ना सारे एनिमल्स एक साथ रहें और कोई एनिमल्स किसी को कुछ करे ना जैसे कि डॉग एक साथ रहेंगे
0: अच्छा।
2: और वो एक पूरे से रूम ही होगा उनका अलग उसमें सब सारे पेट्स एक साथ रहेंगे
0: अच्छा मतलब डॉग्स सब एक साथ
2: कैट्स
0: रहेंगे
2: हाँ।
0: कैट्स अलग रहेंगे
2: सारे एनिमल
0: फिर आप उनकी केयर करोगे पर उनको तो डॉक्टर भी चाहिए होगा फिर
2: हाँ। पर उन वो एक साथ रहेंगे जैसे कि वो होता नहीं है जैसे कि जू वगैरह में होता है वैसे ही उनके लिए कुछ
0: अच्छा जहाँ पे मतलब वो लोग अपने हिसाब से रह सके
2: हाँ।
0: ओके मतलब जहाँ पे उनको हैप्पी लगे ना
2: जहाँ पे उन्हें अच्छा लगे अच्छे से रहें वैसे ही कुछ
0: जहाँ पे वो लोग को खुश हो है ना नहीं तो हाँ। उनको बंद करके रखते हैं तो वो लोग आपको लगता है हैप्पी रहते
2: हैं उनको अच्छा नहीं लगता उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो फिर अलग रहेंगे अपने आप से
0: मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ रहें
2: और अकेले में वो रहते हैं उन्हें ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता तो उनकी तबीयत वगैरह भी बिगड़ती है और वो जब अपनी पूरी फैमिली के साथ रहेंगे तो वो उन सबको कितना अच्छा लगेगा
0: ओके आप लोगों को पता है जैसे अब मैं छोटी सी बात बताती हूँ ये बहुत अच्छी बात है आप लोग करना चाहते हो जैसे आप रेडियो के कांच के बाहर देखते हो
4: गिल्लू
0: हाँ वहाँ पे हमेशा मुझे लगता है आप लोगों के वेदांत भैया रोज कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए खाने के लिए दाना पानी रखते हैं ताकि और पता है आपको रोज वो खत्म भी हो जाता है शाम तक वहाँ कितनी सारी बर्ड्स आती हैं
1: हाँ,
0: तो पानी मिलता है खाना मिलता है ना और उनको देख के हमें क्या मिलता है
1: खुशी
0: बहुत सारी खुशी तो हम लोग ये सब तो कर सकते हैं ना मुझे लगता है अभी से कर सकते हैं अपने घरों में
3: अपनी छत पे पानी रख दे कितना अच्छा रहेगा
1: गर्मी के टाइम पे हम छत पे रखते हैं
2: मेरे घर के बगल में एक पेड़ है उस पे है ना एक मटका रखा है वो शाम तक पूरा खाली हो जाता है
0: ऐसा कर सकते हैं ना आप करते
2: हैं अभी भी टंगा रहता है
0: अभी भी टंगा रहता है वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है तो हम सब भी ये कर सकते हैं
4: गर्मियों के समय तो हम
1: गर्मियों के समय करते हैं
0: हम सब करते हैं वेरी गुड बहुत अच्छी बात है और जहाँ जहाँ हम लोग जाएं हम अपने फ्रेंड्स को बताएं और लोगों को बोलें
1: ताकि वो भी करें
0: है ना चलो ठीक है अब मुझे लगता है हम लोग ढेर सारी बातें कर ली हैं तो बातों के बाद अब बाहर चलते हैं कुछ बर्ड्स को देखते हैं
3: ठीक है
0: ओके बाय बाय बच्चों
1: बाय बाय दीदी
2: बाय
0: बाय

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: TIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 17वां पाठ फांद ली दीवार, पृष्ठ संख्या 154। ये है इंडियन एक्सप्रेस 2007 में छपी एक रिपोर्ट, चमकते सितारे। अफसाना मंसूरी हैं तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वो अभी से दीवार फांद चुकी हैं। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है, लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। ये थी इंडियन एक्सप्रेस 2007 की एक रिपोर्ट, एक मुलाकात। हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा, तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हमने वहां अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी सुनो उनसे हुई हमारी एक मुलाकात, पृष्ठ 155। मिलो इस अनोखी टीम से। अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन से। ये लड़कियां पहले तो जरा चुपचाप थीं, जब शुरू हुई तो बस। जरीन ने शुरुआत की, मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है, मेरा भाई भी यहाँ खेलता है। मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती, तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते, जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता, खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता क्यों ना मैं भी खेलूं, क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा। तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा, वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। पता करो, क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है? वहां कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलता है? क्या वहां तुम्हारी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है? वहां खेल के अलावा और क्या क्या होता है? पृष्ठ 156। खुशनूर बोली, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया, जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। अफसाना ने कहा, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती हैं और हम बच्चों को स्कूल भेजती हैं, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियाँ थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। आफरीन बोली, हाँ हम लड़कियाँ हैं इसलिए हमें मना किया जाता है, मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती हैं, हमारे कोच सर को भी। दादी का कहना है, खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मगर डैडी हमारी बात समझते हैं, खेलने के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास न खेलने के जूते थे, ना कोई खास कपड़े, वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा, यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सीखना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें, अच्छे खिलाड़ी बने। बताओ, क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेल खेलने से रोका है? कौन कौन से खेल? किसने रोका? क्यों? फिर तुमने क्या किया? क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, खेलने के लिए प्रोत्साहित किया? पृष्ठ 157। हमने कहा, अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की बोली, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना? जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते, उन्हें लगता लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं। मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता, अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना बोली, जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। दूसरी लड़की बोली, हाँ बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत सख्त हैं, हमें साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं, सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छकाना है, बास्केटबॉल में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। आफरीन बोली, सर कहते हैं, तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो, अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, कह देते हैं चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है, सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। पृष्ठ 158। एक लड़की बोली, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नज़र से देखें, हम लड़कियां हैं इसलिए हमें कोई छूट ना मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। चर्चा करो, क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? तुम क्या सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में कोई अंतर होता है? तुम्हें क्या लगता है, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं? हमने कहा, अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की बोली, हमारी टीम बहुत खास है, हमारी टीम में एकता है, झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलझा लेते हैं, जल्दी ही भूल भी जाते हैं, साथ में मिलकर रहना हमने यहाँ सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला, यह मैच शोलापुर में हुआ था। जरीन बोली, जब हम मैच खेलने शोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थीं। वे हमसे ठीक से बात भी नहीं करती थीं। हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थीं। हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थीं। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। पृष्ठ 159। मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलत फहमी में हम वह मैच हार गए। मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता है। हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बना पाए तो भी हम चिढ़ते नहीं हैं। सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार जरूर अच्छा करेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली टीम है, क्योंकि हम एक टीम के खिलाड़ी हैं। आफरीन बोली, शोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ में आई। हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। हर एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से साथ मिलकर ना खेले तो हम हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। लिखो, क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या मोहल्ले की टीम में खेला है? किसके साथ? कौन सा खेल? टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलने में क्या अंतर है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्यों? तुम्हारी टीम अफसाना के शोलापुर वाली टीम जैसी है या नागपाड़ा की टीम जैसी? क्यों? टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए खेलने में से तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्यों? पृष्ठ 160। हमने कहा, यहां तक पहुंचे हो, अब आगे क्या? अफसाना बोली, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें, अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतें, यह करके दिखाएं। चर्चा करो, अपने स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है? तब तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम खेलने के लिए दूसरी जगह गए थे? कैसी थी वह जगह? तुम्हें दूसरी जगह जाना कैसा लगा? क्या तुमने भारत और दूसरे देशों के बीच कोई मैच देखे हैं? कौन से? पृष्ठ 161। हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, उन्हें चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या किसी और खेल के भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे ही सब जानते हैं और चाहते हैं? हाँ या नहीं? तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जैसे भारत के फुटबॉल या कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को तुम पहचानते हो? हमने पूछा, क्या कुछ और परेशानियां आईं? खुशनूर बोली, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सकें, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती हैं, फिर वे चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा। अफसाना बोली, वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इस सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वह खुद बनाए तो माँ कहती हैं, 3-3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। एक लड़की बोली, अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ 5-6 साल का है। वह भी बोलता है, मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता है, हाँ मैं तो लड़का हूँ खेलूंगा। अफसाना बोली, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना फायदा होता है खेलने से। यह हम अब समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूं, ताकि सब लड़कियां और लड़के भी चाहें कि वे मेरे जैसे बने। पृष्ठ 162। चर्चा करो। लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हें किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? खेल के क्षेत्र में तुमने किन किन महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना है? कौन कौन और किस खेल में है? तुमने खेल के अलावा और किस क्षेत्र में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है? तुम्हें क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुष या लड़कों के नामों की अपेक्षा कम जाने जाते हैं, ऐसा क्यों? अगर सभी लड़कियों को खेल या ड्रामे का मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्हें कैसी लगेगी? ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम किसी लड़की या महिला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? फिल्म एक्टर और मॉडल को छोड़कर कुछ और सोचो। आफरीन बोली, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। खुशनूर कहती है, अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है तो इसके लिए पहले खुलकर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए। अगर यह नहीं किया तो बाद में पछतावा होगा। पृष्ठ 163। हमने कहा तुम्हारे बारे में अखबार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा, यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? आफरीन बोली, यह जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है कि हम और खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। सब लड़कियां बोली, हाँ हमारी भी यही इच्छा है। कोच सर, इस टीम की शुरुआत करने वाले और उन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है, वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड। मुस्तफा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उनसे सब बहुत डरते थे मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था, यही मिट्टी के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। नूर खान ने बताया, पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं, सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियाँ अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाते हैं। सोच कर लिखो। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था, अफसाना दीवार फांद चुकी है, लिंग भेद की दीवार भी जो इसकी मां ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखो कि वह कौन सी दीवार थी, लिंग भेद का क्या मतलब होगा, हम क्या समझे। तुम क्या सोचते हो, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए कि नहीं, लिखो। अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे तो अपनी टीम को तुम कैसे तैयार करोगे। फांद ली दीवार। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 17वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT

ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सफर कार्यक्रम में। 11 अगस्त की बातें हम लोग करेंगे और आज विशेष टी सुब्बा राव, लाल मणि मिश्र, जॉन अब्राहम, यशपाल शर्मा, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही खुदीराम बोस, पी जयराज, राहत इंदूरी, नंदूरी लाल वाजपेयी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें आपसे शेयर करेंगे और कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराने का आज का हमने सोचा है। तो कुछ अच्छी कहानियां आपको ज़रूर सुनाएंगे जो आज के दिन जन्मे हैं, जैसे रेगुलर हम लोग सुनते हैं, और इसके साथ में कुछ खूबसूरत विचार भी आपको देंगे। कहते हैं, इंसान सबसे ज़्यादा नफरत उसी से करता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए एक और गीत आपको सुनाते हैं और इस गीत के माध्यम से आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप एक पॉजिटिव मोटिवेशन से अपने आप को भरपूर कीजिए। कई बार होता है कि हम लोग गीत सुनते हैं, उसको आनंद ज़रूर लेते हैं, लेकिन उससे मोटिवेशन हमारी लाइफ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में चिंतन नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे जीवन में मोटिवेशन रह जाता है, हमें आनंद ज़रूर मिलता है। आप सुनाए हैं सफ़र कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। आइए 11 तारीख के कुछ खास बातें, 11 तारीख को जन्मे उन खास लोगों की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराता हूँ। डी सुब्बा राव, जी हाँ, इनको अगर आप भारत के एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 5 सितंबर 2008 से लेकर 4 सितंबर 2013 तक रहा है। डी सुब्बा राव 1972 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश कैडर के अधिकारी रहे हैं। डी सुब्बा राव आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एलूर स्थान से है। इनकी शिक्षा सैनिक विद्यालय से पूरी हुई और 1969 में इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर से भौतिकी में भी BSc ऑनर्स पूरा किया और बाद में इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर से भौतिकी में MSc की उपाधि प्राप्त की और 1972 में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफलता अर्जित की और 1978 में उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की और बाद में उन्होंने आंध्रा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि ली है। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए डी सुब्बा राव के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अभी एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बात करते हैं अब शख्सियत के बारे में, और ये विशेष आपको लाल मणि के बारे में बात करते हैं, जो भारतीय संगीत जगत में एक ऐसे मनीषी रहे जो अपने काल के समान है, समान ही अपनी विविधता के लिए भी जाने जाते हैं। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर लालमणि मिश्रा ने पटियाला के उस्ताद अब्दुल अजीज खान को सुनकर गुप्त रूप से विचित्र वीणा हेतु वादन तकनीक विकसित करने के साथ साथ भारतीय संगीत वाद्यों के इतिहास तथा विकास क्रम पर अनुसंधान किया। वैदिक संगीत पर शोध करते हुए उन्होंने समिक स्वर व्यवस्था का रहस्य सुलझाया। सामदेव ने इन प्राप्त स्वरों को विशेष रूप से उन्हें राग रामेश्वरी, राग सामेश्वरी का निर्माण किया। भारत मुनि द्वारा विधान की गई 22 श्रुतियों को मानव इतिहास में पहली बार डॉक्टर मिश्रा द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र श्रुति वाणी पर एक साथ सुनने का संभव हुआ। तो आइए ऐसे मीनिशी के बारे में जानते हैं और लालमणि के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। डॉक्टर लालमणि मिश्रा का जन्म आज ही के दिन 11 अगस्त को 1924 को कानपुर के कनकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 5 वर्ष की आयु में उन्हें स्कूल भेजा गया, किंतु 1930 में कानपुर के भीषण दंगों के कारण न केवल इनकी पढ़ाई छूटी बल्कि इनके पिता का व्यवसाय भी बर्बाद हो गया। परिवार को सुरक्षित बचाकर इनके पिता कोलकाता अब आ गए और वहाँ से इन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा प्रदान करने का कथावाचक पंडित गोवर्धन लाल गर उनके घर गए और उनके घर आया भी करते थे और वहीं से पंडित गोवर्धन लाल के द्वारा ही संगीत की शिक्षा आरंभ हुई। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आइए बात करते हैं हम लोग लाल मणि मिश्रा के बारे में। संगीत की शिक्षा इनकी जो है शुरुआत हो गई कोलकाता में कथावाचक पंडित गोवर्धन जी। एक बार माँ को सिखाए गए 15 दिन के पाठ को यथावत सुनाकर उन्होंने पंडित जी को चकित कर दिया था। उसी दिन से लाल मणि की विविधता संगीत शिक्षा आरंभ हो गई और पंडित गोवर्धन लाल से उन्हें द्रुपद और भजन का ज्ञान मिला। तो हारमोनियम के वादक और शिक्षक विश्वनाथ प्रसाद गुप्त से हारमोनियम बजाना सीख लिया। द्रुपद धमार की विविध शिक्षा पंडित कालिका प्रसाद से, ख्याल की शिक्षा रामपुर सोनिया घराने के उस्ताद वजीर खां के शिष्य मेहंदी हुसैन खां से मिली और बिहार के मालिक घराने के शिष्य पंडित सुखदेव राय से सितार वादन का तालीम हासिल किया। इस तरह से इनका फिर सारी चीजें सीखने के बाद व्यावसायिक शुरुआत हो गई। 16 वर्ष की आयु में लालमणि मिश्रा मुंगेर बिहार के एक रईस परिवार के बच्चों के संगीत शिक्षक बन गए। 1944 में कानपुर के कॉलेज में संगीत शिक्षक नियुक्त हुए और इस वर्ष सुप्रसिद्ध विचित्र वीणा वादक उस्ताद अब्दुल अजीज खां पटियाला घराने के वाद्य विचित्र वीणा से प्रभावित होकर उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की और 1950 में लखनऊ के बातखंडे जयंती समारोह में इस वाद्य को बजाकर विद्वानों को बिल्कुल चकित कर दिया था। लालमणि मिश्रा 1951 में उदय शंकर के दल में बतौर संगीत निर्देशक नियुक्त हुए और 1954 में एक देश विदेश का भ्रमण किया। 1991 में कानपुर के गांधी संगीत विद्यालय के प्रधानाचार्य बने और 1958 में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने उनके आग्रह पर वे काशी विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के वाद्य विभाग रीडर पद पर सुशोभित हुए और यहीं डीन और विभाग अध्यक्ष भी बन गए। और संगीत की हर विधा में पारंगत पंडित लाल मणि मिश्रा ने अपनी साधना और शोध के बल पर अपनी एक अलग शैली विकसित की जिसे मिश्र वाणी के नाम से स्वीकार किया जाता है। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में सुनकर कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा होगा। और 17 जुलाई 1979 को मात्र 55 वर्ष की अल्पायु में लाल मणि मिश्र का अंत हुआ। लाल मुनि अगर होते तो संगीत के जगत में एक और अचंभित चमत्कार दिखाते। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। आशा करूँगा आप सभी गीत संगीत को सुनकर मन प्रसन्न आपका होता होगा। तो आइए आपकी प्रसन्नता को और बढ़ाते हैं। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधवन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। सफ़र कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर यशपाल शर्मा के बारे में बात करते हैं, जो भारतीय क्रिकेटर थे। वो उस टीम इंडिया का हिस्सा रहे जिसने साल 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। और यशपाल शर्मा 1978 से लेकर 85 तक भारतीय टीम के लिए खेले, 37 वनडे और 42 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 42 मैचों की 40 पारियों में विशेष रूप से 873 रन बनाए और जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 90 रहा। यशपाल शर्मा ने अपने करियर में 4 अर्धशतक भी लगाए और 1979 से लेकर 83 तक भारतीय मध्यक्रम का एक अभूतपूर्व हिस्सा रहे थे। यशपाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। उनका जन्म आज ही के दिन 11 अगस्त 1954 को लुधियाना पंजाब में हुआ था और पंजाब के स्कूल की ओर से खेलते हुए यशपाल शर्मा ने 260 रनों का पहाड़ सा स्कोर बनाया था, जिसके बाद से ही वो निगाह में आ गए थे। और यशपाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू चित्र प्रतिबंधित टीम पाकिस्तान के खिलाफ साल 1978 में किया था। इसके बाद वो इंग्लैंड में खेले गए और 1983 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास रचा था। और 1985 में अपने करियर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले यशपाल शर्मा को 7 साल के अंतराल में कभी कोई गेंदबाज वनडे क्रिकेट में शून्य पर आउट नहीं कर सका, तो ये उनका रिकॉर्ड था। आइए इनके बारे में और जानकारी आपको देते हैं थोड़ी देर में। और करियर की बात करें तो दाएं हाथ के बल्लेबाज यशपाल शर्मा ने 42 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले और इनकी 40 पारियों में उन्होंने 9 बार नाबाद रहते हुए 883 रन बनाए थे। यशपाल शर्मा के टेस्ट करियर की बात करें तो 1979 से लेकर 1983 तक कुल 37 टेस्ट मैच इन्होंने खेले और जिनकी 59 पारियों में उन्होंने कुल 1606 रन बनाए थे। तो इस तरह से काफ़ी लंबी लिस्ट है इनकी। और तकनीकी सीमाओं की बात करें तो शर्मा की टेक्निकल सीमाएं थी, लेकिन वो कभी उनके साहस, एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और धैर्य गुणों के सामने नहीं आए। तो इस तरह से उन्होंने लंबी पारी खेली और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा का निधन 13 जुलाई 2021 को हुआ। 66 वर्ष की यशपाल शर्मा का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ था। तो ये थी कुछ खास बातें यशपाल शर्मा के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए, इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

0: this is triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. Thank you, Radio Madhuban.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं और जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा छोटी सी कहानी के साथ छोड़े जा रहा हूँ। कहते हैं, एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी, वो बस अपनी चोंच में पानी भर कर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा बोला, उसको देखो, हंसने लगी और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है कि यह घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है? तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा आग बुझाने वालों में होगा नाम और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। तो साथियों, यहाँ छोटी सी ये कहानी के साथ हमारे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सीख मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हम में से कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। तो चलिए, ये थी छोटी सी कहानी आपके लिए आज, और इसी के साथ आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफ़र। इस कार्यक्रम को सफ़र कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और कार्यक्रम शुरू हो चुका है युवा मंच का। और आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनसे हम जानेंगे कि करियर में हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं, कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जब हमें ये जानने का होता है कि हमें आगे कौन से ऑप्शंस लेने हैं और कौन कौन से डाइवर्स फील्ड हमारे लिए ओपन है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक करियर कोच हमारे साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: जी। हमारे साथ शोभित सर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर,
2: तो मैं एक करियर काउंसलर हूँ।

0: की मुलाकात को सबसे पहला सवाल लेकर कि जैसे कि कई बार हमारे पास चॉइसेस आती हैं, सबसे पहली चॉइस जो हमें लाइफ में मिलती है करियर को लेकर वो क्लास 10th के बाद मिलती है कि हमको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। सर, तो वहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, उनके मन में हमेशा उन्हें ये बताया जाता है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि क्या मैं इस चीज को आगे कर पाऊंगा कि नहीं, इसका कितना स्कोप है। और कभी कभी व्यक्ति फैमिली प्रेशर में भी आ जाता है और पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि नहीं, उन तुमको यही सब्जेक्ट लेना है, यही पढ़ना है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज हम कैसे पहचाने कि हमें कहाँ जाना है, और अगर पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं अगर इस चीज को लेके, तो हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं उस फील्ड में जाने के लिए।
1: तो आपने जो अपना प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर कुछ 3 भागों में दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न में कई प्रश्न कई पहलू समाए हुए हैं। तो
0: जी
1: जैसे पहले आपने कहा कि 10वीं के बाद बच्चों को एक मौका मिलता है चुनाव करने के लिए कि वो साइंस लें कि कॉमर्स लें। तो बच्चों के पास साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसे आर्ट्स भी कहते हैं, ये 3 विकल्प होते हैं चुनने के लिए। और हर स्कूल ये 3 विकल्प जरूरी नहीं है कि वो दे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके स्कूल में अगर ह्यूमैनिटीज नहीं है या फिर कॉमर्स नहीं है तो फिर ये मत समझिएगा वो विकल्प है ही नहीं दुनिया में या अन्य स्कूलों में। अब बात आती है कि हम ये चुनाव कैसे करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करें। तो अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की, तो साइंस के लिए आमतौर पे स्कूल में कट ऑफ होता है कि जैसे जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जो स्कूल होते हैं वहां पर कहते हैं कि अगर 80% से ज्यादा आपके अंक आए हैं 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में तो आप साइंस के लिए आप चुनाव करिए। और ये न्यूनतम जिसे एलिजिबिलिटी कहते हैं वो ऐसा कहते हैं। फिर साइंस जो विषय है इसको अन्य विद्यालय, अन्य स्कूल भी देते हैं और वहां पर जिसे कहेंगे कि परसेंटेज कट ऑफ हो सकता है 65 हो जाए, 70 हो जाए, या 60 ही रहे, ऐसा भी होता है। तो जरूरी है कि बच्चों को ये बात समझें कि विज्ञान में भी हमारे पास क्या अलग अलग शाखाएं हैं साइंस में। जैसे साइंस में अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। और अगर किसी को जीव जंतु और पेड़ पौधों में रुचि है तो उनको बायोलॉजी लेना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये भी अलग क्षेत्र हैं जो कि व्यक्ति साइंस लेकर उसको आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए आमतौर पर कोई कट ऑफ नहीं होता है और इसको कोई भी विद्यार्थी अपना जो है करियर के रूप में या अपने इच्छा या रुचि के अनुकूल उस विषय का वो चयन चुनाव कर सकता है। लेकिन बात ये समझनी होगी कि हर करियर जो है अच्छा करियर है। और ये बात, ये धारणा, अवधारणा बनाना कि अगर विज्ञान हमने लिया है, साइंस हमने लिया है तो हम बुद्धिमान मन समझे जाएंगे, और यदि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है तो हमको मंद बुद्धि का समझा जाएगा, कहेंगे कमजोर है पढ़ाई में तो भी आपने ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ले लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां पर हमारी रुचि होती है वहां पर हम विषय का, उस सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दूसरा पहलू आपने कहा कि माता पिता जोर करते हैं, एक एक प्रकार का जैसे आपने कहा प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप फला फला सब्जेक्ट स्ट्रीम ही आप चुनाव करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं वो उसी क्षेत्र में बच्चों को अपने विषय का चुनाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि बेटा पीसीबी बायोलॉजी विषय लें, अगर माता पिता इंजीनियर्स हैं तो वो चाहेंगे पीसीएम लें, और अगर माता पिता बिजनेस में हैं तो कहेंगे कि आप कॉमर्स दो बेटा, और अगर माता पिता संगीत में हैं तो वो प्रेरणा देंगे बच्चों को संगीत में जाएं, अगर वो कत्थक घराने से हैं तो कहेंगे कि आप ह्यूमैनिटीज

0: कथक आगे घर के नाम को रोशन करिए, आप आगे लेके चलिए। कोई अगर साइकोलॉजी में है और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो भी उनको प्रेरणा देंगे कि ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले। तो बच्चों को खुद, या एक तो बच्चों को ना, क्योंकि 15 वर्ष की आयु होती है, 16 वर्ष की आयु होती है, आज के समय में बच्चों के पास जानकारी उपलब्ध कराने की कमी नहीं है। गूगल के माध्यम से वो ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा विवेकशील बनना होगा। और जैसे आपने सवाल हमसे पूछा, ये सवाल आप गूगल से पूछेंगे और गूगल ये सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तार से आपको देगा कि 10वीं के बाद कौन कौन से विषय हमारे पास हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि हम आज के समय में डिजिटल युग जिसे कहते हैं, हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं। सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है। यहाँ तक घर बैठे आपको सामान मिल जाता है, खाना सब्जियां मिल जाती हैं, और अगर आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो वो भी घर बैठे आप, कई एप्स हैं जैसे उबर है, उबर सर्विसेज, वहां से आप सेवाएं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जानकारी भी हम हर प्रकार की गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त बच्चे कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उनको शांति से अपने साथ बैठकर यह आंकलन करना होगा कि मेरी रुचियां किस क्षेत्र में और मेरी काबिलियत किधर है, वेयर माई इंटरेस्ट लाइज एंड वेयर माई एप्टीट्यूड लाइज। एट द सेम टाइम, अगर हम केवल अपना चुनाव इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के ऊपर छोड़ देते हैं और हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसको हम नहीं समझते हैं, तो भी यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि 12वीं के बाद फिर क्या करेंगे, 12वीं के बाद फिर चुनाव करना होगा। तो चुनाव केवल
1: जी सर,
0: आप अपनी रुचियों के आधार से नहीं करते हैं, क्योंकि रुचियां भी 2 प्रकार की होती हैं और बच्चे अक्सर इस बात में मूंझ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक रुचि होती है मनोरंजन के लिए और एक रुचि होती है पैसा कमाने के लिए। तो दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा हम क्या काम करेंगे? जैसे लोगों, क्या हमको धूप में बाहर बाजार में घूमना अच्छा लगता है? तो कई युवा कहेंगे हाँ अच्छा लगता है, लेकिन क्या रोज आपको ये काम अच्छा लगेगा, 8 घंटा 14 घंटा रोज करना? हाँ, तो ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो या फिर कहते हैं कि हमको गैजेट के साथ, हाँ गैजेट के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो शौकिया अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ लोगों को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एडिट करना, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसको रोज आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी 8 घंटा निरंतर, 14 घंटा निरंतर? हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना ये भी एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है। तो ये हमको पूछना होगा अपने आप से और ये अलग करना होगा। रुचियों की जो मनोरंजन के लिए है वो अलग है, और जीविका के लिए जो हमारी रुचियां हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं आकलन कर पा रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से एक करियर काउंसलर से परामर्श लेकर और एक एक सुलझे हुए और वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी काबिलियत, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी क्षमताओं को और अपनी रुचियों को समझ सकते हैं।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, और हम ये नहीं
0: जी
1: सोच सकते कि वो दूसरा व्यक्ति वो ले रहा है या उसके से मेरे को क्या होगा करके। अगर मन में डर है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो सर हमारे स्कूल की बात हो गई कि यहाँ पे हमने 10th के बाद चॉइस ली, यही चीज़ 12th के बाद भी अप्लीकेबल होगा कि इस फील्ड में हमको जाना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके इंटरनेट में सारी जानकारी हमें मिल जाती है और हम अपने उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। सर, अब जब हमारे स्टूडेंट्स जो है कॉलेज में आ गए, कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, लेकिन जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग करते करते या कोई भी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं साथ में कुछ एडिशनल स्किल्स भी हमें जरूरत होती है कि हम जब फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ वो स्किल्स चाहिए जो कॉलेज में हमें नहीं सिखाई जाती, या हो सकता है कि कई कॉलेजों में वो चीजें स्किल्स सिखाई नहीं जाती, होता क्या है वो सब बताया ना जाता हो। तो कौन कौन सी स्किल्स है, पहली चीज तो ये कि वो जो हम सीखें जो हमें आगे जॉब में काम आए, और हम वो कहाँ से सीख सकते हैं?
0: देखिए, स्किल्स जो होती है ना, दो प्रकार की होती हैं। अगर हम उसकी शाखाएं बनाए, एक हार्ड स्किल्स होती है, एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो ये दोनों ही हमको जरूरत होती है जीवन में सफलता पाने के लिए। हार्ड स्किल होगी जो कि आपके विषय से संबंधित है, तो जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग की जो शाखाएं हैं वो 22 से भी ज्यादा शाखाएं वर्तमान में है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मरीन, पेट्रोलियम, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो आप जिस इंजीनियरिंग एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, उसके हार्ड स्किल्स तो आपको सीखने होंगे, और उसके लिए ऑनलाइन माध्यम से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऐप मेकिंग का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप जैसे टैली और जो बेसिक MS ऑफिस है वो आना जरूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ढेर सारे काम को कम समय में, जिससे करने में पहले काफी समय लगता था, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कलाओं को हम अगर सर्टिफिकेशन के माध्यम से या फिर डिप्लोमा के माध्यम से, हम डिग्री कोर्स के साथ साथ हम उसको करें तो हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल काम, हाँ, व्यवहारिक काम करने का मौका मिलता है, देखिए डिग्री कोर्सेज में 1 महीने या 2 महीने का इंटर्नशिप मिलता है करने को, लेकिन जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि असल जिंदगी से संबंध रखते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए संबंध रखते हैं। तो हमें अगर मौका मिलता है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सहयोग करके सीखने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये विन विन सिचुएशन होती है, और बच्चों को काफी उसमें जानकारी मिलती है, स्किल एनहांसमेंट होता है उसमें। फिर उनको समझ में आता है कि किताबी रूप से तो कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल रूप से किया जाएगा तो वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स, देखा गया है कि जब उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और अब वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लड देखते हैं और फिर डाइसेक्शन बॉडी का करना होता है, तो कई बच्चे ना वो बेहोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मौका मिलता है अपने को आकलन करने के लिए कि क्या प्रैक्टिकल में मेरे लिए वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब एक होता है ना कि डबल श्योरिटी हमारे लिए हो जाती है। तो इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की कलाएं भी हमको अपने अंदर विकसित करनी होती है, क्योंकि विजडम और होशियारी का होना बहुत जरूरी है, और वो तब हमारे अंदर आएगा जब हम इन सब चीजों को भी उतनी ही अहमियत देंगे जितना हम हार्ड स्किल्स को देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारा काम दुनिया समाज में एक संगठन में होता है, ग्रुप में होता है। तो टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हाँ, ये सब भी हमको आना चाहिए, और ये तब आएगा जब हम वॉलंटियर करेंगे अपने आप को, कॉलेज के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेंगे, या कॉलेज के बाहर हमें कुछ करने को मिलता है तो उसमें हम भाग लेंगे।
1: जी सर, और ये भी है कि अभी हमारी सबकी छुट्टियां आ रही हैं गर्मी की, और स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी इस समय हॉलीडेज पड़ने वाली है, तो हम इस हॉलीडे जो हमें वेकेशन मिला है, इसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कि वो हमें फ्यूचर में काम आए, जॉब में क्या क्या कर सकते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे सर।
0: बहुत कुछ कर सकते हैं। छुट्टियों का मतलब ये होता है कि बच्चे और यूथ उसको ना एंजॉयमेंट के साथ उसको कोरिलेट करते हैं,
1: जी सर,
0: और ये एक मौका मिलता है कि हम एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय को अपने लक्ष्य से हम मिलाकर चलें। तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग वो सीख सकते हैं, फोटोग्राफी है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, कई प्रकार की चीजें आप ऑफलाइन तरीके से ट्यूशन लेकर आप सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। कई प्रकार के सर्टिफिकेशन हैं जो कि एक दिन से लेकर एक महीने के या 3 महीने के होते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा आपको देना होता है उसको, 5 days a week या ऑल्टरनेट 3 days a week, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया या हेल्थ केयर न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स हो गया। तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम लोगों को एक राय दे सकते हैं। आमतौर पर देखा गया यूथ जब उनको कॉलेज में ऐसे पेइंग गेस्ट की तरह रहना होता है, हॉस्टल में रहना होता है, तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वो उस समय तो उनको फायदा करेगा, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद भी वो उनको फायदा देगा, क्योंकि वो जो समय होता है 18 से 22 23 वर्ष की आयु में, वो हेल्थ का पीक जिसे कहते हैं, वहां तक जाने के लिए जो कि युवा अवस्था होती है वहां जा सकते हैं। तो अगर पोषण अच्छा मिलता है शरीर को तो मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा कई प्रकार की रीडिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं या फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं या एजुकेशनल वीडियोस पॉडकास्ट हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो या वो दर्शन फिलोसफी से संबंधित हो, या वर्तमान में विश्व में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स करंट इवेंट्स को लेकर। आजकल वर्चुअल वर्कशॉप्स और वेबिनार, जिनके पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करके, जैसे मैं आपको बताऊं, ऋषिवर यूनिवर्सिटी 15 दिन की पॉलिसी मेकिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, समर कैंप, जो कि सोनीपत में है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जब गर्मियां आती हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन और केवल यूथ और कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किंडरगार्टन प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में हमको देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ कई प्रकार के। आज तो पिनिंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ पर काफी DIY जिसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ, वो सीखने को मिलता है। या फिर फिटनेस और वेलनेस को लेकर जैसे वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं, या फिर योगा क्लासेस हैं, सेल्फ अवेयरनेस वेलनेस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन, हाँ इन सब चीजों के प्रति भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं, जो कि बहुत फन इंटरेस्टिंग होता है और मिलके अगर करा जाए तो हाँ एक एक सुंदर एक्टिविटी बनती है जहाँ पर हम लोग शेयरिंग भी करते हैं और प्रेम भी बढ़ता है लोगों का, क्योंकि सेहत भी अच्छी हो रही है और मन मन दुरुस्त भी, जैसे कहते हैं, मन भी दुरुस्त हमारा बनता है। या फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, तो जैसे मम्मी पापा महीने खर्चा देते हैं 5,000 रुपये या 3,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो हम थोड़ा समझें कि हम पर्सनल फाइनेंस बजटिंग कैसे करें, और रुपए को हम कैसे बचा सकते हैं, या किसी को गिफ्ट करना है तो हम कितना पैसे रखें, अगर हमको दान करना है, मन में भावना आती है तो उसके लिए कितना पैसा निकाल के रखें, हमें कोई सामान कपड़े खरीदने हैं या हमको खाने का सामान खरीदना है। आजकल फ्रेंडशिप्स बहुत होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहां पर कितना, या कोई कोर्स हमें करना है, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ है इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज लर्निंग, तो भाषा भी अगर सीखना चाहें, क्योंकि विश्व भी एक छोटा होता जा रहा है, तो चाहे वो भारत में तो तमाम भाषाएं हैं, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, आप हिंदी और उर्दू और उड़िया, बहुत भाषाएं हैं, लेकिन जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तो अगर कोई युवा विदेश में रहना चाहता है तो जिस देश में रहना चाहता है वहां की अगर भाषा भी सीखना शुरू करे थोड़ा थोड़ा, तो उनको काफी लाभ मिलेगा और वहां पर संबंध रिलेशनशिप बिल्डिंग वो अच्छा कर पाएंगे, और जीवन में सफलता पाने के लिए रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। तो देखिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर ऑनलाइन बात करें तो कोर्सेरा, यूडेमी, खान एकेडमी, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत तरह की आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, रुपए में आप कोर्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यूथ अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं।
1: जी सर, और हम जब स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगी, क्योंकि कईयों का सवाल होता है कि जैसे जो चीज ज्यादा यूज आगे होने वाली है, जैसे AI हो गया या और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे आ रही
0: जी
1: हैं, तो कौन सी वो
0: जी
1: स्किल्स हैं जो हम करें जिसका हमें आगे फ्यूचर में लाभ रहेगा।
0: देखिए जो न्यू एज करियर्स हैं वो सारा सारा काम डिजिटल हो रहा है अभी, तो और पेपर लेस काम हो रहा है, ई पेपर की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी का नाम लूंगा, एक बहुत ही बड़ा बूमिंग करियर है जो कि अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी। आप देखिए कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाऊं, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखिए, तो वो ये जो फील्ड है ये बूमिंग फील्ड है और बहुत पैसा है इसमें, और भारत जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। KPMG की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं और वो यही बात दर्शाती हैं कि भारत आने वाले समय में 2040, 2050 इट वुड बी लाइक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव एंड वर्क इन फॉर। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है। दूसरा हेल्थ केयर, हाँ, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाँ देखिए मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया, हेल्थ केयर में भी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वो चाहे जैसे नर्सेस हो या फिर मेडिकल टेक्नीशियंस हो या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या फिजिशियंस हो, उनके असिस्टेंट्स हो, तो और आप देखिए बीमारियां भी कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया होगा। फार्मेसी, जैसे बैचलर्स इन फार्मा कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। हम लोगों ने कोविड देखा था, तो कोविड में देखिए सारे प्रोफेशन एक तरह से ठप हो गए थे, लेकिन हेल्थ केयर वो सबसे आगे था। और अगर देखा जाए तो हम अगर हम इतिहास देखें 100 साल का, तो जैसे जैसे एक एक दशक बीतता गया है बीमारियां और बढ़ती गई हैं, बीमारियां कम नहीं हुई हैं और नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हेल्थ केयर इज अ बूमिंग सेक्टर। तीसरा ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, एनवायरमेंटल साइंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब बहुत बड़े करियर्स हैं क्योंकि ये सब प्रकृति से संबंधित रखते हैं और मनुष्य का जीवन आसान बनाते हैं। तो अगर हम सोलर पे काम करते हैं, विंड एनर्जी पे काम करते हैं, या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, या फिर अर्बन प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, सस्टेनेबल जो की है, तो ये करियर्स भी युवाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। आज देखिए घर बैठे हर व्यक्ति सामान चाहते हैं, तो उसके लिए बैंकिंग का भी काम होता है। तो फाइनेंस और फिन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, देखिए हर शब्द में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा फील्ड है ही, लेकिन चाहे वो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा इवॉल्विंग, रैपिडली डेवलपिंग करियर है युवाओं के लिए। और पैसा अब देखा जाए तो वो हार्ड करेंसी यूज नहीं होती, कैश यूज नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ई कॉमर्स, पेमेंट ट्रांजैक्शन सब डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखें तो पेटीएम का हमने एग्जाम्पल देखा है और जीपे का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और आप यूथ हैं, आप खुद हमको बताइए विदान, ऐसे कौन से माध्यम है जिससे यूथ अभी पेमेंट करते हैं, आप बताइए मुझे दो ऐसे नाम।
1: सर जिससे हम लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे।
0: हाँ देखिए आपने फोन पे एक तीसरा नाम हमको बताया। तो युवा काफी स्मार्ट है और उनको मालूम है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो रिमोट लर्निंग, जिसको यार टीचिंग में जाना जाता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग बहुत हो गया है, तो जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो अपने आप को वो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागॉजी से वो अपने आप को इक्विप करे, ताकि वह शिक्षा ऑफलाइन अगर नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकता है। और आजकल तो लोग अपने कोर्सेज बना देते हैं ऑनलाइन और फिर उसको बेचते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है जो कि लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो उसको एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी आप उसको बेच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की मैंने बात करी, ये बहुत बहुत ही बूमिंग करियर है, सोफेस्टिकेटेड करियर है, क्योंकि बहुत तरह तरीके से ठग बैठे हुए हैं और वो भी पढ़े लिखे ठग। तो पढ़े लिखे ठगों को पढ़े लिखे लोग ही अच्छे से उनको निपटारा कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी लोग प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि वहां पे, और गवर्नमेंट तो काम करती ही है, तो हर शहर में, हर स्टेट में भारत में वहां पर साइबर सिक्योरिटी का पूरा विभाग होता है, बहुत बड़ा विभाग है, और दिन प्रतिदिन इसके जो तरीके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी जब कोई बिजनेस कोई करता है तो उसके बारे में भी सोचता है और कंसल्टेंसी लेते हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी एक बढ़ता हुआ फील्ड है, तो अगर कोई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ये सब न्यू एज करियर्स का फायदा ले सकते हैं।
1: जी सर, और एक सवाल फिर मेरा यहाँ पे एक और आता है कि इंटर्नशिप्स को लेकर, क्योंकि अभी मैं भी अपने थर्ड ईयर में हूँ जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि हमें इंटर्नशिप करनी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गाइडलाइंस हमें नहीं दी जाती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं और जो चीज़, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हमें नहीं सिखाया जा रहा है, बट हम जब किसी इंडस्ट्री में गए तो वहां पे कुछ नई चीजें हमने देखी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो कुछ और ही डिमांड है जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंटर्नशिप के लिए हमें कोई फैकल्टी हमें बता भी नहीं रहा है सपोज कि हमें कहाँ जाना है, कौन इंटर्नशिप के लिए कहाँ हम अप्लाई करें, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि कंपनीज डायरेक्ट तो एंटरटेन करती नहीं है स्टूडेंट्स को, तो कैसे हम अप्लाई करें, कौन से ऐसे साइट्स या पोर्टल हैं या क्या तरीका है किसी कंपनी को अप्रोच करने का इंटर्नशिप के लिए?
0: देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ना ये ट्रांजिशन युग है, ये जो समय वर्तमान का समय चल रहा है ये बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, काम करने के ढंग बदलते जा रहे हैं, तो अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट को लेकर ना अपने आप को अडेप्ट करना होगा, एंड दे विल हैव टू बिकम प्रोएक्टिव, व्हिच मीन कि वो फर्स्ट ईयर से ही वो खुद अपने लेवल पे पता करें और अब कि उनका जो इंटरेस्ट है वो जो बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसने एक्चुअरीज की वो स्टडी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है एक्चुअरीज में, एक्चुअरीज का काम मतलब होता है इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर फर्स्ट ईयर से ही सोचना शुरू कर देता है कि अगर मुझे एक एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनीज है जहां मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसकी वो लिस्ट बनाता है, तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट बनाएगा, और वो स्टेट लेवल की लिस्ट बनाएगा, और वो जोन जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके लिस्ट बनाएगा और एक नेशनल लिस्ट बनाएगा, कीपिंग इन माइंड कि फैमिली या उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस उसको ये इजाजत देते हैं कि वो उस शहर में, उस स्थान में जाकर वो इंटर्नशिप कर सके, तो इसी प्रकार से, और इन सब चीजों में समय लगता है। फिर दूसरा जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है, तो आपके जो प्लेसमेंट हेड होते हैं उनसे फिर आप एक विवेकशील और एक समझदारी से आप बात कर पाएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कॉलेज आपको क्या दे रहा है, फिर आप उनको भी एक दिशा दिखा सकते हैं कि मैम सर हम चाह रहे थे कि आप नॉर्थ इंडिया में हमको जॉब्स दें, हमने एक लिस्ट खुद बनाई है जो गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की है, अगर आप इस तरफ कोशिश करें तो हमको फायदा मिल सकता है। तीसरा जो लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं उन कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट में आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, अपनी खुद मेहनत करके कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इस कॉलेज में हैं और आप 2 महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप वो इंटर्नशिप लेटर अपने कॉलेज से इशू करवा सकते हैं और वो ईमेल में आप भेज भी सकते हैं साथ में। अगर वो लेटर मिल जाता है समय से, अच्छी बातें, नहीं मिलता है तो कम से कम आप ईमेल भेजिए, उसमें लिख सकते हैं कि कॉलेज से जो हमको लेटर मिलेगा वो हम बाद में आपको भेज देंगे, अभी हम लोग को इशू नहीं हुआ है, ऐसे करके। इसके अलावा अगर आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर परिवार में कोई ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो इंश्योरेंस एजेंट है फॉर एग्जाम्पल, मैं यही एग्जाम्पल लेकर आगे चलता हूँ, और तो आपको अगर मौका मिलता है उनको सहयोग करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, तो वो भी आपके लिए इंटर्नशिप का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो या फिर एक लार्ज स्केल कंपनी में हो, अगर वो कोई स्टार्टअप है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटे में ना बहुत तरह के काम करना होता है, जॉब रोटेशन बहुत होता है, तो सीखने का मौका बहुत मिलता है। तो स्टूडेंट्स को तैयार होना चाहिए अलग अलग काम सीखने के लिए, ना कि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि ये तो हमने इंटर्नशिप में हमको नहीं बताया गया था हमको सिखाएंगे या हमको काम देंगे, अरे इंटर्नशिप पे हमको ले लिया है लेकिन बहुत काम हमसे कराते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
1: जी सर।
0: हाँ, तो स्टूडेंट्स को भी तैयार होना होता है कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, सफलता पानी, बड़ी सफलता पानी है, तो एक लक्ष्य को लेकर उनको चलना होगा, उसके प्रति मेहनत करनी होगी। इसके अलावा कई प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि नॉमिनल फीस लेती हैं और वो आपको समय समय पर बताती हैं कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर आपको इंटर्नशिप कहाँ मिल सकती है। और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज या इंटर्नशिप एजेंसीज होती हैं जो कि कॉलेज के साथ टाई अप कर लेती हैं और सारे ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए काम करती हैं। तो ये सब चीजें पता करके हम अपने कॉलेज के जो चेयरमैन है या प्लेसमेंट के जो हेड हैं उनके साथ हम ये शेयर कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में यहाँ पर एक इंटर्नशिप कंपनी है जो कि MBA स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप कराती है, तो उनका कॉलेज के साथ टाई अप है और कॉलेज स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप खुद अपनी इंटर्नशिप कहीं से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और जो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट बना है तो वो कई ऑप्शन स्टूडेंट्स देते हैं, तो इस तरीके से भी इंटर्नशिप का काम होता है।
1: जी सर। सर आपने ये भी बात एक बताई कि हम HR डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं, रिज्यूमे भेजने से फिर हम ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी होता है हमारे युवाओं का कि हम रिज्यूमे में ऐसे कौन सी पॉइंट्स को डालें या बनाने का क्या सही तरीका है, प्रॉपर वो एडीएस फ्रेंडली हो, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु है जिन्हें हम उसमें लिखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और वो एक अच्छा पोर्टफोलियो का काम करे, उसकी थोड़ी टिप्स लेना चाहेंगे आपसे।
0: वेदांत, इसमें युवाओं को ध्यान देना होगा पहले जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया है वो कंपनी क्या करती है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है वो इंटर्नशिप CV भेज देंगे और लिखेंगे हमको आपके यहाँ इंटर्नशिप करना है। अरे इंटर्नशिप तो करना है लेकिन आप किस एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हो वो तो लिखो। फिर अगर मान लीजिए HR ने फोन किया और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के बारे में आपको कैसे मालूम चला या हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम सॉरी वो तो मुझे मालूम नहीं है अभी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
1: जी
0: हाँ। तो स्टूडेंट्स को जो वो बनना चाहते हैं उस हिसाब से वो कंपनीज की जैसे सिलेक्शन लिस्ट बना ली तो वो हर कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो कंपनी बनाती है, और अगर वो खुद एक एक एनालिसिस कर पाए कि अपॉर्चुनिटी गैप क्या है और कंपनी के HR को बताए कि मैम हमने आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया और हमको लगता है एक अपॉर्चुनिटी गैप है, इस तरह की बातें अगर HR सुनते हैं या फिर जो भी इंटर्नशिप रिक्रूटर समझता है वो काफी इम्प्रेस होगा। या फिर हम उनको खुद बोलें कि आई एम ओपन टू, अगर आपको समझ में नहीं आता, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज में इंटर्नशिप करनी है, बस चूंकि वो हमको 2 महीने का बोला गया है हमको मार्क्स मिलेंगे तो हमको इंटर्नशिप करनी है, तो फिर वो सच बोले फिर HR वो कंपनीज में कि आई एम ओपन टू डू इंटर्नशिप इन एनी फील्ड और आई एम लाइक अ फ्रेशर, तो आप जो जैसा गाइड करेंगे हम उस रूप से करेंगे। तो इंटर्नशिप कराने के लिए अब तो जो कंपनीज है वो चार्ज करती हैं जैसे 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज इफ द स्टूडेंट इज नॉट केपेबल एट ऑल पर मंथ। जैसे मैं बात करूँ जो क्लिनिकल साइकोलॉजी सेटिंग है, तो हॉस्पिटल में कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, तो उनको फिर 3,000 रुपीज पर मंथ या 5,000 रुपीज पर मंथ फीस देनी होती है वो काम सीखने के लिए। आप समझ रहे हो? अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टाइम निकाल कर और अपने रिसोर्सेज निकाल रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर स्टूडेंट को वो ट्रेन करें, क्यों ट्रेन करें? हाँ, और स्टूडेंट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि इस स्टूडेंट छोड़ के चला जाएगा, 2 महीना आया है, उसको तो अपनी पत्नी बस रिपोर्ट बनानी है, एंजॉय करेगा चला जाएगा. आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू शो द ऑर्गेनाइजेशन एज एज अ वैल्यूएबल एसेट, और ये दिखाना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा, और अगर मौका मिलेगा या सब ठीक रहेगा तो मे बी ही कुड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो.
1: जी सर,
0: आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड ह्यूमन रिसोर्स, और लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी समझदार होना होगा, क्योंकि आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की क्या कहते हैं जो लोग
1: सीधी कमी चल रही थी.
0: हाँ, तो बहुत लोग आप जॉब तो बहुत लोग लेना चाहते हैं लेकिन जॉब कम लोगों को मिलती है फिर. हाँ
1: जी सर,
0: वो इसी कारण से. तो सीवी जो हम लिखेंगे, सीवी में हम फिर हमारा हर सीवी अलग होगा. हम एक सीवी बनाकर 10-20-30 कंपनी में नहीं भेज सकते हम. ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं.
1: जी सर.
0: हाँ, तो हर कंपनी को स्टडी करिए, उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रोफाइल या किस इंटर्नशिप टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, उस हिसाब से अपने सीवी को ट्वीक करिए और वो कस्टमाइज करिए अपने सीवी को, तब भेजिए. और फिर फॉलो अप करना जरूरी होता है. ऐसा नहीं बस ईमेल डाल के छोड़ दिया, उसके उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, कॉलिंग नंबर दिया होता है, तो उनको फिर कॉल करके मैसेज करके डाला जाता है कि मैम सर थैंक यू फॉर ईमेल, it will be very considerate of you if you could you know send me an acknowledgement reply, or if something can be looked into it I am totally fine at your convenience. Jo bhi time aap denge hum us time par aakar milne ke liye taiyar hain. Kai baar students kya kehte hain ki I can come only at this time. Aap to company HR ko lagta hai yaar अभी तो कुछ यू नो दे विल थिंक यू नो, मैं आपको बहुत रॉ शब्द में बताया कि अभी तो पंख भी नहीं निकले और ये लोग ऐसे बात कर रहे
1: हैं. हाँ सर, ऐसा बोलते हैं जी.
0: सो यू और कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये मेंटालिटी होती है, हम बहुत होशियार हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे, इन लोगों को तो कुछ नहीं आता, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन लोगों को तो कुछ नहीं आता, हमें जितना आता है. दे हैव दिस मेंटालिटी, सो दे नीड टू यू नो कम इन टर्म्स विद द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉट लिव इन अ बलून इन अ बबल.
1: यस,
0: क्योंकि जब वो बबल अचानक फूटता है ना तो फिर बहुत दुख होता है.
1: हाँ सर, वही सर, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कोई एक चीज उन्हें ज्यादा अच्छी आती है, तो वो फिर वो ये समझने लगते हैं कि हमको ये चीज बहुत अच्छी आती है, अगर इनकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छे से करके दिखाता. लेकिन जब वो रियलिटी आती है उनके सामने तब वो उसे फेस नहीं कर पाते, और इसी वजह से फिर उनका जो वहाँ बिहेवियर है और बाकी सब चीजें वहाँ पे इफेक्ट होता है.
0: बिकॉज लाइफ इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो एक मुखी नहीं है, वो बहुमुखी है. तो स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या 2-3 मतलब है, बस उतना ही है. बट जब आप रियल जिंदगी में आते हैं तो आपको सारा मतलब आंख नाक कान सब कुछ एकदम अलर्ट रखकर और आपको काम करना होता है, और आपको एक स्किल नहीं मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए टू परफॉर्म एंड टू बी अ you know a role model of excellence.
1: जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये सब बहुत जरूरी था. लास्ट अब हम शो को खत्म करते हैं सर, आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द की टू बी सक्सेसफुल इन एनी करियर.
0: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और द की टू बी सक्सेसफुल, जो सफलता की मैं आपको 10 चाबियां बताता हूँ मैं टू बी सक्सेसफुल. पहली चाबी है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपके अंदर प्रेरणा होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति, और वो स्थायी परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं. अगर टेम्पररी है तो समझ लीजिए वो मनोरंजन वाला आपका काम है. अगर वो स्थायी रहता है, बना रहता है, और जितना भी मेहनत करने के लिए हमको समय देना चाहिए उसमें सफल होने के लिए, तो पहली चाबी ये है. दूसरा है कि हमें निरंतर सीखने की हमारे अंदर वृत्ति होनी चाहिए, कि हम निरंतर अपने आप को सीखें. हम हर तीसरे साल दूसरे साल अपने बदलते हुए समय के हिसाब से जो कलाएं हमको विकसित करनी है उसको हम विकसित करें. तीसरा, बिना मेहनत के तो हम सफल नहीं हो सकते, तो परसिवियरेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट हमको होना बहुत जरूरी है. और हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी, तो हम ये सोचे चुनौती आ गई तो चलो सारा काम रोक कर बैठ जाओ, जब चुनौती खत्म हो जाएगी तब हम फिर से शुरू करेंगे, तो वहां पर वो ब्रेक लग गया। तो हमें ये अपने आप को बनाना होगा कि समस्या आई लेकिन काम चल रहा है, समस्याओं से भी निपट रहे हैं और काम भी चल रहा है। फिर चौथा, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें सफलता में चाहिए, कि जैसे 10 साल का हमने हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसको छोटे छोटे गोल्स में, हर पहला साल का गोल, दूसरा साल का गोल, जिसको हम एक्शनेबल भी बनाए, मेजरेबल भी बनाए, और उसको समय समय पर हम उसका आंकलन करते रहे, उसको असेस करते रहे। और जो गोल्स हम बनाए वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ख्वाबी ड्रीम गोल्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी रियलिस्टिक गोल।
1: जी सर,
0: पांचवा, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। आज के समय में अगर आपके अच्छे संबंध लोगों के साथ नहीं है, तो फिर ये गारंटी है कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके नंबर कितने अच्छे हो, कितनी भी कलाएं आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपको मौके जीवन में नहीं मिल पाएंगे, या अगर जो मौके होंगे वो सब आपसे छूट जाएंगे। तो कल्टिवेटिंग गुड रिलेशनशिप्स हमारे पीयर्स, हमारे सहपाठियों के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, ये जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग तो घर से शुरू होती है, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाए। फिर छठा पॉइंट मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। जैसे कई बार चेंज को लोग रेजिस्ट करते हैं, आप पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हैं, नई चीजों को अपनाते नहीं है, तो नई चीजों को अपना कर हमारी तरक्की हो सकती है अगर हम उसको ना बोल देंगे। हाँ, जैसे
1: जी सर,
0: अभी कई लोग कहते हैं कि अरे नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया कोर्स करें, अब जैसे चल रहा है चलने दो, अब
1: जी
0: टाइम
1: सर,
0: निकालना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो वो टाइम निकालिए, वो होता है शार्पनिंग योर एक्स जिसे कहते हैं। तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं तेज तीव्रता से बदलते हुए समय में। फिर सातवीं बात है कि प्रभावशाली वक्तव्य, मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हमारा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जितना जरूरत है, जितना मतलब का है वो आप बोलिए, और चाहे वो लिखित रिटन हो, चाहे वो वर्बल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होगा तो हमारे संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनते हैं, और हम अपने विचारों को अच्छे से हम लोगों के साथ साझा कर पाते हैं। आठवीं बात, प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी, कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमारे अंदर जैसे हमने जो कहा वो हमने किया, अगर हमने नहीं कहा तो आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो ये मतलब प्रोफेशनलिज्म हम अपने ध्यान में रखें, चाहे वो क्लाइंट्स हो, हमारे स्टेक होल्डर्स हो, हमारे कोलीग्स हो, तो उससे क्या होता है, विश्वास और क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और नाइन्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारा मतलब भावनात्मक रूप से हम बहुत समझदार हो, हमारे अंदर ये ज्ञान इस चीज का होना चाहिए कि हम जैसे कोई आया, किसी ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम है, बॉस ने ऐसे मुझे बोल दिया, ये काम मैं कब से कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं कहूँ हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख दर्द को, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। तो इस तरीके से हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तो ये भी हमको सफलता की तरफ लेके जाता है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम ये कई बार क्या होते हैं, लोग वन डायरेक्शनल हो जाते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत खराब है, या पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम चलेंगे तो एक होलिस्टिक, जिसे सक्सेस बोलते हैं लाइफ में, वो हमको मिल पाएगी। तो ये 10 सूत्र, 10 में चाबियां आपको सफलता की मैं आपको देना चाहूंगा।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे थे, जो भी युवा हमें सुन रहे थे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। कई सवाल थे उनके जिनका जवाब आपने हमें दिया, और ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को ही समस्या आती है, क्योंकि यही एक पीक पॉइंट है जहाँ पे उन्हें अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, जॉब्स के लिए सोचना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो
0: जी
1: सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं?
0: मुझे लगता है मैं इतना बहुत कुछ बोल चुका
1: बहुत
0: हूँ,
1: कुछ
0: इसके
1: सर
0: अलावा और क्या मैं बोलूँ।
1: जी सर, और वही है कि सर आप जैसे मार्गदर्शक जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। कई बार रियलिटी नहीं पता होती है कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट होती है। जैसे कई रिज्यूम में आपने जो चीजें बताई हमको, कंपनी में इसका अप्लाई किया जाता है, ये सब कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है, लेकिन जैसे सर आपने बताया उस तरह हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी युवा मंच कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ एक नया डिस्कशन लेकर आपके साथ। सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच।
0: Thank you so much for inviting me. I wish everyone a very successful and a bright career ahead.
1: थैंक
0: और
1: यू,
0: वेदांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने का।
1: थैंक यू सर। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप सभी का, सभी को स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी का जीवन मंगलमय बीते, इसी आशा के साथ मैं मोना आपके बीच आ चुकी हूँ। लेकर आई हूँ आज सवाल भी, जिसका जवाब देंगे आप 9414151415 पर। साथ ही साथ कहानी, कविता, होमवर्क, ये सब कुछ होगा आपके लिए। जुड़े रहिए उड़ान के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: को क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: बिल्कुल, रेडियो मधुबन 107.8 FM आप तक बहुत सारी बातें ऐसी पहुंचाता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए और आपके अंदर अच्छे गुण समाने में मदद करे। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, मैं हूं आपके दोस्त मोरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक अमेजिंग जानकारी लेकर। रानी कमलापति, जी हाँ, एक 18वीं शताब्दी के दौरान एक प्रसिद्ध गोंड रानी के विषय पर बात करेंगे और ये एक वीरांगना भी थी। गिरौड़गढ़ के गोंड राजा निजाम शाह की वो पत्नी थी। उन्हें भोपाल की अंतिम हिंदू व आदिवासी रानी माना जाता है, जिन्होंने अपने साहस और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान किया। साथ ही साथ कहते हैं ये खूबसूरत जगह जो है, इनका जन्म जो है सीहोर रियासत सलकनपुर के राजा कृपाल सिंह के यहाँ पर हुआ। बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और घुड़सवारी तीरंदाजी में भी बिल्कुल निपुण थी। गिरनौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह के साथ उनका विवाह हुआ। निजाम शाह की उनके एक रिश्तेदार चैन सिंह ने धोखे से उन्हें मार दिया और बदला लेने के लिए, अपने पति का मौत के बदला लेने के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए अफगान सरदार मोहम्मद खान से भी उन्होंने दोस्ती की और फिर अफगानों से खतरा और बढ़ गया। अपने पुत्र नवल शाह वीरगति को प्राप्त हुए तब अपनी आन बान शान के लिए रानी कमलापति ने भोपाल के तालाब में जल समाधि ली। चलिए ये तो बात उनके धरोहर की थी, लेकिन आज का सवाल जरा एक बार सुन लीजिए। सवाल है, रानी कमलापति महल किस भारतीय राज्य में स्थित है? रानी कमलापति महल किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, एक बेहतरीन गीत आप तक।
5: वक्त गवाह है, ये मिट्टी सिर्फ माटी नहीं, हमारी पहचान है।

0: ना हम रुके थे ना हम रुकेंगे और सूरज की तरह जरूर चमकेंगे। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो। देखिए, कई साथी हमें कॉल करते हैं लेकिन फिर बात नहीं करते, तो हमें दिक्कत भी होती है, और किसी कार्यक्रम को बीच में रोककर उनसे बात करने की उम्मीद रखते हैं, तभी तो हम उनके साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं। जी नमस्कार।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी।
0: जी जी जी।
1: नुवानी, कैसे हो आप?
0: जी बिल्कुल अच्छी है वो।
1: अच्छी है क्या?
0: जी।
1: आज होमवर्क है ना?
0: जी है, बिल्कुल है।
1: नुवानी आएगी?
0: जरूर आएगी, जरूर आएगी। जरूर आएगी।
1: आपको, सभी को, श्रोताओं को सुभाष भाई का नमस्कार
0: जी।
1: और सवाल जी, और सवाल का जवाब मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश।
0: ओके ओके ओके ओके। नमस्कार नमस्कार।

0: अपना परचम आज नस नस में तिरंगा। जय हिंद।
1: बिल्कुल, नस नस में तिरंगा, तिरंगे की शान, भारत की पहचान। इस सभी को याद रखना है, हर देशवासी को याद रखना है। किसी भी रीति हमारा देश पुनः वो गुलाम न बने, इसका वादा हर एक नागरिक को करना है। ऐसे कोई कार्य हम और आप कभी ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे जरूर बढ़ते हैं और पुनः आज के सवाल को दोहरा देते। सवाल हमने पूछा था, रानी कमलापति महल किस भारतीय राज्य में स्थित है? एक ऐसा खूबसूरत महल जिसके बारे में यदि आपको कोई जानकारी हो तो जरूर बताना, लेकिन उसके साथ साथ क्या ये ए उत्तर प्रदेश में है, बी राजस्थान में है, या फिर सी मध्य प्रदेश में है? तब तक कविता लेकर आती हूँ, आप तब तक सुन लीजिए मिशन लाइफ।
2: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
3: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
2: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
3: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: बिल्कुल सही कहा, हम और आप छोटे छोटे कदमों से अपनी इस धरती की रक्षा कर सकते हैं। धरा है पावन अति मन भावन, धरा है पावन अति मन भावन, देश का हृदय प्रदेश है, कल कल बहती माँ नर्मदा, हरित सकल कलेश है। विंध्याचल और सतपुड़ा का पहाड़, विंध्याचल और सतपुड़ा का पहाड़, सबसे सुंदर अपना यह डेरा है। सांची के स्तूप और खजुराहो की शान, महाकाल की नगरी बड़ाई इस जगह की मार। चित्रकूट की माटी में राम का था वास, यहाँ की संस्कृति और कला है उस पर विश्वास। हेरा और पन्ना की चमक यहाँ निराली है, हर चेहरे पर आती इससे बड़ी खुशहाली है। नर्मदा चंबल शिप्रा और सोन, उज्जैन ओंकारेश्वर और चित्रकूट, धरोहर में सांची स्तूप भीमबेटका और खजुराहो है, ये कोई और नहीं मेरा मध्य प्रदेश है। तो चलिए एक गीत आप तक पहुंचाते हैं। रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे उड़ान। नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे उड़ान। कौन बोल रहे हैं सर?
1: पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: नमस्कार फिरोज जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे हैं। और पालमपुर की बाजार में खड़ा हूँ
0: जी।
1: और यहाँ सब चाल पाल है थोड़ा स्टॉक मार्केट में।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और दूसरा के आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब है अपना कमलापति महल कहाँ है? वो एमपी भोपाल के अंदर है।
0: ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज का जवाब देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार।

0: जी हाँ, भारत की बेटी, मनमोहक पर्यटन स्थल अमरकंटक माँ भोर से लगा लेकर सांझ ढले, बिना थके तू काम करे, थोड़ी सुस्ती तो सुस्ता ले। मुझे संग गुनगुना लोगी तो सच कहती हूँ प्यारी माँ, तुम्हें माँ नर्मदा के दर्शन करा दूंगी। शिव स्तुता का धाम जहाँ अमरकंटक है नाम, वहाँ मैं काल पर्वत के जंगल में माँ नर्मदा के कल कल में, ऐसी अद्भुत माया है, कपिल कबीर के ने वहीं जाके ध्यान तो लगाया है। हर कंकड़ जहाँ शिव शंकर बना, वहाँ नर्मदा हर ओंस की बूंद है, इसी धरा से बहती जो हिला सोनभद्र की कूदे हैं। यहाँ ठहरते जैन मुनि जब चातुर्मास आता है, माँ नर्मदा के दर्शन से ही पुण्य वह कमाता है। आगे बढ़ते हुए इस कविता को सुनाकर आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल पुनः दोहराते हैं। रानी कमलापति महल किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश। देर मत करिएगा, 9414151415 पर सही जवाब जरूर दीजिएगा। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। हमारा बुद्धू बेघर हो गया है, एक गलती से सारी जिंदगी उजड़ गई है उसकी। सुन लेते आज की ये कहानी उड़ान में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: ये लीजिए मालिक, गरम गरम चाय पी लीजिए। हाँ,
2: रख अपनी ये गरम चाय, एक तो ऐसे ही गर्मी में मैं पका जा रहा हूँ, पूरा कमरा जैसे प्रेशर कुकर बन चुका हो। अरे तू ऊपर क्या ढूंढ रहा है? हाँ
1: जी, वो प्रेशर कुकर का ढक्कन दिख जाता तो फट से खोल देता तो कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता।
2: ओ, सोच रहा हूँ इस गर्मी में एसी क्यों ना मैं लगवा ही लूँ।
1: ये एसी क्या है मालिक?
2: एसी रे एसी, जिससे ठंडी ठंडी हवा निकलती है और कमरा ठंडा हो जाता है। सिर्फ एसी ही क्यों, इस गर्मी में मैं एक फ्रिज भी लूंगा।
1: अब ये क्या है मालिक?
2: फ्रिज वो होता है जिसमें मछली मटन सब्जियाँ ये सब रखने पर बहुत दिनों तक ठंडे और ताजा रहते हैं, और फ्रिज रहने से रोज रोज तुझे बाजार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: अरे वाह, तो मेरे बदले फ्रिज ही चल चल कर बाजार का दे जाएगा ना मालिक?
2: बेवकूफ कहीं का, फ्रिज चल सकता है क्या? है तू हफ्ते में एक ही दिन सारी चीजें खरीद कर उसे फ्रिज में रख देना, बस फिर तेरा काम हो गया।
1: सच में मालिक, आपको ना कितना कुछ पता है। हाँ, जरा अपने चरणों की धूल तो दीजिए मालिक।
2: रुक जा, अभी तो शुरुआत है। सोच रहा हूँ एक वॉशिंग मशीन और एक मिक्सर भी खरीद ही लूँ।
1: इन सब का क्या काम है मालिक?
2: वॉशिंग मशीन वो है जिसमें तुम गंदे कपड़े डाल देने पर वो साफ सुथरे होकर बाहर आते हैं।
1: क्या कह रहे हैं आप, उस मशीन में क्या कोई धोबी बैठा होता है?
2: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, धोबी नहीं धोता है, मशीन खुद ही धो देती है। और मिक्सर वो है जिसमें मसाले वगैरह पीसने के साथ साथ दही से लस्सी बनाने तक सब कुछ हो सकता है।
1: इतने सारे मशीन ले आएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा मालिक?
2: अरे मशीन क्या खुद में खुद चल सकती है क्या? तेरा काम होगा मशीन चलाकर सारे काम करना। जाता हूँ आज ही शहर जाकर एक अच्छी सी दुकान देकर सब कुछ की बुकिंग करके आता हूँ। वो लोग दो एक दिन में ही घर आकर सब कुछ लगा के जाएंगे।
1: जाइए जाइए, हाँ आराम से जाइएगा मालिक। जाता हूँ तब तक मैं एक हफ्ते की सब्जी खरीद कर ले आता हूँ, फ्रिज के आते ही सब जल्दी से उसमें रख दूंगा। हाँ, और थोड़ी दही भी खरीद कर लेकर आता हूँ, मालिक को लस्सी पीना बहुत पसंद है ना।

0: आप फिक्र मत करिए सर, हम लोग कल ही ये सारे प्रोडक्ट आपके घर डिलीवर कर देंगे। हाँ, और हाँ, कल ही हमारे लोग जाकर आपके घर सब इंस्टॉल कर देंगे।
1: ठीक है ठीक है ठीक है। अब पूरी गर्मी आराम से कटेगी। देख बुद्धू देख,

0: लीजिए रघु बाबू, आपके लिए एक चिट्ठी आई है।
1: अनर्थ हो गया, बुआ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे मुझे मुझे अभी के अभी निकलना होगा। रे बुद्धू,
2: आप अब देर मत करिए मालिक, तुरंत निकल जाइए। हाँ,
1: तू यहाँ खड़ा रहकर ये सारा काम करवा लेना बुद्धू, ठीक है? मैं चलता हूँ।
2: आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मालिक, बुद्धू तो है ना यहाँ पर।
1: वही तो फिक्र करने की बात है।
3: अब बताइए ये ऐसी कहाँ सेट करूँ?
2: अरे रे, ये तो मालिक बताकर ही नहीं गए हैं, पर जब मुझे जिम्मेदारी देकर गए हैं तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ हाँ, मिल गया, शाबाश बुद्धू, तुम तो दिमाग के भी बुद्धू हो।
3: इस पर कैसे होगा?
2: मैं कुर्सी लाया हूँ, एसी को यहाँ पर सेट कर दीजिए। मुझे सब पता है, मालिक ने मुझे बताया है कि ये बहुत महंगी है, इसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी ना।
3: क्या आदमी है ये, ऐसी कुर्सी पर नहीं लगती।
2: हा? तो फिर लाइए यहाँ आसन पर रख दीजिए।
3: ये किसके पल्ले पड़ गए हम, एसी दीवार पर लगती है।
2: एसी क्या छिपकली है जो दीवार पर रहेगी? मेरा नाम भले ही बुद्धू है, पर मुझे बेवकूफ बिल्कुल भी मत समझना, हाँ बोल देता हूँ।
3: धत, इससे पूछ के ही गलत कर दिया मैंने, मैं अपने हिसाब से फिट कर देता हूँ।
2: अरे बाप रे, इसे तो मेरी बात पसंद नहीं आई, इसलिए बैग से तुरंत बंदूक निकाल लिया। बचाओ बचाओ मुझे, मालिक घर पर नहीं है, घर में अकेले देखकर मार देंगे मुझे।
3: चुप चुप, बिल्कुल चुप। अब और कोई भी बकवास की तो बिना काम के ही चले जाएंगे। हाँ
2: वो भी सही नहीं है, मालिक घर आकर मुझे बहुत डांटेंगे, इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं। हाँ।

0: लीजिए देख लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने पर बिल के पीछे दिए टोल फ्री नंबर पर फोन कर दीजिएगा, हम चले आएंगे।
1: नहीं नहीं, अब आप लोगों को तकलीफ उठाकर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद ही अपने आप को लेके आऊंगा।
0: क्या आदमी है ये।
2: ठीक है भाई, हम चलते हैं।

0: मालिक भले ही मुझ पर भरोसा ना करे, पर मैं भी छोड़ने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं भी साबित कर दूंगा कि बुद्धू बेवकूफ है तो क्या हुआ, उसके दिमाग में भर भर कर बुद्धि है।
1: अरे बाप रे बाप रे बाप, कितनी ठंडा हवा दे रहा है ये।
0: लगता है मालिक इसकी बात कर रहे थे। इसके भीतर ही मछली मटन सब्जी ये सब रखने पर ठंडा और ताजा रहेगा। पर इसे दीवार पर इतने ऊपर क्यों लगाया, क्या पता। जाता हूँ इसमें सब कुछ भर कर रख देता हूँ।

ओह, इसमें कितने कम जगह है। इसमें तो एक दिन की सब्जी एक साथ नहीं घुस रही है। एक हफ्ते की सब्जी कैसे रहेगी। हाँ, अब मैं मालिक के गंदे कपड़े भी धो डालता हूँ इसमें। मालिक जब आकर देखेंगे कि बुद्धू ने मशीन में कपड़े धुले हैं, तब वो कितने खुश हो जाएंगे।

0: अरे बाप रे, जहाँ जगह की जरूरत नहीं है वहाँ कितनी जगह दे रखी है बताओ। इतनी बड़ी जगह में कितने लीटर लस्सी बन जाएंगे? हाँ जाता हूँ, अब जाकर एसी की हवा में जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। कितना बढ़िया एसी है, ये दरवाजा बंद होते ही अपने आप लाइट भी बंद हो गई है।
1: बुआ जी अब पूरी तरह से ठीक है, पर पूरे दिन की भाग दौड़ में मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। अब घर जाकर एसी चलाकर ठंडी ठंडी लस्सी पीऊंगा, उसके बाद नहाकर आराम से सो जाऊंगा। अरे ये क्या, खिड़की दरवाजे ऐसे ऐसे क्यों खुले हुए हैं? और ये धुआं कैसा है? बुद्धू, ए बुद्धू, हाय हाय हाय हाय, सत्यानाश हो गया। हाय हाय हाय हाय हाय, ये सब ना उस बदमाश का काम है, बस वो एक बार मेरे हाथ लग जाए उसके बाद मैं उसे मजा चखाता हूँ। पर वो आखिर गया कहाँ? हाँ

0: मालिक मालिक, आपने जो एसी खरीदा है ना, ठंड के मारे तो मैं जम ही गया था। फ्रिज में मैंने सब मछली सब्जी भर कर रख दी है, आपके कपड़े भी धो दिए हैं। ये रहा। सिर्फ साफ ही नहीं हुआ मालिक, बिल्कुल डिजाइनदार होकर निकले हैं। रुकिए अभी आपको लस्सी पिलाता हूँ।
1: बुद्धू, निकल जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से।
2: देखो दोस्तों, बुद्धू ने क्या किया, एसी में सारी सब्जियां रख दी, लस्सी उसने क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में बनाया, और मिक्सर ग्राइंडर में उसने कपड़े धोए। उम्मीद है मेरे कोई दोस्त बुद्धू जितने इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं होंगे, और वो अपनी अच्छी बुद्धि के साथ, मतलब है तो उनके पास बुद्धि, पर फिर भी जागरूक होकर आज के सवाल का जवाब जरूर देंगे। रानी कमलापति महल किस भारतीय राज्य में है? आपके सामने ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जंगलों में
1: शेर खान को देखा।
0: पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा।

0: The heart of incredible India, Madhya Pradesh.
1: ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: भजन को 5 रुपया बाराना दे दीजिए, लेकिन आज का होमवर्क जरूर ध्यान से सुनिए। आज का होमवर्क चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आपने कहा है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। चलिए सुनते हैं आगे।
1: सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया।
0: चलिए उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर बढ़ा। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के ही हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोपों के गोले से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया।
1: सैनिक दल ने जब वहां तोपे लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी।
0: उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोली बरसाने से मना किया। उसका करुणा मुख, पूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हो?
1: बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल को रक्षा करेंगे?
0: सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है?
1: बालिका ने बोला, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है?
0: सेनापति ने कहा, ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान था, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है।
1: बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए।
0: सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरे में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। इसी वर्ष पूर्व मेरे पास बार बार आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे।
1: मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है।
0: ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा,
1: अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है।
0: सेनापति हैं कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, किंतु मैं जो सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा टाल नहीं सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा।
1: इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटम वहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया?
0: वेल दोस्तों, कल आगे का पाठ सुनेंगे, क्या सचमुच नाना का महल उड़ा दिया जाएगा या उसे थोड़ा बचा लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही होमवर्क। पुनः सवाल आपके लिए, रानी कमलापति महल किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है ए
1: उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश।
0: सही जवाब जरूर दो 9414151415 पर दो।
2: तिल देखो, तार देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाढ़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारा सिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेट का कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झिलमिल देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो,
0: हिंदुस्तान का दिल देखो। रानी कमलापति महल भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है
1: 9414151415।
0: चलिए थोड़ी देर में देते हैं जवाब आपको।
3: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
4: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
3: सोनोग्राफी वो किस लिए?
4: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
3: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
4: फिर तुम शुरू हो गई।
3: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
4: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

कहानियां जंजीरों में जकड़े एक देश की, जिसने दर्द सहा पर झुका नहीं।

0: का सम्मान। बिल्कुल हारा शरीर, लेकिन भारत माँ का सम्मान कभी ना हारा। रानी कमलापति महल भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या उत्तर प्रदेश है?
1: नहीं।
0: बी राजस्थान?
1: नहीं।
0: तो
1: ऑप्शन सी मध्य प्रदेश।
0: भाई उत्तर प्रदेश में भी तो इतने महल है, राजस्थान में तो महलों की कोई कमी नहीं, आपने मध्य प्रदेश कह दिया।
1: क्योंकि रानी कमलापति का महल मध्य प्रदेश में है।
0: चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे,
0: तब तक के लिए
1: गुड बाय।
0: सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी है।
1: इस कार्यक्रम का माध्यम से आज आपके पास हम पहुँच रहे हैं और आप सबको विदित है रेडियो मधुबन का सामुदायिक रेडियो सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। तो सरकार का जो मंशा है, जैसे रेडियो बहुत सारे रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो है और कमर्शियल रेडियो है और ये आपका रेडियो है सामुदायिक रेडियो, मीन्स बच्चों का रेडियो, बच्चों का भागीदारी इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर, बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज हम पहुँचे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेडुआ कला में पहुँचे। बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि हमेशा की तरह आज भी बच्चे भाग लेंगे, क्योंकि पहले भी 2 साल पहले 1 साल पहले भी आए थे, यहाँ से बच्चों का रिकॉर्डिंग किए थे, बच्चों का हुनर को, बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का भाव और भावना को जन जन तक पहुँचाए थे। तो आज पुनः उनको याद कर रहे हैं और बच्चे, तो नए बच्चों को भी आज चांस मिल रहा है। वो बच्चे प्रमोशन होकर दूसरा क्लास को चला जाते हैं और जो छोटे बच्चों को उनको भी तो लेना पड़ेगा, उनका भी भाव और भावना को पहुंचाएंगे। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा संस्था प्रधान श्रीमती रितु मैम को भी धन्यवाद देते हैं। उनका इशारा से, उनका तत्वावधान में, उनका गाइडेंस में, उनका देखभाल में ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी स्टाफ भी, कविता मैम, पूजा मैम, सभी मैम और साथ सर को भी स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को सहयोग देख ले, सभी बैठे हैं, सभी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और ये कार्यक्रम को हमारा कविता मैम को कौन भूल पाएंगे। कविता मैम है ना, कविता मैम को जो ऑल इंडिया रेडियो में पहले थे, अभी यहाँ पर टीचर कर रहे हो, पार्ट टाइम जाते होंगे तो उनको भी पहले लिए थे। मैम आप

0: से 3 साल पहले भी ये हमारे विद्यालय में आए थे जब मैं कक्षा 8वीं की अध्यापिका थी। आज पुनः ये आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अपने साथ वो हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करके जाते
1: हैं और बच्चों से नई नई चीज़ें उभरवाते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं हमारे बच्चों को प्रार्थना के लिए आमंत्रित।
2: तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता मैम को। कविता मैम, हमें खुशी है क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो, हम तो कभी जा नहीं पाए, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो से आप बिलोंग करते, ये भी एक हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन का बात है। और आरजे जैसे नाम से जैसे टीचर मैडम कहते हैं, आरजे जो रेडियो में भाग लेते बा रेडियो में जो सर्विस करते हैं उनको आरजे कहते हैं। बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर भी है, वो तो बच्चे बाद में सीखेंगे, लेकिन जो बोलने वाले उसको आरजे कहते हैं। तो हमारा छोटे से मुन्ने आरजे भी आए हैं, तो अपना परिचय देंगे, अपना नाम और क्लास के, क्योंकि कविता मैम बच्चों को हुनर देखा है। और कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो प्रार्थना सत्र से हम शुरू करते हैं, तो इस कार्यक्रम को प्रार्थना के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेडवा कला का बच्चों का आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि प्रार्थना में जो दिल का तार भाव और भावना माँ सरस्वती तक पहुँचता है। तो चलिए, हमारा साथ 5 गुड़ियाँ हैं, परियाँ हैं और फरिश्ते हैं, तो उनको स्वागत करते हैं। हेलो, नाम बताइए।
3: सोनिया।
2: सोनिया, और कौन सा क्लास सोनिया?
3: कक्षा 6।
2: हाँ, क्या आवाज है, मैंने बोला था ना आवाज में दम होना चाहिए, क्योंकि आवाज ही उनका पहचान होगा, क्योंकि ये तो वीडियो नहीं है, ये ऑडियो है। आवाज जो सुनेंगे रेडियो में, आह क्या मधुर आवाज, सुर लय का ताल। हमारा क्या नाम बताया था?
3: सोनिया।
2: सोनिया, हर विद्यालय में जाते हैं ना, हर स्कूल में सोनिया और सुरेश, सोनिया और सुरेश सब स्कूल में मिलेंगे। और सोनिया आगे बढ़ चढ़े, उसका नाम जो दिए है, हमारा लीडर भी सोनिया आज, और सोनिया उनका दोस्त भी बहुत है। तो नाम बताइए।
3: पायल।
2: पायल, वाह।
3: रितिका।
2: रितिका, ओके।
3: दीपिका।
2: दीपिका, रितिका एंड
3: मेरा नाम है अनिशा।
2: हाँ, ये हुई ना, मेरा नाम है, मैं हंसा नहीं, मेरा नाम हंसा है, मेरा नाम बोल रहे, बहुत अच्छा है, इसमें ही कुछ ज्ञान भरा हुआ है, मैं बताऊंगा। मेरा नाम, मैं हंसिका नहीं बोल, मैं पवित्र नहीं, मेरा नाम पवित्र है, ऐसे मेरा नाम और मैं अंतर है, जानेंगे, लेकिन शुरुआत हो गया और हमारा साथ। चलिए, सभी को धन्यवाद देते हैं आज का कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चे फरिश्ता होकर उनका आवाज सुनो, क्या दम है, चलिए सुनते हैं।

0: हम चले मेरे से प्यमजी, भूल कर भी कोई भूलो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सही में शक्ति दाता से हमें शक्ति लेते हैं, और सर्वशक्तिमान जब हमारा साथ है तो डरने की क्या बात है, है ना बच्चे? डरेंगे क्योंकि हमारा साथ सर्वशक्तिमान है, शक्ति हमें मिलता है और हमें बहुत खुशी है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा सभी मालिक हमारा साथ है, हमारा कार्यक्रम अच्छा होगा क्योंकि हम सब अच्छे हैं। चलिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चे के लिए जोर से क्लैपिंग बच्चे, क्योंकि ताली बजाने में पैसा नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता है, लेकिन खुशी मिलता है कि नहीं बच्चे? और चेहरा पूरा गोला फूल जैसे खिलता है, है खिलता है कि नहीं? हाँ, इसलिए ताली समय समय पर बजाना चाहिए जब हमको खुशी लगेगा, और है ना, और हमारा बच्चियों के लिए भी खुशी लगेगा, लगा खुशी। अच्छा बड़े होकर क्या बनेगी तुम?
2: पुलिस।
1: बार चोर तो डरेगा, आज भागेगा पूरा, चोर जब भ्रष्टाचार करेंगे कोई अन्याय करेंगे तो वो भागेगा। पुलिस हमारा, पुलिस कभी देखे बच्चे? पुलिस का काम क्या होता है?

0: है, चोर को पकड़ते हैं। अच्छा, और अच्छा काम करते हैं हा? चोर को पकड़ना भी अच्छा काम है, और बड़े होकर हमारा पुलिस बनेगी, नन्नी मुन्नी पुलिस जरूरी। तो रेडवा का लगा स्कूल के बच्चे को याद करेंगे, वो बच्चे वहां बड़े होकर पुलिस बनेगा। और नेक्स्ट सोनिया, तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैडम
0: मैडम? हाँ टीचर। मैडम कितने मैडम है? मैडम 8? वाह, ताली बजा भाई, इतने मैडम हमारा स्कूल में, वाह। क्योंकि बच्चे को भरपूर कर देते हैं, जहाँ स्कूल में मैम लोग रहेंगे, मैडम लोग रहेंगे, तो और सर लोग रहेंगे, तो बहुत भरपूर करेंगे बच्चों के लिए, बहुत खुशी का बात है। इसलिए तो मैंने बोला बच्चे बहुत आशीर्वाद ले रहे हैं शुरू से ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे और एक प्रस्तुति, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल। सबको खुशी लगा?
1: जी
0: खुशी लगा?
1: जी
0: ऐसे मौका मिलना चाहिए, है ना? कोई डर लग रहा है?
1: नहीं
0: कोई झिझक
1: नहीं,
0: नहीं, क्योंकि आपका साथ सब लोग है। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलिए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कड़ी ब्रेक का पहले हम गीत सुन रहे थे प्रार्थना के रूप में, और रेडियो प्रोग्राम आप सब सुन पा रहे हैं, खासकर राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय रेडवा कला का बच्चों को आवाज। तो अभी नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हमारा साथ देसी, जो कि आदिवासी गीत जो होता है ना, बहुत मिठास होता है, तो बड़े चढ़ हिस्सा लेते हैं। बड़ों को जब गीत गाते हुए देखते हैं तो छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं, लेकिन आज छोटे बच्चे को देखकर छोटे बच्चे सीख जाएंगे ना बच्चे। हाँ, छोटे बच्चे गा रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए प्रेरणा होगा। और जब आदिवासी गीत में जो मिठास है, जो शुद्धता, जो भोलापन आज देखने को मिलेगा। और सेम टीम को हम पुनः स्वागत करते वंस मोर, और एक बार हो जाए, ठीक है? ओके, सभी नाम का साथ धन्यवाद देते सोनिया एंड पार्टी। ओके, ग्रुप रेडी? ओके, गीत गाने के लिए आदिवासी गीत।

0: चलिए बहुत अच्छा, किंतु अचानक में पहुंचे इस विद्यालय में, बच्चों का कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर कोई सूचना नहीं था, फिर भी अचानक में जो पार्ट बजाए, जो प्ले किए, कम बात नहीं, छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे तो माइक से दूर रहते हैं, और रेडियो में बोलना ये मासी का घर नहीं है, माँ कुछ बोलेगे तो मासी के घर में चला जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे मासी का घर सोच कर पूरा रेडियो में प्रोग्राम, हाँ जी, और इसका श्रेय तो सभी स्टाफ को जाता है, और सभी ने उसको प्रोत्साहन देते, छोटे छोटे बच्चे भी अपना आवाज को दिए हैं, ये कम बात नहीं। और क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या नाम बताया?
1: रितिका।
0: रितिका, क्या बात, रितिका तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैडम।
0: मैडम बनेगी, मैडम का काम क्या होता है?
1: बच्चों को पढ़ाना।
0: हाँ, बच्चों को पढ़ाना होता है, मैडम का काम, शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना होता है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, कल पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे तब तो पढ़ाएंगे, है ना
1: जी?
0: हाँ जी। और तुम क्या बनेगी?
1: डॉक्टर।
0: हाँ, क्या बात है भाई, डॉक्टर, पुलिस और मैम, यहाँ तो भरपूर है। और बच्चों का उमंग उत्साह देखो कितना सुंदर से, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर में इतना भावना है, लक्ष्य है, तो लक्ष्य जब रखेंगे तो लक्षण दिखाई देना चाहिए, और उसका माँ बाप को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप का भी सहयोग रहता है, और उस विद्यालय का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन माता पिता भी काम नहीं, साथी सहयोग, उनका परिवार, दोस्त लोग भी सहयोग देते, जिसका चलते वो आगे बढ़ पाएंगे, और ऐसे ही डॉक्टर बनते हैं, छोटे बच्चों का इच्छा रहता है, इसके बाद बड़े होकर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर बन जाते हैं, है ना, बन जाएंगे ना
1: जी।
0: हाँ, तुम्हारा घर में कोई डॉक्टर है? नहीं, नहीं घर में, फिर भी आपको कैसा लगता है हम डॉक्टर बनेंगे, कौन बताया?
1: अच्छा लगता है।
0: अच्छा, डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, और डॉक्टर बनेंगे तो सुई देना बना, बट डॉक्टर का काम क्या होता है? किसको देते हैं बच्चे? मरीज को, जिसको बीमारी है उसको सुई लगाते, लगाते कि नहीं? कौन कौन सुई लगाए, हाथ उठा दे, कभी सुई लगाया? कोई नहीं लगा, बहुत अच्छे, सब स्वास्थ्यवान है, कोई किसका बीमारी नहीं हुआ, डॉक्टर का काम कुछ नहीं पड़ेगा, जहाँ पर सभी स्वास्थ्यवान है वहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारा साथ और एक गुड़िया है, नाम बताओ?
1: पायल।
0: पायल बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैम।
0: मैम बनेगी, बहुत अच्छा, छोटा मैम के लिए ताली बजा दो भाई, अभी से ही मैम बन गए, देखा तुम्हारा मैम के लिए कितना देखो ताली बजा रहे, अच्छा मैम बनना है, पढ़ाई करना है, ऐसे थोड़े मैम बनते हैं, मैम कैसे बनते हैं, अभी हमारा मैम से जानेंगे, मैम कैसे बनते हैं, आपका नाम बताएं, मैम बने आप?
2: मेरा नाम डिंपल कवर है।
0: डिंपल जी,
2: मैं इधर स्कूल में गणित पढ़ाती हूँ।
0: मैम आप कैसे मैम बने?
2: पढ़ाई करके, डिसिप्लिन रह के, और बहुत सारा मेहनत करके।
0: हाँ,
2: सारे बच्चे ऐसे ही मेहनत करके, डिसिप्लिन रह के, पढ़ाई करके, और बहुत उमंग ऐसे ही रखना हमेशा।
0: देखा, सुना मैम का टिप्स, विद्यार्थी जीवन में मेहनत, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब तक अपना लक्ष्य तक मैम तक नहीं पहुंचे तब तक पढ़ाई करना, और दूसरा बात सर, पढ़ाई तो करना ही है, और बड़ों का बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए?
3: मानना चाहिए।
0: ए सुनो बच्चे, बड़ों का बात मानना
3: चाहिए, मानोगे कि नहीं?
0: जोर से सर, आपको रेस्पेक्ट दे रहे, आपका बात, बड़ों का बात मानना चाहिए,
3: बड़ों का आदर करना चाहिए, करोगे कि नहीं?
0: सर आप कैसे बड़े बने?
3: हम तो बहुत मेहनत करके।
0: हाँ, मेहनत करने से बड़े बनते हैं, है ना बच्चे? अभी तो बच्चे छोटे, पढ़ना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है,
3: कर्म करना पड़ता है,
0: जो बड़ों का बात मानेंगे बहुत अच्छा बनेंगे, वो किसका बात मानना नहीं पड़ेगा आगे जाकर, अभी बच्चे मानेंगे, आगे जाकर मनाएंगे सभी को, सबको मना रहे, आपका बात सब मान रहे कि नहीं?
3: मान रहे।
0: हाँ, आपका शुभ नाम?
3: दुर्गालाल।
0: और क्या पढ़ाते सर?
3: मैं फिजिकल टीचर।
0: फिजिकल टीचर, अरे वाह, फिजिकल टीचर के लिए जोर से ताली बजा भाई, हमारे फिजिकल टीचर हमको फिट करते हैं, शरीर फिट नहीं रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इसलिए स्वास्थ्य होना जरूरी है, शारीरिक एक्सरसाइज कराते हैं और अनुशासन सिखाते हैं हमारा पीटी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, सभी का आवाज गुलदस्ता जैसे बन रहा है, हमारा मैम का आवाज, बच्चों का आवाज, बड़ों का आवाज, और बाकी मैम भी है तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, ये तक बच्चों का तुतली तुतली आवाज का साथ हमारा गुलदस्ता, बच्चे बहुत अच्छा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए एक का बाद एक का बाद आवाज को रोक नहीं पा रहे, और हमारा मैम और सर को भी हम चांस दे रहे आज, क्योंकि बच्चों के साथ आज बच्चे सर भी बच्चे मैम भी बच्चे बन जाते हैं, और बच्चों के साथ हम भी बच्चे बनेंगे तो उनका आवाज को उनका भाव और भावना को हम ले पाते हैं। और छोटी सी परी और छोटे सी परी दो परी आई है तो हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। हमें खुशी है इस तरह बच्चों को मंच मिल रहा है, और इसका श्रेय तो सभी स्टाफ को जाता है, क्योंकि जब भी आते हैं अचानक में आते तब भी हमें चांस मिलता है। तो हमारे साथ एक गुड़िया है। हेलो गुड़िया, क्या नाम है?
1: पूनम।
0: पूनम, वाह क्या सुंदर नाम है। पूर्णिमा, पूरा भरपूर है। पूर्णिमा चांद, पूर्णिमा हमारा पांच है, पूर्णिमा रात में हमारा चांद पूरा महकता है, पूरा चांदनी का पूरा बिखरते हुए आज हमारा पूर्णिमा आए, और उनका दोस्त भी क्या नाम, हेलो नाम बताइए प्लीज।
1: सुमन।
0: सुमन जिसका मन इतना सुंदर है, सुमन मन को सुमन करना है। हमारा सुमन में और पूनम दोनों आज मिलकर इस कार्यक्रम को सजाएंगे। क्या प्रस्तुति करेंगे मुझे मालूम नहीं, वो खुद बताएंगे। कौन सा क्लास?
1: दूसरी।
0: ओ दूसरी क्लास, अरे
1: दूसरी,
0: दूसरी वाह, दूसरी क्लास का बच्ची भी आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे। बहुत खुशी लग रहा है, आज माइक मिल रहा है उनको, आज उनका आवाज हो जाएगा, बच्चों का आवाज सुनेंगे तो उनका मम्मी पापा दोस्त लोग और मैम लोग बोलगा रहे हमारे पूर्णिमा का आवाज है, और इस तरह बच्चों का आवाज सुनेंगे तो नामांकन में भी वृद्धि होगा, बच्चे पढ़ाई का साथ साथ इस तरह आकाशवाणी में आते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं, शुरू करो।

0: पूर्णिमा और सुमन को भी सहयोग दिए,
1: सभी के लिए धन्यवाद। बहुत ज्यादा सभी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, और खासकर छोटे छोटे बच्चों को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलिए और एक प्रस्तुति रेडी है तो हमारे साथ सभी होनहार बच्चे रेडी है सोनिया एंड साथी और इस कार्यक्रम को सभी बच्चे भी देख रहे सुन रहे और हमारा रेडियो कार्यक्रम जहां तक पहुंच रहा है इंटरनेट का माध्यम से एफएम का माध्यम से लिंक का माध्यम से एप्लीकेशन का माध्यम से सुन पा रहे पूरा भारत के कोने कोने से सुन रहे और हमारा बच्चे आदिवासी बच्चे है लेकिन कम नहीं है उनका झिझक नहीं है झिझक दूर करके आए कोई शर्म नहीं करते कोई आवाज में भी बुलंद है तो सभी को पुनः स्वागत करते हैं सोनिया एंड पार्टी को और एक गीत के लिए क्योंकि रेडियो मधुबन इस तरह मंच देता है जिस मंच का माध्यम से अपना भाव भावना हुनर और बोलने का जो तरीका है स्वर लय का साथ पूरा जब उनको मिलेगा भाई डांस करो तो डांस करो क्योंकि हमारा रेडियो तो डांस का नहीं है वो तो दृश्य नहीं है वो तो श्रवण है सुनने के लिए तो सुनने के लिए हमारे साथ सभी रेडी है श्रोता है तो सुनते हैं अगला प्रस्तुति सोनिया एंड पार्टी।

0: बच्चे ताली बजाकर खुश कर दिए, और ऐसे होना चाहिए। प्रभु याद में सुनते हमारा साथ, इस कार्यक्रम को देख रहे, हमारा मैम को भी स्वागत करते। मैम का भी आवाज कैसे हम भूल पाएंगे, सभी का आवाज ले रहे तो हमारा मैम भी बैठे। मैम इस तरह कार्यक्रम में हमारा जो रिपोर्ट भी दे उनका हाथ में है, सर्विस रिपोर्ट देख रहे थे, तो सर्विस रिपोर्ट जो कि 2015 से 2025 तक का रिपोर्ट हमें जो आसपास सेवा की है उसका रिपोर्ट देख रहे थे। मैम अपना परिचय देंगे
1: जी। मेरा नाम नसीम बानू है, मैं इसी विद्यालय में हिंदी पढ़ाती हूँ।
0: और क्या कहना चाहेंगे जी, रिपोर्ट देखें तो इस तरह कार्यक्रम का और क्या ऐड करना चाहते हैं बच्चों के लिए?
1: देखिए इस तरह की रिपोर्ट से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे आगे आके अपनी आवाज और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं।
0: और क्या होना चाहिए कार्यक्रम में कुछ सुधार के लिए, हम माने क्या कर सकते बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जो कार्यक्रम अचानक में हम आते हैं और बच्चे अपना भागीदारी देते हैं, बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं हर कार्यक्रम में, तो पढ़ाई का साथ साथ बच्चों का ये भी एक्टिविटीज जो मिलता है।
1: ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी हो, कविताएं हैं जिससे बच्चे गाए और आगे आके कुछ सीखे, जो इनसे प्रेरणा मिल सके।
0: मैडम जैसे पेड़ लगा, जैसे आपका विद्यालय में हम जब भी आते हैं बहुत हरा भरा लगता है, हम दो बार पेड़ भी लगाए इस स्कूल में, तो आज वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, हमें उसको देखकर खुशी होता है। कहीं उस समय लगाए थे उस मैम का हाथ से। और पर्यावरण कितना आवश्यकता है, तो पर्यावरण का ऊपर में क्या कहना चाहेंगे, पर्यावरण को हम कैसे बचाएंगे? आप तो बचाते हैं लेकिन जो नहीं बचा रहे उसको क्या कहेंगे? पेड़ लगाओ,
1: पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और जो लगे हुए पेड़ है उनकी बस बच्चों को देखभाल करने के लिए कहेंगे, और ऐसे ही प्राकृतिक जो और भी पेड़ है आसपास उनको लगाने के लिए प्रेरित करेंगे और बच्चों को यही कहेंगे कि सर इनकी देखभाल कीजिए, और तो क्या कह सकते हैं।
0: जैसे पर्यावरण नाम सुनते तो आपका मन में पर्यावरण का परिभाषा क्या होता है, पर्यावरण किसको कहते हैं?
1: देख पर्यावरण के अंदर हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है उसको हम शामिल करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, इनको
0: सजीव निर्जीव सभी हमारा पर्यावरण में
1: सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं।
0: जैसे पांच तत्व भी आता है
1: जी, वायु, हवा, पानी, ये सब शामिल होते हैं
0: समय, उसको शुद्ध आज शुद्ध तो लग रहा है?
1: नहीं अभी थोड़ा इतना शुद्ध नहीं है,
0: इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध कैसे होगा मैम आपका विचार में?
1: सर ऐसे है कि लोगों में देखो एक तो जागरूकता लाई जा सके और रैलियां और इस स्व जागरूकता सबसे पहली जरूरत है।
0: स्व जागरूकता, स्व उन्नत, स्व एडमिनिस्ट्रेशन, स्व को जब जानेंगे तो अपना परिवेश को ठीक रखे।
1: ये अपने अंदर से होना चाहिए सर, ऐसे कोई बाहर से बोले कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन जब अपने अंदर ऐसे भावनाएं आएगी कि नहीं हमें करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है, ये अपना काम समझ के हर कोई करेगा तो सर इससे
0: बहुत अच्छा बात आपने बताया, क्योंकि जो स्व खुद को कंट्रोल करना, खुद का हाथ में रखना, स्व निरीक्षण, स्व उन्नति, स्व से करो,
1: दूसरों को कहने से पहले जो काम अपन खुद करते तो उसका सर दूसरों के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है।
0: कहने का पहले करके देखा हो,
1: करके पहले खुद करो फिर दूसरों को कहेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसे, और बाकी अपन नहीं करे और बच्चों को कहे या किसी और को बोले कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा।
0: सही बात बताए, क्योंकि जैसे महात्मा गांधी का एक खिस्सा है, गुड़ बच्चों को नहीं खाने के लिए बोल देंगे, पहले खुद छोड़ना सीखा है ना, एक कहानी है गुड़, महात्मा गांधी को गुड़ छोड़ाने के लिए कोई बच्चों का था, एक कहानी का माध्यम से उसको पहले खुद प्रैक्टिकल में लिया।
1: कोई भी काम करो तो खुद प्रैक्टिकल पहले करो फिर दूसरों को कहेंगे तो शायद ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वही कहना है बस। पर्यावरण से ऐसा है कि हमारे आसपास के शायद ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एक ही पेड़ उसका भी यदि अपन ख्याल रख रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हो और शायद वो बड़ा होके छाया दे रहा है तो शायद ये बहुत बड़ी सफलता होगी।
0: आज पेड़ का महिमा,
1: कम से कम एक पेड़ कर पाए तो भी वो बहुत बड़ी सफलता।
0: देखिए आज पेड़ कोई करण नहीं रहेगा तब हम पेड़ का पास आकर बैठे, गुरुकुल जैसे पहले था ना, गुरुकुल में क्या नीचे बैठकर प्रकृति का साथ अब रहते थे, बहुत अच्छा बात बताया। और प्रकृति हमारा मित्र जैसे हो, उनको देखभाल कर, खाली पेड़ लगाना बड़ा बात नहीं, लगाने के बाद उसको संरक्षण करना, पूरा
1: उसकी देखभाल करना ज्यादा बड़ी बात है, टाइम से टाइम उसको पानी देना, फिर उसी पशु पक्षी से खाने
0: उसको बना सुरक्षा करना बहुत जरूरी है।
1: नहीं कि पेड़ लगा के छोड़ दिया,
0: उसको बचाना ठीक से,
1: बचाना बहुत जरूरी, पेड़ लगाने के बाद ज्यादा बड़ा काम होता है कि उसकी देखभाल करो।
0: हाँ जैसे बच्चे पैदा तो हो जाते इसके बाद उसको पढ़ाए लिखाए कितना ध्यान देते माँ बाप, तो उस तरह में माँ बाप सोच कर पर्यावरण को रक्षा करेंगे तो कर रहे हैं, और ऐसे नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उस माध्यम से जरूर सीख लेकर अपना एक जन्मदिन में हो चाहे माता पिता का कोई भी डेट में आपने एक पेड़ लगाए,
1: भी अवसर पे
0: एक पेड़ लगाना जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम जाएंगे, हमारा मैम भी और एक मैम है तो उनको भी स्वागत करेंगे, और हमारा रितु मैम को भी कौन भूल पाएंगे, उनका भी आवाज लेंगे, वो उसको लास्ट में वो आएंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति सभी बच्चों का साथ हम रूबरू हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को हमारा लीडर है मैम आपका परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम खुशबू यादव है, मैं डूंगरपुर से हूँ।
0: अरे बाप रे, डूंगरपुर बहुत दूर से आया। डूंगरपुर और हमारा आबू रोड तो आप दोनों को देखे होंगे, उधर भी देखे इधर भी देखे। यहाँ का माहौल, यहाँ का बच्चों का पढ़ाई, उनका नामांकन, बच्चों का भोलापन और डूंगरपुर का और आबू रोड का, क्योंकि आप डूंगरपुर से आए, सिलेक्शन होकर आए और फर्स्ट पोस्टिंग है आपका।
1: हाँ, फर्स्ट पोस्ट।
0: अरे बाप, फर्स्ट पोस्टिंग के लिए ताली बजा मैम के लिए। यहाँ पर पहला बार वाह, बहुत अच्छा। डूंगरपुर से आए आपको पढ़ाने के लिए, कितने खुशी का बात है। और उनका नाम ही खुशबू, आज खुशी फैलाएंगे। खुश रहना और खुशी बांटना ये बहुत बड़ी काम है, इसको कुछ नहीं तो भाई खुशी तो दो। और हमारा खुशबू मैम इतने दूर से आए बच्चों का साथ मिलकर, अपना पहला पोस्टिंग यहाँ पर है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है,
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो क्या विशेषता देखा डूंगरपुर और आबू रोड में? आप बच्चों को पढ़ते थे कभी? अभी तो मैम बन गए, ये बच्चे भी मैम बनेंगे बोल रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ का और वहाँ का में?
1: बस ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा भोलापन है और मेरा इनसे मिलना लिखा हुआ था जो इतने दूर पोस्टिंग हुई है।
0: क्या बात, बहुत अच्छा बात बोले। इनका साथ मेरा हिसाब किताब लिखा है जिसका चलते मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये एक मेरा हाथ में नहीं, इनके मैं डूंगरपुर और यहाँ पर आबू रोड, ये हिसाब किताब होता है जिसका चलते यहाँ पर हिसाब को चुप्त करने के लिए, हिसाब देने के लिए और हिसाब लेने के लिए पहुंच गए यहाँ पर। ये भी खुद को बहुत महसूस करते भाई, हमारा हिसाब किताब हमारा लेखा जुका यहाँ पर लेखा जुका। लेखा किसके पास रहता है? यमराज का पास रहता है भाई, सबका लेखा जुका उनका पास रहता है। किसका कहाँ पर पोस्टिंग होगा वो ऊपर वाला उसको वहीं पर भेजता है। इसलिए बच्चों का साथ आज मैम खुद मान रहे भाई, मैंने डूंगरपुर से इसलिए आया, मेरा लेखा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर हमें पहला पोस्टिंग है। लेकिन हमेशा के लिए रहेंगे नहीं, चला जाएंगे, ऐसे न रहेंगे
1: नहीं सर, वो पता नहीं, हो तो अब तक रहना ही है जब तक पोस्टिंग है।
0: लेकिन लिखा होगा तो हम लिखा होगा तो जाएंगे ना।
1: हाँ, लिखा हुआ होगा तो
0: ये बात बोलना है ना भाई, लिखा हुआ था इसलिए आए और लिखा होगा तो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जाना मेरे हाथ में, लिखा होगा तो कहेंगे, लिखा पर छोड़ दिए। लिखा मैंने हमारा भाग्य, जहाँ पर हमारा दाना पानी लिखा हुआ है वहीं पर हम पहुंचेंगे। जैसे कि रामायण में हम सुनते हैं ना मैम, जटायु तब आएगा जब सीता चोरी
1: होगी,
0: जब तक सीता चोरी जटायु तो आएगा नहीं, क्योंकि इस तरह हमारा हिसाब किताब जहाँ पर जहाँ लिखा होगा। जैसे आज रेडियो मधुबन का हिसाब किताब यहाँ लिखा था, इसलिए मैंने सभी बच्चों से मिलकर, है ना, लेखा को मानते हैं ना बच्चे, हमारा भाग्य को मानते हैं कि नहीं? लेखा जो था हमारा यहाँ पर था, इसलिए हमें लेखा को पूरा आगे बढ़ाने के लिए मैम क्या कहना चाहेंगे? इतना बच्चे आज कुछ प्रस्तुत करेंगे, छोटे से बच्चे जो आपको याद होगा, कौन सा जो बच्चों को मन में आता है, जैसे छोटे छोटे कविता होता है ना, जैसे मछली जल की रानी हो, गुड़िया रानी, कितने सारे गीत। तो आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं?
1: मैं हिंदी पढ़ाती हूँ।
0: बच्चे एक कविता सुनाएंगे, बच्चे मैम को भी उम्मीद उत्साह आएगा। मैम
2: गुड़िया मेरी रानी है, लगती बड़ी से।

0: गुड़िया मेरी रानी है।
1: गुड़िया हमारा सभी गुड़िया आज रानी बन गए, तो राजा कौन बनेंगे बच्चे? कौन कौन राजा बनेंगे हाथ उठा? गुड्डा, गुड्डिया तो रानी बन गए, गुड्डा हाथ उठा। गुड्डा जितना बैठे सभी, गुड्डा हमारा राजा है, हाथ उठाओ। हाँ हाथ उठा दिए। अभी हमारा गुड़िया रानी है ना, एक एक रानी है, बहुत अच्छा काम किए। मैम क्या कहेंगे, हमारा गुड़िया रानी बनना चाहते है? रानी और राजा एक शब्द आया, रानी और गुड़िया। तो आप तो गुड़िया थे, अभी तो मैम बने, तो आप भी मेहनत किए ना?
2: बहुत मेहनत किए।
1: क्या मेहनत किए?
2: बहुत मेहनत किए, छोटे से पढ़ाई किए, बड़ों की बात मानी है।
1: तो और आज यहाँ तक पहुँचे, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? आप जो मैम बने, इसका धन्यवाद किसको देना चाहते हैं?
2: ये मेरे, मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आभार।
3: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से पसंद किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रात की इस खामोशी में जब दुनिया सो जाती है, कुछ अनकही सी बातें हवाओं में खो जाती है। रात की इस खामोशी में जब दुनिया सो जाती है, कुछ अनकही सी बातें हवाओं में खो जाती है। कोई पन्ना पलटता है पुरानी यादों का, तो कोई कल के सपनों में धीरे से सो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो की केन हो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं, मैं आपका दोस्त केवल। और जैसे ही 8 बज चुके हैं, हमारे भूरीलाल जी का सबसे पहला कॉल हमारे इंतजार में। हेलो भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: नहीं यार, भूरीलाल जी नहीं है
0: यार। ओहो हो हो, आज तो हमारा पोपट हो गया जी, आज तो सुरेश भाई है।
1: इसीलिए आज मुझे पता था आप भूरीलाल जी का ही नाम लोगे। लेकिन मुझे पता था तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही पहले एंट्री कर दूं।
0: क्या बात है,
1: हमारे जो भूरीलाल जी तो थोड़ा लेट हो गए, शायद रिंग बजनी ही चाहिए लेकिन नहीं बजी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही लगा दूं आपको पहले कॉल।
0: और मुझे यही था, मुझे मालूम था कि मैं अपनी शुरुआत करूं उससे पहले ही बेल बजनी चाहिए और भूरीलाल जी होंगे, और मुझे लग ही रहा था
1: भूरीलाल जी हमारे कुछ काम से लेट हो गए शायद।
0: चलो कोई बात नहीं, कैसे है सुरेश जी?
1: कोई बात नहीं, मैंने सोचा बहुत अच्छे है सर, कल मैं थोड़ा बाहर था इसलिए कल तक मैं बात भी नहीं कर पाया और आपका कार्यक्रम भी नहीं सुन पाया मैं।
0: कोई बात नहीं,
1: तो चलो मैंने कहा आज मैं सुन पहले आपसे कॉल लगा के आपसे ही बात कर लूँ पहले
0: जी।
1: तो पहले तो हमारे सभी श्रोता मित्रों को, हमारे परिवार को हमारी तरफ से नमस्ते।
0: चलो सभी की तरफ से आपको भी नमस्कार
1: जी सर। और चलो अच्छा, बारिश का तो मौसम चल रहा है, धीरे धीरे बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी सी।
0: अच्छा,
1: और मौसम सुहाना हो गया है
0: बिल्कुल,
1: शायद आपके भी वहाँ थोड़ी रिमझिम तो जरूर होगी।
0: हमारे यहाँ आबू रोड में तो रिमझिम भी नहीं है, बारिश काफी समय से नहीं हो रही है।
1: चलो और... बिल्कुल सुहाना है, हमारे अहमदाबाद में भी रिमझिम चल रही है, हमारे यहाँ भी रिमझिम चल रही है।
0: चलो बढ़िया है,
1: तो चलो कोई बात नहीं, आपको भी वहाँ थोड़ी समय में आ जाएगी बारिश
0: जी।
1: और बहुत बहुत अच्छे सर, आप कैसे कह रहे थे मैं आपको, और हमारे अंतरिक्ष भाई कैसे
0: हैं? अंतरिक्ष भाई बहुत अच्छे हैं, वो इस साल अभी जो मैराथन हुआ था उसमें हिस्सा लेने आए थे अहमदाबाद से, अहमदाबाद में ही है वो भी, और आए थे शायद वापस।
1: कल का हमने कार्यक्रम बहुत अच्छा था, कल सुना था कार्यक्रम हमने
0: जी,
1: और बहुत अच्छा वहाँ से लाइक कर रहे थे, कार्यक्रम सुन रहे थे हम।
0: क्या बात है,
1: सुबह में तो बहुत अच्छी, सभी ने कोशिश की और सभी की आवाज भी हमने सुनी, और हमारे सुबह में नई किरण में भी हमारे रमेश भाई के साथ वार्तालाप हुई थी, तो हमसे भी हमने भी बात की थी हमारे बहन जी से जो बम्बई से आए थे, उसने भी गोल्ड मेडल पा लिया है, तो उसको भी हमारे तरफ से बधाई है।
0: क्या बात है,
1: सभी ने अच्छा भाग लिया है और ऐसे ही जरूरी है सर। मैं बताऊँ तो मैं भी ज्यादातर नहीं पढ़ लेकिन 2-3 किलोमीटर तो मैं दौड़ पाता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि ये भी एक चलना फिरना तो जरूरी है।
0: बिल्कुल, अगले साल सुरेश भाई
1: तो
0: जी बिल्कुल, अभी अगले साल हम क्या करेंगे, हमारा जो भी रेडियो में जो भी हमें सुनते हैं जो भी है, हम कोशिश करेंगे कि वो सभी पार्टिसिपेट करें, और भले 2-4 किलोमीटर नहीं, 5-10 किलोमीटर जितना हो सके उतना कम से कम।
1: हाँ, इतना तो हम आराम से वो दौड़ सकते हैं, 5 किलोमीटर तो हम दौड़ सकते हैं।
0: दौड़े नहीं, ऐसे है इसमें 4 घंटे का टाइम जैसे होता है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम दौड़ कर ही पूरा करें, आप आराम से धीरे धीरे चलकर भी कर सकते हैं।
1: तो हम भी शायद शामिल हो जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कीजिए अगले साल।
1: बिल्कुल, चलो अच्छी बात है सर, हमारे सभी साथियों को नमस्ते। और चलो पहला गाना तो हम रिमझिम वाला ही सुनेंगे।
0: बिल्कुल,
1: कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, वही गाना है सर।
0: बिल्कुल, चलिए आपके लिए बजाते हैं यही प्यारा सा गाना।
1: हमारे भूरीलाल जी है, हमारे बुरा राम जी है, इसको भी हमारा राम राम है, मदन भाई को भी राम राम है, हमारे दाराम भाई का भी राम राम है, सुभाष भाई को भी हमारा राम राम है, सबको नमस्ते सर।
0: चलिए जो भी आपको सुन रहा है उन सभी की तरफ से आपको भी खास राम राम। तो आज तो हमारा हो गया पोपट, भूरीलाल जी के वेट में थे हम, फोन करेंगे और यादें थी भूरीलाल जी की और हमारे सुरेश भाई जी ने हमें फ़ोन कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कभी कभी कि आप किसी के इंतज़ार में हो, आप दरवाज़ा खोल रहे हो कि हाँ भाई यही शख्स सामने है, और आता कोई और शख्स ये है हमारे भूरीलाल जी, शायद इन्हीं का कॉल है भूरीलाल जी का, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं, भूरीलाल जी से भी। हेलो,
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार बुरीला जी, कैसे?
1: खाने में रह गया था, गाने में बंद है, जल्दी खाना।
0: अच्छा,
1: पहले खाने में रह गया था मैं, फोन तो मैंने लगा दोनों के साथ में लगा, उनका कॉन्टेक्ट कर दिया, मेरा कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं सर।
0: हाँ हाँ, ऐसा हो गया, मतलब सूरज जी का पहले
1: पीछे पड़ गया
0: जी।
1: थोड़ी बरसात का मौसम भी ऐसा है, नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है मेरे, इसलिए मैं सुरेंद्र भाई से पीछे पड़ गया आज।
0: कोई बात नहीं, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि हमारे बीच में रेस लगनी चाहिए।
1: आगे और पीछे का कोई मतलब नहीं है, मगर उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है, सुरेंद्र भाई को भी, उनकी बातों को सुन करके मेरे को भी मजा आ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: अरे मजा गया, ध्यान में गया, खाने में ट्वेस्ट कैसे आ गया, क्या कहना है आपके साथ में रह करके, हमारे को नए नए गाने, अच्छे अच्छे गाने सुन करके मजे ले रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरे गाने के बोल है
0: जी,
1: परदे अरे रे वो गाना है ना, अरे परदे में रहने दो, परदे हट गया तो भेद खुल जाएगा, परदे में रहने दो, परदे हट गया तो भेद खुल जाएगा, ये गाना है सर, गाने के बोल है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये गाना हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, सभी भाइयों को मेरा प्यार बड़ा, खबर रेडियो मधुबन वाले भाइयों को सबको मेरा प्यार बड़ा नमस्कार है, सुरेश भाई है तीनों,
0: चलिए
1: भजन भाई है,
0: कोशिश करते हैं,
1: सुरेश भाई है, भूरा राम जी है, सभी को मेरा राम राम बोलना सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे सर,
1: धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्यार बड़ा, और आपको आपको तो मैं भूल गया है।
0: मेरे को भूल गए, कोई बात,
1: आपको भी नमस्कार है,
0: थैंक यू सो मच, आपको भी नमस्कार, हमारी तरफ से जो भी सुन रहे हैं आपको, उन सभी की तरफ से आपको
1: धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, देखो ऐसा दिन बनता है, ऐसी शाम होती है, ऐसा कुछ समय होता है, और शाम को जब आपके पास कॉल कंटिन्यूज आते हैं और

0: जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ज़रा हटके बात करने वाले हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारे पास बात करने के ढेरों जरिए हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स, चैट्स, हम दिन भर में हज़ारों शब्द टाइप करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शोरगुल भले कॉन्टेक्ट ज़माने से हम सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं? जी हाँ, हम मिस कर रहे खामोशी की खूबसूरती, है ना। एक अलग सा वर्ड है ना, खामोशी की खूबसूरती। पुराने दौर में जब दो लोग साथ बैठते थे तो बिना कुछ बोले भी एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास बहुत होता था। आज अगर 2 मिनट कोई मैसेज ना आए या सन्नाटा छा जाए तो हम बेचैन हो जाते। बिल्कुल मासे व्हाट्सएप पे, अगर व्हाट्सएप मतलब फ़ोन कई बार में टू टू ना करें ना पूरे दिन में, 1 सेकंड के बाद भी अगर फ़ोन टू टू ना करें तो हम अपना फ़ोन हाथ में उठाकर देख लेते, अरे भाई आज मैसेज क्यों क्यों नहीं आया किसी का, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? चलिए शुरुआत कर। ओहो, शुरुआत करने से पहले एक और कॉल हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो,
1: हेलो, भूरा राम बोल रहा हूँ।
0: भूरा राम जी, कैसे हैं आप?
1: ये खाना खा रहे परिवार के साथ में और आपके प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है?
1: खाते खाते आपका नाम वाला प्रोग्राम चला जाएंगे मेरे को तो मैं मेरे कान पे लगा के रेडियो सुन रहा हूँ।
0: अच्छा बताइए, कैसी है आप?
1: बस ठीक है भाई। वो मेरा राम राम सुरेश भाई, भूरे लाल जी, मदन लाल जी, सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम
0: जी। सभी जो आपको सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको भी राम राम।
1: और मेरा ये परमेश गाना है जो ना है संगम का।
0: कौन सी फिल्म से?
1: वो संगम फिल्म का।
0: हाँ जी,
1: बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं वो?
0: जी बिल्कुल, चलिए सुना देते हैं आपको।
1: अच्छा, धन्यवाद
0: धन्यवाद भूरा राम जी। क्या बात है, क्या बात है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम और शुरू करते हैं आज का। लेकिन शायद एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, नहीं कॉलर नहीं थे। चलिए शुरू करते हैं आज का शो, बिकॉज समय भी है और हमारे पास फरमाइशें भी है आप सभी की। तो पहला गाना सुनते हैं और फिर करते हैं फरमाइशों की शुरुआत।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 105।

वेलकम बैक दोस्तों। आज अभी जो हमने ये गाना सुना, आज हम जब भारतीय सिनेमा के इस गोल्डन एरा की गलियों में टहलने वाले हैं, जहाँ का संगीत आज भी हमारे दिलों में ताजगी भर देता है। जी हाँ, अभी 1963 में एक फिल्म आई थी, फिल्म वही दिल लाया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ। नासिर हुसैन साहब की यह पहली रंगीन फिल्म थी और संगीत दिया था ताल के जादूगर ओपी नैयर साहब ने। जब भी ओपी नैयर साहब का नाम आता है तो पैरों में अपने आप घुंघरू बन जाते हैं, और जब बात हो फिल्म के क्लासिकल और फोक के बेहतरीन संगम वाले गाने की, तो जुबा पर बस एक ही बोलाते हैं, है ना दोस्तों, यही वाला जो गाना था, देखो बिजली डोले बिन बादल की। वजीर सुल्तानपुरी साहब ने लिखे बोल और आशा भोसले जी व उषा मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ है इस गाने को। शास्त्रीय राग बसंत मुखरी की बंदिश पर गाढ़ा गया है, है ना। देखो राग भी कई प्रकार के हैं। गाने के दो खास बोल जरा गौर से सुनेंगे, जैसे हमने अभी सुना देखो बिजली डोले बिन बादल के, है ना। ये जो गाने बजते थे, तो बात करते हैं इस गाने की जो जुगलबंदी हुई थी, या इस गाने में जो दो बहनों की अनूठी जुगलबंदी थी। हम सब जानते हैं कि ओपी नैयर साहब ने कभी भी लता मंगेशकर जी के साथ गाना रिकॉर्ड नहीं किया है। क्या बात है, आप सभी को पता है ये चीज़, नहीं पता होगी चलिए। लेकिन उन्होंने मंगेशकर परिवार की बाकी दो बहनें आशा भोसले जी और उषा मंगेशकर की जोड़ी से यह कमाल का ड्यूएट गाना गवाया। इस गाने में दो सहेलियों के बीच डांस और गायकी का जो मुकाबला दिखाया गया है, उसकी ऊर्जा आज भी मिसाल बन जाती है। एक चीज़ और थी इस क्लासिकल राग की, जो अभी हमने बात की, ओपी नैयर साहब को लोग अक्सर पश्चिमी धुन, वेस्टर्न रिदम्स और एक टांगे वाले, आपको अगर याद भी होगा तो मैंने कई बार बीच में, जब भी ओपी नैयर साहब का हमने गाना सुना है, मैंने कहा है उनके गाने में एक धुन अलग सी होती है टांगे वाली, जिसमें टक टक टप टप जो घोड़े की टपली होती है ना, उसकी आवाज़ होती है। लेकिन इसमें उन्होंने जो यूज़ किया है, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत को भी कितने आधुनिक और थिरकने वाले अंदाज में ढाल सकते थे। रंग बसंत मुखरी पर बना यह गाना हर संगीत प्रेमी के लिए एक मास्टर क्लास है, है ना। बहुत सारी बातें हैं इस गाने को लेकर के भी, लेकिन चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अगला नगमा भी एक और हमारी राह में है, जो सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जब जिंदगी में खुशियाँ दस्तक देती है तो दिल का हर कोना झूम उठता है, और जब दिल खुश होता है तो होठों पर अपने आप कोई ना कोई नगमा तैरने लगता है। वर्ष साल 1963 में एक फिल्म आई थी हमराही। टी प्रकाश राव जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और जमुना जी की बेहद खूबसूरत जोड़ी थी, और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने। इस फिल्म का एक ऐसा गाना जो उदास से उदास दिल में भी जीने की एक नई उमंग भर देता है। हसरत जयपुरी साहब की लिखावट और मोहम्मद रफ़ी साहब की जादुई बेफिक्री आवाज़, जब रफ़ी साहब गाते हैं तो लगता है जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। दोस्तों, इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी ऑर्केस्ट्रेशन, शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी वेस्टर्न बीट्स और भारतीय धुनों को मिलाने में उस्ताद थी। इस गाने में जिस तरह से टेम्पेट और वायलिन का इस्तेमाल हुआ वो उस दौर के हिसाब से बेहद मॉडर्न और एनर्जेटिक था। पर्दे पर जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार साहब जब अपनी गाड़ी में दोस्तों के साथ घूमते हुए इस गाने को गाते हैं तो उनकी वो सादगी और मुस्कान दिल जीत लेती है। यह गाना उस दौर का यूथ एंथम बन गया, जिसे कॉलेज के युवा अक्सर पिकनिक के ट्रिप पर गाया करते थे और जब भी गाड़ी में जाते थे या गाड़ी में होते थे ओपन वाली में तो यही मुस्कुराते थे, दिल तू भी का प्यार में मुस्कुरा चली। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अब है हमारी फरमाइशों की बारी। सबसे पहली फरमाइश हमारे सुरेश भाई जेठाना से, जिन्होंने हमें ये फरमाइश दी थी कि रिम झिम के तर्राने लेके आई बरसात। हाँ दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं अपने यहाँ के बरसात के हाल। मैं अपने यहाँ के हाल बता देता हूँ। माउंट आबू में हो रही है हल्की हल्की बारिश सुबह शाम। आबू रोड में बिल्कुल भी बारिश नहीं। आबू रोड तलेठी जहाँ हम हैं इस वक्त, वहाँ पर बारिश नहीं है। हमारे यहाँ की ये हाल है। इस साल बारिश बहुत ही कम है हमारे यहाँ पर। चलिए देखते हैं अपने यहाँ की जो भी बारिश के हाल है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 पर ये अगला नगमा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों, रिम जिम के तराने लेके आई बरसात। जी हाँ दोस्तों, रिम जिम के तराने लेके आई बरसात। और याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। ऐसा होता है क्या जब भी हम ऐसी बारिश के समय पे होता है और पहली मुलाकात कभी ना कभी किसी ना किसी को ये याद आ ही जाती है? जी हाँ, काला बाज़ार से ये गाना, काला बाज़ार मूवी से ये गाना अभी हमने सुना। गीतकार इसके शैलेंद्र, गायक गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी साहब, संगीतकार सचिन देव बर्मन। जी हाँ, 1960 में थी ये फिल्म और सचिन देव बर्मन यानी कि SD बर्मन साहब इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और बहुत ही प्यारा गाना था। और कई बार जब भी रिमझिम होती है, हल्की हल्की बारिश होती है, तो ये गाना हम बिल्कुल से सुनते हैं रेडियो पे, चाहे किसी भी म्यूज़िक सेट पे। बढ़ते हैं अगले नगमे की। और हमारा जो अगला नगमा है, भूरीलाल जी हमारे, उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया है, पर्दे में रहने दो पर्दाना उठाओ। चले सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

वेलकम बैक दोस्तों। भारतीय सिनेमा में जब भी राज, रहस्य, नज़ाकत और थोड़ी सी शरारत से भरे गानों की बात होती है तो 1968 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म शिकार का एक गाना सबसे पहले जुबा पर आता है। आत्माराम जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में धर्मेंद्र जी, आशा पारेख जी और संजीव कुमार साहब की मुख्य भूमिकाएँ थी। और जब इस फिल्म में आशा पारेख जी पर अरबी लिबास में एक गाना फिल्माया गया तो उसने पूरे देश को, जी हाँ, पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। गीतकार हसरत जयपुरी साहब के लिखे बोल शंकर जयकिशन साहब की अरबी और भारतीय धुन का बेजोड़ संगम और पद्म विभूषण आशा भोसले जी की वो जादुई नज़ाकत भरी आवाज़, जी हाँ, इस गाने की जो तान और हरकत है वो आज भी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। इसमें कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। संगीतकार शंकर जयकिशन साहब ने इस गाने को एक खास मध्य पूर्वी यानी कि मिडल ईस्टर्न अंदाज में गढ़ा था। आपने सुना होगा इसमें जो म्यूज़िक है बीच बीच में वो इस वेस्टर्न मिडल ईस्ट की तरफ से, इसमें जिस तरह से अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी की तान ली गई है वह उस दौर के हिंदी संगीत में एक बिल्कुल नया प्रयोग था। एक और चीज़ है कि आप जानते हैं इस गाने में आशा भोसले जी की गायकी इतनी शानदार थी कि उस वर्ष यानी कि 1968 में ये रिलीज हुई थी और 1969 में जब सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायकी यानी कि बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें ही मिला था। ये गाना उनके करियर का सबसे आइकॉनिक गानों में, जी हाँ, आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जो हमारा अगला नगमा है ये भी हमारे एक फरमाइश है हमारे भूरा राम जी ने हमें फरमाइश में दिया है कि भाई राधा बोल संगम होगा कि नहीं। बिल्कुल संगम होगा कि नहीं, सुनते हैं ये रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: You are listening to Sister Dipti from Johannesburg, South Africa, and you are listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. This is being heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa, but you can tune into this wherever you are in the world and stay tuned into this wonderful fragrance.
1: याद रखना कभी यंगी बना के ना, कभी यंगी बना के ना। तो ये गाना कल या अभी,
2: बिल्कुल चलिए चलते है? चलते ये गाना हम आपको फिर से सुना देते हैं।
1: अच्छा लगा, और चलते हैं फिर मिलेंगे।
2: बिल्कुल चलते चलते फिर मिलेंगे। ओम शांति जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे मदन लाल जी मेहसाणा से। इन्होंने हमें कॉल किया था तो मैंने कहा चलो लाइव ही लगा देते हैं, इनको सुना ही देते हैं सभी के साथ। और जी हाँ दोस्तों, हम अभी ने जो हमने गाना सुना, तेरे मन की जमुना और मेरे मन की गंगा, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, है ना दोस्तों, बहुत ही प्यारा ये गाना अभी हमने सुना। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी भव्यता, सच्चे प्यार और यादगार संगीत की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, राज कपूर साहब। राज कपूर साहब की ये जो फिल्म थी उस समय की, 1964 में जब ये फिल्म आई थी संगम, ये पहली कलर फिल्म थी जिसने सिनेमा घरों में सफलता का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। और जब इस फिल्म में गानों की बात होती है तो एक ऐसा गाना जिसकी मस्ती, छेड़छाड़, मीठी सी तकरार आज 6 दशकों के बाद भी इतनी ही ताज़ा लगती है। शैलेंद्र साहब की लिखी सहज सरल लिखावट, शंकर जयकिशन साहब का जादुई संगीत और मुकेश जी के साथ लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़, झील के पानी में तैरती नाव, हाथ में एरकोर्डियन। शायद आप सभी जानते होंगे एरकोर्डियन क्या है, एक तरीके का हाथ से बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हल्की सी हवा के साथ वो बजाया जाता है, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। और प्रेमिका को रिझाने की वो मासूम सी कोशिश, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, और सामने से रिप्लाई आता है नहीं कभी नहीं। ये जो स्टाइल है ना इस गाने में, राज कपूर साहब जिसे वो बाजे के बजाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा इस एक्रेडियन का जो इस्तेमाल किया था, इस वाद्य अंतर को भारत के घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। आज भी जब कोई एरकोर्डियन बजाता है तो सबसे पहले संगम का यही गाना याद आता है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की और, एक और नगमा हमारे राह में है, सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जैसे समुद्र।
1: ठीक है, वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने जो गाना सुना पर्दे बोल रहा था बोल के बाद, एक दिल और सौ अफसानों का, और वक्त है आप सभी से अलविदा ही लेने का। लाइन पे दो तीन गाने ऐसे हैं जो हमें बजाने हैं। तो पहले हमारे जो मदनलाल जी ने हमें कहा था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, और एक और अभी हमें गाना याद आया, अच्छा तो हम चलते हैं। ये दोनों गाने ही हमें अभी आपसे विदाई लेने के समय पे याद आ रहा है। चलिए सुनते हैं ये दोनों गाने, मदनलाल जी और भूरीलाल जी ने हमें फरमाइश में दी है। सुनते हैं ये दोनों गाने और कल मिलेंगे फिर से ठीक इसी समय 8 बजे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि, गुड नाइट।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। रेडियो मधुबन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो भी आप तक पहुंचाई जा रही है, वो सिर्फ एक जानकारी के रूप में नहीं, मगर अपने आप को सजग करने के लिए, अपने समाज, परिवार और देश को स्वस्थ बनाने की ओर एक कदम उठाने की शुभ प्रेरणाओं के साथ की जा रही है। ये सिर्फ जानकारी समझकर लोग सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, ऐसी बात नहीं है। ये वो आवश्यक जानकारी है जिसे अगर हम जीवन में धारण करें, इसका उपयोग करें, तो हम देखेंगे कि हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसी बदलाव को प्रेरित करने के लिए रेडियो मधुबन यह कार्यक्रम आपके सामने लेकर आता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की सिर्फ कामना नहीं है, उसकी ओर कदम दर कदम कैसे हम आगे बढ़ते जाएं और कैसे हम अपने घर, परिवार और समाज को स्वस्थ बनाएं, इस पे हम सभी की भागीदारी को याद दिलाने का एक प्रयास भी है। आइए आज सहज स्वास्थ्य में कुछ ऐसी ही चीजों को समझते हैं और समझकर जीवन में उनका पालन करते हैं। आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारे बीच स्वास्थ्य जगत के ही एक विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं जो हमें ये मार्गदर्शन देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी जुड़ रहे हैं। वे पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांत।
0: डॉक्टर साहब, जब हम स्वास्थ्य कहते हैं तो हमें समझ में आता है कि आज हमारे पास जानकारी के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं। हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, यहाँ वहां सुनते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया पर हम आज देखते हैं तो बहुत सारे वीडियोज, रील्स, अनेक चीजें आज देखने को मिलती है। तो ऐसे में लगता है कि व्यक्ति के पास जानकारी की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की बहुतायत है। अब ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित चीजों के बारे में जब व्यक्ति को कोई चीज अपने जीवन में करनी है तो वो सोचता है कि भाई इतना सारा है, इसमें से कहां से शुरुआत किया जाए, आप क्या राय देते हैं?
1: इसमें मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक राय देना चाहूंगा कि जब हम हिंदू समाज भक्ति की बात करते हैं तो हम विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त, देवी जी के उपासक इस तरह से अपने आप को मानते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो शिव भक्त हैं वो शिवालयों का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ये नहीं कि वो दूसरे भगवानों को नहीं मानते, मगर वो अपना एक दिन का जो पूजा का मेजॉरिटी टाइम है, ज्यादा समय है, वो उसी में लगा देते हैं। आप जो देवी भक्त हैं वो बड़े ज्यादा देवी का दर्शन करते हैं, शक्ति पीठों का दर्शन करते हैं, वो बहुत सी जो पूजा अर्चना है उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा भी स्वास्थ्य के लिए यही जो मेरी समझ है कि कृपा करके किसी एक चीज को फॉलो करिए। आप एक दिन नेचुरोपैथी, अगले दिन आयुर्वेद, तीसरे दिन एलोपैथी, चौथे दिन मैग्नेट थेरेपी, पांचवें दिन एक्वा प्रेशर, उसके बाद एक्वा पंचर, तो आप अगर इधर उधर भागते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं पा पाएंगे। आप जब भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपसे क्या कहता है कि इस गोली को कम से कम आपको 5 दिन लेना है या 3 दिन लेना है। अगर आप ठीक भी हो गए हैं तब भी पूरा कोर्स करिएगा, इसको बीच में मत छोड़ दीजिएगा। हम जब भी, अगर मैं आपसे कहूं कि श्री भैया चलिए हम और आप उपवास किया जाए या फास्टिंग किया जाए, तो पता चला 9 बजे हम नाश्ता करने के बाद कह रहे हैं कि भैया अब हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, और दोपहर में 1 बजे हम लोग फिर खाने बैठ गए कि अरे भैया 3 घंटे की फास्टिंग तो हो गई। तो इससे हमें फास्टिंग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। फास्टिंग का मतलब है अपना मुंह बंद रखना और कोई भी भोजन का पदार्थ आपके मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप उपवास कर रहे हैं तो पूरी लगन के साथ उपवास करिए। आप जिस भी पैथी को जानते हैं या मानते हैं या विश्वास करते हैं, उस पैथी के अनुसार चलिए, और एक दिन नहीं, कम से कम 6-7 दिन चलिए। जहां तक आपने बताया सोशल मीडिया इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी इधर उधर मिल रही है, कृपा करके उस जानकारी को किसी भी योग्य व्यक्ति के साथ साझा करिए और पता करिए कि वो जानकारी ठीक है कि नहीं। कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी में नींबू पीजिए, गर्म पानी में सौंफ डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, सब्जी का बिया डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, करेले छिलका डाल दीजिए, आप उसमें नीम का पत्ता रगड़ के डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, लहसुन छील के डाल दीजिए। अरे हर आदमी अपने हिसाब से उसमें चीजें डालता चला जा रहा है। अगर आप ये सारी चीजें एक साथ पी लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, आपको उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है। तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छी है उसी का अनुसरण करें और सोच समझ के अनुसरण करें। और किसी चीज का यदि आप अनुसरण कर रहे हैं तो कृपा करके थोड़ा समय दीजिए। अगर आप थोड़ा समय नहीं देंगे तो आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।
0: जब हम इन चीजों को समझते हैं कि भाई हम थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा ये कर लें, तो इन सब चीजों से लाभ नहीं होता। किसी एक चीज पर हमें फोकस रहते हुए इन चीजों को करने की आवश्यकता है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर। अक्सर हम ये कहावत सुनते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो लोग आज अनेक अनेक चीजों को सुनकर प्रेरित होकर वो सब चीजें करने लगेंगे तो फिर वो सही नहीं होता। अब जब भी व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा होता है, जैसे किसी भी प्रकार का शरीर में व्याधि या रोग या असहजता व्यक्ति को महसूस हो रही होती है, तो स्वाभाविक रीति से व्यक्ति अनेक चीजों पर हाथ पैर मारने लगता है कि भाई जिस भी तरीके से ये समस्या ठीक हो जानी चाहिए, इस बीमारी से निजात हो जानी चाहिए। अक्सर हम ये भी कहावत सुनते हैं कि मरता क्या नहीं करता। तो लोगों को ये नेचुरली वो चीजें लगती है कि भाई 10 लोग 10 चीजें बता रहे हैं तो मैं सब कुछ ट्राई करके देख लूं, जितनी जल्दी से जल्दी मैं अपने आप को ठीक करूं। ये एक होड़ होती है। आप इस चर्चा में अनेकों बार ये बात बता चुके हैं कि हम एक दिन में बीमार नहीं पड़े हैं, कि बीमार होने के लिए भी हमें एक लंबा समय, गलत आदतें, गलत खान पान, गलत हमारा आहार विहार रहा है, तब जाके हम एक दिन वो बीमारी हमारे सामने मैनिफेस्ट होती है। तो ऐसे में जब बीमारी से ठीक होने के लिए भी हम जब जल्दीबाजी करते हैं तो इसमें भी हमसे गलतियां हो सकती हैं, या हमें एक पेशेंस को रखने की ज़रूरत है, धैर्य को रखने की ज़रूरत है जब हम ट्रीटमेंट या कोई प्रयास हम कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने में।
1: भैया जैसे आपने कहा कि एक साधे सब सधे, और अगर हम सब साधने लगेंगे तो नहीं कर पाएंगे। मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर हूं तो हम लोग

0: पे आना है, और वो डिस्टेंस जो है वो एक सोचिए 10 किलोमीटर का है। तो अगर हम 10 किलोमीटर एक लाइन में सीधे चलेंगे तभी हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे, पर अगर हम ये कोशिश करें कि हम 2 किलोमीटर सीधे चलें, फिर पता चला आधा किलोमीटर दाहिने चलें, फिर 1.5 किलोमीटर जिगजैग चलें, तो हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो जितने लोग आपको राय दे रहे हैं, कृपा करके अगर आपको उनकी राय समझ में आती है तो उस राय के साथ वो उस जो ज्ञान मिला है, जो अनुसरण मिला है, कृपा करके इसे कम से कम हफ्ते भर तो फॉलो करिए। आप अगर फॉलो नहीं करेंगे किसी चीज को तो आप कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। जैसे एक कहा जाता है, धतूरे के नशे में आदमी इधर उधर दौड़ता रहता है, या शराब के नशे में आदमी गोल गोल गोल गोल इधर भाग रहा उधर भाग रहा, इधर दौड़ रहा उधर दौड़ रहा। यही चीज आपके मन की भी है। वो एक बार एक का एग्जाम्पल लेके दाहिने भागता है, दूसरे का सजेशन लेके बाएं भागता है। तो इसीलिए कहा जाता है कंसंट्रेट होकर काम करिए और रेगुलर काम करिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आप किसी भी, जो जैसे मैंने बोला बीमार पड़ने में भी आपको समय लगा है तो ठीक होने में भी समय लगेगा। सालों की समस्या दिनों में नहीं जाती, उसमें कम से कम महीनों का समय लगता है, तो और महीनों की समस्या हफ्तों में जाती है। तो अगर आपका लंबा समय लगा है तो उसका निवारण में भी समय लगेगा।
1: ये बात समझ में आती है कि इसमें धैर्य की आवश्यकता है, और अंग्रेजी में जो शब्द है कि पेशेंट कहा जाता है एक मरीज को, तो समझ में आता है कि उसके लिए भी पेशेंस की जरूरत है, इसलिए शायद उसको पेशेंट कहा जा रहा होगा। अब हम पिछले दिनों बातचीत कर रहे थे कि लोग कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन को कई लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, खासकर बच्चे भी इन चीज़ों को शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। एक प्रकार की शर्म है, एक प्रकार का संकोच है जब व्यक्ति इस समस्या के बारे में खुलकर नहीं बातचीत करता है, या उसके बारे में राय मशवरा करने में बहुत देर लगा देता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाथरूम की जो हमारी प्रक्रिया है, शौच में जाना, ये एक प्राइवेट सी चीज़ है, और उसकी वजह से भी बहुत बार लोग इस समस्या के बारे में तब तक मुखर नहीं होते, तब तक वो आकर राय मशवरा नहीं करते या मदद नहीं लेते, जब तक वो समस्या बहुत ज्यादा तीव्र नहीं हो जाए या व्यक्ति को उससे ज्यादा कष्ट होने न लगे। तो क्या कारण है जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी समस्याओं के बारे में इस प्रकार की धारणाएं रखते हैं, और कब उन्हें इस बारे में एक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, कब राय मशवरा करना चाहिए?
0: मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय विट्ठल दास मोदी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है रोगों की सरल चिकित्सा, और इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। इसका बहुत सारी लैंग्वेजेस में अनुवाद हुआ है। इस किताब में जो पहली बीमारी उन्होंने बताई है वो कब्ज, और प्रखर चिकित्सक ये मानता है सब रोगों की एक दवा मिट्टी पानी धूप हवा, और यदि पाचन तंत्र आपका ठीक है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हम लोग जो बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं वो ये सोचते हैं अरे ये क्या समस्या है, बाथरूम जाना है पेट साफ हो जाएगा, और वो जब अपने अगल बगल देखते हैं कि कोई व्यक्ति या उनके घर का सदस्य गया, उसने बाथरूम में गया और 5 मिनट 10 मिनट में बाहर निकला, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे मेरा पेट साफ हो गया, तो उनको लगता है तो बड़ा इजी है, पर वो अपना पेट ठीक से साफ नहीं कर पा रहे। तो इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करते हैं, और पहले व्यक्ति अपने मित्रों से बात करता था, अब उस हर चीज के लिए 1 मिनट में इंटरनेट पे टाइप करता है और उसका इलाज देख लेता है, और उस इलाज को भी वो बिना किसी की राय मशवरा के शुरू कर देता है। जो चीज अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दवा या कोई गोली या कोई चूर्ण या कोई चीज अगर उसे खाना है

0: और ये लिखा है रात में खा के सोना है, और वो अगर उसको भूल गया तो चुपचाप सुबह उठते ही खा लेता है। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो मानसिक रूप से आदमी को परेशान करती है, क्योंकि दिमाग में हमेशा उसके चलता रहता है, मेरा पेट नहीं साफ हुआ, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मेरा पेट साफ नहीं हुआ। और दिमाग में उसके क्या चलता है, अगर घर के बाहर गया और मुझे लगा कि मोशन होगा या मुझे शौच जाना होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति घर में रहना चाहता है, अगर बाजार निकलता है तो बड़ा संभल के निकलता है। ऐसे लोग भैया गाड़ी से यात्रा करने से हिचकिचाते हैं कि अगर निकले यात्रा पे और पेट खराब, मतलब जाना पड़ गया तो हम क्या करेंगे। और दिमाग में हमेशा सोचते विचारते रहते हैं कि हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है। तो यदि आपको नेचुरली एक दो दिन में शौच नहीं हो रही है, या जब आप शौच में बैठ रहे हैं और आपको घंटों लग जा रहे हैं पेट साफ होने में, या आप इतनी ताकत लगाकर भी अपने पेट को साफ नहीं कर पा रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आप कमजोर हो गए हैं, आपके पेट में गैस बन रही है, आपकी नींद परेशान हो रही है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आप कमजोर होते चले जा रहे हैं, आपको मुंह में गंदा स्वाद आ रहा है, आपकी आपकी जिह्वा जो है वो सफेद होती चली जा रही है, और आप मेंटली भी अब परेशान होने लगे हैं, तो कृपा करके किसी डॉक्टर को जरूर दिखा लें, क्योंकि वो अगर आपको देख लेगा, आपकी समस्या समझ लेगा, तो आपकी मदद कर पाएगा। अगर आप इसको जितना छुपाएंगे उतनी ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ये समस्या महीनों की है तो ये हफ्ते या दिनों में ठीक हो जाएगी, पर अगर आप इसको सालों पकड़ के रखेंगे तो फिर इसको सही होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा।
1: जैसे आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से संबंधित चीज़ों के बारे में बता रहे थे कि उस व्यक्ति के व्यवहार में क्या चीज़ें हम देखते हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर फिल्म बनी है। एक फिल्म आई थी जिसपे बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भूमिका निभाई। फिल्म थी पीकू, जिसमें ये कैरेक्टर वो निभाते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का शिकार है, तो उसकी वजह से उसके जीवन में और उसके साथ वाले लोगों के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं, इसका बड़ा सुंदर चित्रण देखने को मिलता है।
0: भैया ये बहुत सुंदर आपने बात की भैया, पर आप देखिए वो भी व्यक्ति की उम्र हो गई थी, उस कैरेक्टर की उम्र हो गई थी, और जो भी उसके साथ थे वो उसको पॉजिटिव राय दे रहे थे इस चीज को लेकर। भैया ये बड़ी छोटी समस्या है। मैं एक बड़ी सीधी बात, मैं अपने इस ग्रैंडफादर की किताब के पहले कब्ज के ऊपर जो पहले उन्होंने 3 लाइनें लिखी वो पढ़ना चाहूंगा कि कब्ज हद दर्जे का परेशान करने वाला रोग है, पर जितना ही ये अधिक परेशानी देने वाला है उतनी ही आसान है इसका जाना, बशर्ते कि आप इसे हटाने के लिए कुछ करने को सचमुच तैयार हो। पीकू में तो बहुत एजेड व्यक्ति पे पहुंच गए। मैं आपको बड़ी बेसिक बात भैया लोगों के समस्याएं बताता हूं कि पहले अखबार को लेके जाते थे बाथरूम में और अब वो मोबाइल को लेके जाते हैं, और उनके पास इतना समय नहीं है कि इतने समय का अभाव है कि वो शौच में भी अखबार पढ़ रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। मतलब आदमी जो पेट साफ होने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम अपने दिमाग को ठंडा रख ही नहीं पा रहे हैं। अभी मोबाइल का, मेरे ग्रैंडफादर के समय तो मोबाइल नहीं था, वो जब भी छात्र मिलता थे या यंग बच्चे जो पेट की समस्या, तो पहले सवाल यही पूछते थे, क्या तुम शौचालय में किताब या अखबार लेके जाते हो? और अगर उसने हाँ बोलता तो कहते थे, भाई इसको छोड़ दो, तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तुम उस 10 मिनट के लिए अपने दिमाग को, अपने ध्यान को, अपनी इंद्रियों को अगर अपने पाचन तंत्र की तरफ मोड़ दोगे, सोचोगे कि मेरा पेट साफ हो रहा है। आज भाई हम लोग अफर्मेशंस की बात करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन लिए, जो आप बोलेंगे वो होगा, जो आप सोचेंगे वो होगा। तो प्लीज आप अगर पॉजिटिव सोचिएगा अपने पेट साफ होने के लिए तो जरूर साफ होगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम किताब लेके मोबाइल लेके वहां बैठे हुए हैं। अरे भाई 10 मिनट छोड़ दो, जीवन में इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं है, इतना भी काम जरूरी नहीं है कि हम आज मैं सबको यही बोलता हूं कि अगर अपने पाचन तंत्र को ठीक करना है तो दो काम करना चाहिए, एक शौच में अखबार और मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, और दूसरा खाना खाते समय टीवी और मोबाइल नहीं देखना चाहिए। हमको भोजन का स्वाद लेना चाहिए, उसे चबाना चाहिए, वो क्या चीज बनी है देखना चाहिए। हम आपस में बातचीत करके भी भोजन कर सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि मुंह बंद करके 32 दांत हैं 32 बार चबाकर अपने भोजन को करना चाहिए। अगर आप इतना कर देंगे तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत आराम दे देंगे। तो जितने यंग बच्चे या जो भी लोग हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप शौचालय में अपना मोबाइल फोन या अखबार लेके जा रहे हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए। 2 4 5 दिन 10 दिन लगेगा, उसके बाद देखिएगा एकदम ठीक हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा तो शायद आपको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है हो सकता है 50% वही दूर हो जाए, इतना ही करने से।
1: ये राय जो आप दे रहे हैं, जब एक डॉक्टरी सलाह के रूप में जब ये चीज मिलती है, तब लोगों के मन में, जैसे मेरे मन में अभी हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात, इससे ये समस्या में अगर हमें 50% तक, 50% तक लाभ हो सकता है, तो ये दो चीजें तो हम कर ही सकते हैं। अब अचानक से ये प्रश्न भी उठता है कि जैसे आप कह रहे थे कि भाई हम बस सोच लूं कि भाई मैं शौच पे गया हूं, तो उस समय पर मैं अपने पेट पर, अपने पाचन तंत्र पर ध्यान केंद्रित करूं और ये पेट साफ हो रहा है, इस पर मैं ध्यान केंद्रित करूं तो ये हो सकता है। भोजन करते समय मैं टीवी मोबाइल इत्यादि न देखकर, सिर्फ भोजन को देखते हुए, भोजन पर ध्यान देते हुए अगर मैं भोजन करूंगा तो इसमें मदद मिलेगी। तो लोग अक्सर चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या, बस इतना करने से हो जाएगा, क्या इसके पीछे की वजह है? ये भी तो सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा साथी और खासकर बच्चे इस बात पे हैरान होंगे कि भाई इससे क्या नुकसान हो रहा है, कि मतलब क्या मैं सिर्फ मोबाइल फोन छोड़कर भोजन कर लूं, तो क्या इसमें, इसके पीछे का साइंस क्या है?
0: बहुत बेसिक साइंस है, जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस भोजन के प्रति है, और आप भोजन चबा रहे हैं, आप भोजन का स्वाद ले रहे हैं। भैया आप नॉर्मल भारतीय हाउस होल्ड में आप जाइए तो आप देखेंगे कि भोजन जो है उसमें एक दाल बनती है, एक सब्जी या दो सब्जियां बनती हैं, रोटी बनता है, चावल बनता है, सलाद कटता है, हम चटनी बनाते हैं, और हम सबका अलग अलग स्वाद है। भैया बनाने वाला भी सब चीज अलग अलग बना रहा है, अगर उसको एक ही तरह से सब कुछ एक ही थाली में बना देना था तो क्या करना था, सब सब कुछ एक जगह डाल के उसको उबाल देना था, उसको छोंक देना था, आपको खिचड़ी या पहेली की तरह बना के सर्व कर देना था। वो भी मेहनत से अलग अलग चीज बना रहा है, तो प्लीज उसका स्वाद लेके खाइए। आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है, मन के जीते जीत मन के हारे हार। आप अगर बिना मोबाइल देखे भोजन कर लेंगे तो आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। आप भैया बड़ी बेसिक चीजें हैं, आप खुद देख लीजिए, आप ब्रह्म कुमारी के किसी भी सेंटर पे जाइएगा, वो किसी की भी भोजनालय में टीवी नहीं लगा है, और अगर आप वहां मोबाइल देख के बात ऊंची आवाज में कर रहे होंगे तो कोई भैया या कोई बहन आकर आपको टोक देगी कि प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए। और हम लोग बात कर रहे हैं भैया डिजिटल डिटॉक्स, क्या जमाना आ गया है, यहाँ बॉडी डिटॉक्स से ज्यादा अब डिजिटल डिटॉक्स की, पहले बॉडी डिटॉक्स की बात हुई, फिर मेंटल डिटॉक्स की बात हुई, मतलब नेचुरोपैथी किया जाए, आयुर्वेद किया जाए, योग किया जाए तो उससे बॉडी डिटॉक्स होगी, फिर मेंटल डिटॉक्स की बात हुई, प्राणायाम किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, कहीं आश्रम में चला जाए उसकी बात की गई, और अब तो डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है। और लोग बड़े, मेरे भी भाई अच्छे मित्र हैं बहुत सारे, वो बड़े हंसते हुए किसी दिन कहते हैं, अरे डॉक्टर मैंने 3 दिन से ये सोशल मीडिया नहीं देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप अगर किसी चीज को कंसंट्रेट होके करेंगे या इवन उस पर थोड़ा ध्यान देके करेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। आप अपने बच्चे पे ध्यान देंगे तो वो ग्रो करेगा, आप अपने बच्चे को छोड़ देंगे तो वो भी भागने लगेगा इधर उधर। यही हाल है आपके पेट के साथ। अगर आप टीवी मोबाइल ये सारी चीजें बंद करके आपस में बैठ के भोजन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा वो भोजन पचेगा। हमारे घर में सब लोग भोजन एक साथ करते हैं, एक टेबल पे बैठ के करते हैं, और हम बात करते हैं कि हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या दिन भर हुआ हमारे साथ, छोटे बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग भी। तो वहां टीवी नहीं है और सबका मोबाइल टेबल से दूर रखा रहता है।
1: ये बात समझ में आती है कि कितना इसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। हम अपने मनोविज्ञान को न समझने के कारण शरीर पर इन चीज़ों का असर कैसे होता है, इसे न समझने के कारण अज्ञानवश ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा भोजन सही तरीके से पचता नहीं है, सही तरीके से हम उसे खाते नहीं हैं, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी समस्याएं धीरे धीरे घर करने लगती हैं हमारे शरीर के अंदर। बहुत ही सुंदर आज का ये विषय रहा है जिस पर ये चर्चा हुई है। और भी प्रश्न है मगर समय यहाँ रुकने को कहता है, तो यहाँ इजाजत लेंगे। आज आपने हमारे श्रोता मित्रों को इतनी सुंदर जानकारी दी, उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में जो चीज सुनी है वो मैं समझता हूं आज हर घर के लिए आवश्यक सी बात है। आज से, अभी से आप इस बात को शुरू करें। अगर आप भोजन कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन, कुछ भी खा पी रहे हैं, तो उस समय पर मोबाइल फोन, टीवी या किसी भी प्रकार की स्क्रीन से दूर रहें। जब आप भोजन खा के पचा चुके हैं, जब शौच में जाना है, जब मलमूत्र विसर्जन करने जा रहे हैं, उस समय पर भी आप मोबाइल फोन इत्यादि को बाथरूम में लेकर न जाएं। इसे कर कर देखें और फिर बताएं कि आपको इससे क्या फायदे हो रहे हैं। आज के सहज स्वास्थ्य में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, क्योंकि शुरू होने वाला है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है सपनों की सैर। और ये सैर कराने के लिए आ गए हैं आपके लिए मनी दीदी और परी।
2: और पता है आपको, हमारे सपनों की सैर कार्यक्रम को पूरे 500 एपिसोड्स हो रहे हैं, और इतने लंबे समय तक हम सभी का साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और ऐसे ही आपको हमारे साथ बने रहना है और अपनी जानकारियाँ बढ़ाते रहनी है, किताबें पढ़नी है ना? तो आप भी बने रहिएगा, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा।
3: हाँ बच्चों, और हमें बहुत खुशी है कि आजकल आप लोग हमें अपने सवाल भेजते हैं उसका हल जानने के लिए। तो बच्चों आज भी कई बच्चों ने हमें सवाल भेजे हैं कि वो क्या हल पाना चाहते हैं। तो मनी दीदी आज का सवाल क्या है?
1: हाँ परी, मीना ने पूछा है कि मुझे गणित का जो विषय है ना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल हल करने पड़ते हैं, तो मैं क्या करूं?
3: मीना ये तो बहुत आसान है, इसमें तो हमें हल करने की प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि गणित के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। और उसके लिए तुम अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के भी पढ़ सकते हो, तो और आसान हो जाएगा। फॉर्मूलाज याद रखो, उसको लिखने की प्रैक्टिस करो।
1: हाँ, और गणित तो ऐसा विषय है कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू में लगती है, और जैसे ही उसकी टेक्निक समझ में आ जाती है तो वो बहुत इजी और मजेदार हो जाती है।
3: मनी दीदी, मैं भी गणित के विषय में बहुत कमजोर थी, लेकिन जब उसमें इंटरेस्ट आया तो फिर इजी लगने लगा।
1: हाँ तो बच्चों समझ गए ना, तो इंटरेस्ट हमको जगाना है। जैसे खेलने में इंटरेस्ट है, मोबाइल देखने में इंटरेस्ट है, तो ऐसे ही गणित में भी इंटरेस्ट बना लो।
3: तो चलो मीना, आपको अपने सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा, इसकी ट्राई करके हमें जरूर बताना। तो बच्चों अब तो आप हमें सवाल पूछते थे, अब नेक्स्ट कड़ी से हम आपको सवाल पूछेंगे, आप हमें जवाब भेजिएगा।
1: हाँ तो बच्चों, अगर होमवर्क ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते हो, और अगर क्लास में टीचर की बात समझ में ना आए तो कैसे पूछते हो? तो इसका जवाब जरूर देना, बड़ा मजा आएगा।
3: हाँ बच्चों, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 94-14-15-14-15 पर जल्दी से जल्दी भेज दीजिए।
1: हाँ तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
3: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हमने गाना तो सुन लिया, तो बच्चों आज एक डरपोक खरगोश की कहानी सुनेंगे। एक जंगल में एक खरगोश रहता था, बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा सी आवाज सुनाई पड़ी तो डर कर भागने लगता था। डर के मारे वो हर वक्त अपने कान जो है ना वो खड़े रखता था, इसलिए वो कभी सुख से सो भी नहीं पाता था। बच्चों एक दिन खरगोश एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी पेड़ से एक आम उसके पास आके गिरा। आम गिरने की आवाज सुनकर वो तो हड़बड़ा उठा और उछलकर दूर जाके खड़ा हुआ। भागो भागो, आसमान गिर रहा है, चिल्लाता हुआ सरपट भागने लगा। बच्चों रास्ते में उसे एक हिरण मिला। हिरण ने उससे पूछा, अरे भाई तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो, आखिर मामला क्या है? खरगोश ने कहा, अरे भाग भाग, जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरण भी तो डरपोक था, इसलिए वो भी भयभीत होकर उसके साथ भागने लगा। भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उनकी देखा देखी डर के मारे जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ और अन्य जानवर सब झुंड के साथ भागने लगे। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उस समय बच्चों सिंह अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वो हड़बड़ाकर जाग उठा। गुफा से बाहर आया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको रुको, आखिर क्या बात है? सिंह के डर से सभी जानवर रुक गए। सब ने एक स्वर में कहा, आसमान नीचे गिर रहा है। बच्चों ये सुनकर तो सिंह को बड़ी हंसी आई। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हंसी रोक के कहा, आसमान को गिरते हुए किसने देखा? तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी की निगाह खरगोश की ओर मुड़ गई। तभी उसके मुंह से निकला आसमान का एक टुकड़ा तो उस आम के पेड़ से नीचे गिरा है। अच्छा चलो वहां चलकर देखते हैं, सी ने कहा। तो सी के साथ सारा जानवर का पलटन आम के पेड़ के पास पहुंचा। सब ने इधर उधर तलाश की, किसी को भी आसमान का कोई टुकड़ा नजर नहीं आया। हाँ एक आम जरूर उस जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। बच्चों सी ने आम की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने भयभीत कर दिया सबको? बच्चों अब खरगोश को तो अपनी भूल समझ में आ गई। उसका सिर शर्म से झुक गया, वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डर कर वे बेकार में भाग रहे थे। तो देखा बच्चों, कहानी समझाती है ना कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना? पहले कंफर्म करो, आजमाओ, फिर विश्वास करो। तो चलो बच्चों अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सब

0: सिंह चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई लेकर तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब लेकर। और इसमें हम पढ़ रहे हैं राजा का अजीब आदेश और तेनाली राम, जिसमें महाराज ने सभी दरबारियों को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और शर्त रखी कि इन मुद्राओं को खर्च करने के पहले हर बार उन्हें राजा का चेहरा देखना होगा। बिना चेहरा देखे कोई एक भी मुद्रा खर्च करेगा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। अब सारे मंत्रियों ने तो खर्च किया ही नहीं वो मुद्राएं, लेकिन तेनाली राम की जब बारी आई तो तेनाली राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने उन स्वर्ण मुद्राओं से अपने लिए नए नए कपड़े खरीदे, कीमती हार खरीदा। तो ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पूछा, क्या तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया और बिना हमारा चेहरा देखे खरीदारी की? तो तेनाली राम ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज मैंने आपके आदेश का कभी उल्लंघन नहीं किया, मैंने हर एक मुद्रा खर्च करने से पहले हमेशा आपका चेहरा देखा है। तो राजा ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? तुम तो महल से बाहर थे और हमने तुम्हें अपना चेहरा देखते नहीं देखा। तो तेनाली राम ने जेब से एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और राजा को दिखाते हुए कहा, महाराज इन सभी स्वर्ण मुद्राओं पर तो आपका ही चेहरा छपा हुआ है। जब भी मैंने कोई मुद्रा खर्च की तो मैंने उस पर बने आपके चेहरे के दर्शन किए। तो ये अनोखा और चतुर जवाब सुनकर महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनाली राम की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें पुरस्कार के रूप में और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की। तो बच्चों देखा तेनाली राम की चतुराई। तो ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए बने रहिएगा सपनों की सैर कार्यक्रम में। तो चलो सुनते हैं प्यारा सा गाना, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: Priyanka Chopra, and I'm truly blessed to share an incredible relationship with my parents. I just wonder, you know, the love, trust, the kind of feeling that you have for your own family. Can you feel like that for anyone and everyone else? Can you treat every single human being that you come across with that same love and trust? Well, that's what the Brahma Kumaris teach you, to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love.
1: बच्चो चलो चलो आ जाओ भाई, हैरी की तो कहानी पूरी हो गई। और अभी परी ने पता है ना पिछले बार गणित का काम दिया था गिनने का, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे भी तीतर पीछे भी तीतर, तो बोलो कितने तीतर।
2: बच्चों बहुत सारे सही जवाब हमें आए हैं, मनी दीदी तो तीतरों को गिनती ही रह गई और बच्चों ने सही जवाब भेज दिए।
1: सही कहा बच्चों, क्या आपने देखा भी है तीतर कैसे होते हैं?
2: हाँ मनी दीदी बताओ तो सही बच्चों को।
1: अच्छा जब खेत में जाते हैं ना तो वो जो उड़ते रहते हैं हेलीकॉप्टर के जैसे, उनको ही तीतर कहते हैं।
2: अच्छा टर टर आवाज करते हैं?
1: टर टर तो मेंढक करता है, मुझे तो तीतर देखने भी मिल गए इसीलिए तो मुझे गिनने में भी आसानी हुई। एक तीतर के आगे दो तीतर, फिर एक तीतर के पीछे दो तीतर रख दिया, फिर आगे उसके एक तीतर और पीछे तीतर,
2: तो कितने हो गए?
1: तीन।
2: हाँ तो बच्चों देखा सही जवाब है तीन तीतर। मनी दीदी आज का जो सवाल है ना ये भी गणित का ही है।
1: गणित तो हो बड़ा कैलकुलेशन कराते हो परी। अच्छा क्या सवाल है?
2: ऐसे ही आपका गणित सुधर जाएगा।
1: अच्छा तो बच्चों का भी सुधर जाना चाहिए फिर तो।
2: हाँ हाँ तो बच्चों डायरी में जल्दी से नोट कर लीजिए आज का सवाल। एक व्यक्ति के पास 15 बकरियां है जिसमें से 7 बकरियों को छोड़कर बाकी सभी मर जाती है, तो अब उस व्यक्ति के पास कितनी बकरियां बची?
1: अच्छा परी 15 बकरियां हैं जिसमें से 7 को छोड़कर बाकी सब मर जाती है, तो उसके पास 8 बकरी बची ना।
2: मनी दीदी फिर से थोड़ा कैलकुलेट करो और ध्यान से इस सवाल को समझो।
1: अच्छा क्योंकि परी आपने बोला एक व्यक्ति के पास 15 है, 15 में से 7 को छोड़कर बाकी मर गए, तो 15 में से 7 गया तो 8 ही बचा ना, 8 बकरियां होंगी।
2: अब ये तो बच्चों पे छोड़ देते हैं आंसर।
1: अच्छा
2: देखते हैं कौन से बच्चे हमको सही जवाब भेजते हैं।
1: अच्छा तो इसमें कुछ और मैथ्स है बच्चों, थोड़ा ध्यान से प्रश्न को समझने की कोशिश करना और मैं भी अपने दिमाग का घोड़ा समुद्र में दौड़ाती हूँ।
2: और बच्चों एक हिंट भी आपको दे देती हूँ, इसी सवाल में जवाब समाया हुआ है।
1: अच्छा चलो बार बार सवाल पढ़कर देखेंगे तब तो सही जवाब मिल ही जाएगा।
2: तब तक के लिए गुड नाइट,
1: स्लीप टाइम,
2: गुड बाय,
1: सुनते रहो
2: मुस्कुराते रहो
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम सा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा, कैसे जरा विचार करिएगा। और आज आपको मैं ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ। अब कौन सी वाली वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे, ठीक है। और आज सिखाएंगे आप सभी को मट्ठा बनाना और मक्खन बनाना, लस्सी बनाना। गर्मी का जो मौसम है तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हमें मौसम के अनुसार बना करके पीनी चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। और खुशनुमा जीवन की तो ढेर सारी बातें करेंगे ही, साथ ही साथ आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा, जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि एक बार दो भाई होते हैं। दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं, माता पिता नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे की पूरी केयर करते हैं। उनका व्यवसाय है जंगल में से लकड़ी काट के लाना, उसको बेचना, और उससे जो पैसे आते हैं दोनों भाई अपना गुजारा चलाते हैं। खाना पीना कपड़ा उसी से ही उनको मिलता है। तो इसी तरह बड़ा भाई गया हुआ था जंगल में लकड़ी काटने, लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की काट करके दूसरे पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ थोड़ा जादुई था। उसने कहा, अरे भाई कृपा करो हमारे ऊपर, मेरी टहनियाँ मत काटो। उसने कहा, क्यों नहीं काटूं? जब दूसरे पेड़ की अन्य पेड़ों के मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ तो आपके टहनियाँ क्यों नहीं काटूं? तो उस पेड़ ने कहा कि भाई मत काटो, इसके बदले में मैं आपको सेब दे दूंगा। बोला ठीक है दे दो। तो सेब एक दी। अब उसको गुस्सा आ गया कि भाई तो हम दो हैं, एक सेब से क्या होगा, सेब माने एप्पल, इससे क्या होगा। उसको गुस्सा आ गया और उसने टहनी काट दी। टहनी काट दी तो उस पेड़ को भी गुस्सा आ गया और उसने उसके ऊपर सुइया चुबो दी। तो वो पूरा सुइयों से लिपट गया और असहनीय दर्द उसको होने लगा, वहीं पर गिर पड़ा। अब ऐसे होते होते शाम का समय हो गया। छोटा भाई को चिंता होने लगी कि क्या बात है, बड़ा भाई तो समय पर आ जाता है, आज नहीं आ पहुंचा, क्या बात है, मैं जाता हूँ। और छोटा भाई ढूंढने चला बड़े भाई को। देखा जंगल में इस तरह बड़ा भाई करा रहा है, चिल्ला रहा है दर्द से। तो उसने झा करके प्यार से उसकी सारी सुइयां निकाली। ठीक है, फिर सुइयां निकालने के बाद बड़े भाई ने पेड़ से क्षमा याचना की कि पेड़ मुझे माफ करना, आपके मना करने पर भी मैंने आपकी टहनी काट दी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। पेड़ को भी दया आ गई। पेड़ ने उसको बहुत सारी एप्पल दे दी कि ये लो तुम एप्पल खाओ। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम किसी पर रहम करेंगे तो बदले में हमारे ऊपर भी कोई रहम करेगा। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो बदले में हमें भी प्यार मिलेगा। अगर हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो बदले में हमको भी सम्मान मिलेगा। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर ब्यूटी टिप्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी पलकें, आपकी भौहें थोड़ी चमकदार और घनी बने, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर आपको टिप्स सुना रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि सप्ताह में 2-3 बार रात को सोते समय एरंडी का तेल लगाइए। एरंडी, जिसको हम दिवेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तेल को आप हल्के हल्के, मतलब उंगली पर लगा करके हल्के हल्के घिसना है, ठीक है, पलकों पर और भौहों पर। तो बाल नए उत्पन्न होंगे और भौहें घनी बनेगी, ठीक है। फिर से इस नुस्खे को दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आँखों की पलकों और भौहों पर बहुत जनों के बाल कम होते हैं और वो चाहते हैं कि थोड़े से बड़े, क्योंकि भौहें नहीं होती है तो भी कैसा लगता है ना, अटपटा लगता है ना। तो ऐसी स्थिति में, या फिर बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में भी आप सप्ताह में 2-3 बार रात को सोते समय एरंडी का तेल लगाइए। हल्के हल्के उंगली से आप थोड़ी सी हल्की हल्की मालिश करिएगा, ठीक है। तो पलकों और भौहों पर बाल आना शुरू हो जाएगा, बिरोनिया घनी होगी। अगला नुस्खा भी बहुत अच्छा है कि भौहों की सुंदरता बनाए रखने के लिए सिर में तेल लगाते समय उंगलियों को भौहों पर रोज फेरिए। इससे भी भौहों की सुंदरता बढ़ेगी। भौहे की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप सिर में तेल लगाते हो ना, तेल लगाने के बाद इन उंगलियों को थोड़ा सा अपनी भौहे पर भी फेर दीजिए, तो भौहे की सुंदरता बढ़ेगी। देखिए, बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे माताएं बहनें बिंदी लगाती है, बिंदी का निशान रह जाता है। और आजकल का समय ऐसा है कि आजकल की बहनें बिंदी बहुत कम लगाती है, क्योंकि ड्रेसेस पहनते हैं ना तो बिंदी नहीं लगाती है, लेकिन वो साड़ी के ऊपर रोज लगाती है तो उसका निशान

तो रह जाता है। अब ड्रेस के ऊपर बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन निशान देख करके घबरा जाती है कि अरे ये निशान कैसा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पता चल जाए कि ये बिंदी का निशान है। या तो आप बिंदी लगाओ या नहीं लगाओ, तो फिर निशान नहीं दिखना चाहिए। अब निशान हो गया उसका क्या करे, है ना? निशान भी देखे गोल दाग भी पड़ जाता है कभी कभी, और कभी सांवला सांवला भी निशान हो जाता है ना? तो फिर आप क्या करेंगे, थोड़े पानी में आप ये जो बावची होती है ना, बावची जिसको बाकुची भी कहते हैं, बाकुची के बीज आप पंसारी की दुकान से ला सकते हैं। ये थोड़े पानी में आप इसको पीसिए, पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना करके जो बिंदी का निशान है उस स्थान पर आप लगाइए। आपको रोज रात को लेप करना है, और फिर आप भले तो 1 घंटे बाद मुंह धो लीजिए या नींद आ जाए तो सुबह धो लीजिए। तो ऐसे करने से दाग आपका गायब हो जाएगा और जो स्किन है वो पहले जैसी चमकदार ही रहेगी। बिंदी का निशान अगर पड़ गया है तो आप उस निशान को मिटाने के लिए बाकुची के बीज को आप थोड़े से पानी में पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना करके रात को सोते समय इसको लगाइए, सुबह चेहरा धो लीजिए। ऐसा थोड़े दिन लगातार करने से बिंदी का निशान खत्म हो जाएगा। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि होठों की सुंदरता के लिए क्या करेंगे, क्योंकि होठ भी देखिए भले गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन किसी भी मौसम में होठ फट जाते हैं। सर्दी के मौसम में तो अक्सर हम ध्यान रखते हैं, है ना? तो आजकल उल्टा हो गया है, सर्दी के मौसम में पूरी केयर करते हैं तो होठ नहीं फटते है। नहीं करते तो फिर फटते ही है, ज़्यादा ही फटते हैं। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है उसमें हम सोचते हैं कि अरे ऐसे मौसम में क्या ध्यान रखना है, तो ऐसे मौसम में भी होठ फट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दूध की मलाई में हल्के से चुटकी भर हल्दी डालिए, और फिर आप उंगली पर थोड़ा सा घिस करके होठों पे लगा दीजिए, फिर चेहरा धो लीजिए। और अगर चेहरा नहीं धोना है तो खाली दूध की मलाई आप तर्जनी उंगली और अंगूठे से थोड़ा सा घिस करके लगा दीजिए। वो चिकनाई है ना, उस चिकनाई को लगाइए, तो सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहेगा चिकनाई, उसके अंदर भी घी की मात्रा ही होती है दूध के अंदर। पर आप ये जो दूध की मलाई लगाएंगे तो ये सॉफ्ट भी रहेगा और होठ इससे नरम भी रहेंगे, फटेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं, और आप चाहो तो आजमा करके स्वयं के ब्यूटी को बढ़ा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हाई, अब एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आपको नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे, परंतु आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ऐतिहासिक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? आपके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल पड़ेगा। तो ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालबेलिया, डी तेरह ताली। अब ये चार में से एक सही है, कौन सा सही है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अगर आप सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं तो आप फोन कॉल्स करके फिर से प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है? और आइए अब हम आपको छाछ, मट्ठा ये सब सिखा देते हैं। देखिए, मट्ठा का दूसरा रूप छाछ ही होता है। छाछ पतली होती है, मट्ठा गाढ़ा होता है, ठीक है? तो पहले आपको मट्ठा सिखा रही हूँ कि आप दही ले लीजिए, और दही में अब आप थोड़ा सा आप डाल सकते हैं इसमें पुदीना पाउडर, सिका हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल करके आप भले तो बिलोनी से बिलो दीजिए, भले ग्राइंडर से आप ग्राइंड कर लीजिए, और बस आप पिरस सकते हैं, तो इसको मट्ठा भी कहते हैं। दूसरा रूप यह है कि दही में से आपको मक्खन निकालना है, तो दही को बिलोइए, अच्छी तरह बिलोइए। ज़रूरत पड़े तो इसमें से आपको थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं या फिर आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं मौसम के अनुसार। सर्दी का मौसम हो तो हम गर्म पानी डालते हैं, सर्दी का मौसम आप बर्फ़ डालिए, बर्फ़ डाल करके इसके मक्खन को निकाल दीजिए। तो मक्खन निकालने के बाद ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा पतला तो हो गया है, लेकिन फिर भी इसको हम मट्ठा भी कहते हैं। इसमें फिर आप स्वाद के अनुसार वही जीरा पाउडर, जीरा आप छाछ में या मट्ठा में यूज़ करते हैं तो सेक करके फिर इसको पीस करके डालिए, इससे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा मट्ठा या छाछ जो भी आप पी रहे हैं, टेस्टी लगेगा। तो मक्खन निकाल दीजिए, जैसे आप दही है ना, दही को आप अच्छी तरह बिलोइए, बिलोने के बाद इसमें आप बर्फ़ डाल दीजिए, बर्फ़ डालने पर जो मक्खन होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो मक्खन निकाल दीजिए। फिर बचा हुआ जो दही की छाछ है इसमें आप जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काला नमक डाल करके आप इसका आनंद ले सकते हो। तो ये बन गया मट्ठा। तीसरा रूप है कि कोई कोई क्या है, श्रीखंड को भी मट्ठा कह देते हैं। तो फिर आपने दही बनाया है, उसका आप कपड़े में बांध दिए, कपड़े में बांध करके इसका जो पानी का भाग है कपड़े में बांधेंगे स्वच्छ कपड़े में, तो ये पानी टपक करके निकल जाएगा बाहर, ठीक है? फिर गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा दही। फिर इसमें आप थोड़े से स्वाद के अनुसार शक्कर डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको फेंट लीजिए, ठीक है? एक चौड़ी थाली में या परात में लेकर के फेंटिए। फेंटने के बाद बस आप एक सकड़े बर्तन में, भले भगोने में, आप भले बड़े कटोरे में आप इसको भर दीजिए। तो इसको ऐसे श्रीखंड भी कहते हैं और मट्ठा भी कहते हैं। तो ऐसे हम घर पर ही बना सकते हैं और इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। फिर इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, इलायची फ्लेवर पसंद है तो इलायची पाउडर आप डाल सकते हो, और फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। नॉर्मल खाना चाहते हो तो मत रखिए फ्रिज में, लेकिन सचमुच ये मट्ठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप दही लीजिए, दही को आप एक स्वच्छ कपड़े में रख करके चारों तरफ पोटली बना करके किसी हैंडल पर आप लटका दीजिए, ठीक है? इससे जो पानी होगा दही के मात्रा में जो पानी है ना वो निकल जाएगा, फिर ये गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा। फिर इसको आप एक चौड़े बर्तन में निकाल करके स्वाद के अनुसार शक्कर डाल करके आप हाथ से हथेली से अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटने के बाद आपको लगे कि शक्कर एक में एक हो गई है, फिर आप किसी पतीली में है या बाउल में है भर दीजिए। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करके बारीक बारीक और डाल दीजिएगा, इलायची पाउडर भी आप डाल दीजिए अच्छी तरह, फिर मिक्स करके पहले आप भरते हो ना उसके पहले चौड़े बर्तन में सब कुछ डाल दीजिए। पहले शक्कर डाल करके तो आपको मथना है, अच्छी तरह फेंटना है, फिर आप को लगे कि अब शक्कर एक मेक हो गई है, फिर ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा और अच्छी तरह मिक्स करके आप एक बाउल में भर दीजिएगा। तो ये बन गया श्रीखंड, जिसको हम मट्ठा भी कहते हैं, ठीक है। और आपने देखे अलग अलग प्रकार से छाछ मट्ठा सीखा है, अब मैं और भी कुछ सिखाऊंगी परंतु एक ब्रेक के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ खो गए हैं, कोई कहीं फंक्शन में तो नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं अभी अभी। देखिए मुंडन का प्रोग्राम भी जारी है, शादी ब्याह भी चल रहे हैं, तो कहीं कहीं अपने जो नए घर खरीदे उसकी भी ओपनिंग चल रही है, और साथ ही साथ भजन कीर्तन सुंदरकांड के पाठ वगैरह वगैरह तो सब चलते ही रहते हैं ना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे श्रोता बंधु व्यस्त हो गए हैं, कोई बात नहीं, अगर समय है आपके पास तो आप जरूर जुड़िएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और आज का प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल है, कौन सा नृत्य, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है। हेलो, पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग उषा बहन जी।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी की और सभी मित्रों की कृपा है, और अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
1: जी,
2: कहीं
1: जी, जी,
2: नहीं गए हैं, मधुबन से जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ बहन।
1: अच्छा। जी जी जी। तो आज का प्रश्न आपने सुना?
2: जी जी जी, सुना मैंने।
1: हाँ जी, तो जवाब आप देंगे या मैं ऑप्शन दूँ?
2: बिल्कुल देंगे जवाब।
1: हाँ जी,
2: और अभी मैं ऑफलाइन हूँ, ऑनलाइन हूँ?
1: अभी आप ऑन एयर है।
2: तो सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, प्रणाम है, और आज का जो आपने सवाल का जवाब है तो कालबेरिया सही जवाब है। जो कालबेरिया राजस्थान का जो नृत्य है तो वो विश्व स्तर पर अपना प्रतियोगिता में भाग लेके आए हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज की थी। कालबेरिया सही जवाब है।
1: ठीक है, तो दयाराम जी आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम जरूर आपका जवाब सुनाएंगे, ठीक है?
2: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत आभार। और आइए यहीं पर हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्यों को अपाहिज बना देता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ खुशनुमा जीवन का, कि कैसे हम तनाव में आते हैं, दुखी होते हैं और कैसे हम तनाव से मुक्त रह करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो आज का ये विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ कि हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्यों को अपाहिज बना देता है। क्या कहेंगे आप? जरूर जुड़िएगा और इस विषय पर आप चर्चा में भाग जरूर लीजिएगा। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है। फिर से दोहरा रही हूँ कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? अब मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे श्रोता बंधु को लग रहा है कि ये मुश्किल प्रश्न है, तो मैं आपको जवाब के लिए चार ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से एक सही है। वो कौन सा सही है जवाब आपको देना है। परंतु हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, तो उनसे बात जरूर करेंगे। हेलो,
2: नमस्ते। गुड मॉर्निंग सुरेश भाई।
1: हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सुरेश भाई
2: जी। बहुत अच्छे हैं और सभी मित्र भी हमारे बहुत अच्छे हैं और विषय भी बहुत अच्छा है दीदी की। इससे ज्यादा दीदी हम आराम करते हैं
1: जी,
2: कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता ही है। देखो, अब कई लोग ऐसे हैं दीदी, इतना आलसी हो गए कि कुछ करने की कुछ सोचते भी नहीं
1: जी।
2: हमारे जो गुजराती में कहावत है कि आड़स जीता मानस की कब्र से।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: तो हाँ, तो आड़स हम आराम तो करते थे, आराम करना भी जरूरी है, लेकिन इतना आराम ना करो कि हम कुछ कर ना पाए
1: जी।
2: फिर से ज्यादा कोई भी बात है जिससे ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो, हम काम करते हैं, काम भी करने का भी तरीका चाहिए। अभी काम करते ही रहो, करते रहो कुछ खा, तो हमारे शरीर का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम रहता है
1: जी।
2: काम करना भी जरूरी है और आराम करना भी जरूरी है, लेकिन हम काम से उठते काम करेंगे, आराम से उठते आराम करेंगे। हम कभी आराम नहीं करते, हम पूरे दिन काम करते हैं, रात को ही आराम करते हैं।
1: क्या बात है।
2: दिन को रोटी खा के भी मैं आराम नहीं करता।
1: अच्छा,
2: सुबह से 7:30 बजे से रात को 7:30 बजे में काम करता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोजन के बाद अगर समय मिलता है और सिचुएशन ऐसी हो तो 10 मिनट आप आराम कर सकते हो।
2: वो तो सही दीदी, हम 2 चक्कर लगा देते हैं, हम बाहर तो जाते हैं 2 चक्कर लगा देते हैं, तो हमारा जो भोजन खाया हुआ भोजन है वो अच्छी तरह से पहुँच जाता है
1: जी। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है।
2: तो आराम करते हैं, लेकिन जब काम होता है तो आराम नहीं करते
1: जी। जी, हमारा काम देते हैं वो तो सही है, काम होता है उस समय तो 1 सेकंड भी ऐसा लगता है कि वेस्ट नहीं करना है।
2: वेस्ट नहीं करना, और मैं कभी वेस्ट करता, मैं 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, मैं काम समय से घड़ी से काम से घड़ी से साथ में काम करता हूँ
1: जी। जी बहुत अच्छी बात है,
2: घड़ी चलती है घड़ी के साथ साथ में काम करता हूँ
1: जी। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आलस्य के मारे उठने को तैयार नहीं होते, कुछ ज्यादा ही आराम करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं तो यही कहूँगा कि आराम कीजिए, लेकिन थोड़ा काम भी करना जरूरी है। मैं बताऊँ तो हमारे कई सारे भाई यहाँ भी हैं कि काम करते हैं लेकिन आराम ज्यादा करते हैं। तो आराम करना भी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जब आप काम करेंगे तो आपका बॉडी भी अच्छी रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका आपको थोड़ा पैसा भी ज्यादा मिलेगा। इसी काम
1: हर तरह से फायदा है,
2: हर तरह से फायदा है, लेकिन ज्यादा आराम करना भी सही नहीं है
1: जी।
2: दिन को रात को तो आप खुद आराम कर लो, कोई बात नहीं, 5-6 बजे तक
1: नहीं। जैसे आपने कहा ना कि काम करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसा भी मिलेगा, इसलिए कह रहे हो कि सब तरफ से फायदा है।
2: फायदा है, मैं बताऊँ तो मैं सुबह रात को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ हर रोज
1: जी। बहुत अच्छा,
2: काम करना है, काम के समय काम करना है, हम काम आराम करेंगे लेकिन आधा घंटे से ज्यादा
1: जी। जी बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है, आप भी इस विषय को स्पष्ट कर सकते हो। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। तो हमारे श्रोता बंधु फोन कॉल्स कर सकते हैं, हम थोड़े से बोल रहे होते हैं तो फोन उठाएंगे आपका, ऐसा नहीं कि नहीं उठाएंगे, इसलिए आप जरूर जुड़िएगा। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालबेलिया, डी तेरह ताली। ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे, उसमें से एक सही है, कौन सा सही है जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है 94-1415-1415। और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, किसी की आप मदद कर रहे हैं, है ना, अच्छी बात है, मदद करना बहुत अच्छी बात है, हमारा फर्ज है मदद करना, लेकिन सामने वाला अब हमारे ऊपर ही निर्भर हो गया, ये गलत है। समय सभी के साथ आता है, ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है, उस समय इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती ही है। कभी तन के द्वारा, कभी धन के द्वारा, कभी परिवार के द्वारा मदद की आवश्यकता रहती है ना। जैसे कोई गिर गया है तो उस समय इंसान चाहिए उठाने के लिए, एक दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति जरूर चाहिए उठाने के लिए। और कभी धन की जरूरत पड़ जाती है तो भी यार दोस्त या फिर मित्र संबंधी इन सभी की याद आती है। तो मदद करना बुरी बात नहीं है, मदद करना ही चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं। परंतु मदद करने पर सामने वाला व्यक्ति पूरा ही डिपेंड हो जाता है तो क्या कहेंगे? हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: है। हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई।
3: आज का विचार तो एक गीत मेरे को याद आया है।
1: हाँ जी,
3: ये पुराना गीत है, आराम है हराम, आराम है हराम, भारत के नौजवानों आजादी के दीवानों, इस देश के कोने कोने पर पहुंचा दो ये पैगाम,
1: आराम है हराम, आराम है हराम। वाह वाह वाह, क्या बात है, समय पर आपने भी नहले पर दहला मारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत सुनाया, बिल्कुल इसके ये गीत स्पष्ट कर रहा है कि आराम करना भी ज्यादा आराम भी हराम है।
3: जी, आराम के टाइम आराम भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम हो तो उसमें आराम नहीं करना चाहिए।
1: जी
3: हाँ, ऐसा एकदम अपने को कि चलो भाई अभी आराम करेंगे तो ये नुकसान होने वाला है, तो आराम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी काम है।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका फिरोज भाई। जी, तो देखिए दो, वो कहते हैं ना कि गीत की पंक्तियों में ही फिरोज भाई ने समझा दिया कि आराम कहाँ तक आवश्यक है। कितनी बार देखिए कोई बिजनेस करते हैं, 12-12 एक एक दो दो बजे घर में ही रहेंगे, और घर वाले कहेंगे अरे भाई जाओ बिजनेस पर जाओ, तो बोलेंगे कि अरे हमारा तो फोन पर बिजनेस चलता है, हो जाएगा, आपकी शॉप है, और आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं, अब बोले कितने कस्टमर आकर के चले जाएंगे, सोच ही नहीं सकते हो, आधा दिन तो आपका घर में ही बीत गया। हम अपने श्रोता बंधु से बात करना चाहेंगे क्योंकि वो जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन से। हेलो,
4: हेलो, नमस्कार दीदी, कैसे हो?
1: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप? धानेराव से बोल रहे हैं ना?
4: जी जी जी
1: जी जी जी, हम अच्छे है, आप सुनाइए।
4: आपने एक अच्छा विषय रखा है, तो हमेशा मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा हटके बात करता हूँ कि जो व्यक्ति बहुत हद से ज्यादा आराम करने लगता है ना, तो फिर उनको पैसे की तो जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है, तो वो लालच आ जाती है, कैसी कि किसी के सगे वालों से पैसा मांगना, कोई बहन है भाई के पास, ऐसी आदत पड़ जाती है, फिर लोग उनको ताना देते हैं कि अरे ये आलसी है, उसको घर वालों को भी ताना, उसको सगे वालों को ताना देते है कि तुम्हारा जो जमाई है, मतलब हर तरह से उनकी जो थूथू रहती है।
1: बिल्कुल,
4: आलस्य क्या नहीं करती, सिर्फ ऐसा नहीं कि कमाने में या घर चलाने में नुकसान है या मुश्किल आएगी, लेकिन जीवन में हर तरह की नुकसान आएगा। तो किसी ने कहा भी है कि आराम हराम है, मतलब आराम भी करनी चाहिए, लेकिन अगर काम पर रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करेंगे ना तो हमारा गाड़ा जैसे तैसे चलता रहेगा और हमेशा जो धंधे में अगर मन लग गया ना तो वो इंसान कभी आराम करने की सोच नहीं सकता, अगर मन लगा तो। और मन नहीं लगता ना वही जो ये आलसी बन जाते हैं। हर काम में मन लगा कर करना चाहिए।
1: जी बहुत सुंदर
4: जी। और आपने जो प्रश्न पूछा था वो ऑप्शन में क्या क्या बताया था दीदी?
1: जी घूमर बेलिया, हाँ जी घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया और तेरा ताली।
4: हाँ कालबेलिया हो सकता है।
1: अच्छा ठीक है, तो आप सुनिएगा कार्यक्रम, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
4: जी, थैंक यू दीदी
1: जी, बहुत बहुत आभार। और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सुनते एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबनी।

0: You are listening to Sister Dipti from Johannesburg, South Africa, and you are listening to Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. This is being heard on www.radiomadhuban.in. I'm in South Africa, but you can tune into this wherever you are in the world and stay tuned into this wonderful fragrance.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे इंसान दुखी होता है अपने ही संस्कारों वश, और कैसे इंसान सुखी होता है अपने ही संस्कारों वश। अब किस तरह के संस्कार हमें धारण करने हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम, क्या करेंगे। विषय बहुत ही अच्छा है, आराम मनुष्य को, ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि ज्यादा निर्भरता भी अच्छी बात नहीं है। हर कार्य में बहुत सारे लोगों की आदत होती है निर्भर रहना, आता है उसके बावजूद भी नहीं करेंगे। अरे ये काम कर लेना, अरे सुनो सुनो इधर आओ ये काम कर लेना, खुद सोए सोए ऑर्डर देंगे और दूसरों से करवाना चाहेंगे। अब कितना समय आपकी कोई मदद करेगा, सोचिए आप। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ठीक है कोई परिस्थिति वश किसी को मदद चाहिए, हर कोई करने को तैयार रहेगा और करना भी चाहिए उस समय। लेकिन जब इंसान आत्मनिर्भर बन चुका है या वो उन परिस्थितियों में से निकल चुका है तो फिर तो उसको संभलना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अच्छा मेरे को तो आज दिन तक मदद मिली है तो आगे भी मिलती रहेगी, फिर इंसान आलसी हो जाता है। आलसी हो जाता है तो वो आराम ज्यादा करता है और काम कम करता है। ज्यादातर वो लोगों से ही काम लेना पसंद करता है। धीरे धीरे लोग भी उस स्वभाव के से थोड़ा सा परिचित होने लगते हैं कि भाई इसकी तो आदत पड़ गई। कोई भी हो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कोई भी कितना भी अच्छा हमारा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन एक लिमिट होती है हर मदद की, है ना। लिमिट के बाहर अगर कोई किसी का ज्यादा ही परेशान करता है या ज्यादा ही उससे मदद लेना चाहता है या काम कराना चाहता है तो फिर धीरे धीरे उससे डिटैच हो जाएंगे, धीरे धीरे संबंधों में दरार आने लगेगी और कभी कभी तो रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं कि भाई उसके सामने तो जाना ही नहीं, गए नहीं कि बस वो ये कर दो वो कर दो, ये दे दो वो दे दो, ये बातें रहेगी तो फिर उस इंसान से लोग दूर भागते हैं। इसलिए देखिए, जरूरत से ज्यादा निर्भरता अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति आ गई है तो आप मदद लीजिएगा, लेकिन जब परिस्थिति टल गई है, चली गई है, आपके जीवन से निकल गई है, तो फिर से आप अपने आप को संभालिए और हो सके तो आप दूसरों की मदद करिए। क्योंकि देखिए ये एक फैक्ट बात है कि आज मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो कल मुझे भी थोड़ी सी इच्छा रहेगी कि कुछ तो मदद आपके द्वारा भी मुझे मिले, है ना। तो ऐसे ही होते हैं रिश्तों में भी। तो फिर आप अगर आत्मनिर्भर बन गए हैं तो दूसरों की मदद करिए। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो नमस्कार, ओम शांति दीदी।
1: हाँ जी नमस्ते दयाराम जी।
2: और जो लोग आलसू ज्यादा होते हैं तो अपने काम सही तरह नहीं कर पाते हैं तो वो खुद का तो भी नुकसान कर देते हैं, लेकिन उनके संगत में और भी आते हैं तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम तो हमेशा ऐसे लोगों से कभी दूर ही रहा करते हैं और उनको भी अच्छी सलाह भी देते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी गृहस्थी अच्छी तरह चलेगी। और हमेशा अब किसी पर निर्भर नहीं रहता है और खुद पर डिपेंड करता है तो वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। और जैसे हमारे घर में कोई गृहस्थी है तो अपना काम सही तरह अच्छी तरह करती है तो सब उसका जो भले भले करते हैं और नहीं करते हैं तो उनके घर में ही झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही किसी पर निर्भर नहीं रहना है, अपने अपने काम में हमेशा तत्पर रह के करते रहना है और दुगने जज्बे के साथ करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे
1: जी।
2: और कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं ही किसान हूँ तो कृषि का कार्य करता हूँ तो मैं किसी दूसरों पर निर्भर रहूंगा कि वो आएगा मुझे काम कराएगा, तो कोई नहीं, हम समय तक कोई नहीं आ पाता है, नहीं
1: जी,
2: आता है
1: जी।
2: हम अपने काम में लगातार जुड़े रहते हैं और व्यस्त रहते हैं करते हैं तो हम उस काम को अपने जो काम को अपनी समय सीमा निर्भर होती है तो उन पर हम पहुँच जाते हैं। तो बस सभी को नमस्कार है, ओम शांति, खम्मा गणी का
1: जी, गणी खम्मा सा, आभार। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही अच्छी तरह आपने भी स्पष्ट किया है। ये थे दयाराम जी लाखनी से, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम भी किसान हैं, अगर हम किसी के ऊपर आश्रित रहेंगे तो खेती कैसे करेंगे। हर व्यक्ति अगर इसी तरह सोच ले कि हमें डिपेंड नहीं रहना है, स्वयं का कार्य स्वयं करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। नहीं आता है तो सीखा जा सकता है, लेकिन सीखने के बाद भी अगर हम निर्भर रहते हैं तो फिर वो अपाहिज की तरह ही है ना। इसलिए हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ किसी को पचती नहीं है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना कि अगर हम ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, आलसी बनेंगे, तो बस दुख का न्योता तो हम खुद ही दे रहे हैं दुख को, है ना। तो अगर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो स्वावलंबी बनिएगा और आलस्य को त्याग दीजिएगा, तभी अपने जीवन को हम सुंदर और श्रेष्ठ बना पाएंगे, खुशनुमा बना पाएंगे। यही खुशनुमा जीवन का राज है। यहीं पर हम फिर से एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
3: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
4: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशियाना, और बहुत ही आज का कार्यक्रम अच्छा रहा, विचार भी आज का बहुत ही सुंदर था। तो नुस्खे भी आपको जो ब्यूटी टिप्स दी है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेसिपी में भी आपको अलग अलग प्रकार से छाछ मट्ठा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके इसका आनंद लीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? लगभग हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है, एक को छोड़ करके। नाम सुनाना चाहूंगी दयाराम जी लाखनी से, फिरोज भाई पालनपुर से, सुरेश भाई जोटाना से, उम्मेद सिंह जी ओसिया से, और सुरेश भाई धानेराव से। आप सभी ने सही जवाब दिया है, काल बेलिया जो नृत्य है वो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने जवाब दिया है कच्ची घोड़ी, जो गलत है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी कि कहते हैं कि उजालों में तो मिल जाएंगे बहुत से,

करो। क्लेश हो ऐसा मत बोलो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो, रोग हो ऐसा मत खाओ। अब मैं आपको पुष्पांजलि सुना रही हूं। मैं अपराधी जन्म का नकशिक भरो विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। भक्ति दान मोहे दीजिए सब देवन के देव, और कछु मांगत नाही निश दिन तुम्हारी सेव। सफल द्वारे छोड़कर आई तेरे द्वार, शरणागत की जात रखियो है नंद कुमार। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो यदुराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज। अब मैं आपको बहुत ही सुंदर श्लोक सुना रही हूँ। काल बलि सन्मुख खड़िया होय चलन को त्यार, भजन भाव कीन्यो नहीं किस विधि उतरे पार। सुमिरन दीप जलाए के धरु तिहारा ध्यान, शरण पड़े की लाज रख ए मेरे भगवान। शरण पड़े की लाज रख ए मेरे भगवान।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और जिंदगी से प्यार करना हो तो क्या करना होता है, जिंदगी क्या है, कितनी बड़ी है। कोई कहता है कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखती, पर उसे जिया कैसे ये मायने रखता है। और सच में जिंदगी से प्यार हो तो हर लम्हा खूबसूरत हो सकता है, पर क्या ये सच है, क्या ये संभव है या सिर्फ किताबी बातें। आइए एक्सप्लोर करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से कल्पना जी, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और रेडियो मधुबन पर भी हमारा गाइड बन के हमेशा साथ देते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू आरुषि जी। बहुत अच्छा लगता है जब भी हम अपने श्रोताओं से मिलते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच।
2: और साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। अभी जिंदगी की एक और कड़ी में आप सभी से चर्चा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं कि आज की इस कड़ी में भी हम सभी इस चर्चा से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझकर जिंदगी से प्यार करना सीखें।
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये करना, और कैसे करना है उसके प्रैक्टिकल और इजी टिप्स आपको इस कार्यक्रम में मिलते हैं। और हम पिछले कुछ एपिसोड से भावनाओं के बारे में बहुत बात करते आए हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर किस परसेंटेज में हम उसे फील कर रहे हैं वो भी जानना, फिर किस तरह से उसे डील करना, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है लोग कहते हैं मैं भावनाओं में बह गई थी, मेरा ये मतलब नहीं था पर मुझसे ये हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे हो गया। तो डिस्टर्बेंस आ जाता है लाइफ में, कई बार बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं भावनाओं में बहकर, और वो गिल्ट हमेशा साथ रहता है। कई बार तो लोग लास्ट जो ब्रेथ होती है वहां तक भी उसको लेकर जाते हैं और वहां भी वो पेन एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे भी कई बार इंसिडेंट्स हुए। तो इतना लंबा वो ना जाए, उसको हम हील कैसे कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है, क्या कहना चाहेंगे आप?
3: बहुत सुंदर और साथ साथ बहुत डीप सवाल है ये। भावनाओं को समझना बहुत जरूरी, जैसे हम अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, समझना शुरू करते हैं, वैसे ही हम दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगते हैं। तो इसको ही हम कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। जब हम अपनी भावनाओं को समझकर सही जगह पर सही व्यक्ति के साथ सही इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो मैच्योरिटी की लेवल पर आ जाता है। लेकिन भावनाओं को न समझने की वजह से जो गलतियां हम कर लेते हैं, न खुद की भावना समझते हैं, न दूसरों की भावना समझते हैं, और बिना समझे हम जो आया जैसा व्यवहार कर लेते हैं, जो आया सो बोल देते हैं, और फिर बाद में पछताना पड़ता है, और ये शायद उम्र भर का घाव बन जाता है। घाव अगर शरीर पर होता है तो दिखाई देता है, लेकिन भावनाओं में जो घाव लगता है वो गुप्त भी रहता है लेकिन बहुत गहरा भी होता है। तो जैसे शरीर के घाव को ठीक करने के लिए कुछ विधि है, उसी तरह से मन के घाव, भावनाओं के घावों को भरने के लिए सबसे पहले इन्हें प्रेम से, समझ और समय की आवश्यकता होती है। पहली बात, प्रेम से समझना और समय देने की आवश्यकता। भावनात्मक उपचार क्या होता है, हीलिंग का मतलब क्या है, कि मन में दबे हुए दर्द, दुख है, क्रोध है, भय है, अपराध बोध है, अस्वीकृति है और नकारात्मक भाव है, इनको पहले समझकर स्वीकार करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर गुस्सा है या मुझे किसी बात का दुख है तो मैं एक्नॉलेज करूं कि हाँ मुझे इस बात का दुख है, मेरे किसी आपतस्वकीय ने शरीर छोड़ा है इसलिए मुझे दुख है, मुझे किसी ने धोखा दिया है इसलिए मुझे दुख है, या मुझे गुस्सा है, या मुझे भय है, या मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तो इस एक्नॉलेजमेंट के साथ हम उसका उपचार कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट के साथ ही हीलिंग की शुरुआत होती है।
2: इंटरेस्टिंग, मतलब पहले तो ये माने एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, नहीं तो वो होता है ना डॉक्टर के पास जाते ही नहीं अगर पता ही नहीं है कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए, तो पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट
3: जी। फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होकर हम पुनः अपनी ओरिजिनल शांति, प्रेम और आत्मबल के अनुभव में पहुंचते। जैसे जैसे हम भावनाओं को स्वीकार करते जाते हैं, उसको मैनेज करना हमें अपने आप आने लगता है।
2: दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि स्वीकार करते हैं तो मैनेज करना आने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं सही ऑर्डर पता होना चाहिए कि हमको चलना कैसे है। श्रीनिधि जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि कैरी फॉरवर्ड करके जो हम भावनाओं को अपने पास रखते हैं, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक इंसान को देख के वो भावनाएं वापस आने लगती हैं, हो सकता है हमने वो पीछे कहीं दबा दी होती है, तो वो दबा देना या हील होना, दोनों में से क्या हुआ है हमारे साथ, ये कैसे पता करें?
4: सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि हम सभी ना कुछ बैगेज लेके चलते, सीधे मुंह इसे बर्डन कहना शायद थोड़ा अप्रिय लगे, पर हम सबके साथ एक इमोशनल बैगेज हमारे साथ होता है, और ये इमोशनल बैगेज हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के कारण होता है कि हम जिस प्रकार की परवरिश होती, जिस प्रकार के दोस्त हमारे होते, तो उसके आधार पर हमारी जो ये इमोशनल बैगेज है बनते हैं। कभी कभार कुछ अप्रिय घटनाएं ऐसी हुई होती, लोगों ने कुछ कहा होता है या हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया होता है, उसकी वजह से एक हर्ट है या एक पेन को तो हम बहुत ही आसानी से पेन कह सकते हैं, तो बहुत सारे इमोशंस हम कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग फियर कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी कैरी करते हैं, कई लोग वो जो सैडनेस है वो कैरी करते हैं, हालांकि आज वो चीज नहीं है उनके लाइफ, मगर अतीत में पास्ट में कभी ऐसा हुआ है, किसी ने उनको ऐसा ट्रीट किया है, या कभी कभार हम इंटीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि भाई किसी ने आपको छोटा दिखाया है, छोटा महसूस कराया है, आपको इनसिग्निफिकेंट महसूस कराया है, तो आप आज भी उसी इमोशन में जी रहे हैं, जब भी शायद हर घड़ी नहीं जी रहे हैं, जब भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो उन सिचुएशंस से मिलते जुलते हैं, तो आप इमीडिएटली अपने आप को इनसिग्निफिकेंट या छोटा महसूस करने लगे, या डरा हुआ महसूस करते हैं कि ऐसा कुछ। तो ऐसे अनेकों इमोशनल बैगेजेस हम कैरी करते हैं, और ये कहना आसान नहीं है कि भाई हाँ हम उस बैगेज को छोड़ दें और आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब वो चीजें वो घटनाएं घटी हैं उस समय पर मेरे मन पर उसका बहुत प्रभाव रहा है, मैंने काफी देर तक उस चीज को महसूस किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप समझ लो, आप में से बहुत सारे मेरे साथी जो युवा साथी शायद वो रिलेट कर पाएंगे, अगर आप एक बैकपैक ट्रिप पे जाते हैं, बहुत सारे हमारे युवा साथी बस कंधे पे पिट्टू बैग लादे हुए ट्रिप्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, समझ लो आपने वो 10 kg का बैग पहन के रखा है, तो 10 kg कोई ज्यादा नहीं लगता युवा शरीर के लिए, तो आपको लगता है अरे 10 kg क्या है, बट अगर आप 10 दिन की यात्रा उस 10 kg बैग के साथ कर रहे हैं और हर दिन पहाड़ चढ़ते उतरते ट्रेन से हर जगह जब उसको लेके आपको चलना पड़ता है, और जब 10 दिन बाद आपकी यात्रा पूरी होती है और आप उस बैग को उतारते हो, अब आपने वो बैग पहना नहीं है, अगर फिर भी कंधे पे वो दर्द महसूस होता है क्योंकि आपने इतने दिनों तक उस बैग को कैरी किया हुआ है कि आपने उसको अपने कंधे को आराम नहीं दिया था। सिमिलरली हमारे मन के साथ, तो इस बात को एक्नॉलेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज अगर मैं वैसा पेन फील कर रहा हूँ, तो ये जो पेन है, ये जो इमोशनल बैगेज मेरे पास है, ये इतनी देर तक कैरी करने की वजह से और करने की वजह से हुआ है, इसे एक्सेप्ट कर लेना आवश्यक है, ठीक है मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से ये चीजें हुई। अब आता है उसका दूसरा हिस्सा, जब आपने उस बोझ को उतार दिया है तभी भी दर्द महसूस हो रहा है, आपको अब उसके हीलिंग के लिए, रिपरकशंस को रिक्यूपरेट करने के लिए अब आपको कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी, जिससे आपका वो जो 10 दिन तक बैग ढूंढने का जो बोझ है, जो दर्द आज महसूस हो रहा है, उसे आप हील कर सकें। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए समय देना जरूरी है, एक तो बैगेज को ऑफलोड करना भी आवश्यक है, और फिर उसके बाद हीलिंग के लिए समय देना और हीलिंग के लिए थेरेपेटिक चीजें हमारे पास है, चीजों का इस्तेमाल करना भी आवश्यक।
2: ओके, अगेन हम मुझे लगता है एक्नॉलेजमेंट पे आ गए, जो बहुत जरूरी है। फिर दीदी आपने कहा था समझ और समय दोनों ही जरूरी है, तो वो कैसे काम करता है हीलिंग में, थोड़ा उसके बारे में भी अगर आप बताएं।
3: सबसे पहले जो श्री जी ने एग्जांपल दिया, मुझे वो बहुत अपील किया कि जो हम बैकपैक लेके घूमते हैं, एक छोटी सी बात है, कितना इजीली हम वो चीज कर पाते हैं, लेकिन उसको जब हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, तो उस बैकपैक में क्या क्या कैरी करते हैं, किस किस चीज के घाव कैरी करते हैं,
2: उनको यस
3: इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक एक करके बताते जाती हूँ। बचपन में जब से हमें समझ आती है

0: तब से हमारी कोई अपेक्षा करता है, उपेक्षा करता है या आलोचना करता है, हमें टॉन्ट कसता है। जैसे स्कूल में बुलिंग होती है, टीचर्स नेग्लेक्ट करते हैं जब हमें टीचर्स का अटेंशन चाहिए होता है, या दूसरे बच्चे किसी कारण से हायरार्की की वजह से या फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से आपको बुली करते हैं या आपको टॉन्ट करते हैं, तो वो हर्ट हम लेकर चलते हैं। फिर कभी कभी हमारे माता पिता का हमारे प्रति जो व्यवहार होता है, बचपन में मुझे नहीं समझता कि ये मेरे भले के लिए, परंतु मुझे हर्ट होता रहता है कि मेरे पापा ने मुझे मारा, मेरी मम्मी ने मुझे मारा, मुझे ये नहीं दिया, मेरी बड़ी बहन या बड़े भाई को दिया, मुझे नहीं दिया। बचपन से ही ये चीज हम कैरी करते हैं। कुछ असफलताएं होती है हमारे लाइफ की, हम जो चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर पाते, तो वो एक तीस जो होती है अंदर से, जो दुख होता है उसे कैरी करते हैं। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में हमें विश्वासघात होता है, कोई हमारा दिल तोड़ता है, वो कैरी करते हैं। रिश्ते हमारे कई बार टूट जाते हैं, अच्छे खासे फ्रेंड्स छोटी सी गलतफहमी की वजह से दूर हो जाते हैं और उम्र भर एक दूसरे को दूर रहकर याद करते हैं। कभी कभी हमारे जो अपने हैं उनमें से किसी बहुत क्लोज का अचानक मृत्यु हो जाता है। ये सारे बैगेजेस है जो बैकपैक कहा श्री जी ने, वो अंदर में है, वो हम कैरी कर रहे हैं। कभी हमारा अपमान होता है, कभी कभी हम बहुत लंबा समय तक टेंशन में रहे हैं, हमें कई बार गिल्टी फील हुआ है, कई बार हमें अपने आप को स्वीकार करना, जो चेहरा लोगों के सामने है मेरा अंदर में एक चेहरा है जो सही नहीं है, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है, वो कैरी करते समय जो उसका दुख होता है, पेन होता है। तो अब बैकपैक में हमने क्या क्या कैरी किया है बचपन से लेकर अब तक, वो तो हमने समझा। अब धीरे धीरे करके हम उसके साइंस को पहचाने, समझो कि मुझे बचपन में मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो अभी मुझे तकलीफ दे रहा है, उसकी निशानियां क्या हो, है ना, इस बात पर हमें सोचना चाहिए कि अब क्या निशानी दिखाई देगी कि पता चले कि मैं बैगेज कैरी कर रहा
1: हूँ। मतलब उस समय तो था, लेकिन उस समय समझ में आया, हर्ट हुआ, भूल गए, लेकिन वो बैगेज है, कहीं ना कहीं उसके साइंस क्या होंगे, ये तो जरूर जानना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, उसके साइंस है कि कभी कभी बिना कारण उदासी आना, सैडनेस फील करना। मेरे पास कई बहने आती है, लड़कियां आती है जो कहती है कि बिना कारण के हमें रोना आ रहा, कोई कारण ही नहीं है, फिर भी बोलते बोलते आंखों से अश्रु धारा निकलती। तो छोटी छोटी बातों पर रोना आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, जैसे लड़कियों में रोना है, लड़कों में बहुत ज्यादा गुस्सा आना और गुस्से को एंजाइटी का रूप मिलना, जब गुस्सा एंजाइटी में बदल जाता है तब तोड़ फोड़ खुद को नुकसान या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की तरफ चलता है, है ना। फिर बहुत ज्यादा चिंता होना फ्यूचर को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, सारी इनसिक्योरिटीज होना, फिर किसी चीज का डर लगना, डर की एक आदत बन जाना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकेलापन महसूस करना, है ना। ये लास्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे साइंस हैं। जैसे अगर आप मेंटल लेवल पर देखेंगे तो बार बार वही चीज सोचते रहना, उसको हम ओवर थिंकिंग करते हैं। बात छोटी है बट मैं उसको सोच सोच सोच सोच के इतना बड़ा बना देता हूँ कि मुझे उसका टेंशन होने लगता है।
1: ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है दीदी, ओवरथिंकिंग के बारे में तो बहुत कहते हैं कि हम बहुत ओवरथिंक करते हैं, रात को सोने से पहले ओवरथिंक करना है जैसे पार्टी बन गया है।
0: जी, दैट शोज बैगेजेस क्लियर नहीं हुए, नेगेटिव सोच होना, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं मैं नहीं करता, तुम लोग करो, क्योंकि मुझमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कुछ काम करने, मुझे लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हमारे यहाँ जो नर्सिंग स्कूल है, कॉलेज है, तो नर्सिंग स्टूडेंट से जब हम मिलते हैं तो कई बार मैं पूछती हूँ उनको कि आपने ये नर्सिंग क्यों चुना, तो वो कहते हैं कि मम्मी पापा ने कहा इसलिए चुना, मुझे आना था नहीं आना था मुझे नहीं पता, बट मम्मी पापा ने कहा इसलिए चुना। अभी भी मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, टेंथ के बाद मेरे जैसे मार्क्स थे उस अकॉर्डिंग मुझे कॉमर्स कॉलेज में डाला गया
1: जी।
0: अब मैं कॉमर्स में जाकर बैठी हूँ एक साल भर, मुझे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई वॉज लिटरली कंफ्यूज कि ये मेरा नहीं है पार्ट, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सो उस एक साल में मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकती हूँ, अगर मैं कॉमर्स नहीं कर सकती हूँ तो मैं और क्या कर सकती हूँ। सो बचपन से मैंने देखा था कि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। सो मैंने एक साल के बाद अपना स्ट्रीम चेंज किया, मैंने आर्ट्स लिया और बाद में टीचर बनने का निर्णय लिया। पर मेरा एक साल गया था क्योंकि मैं खुद के बारे में खुद डिसीजन नहीं ले पाई थी। तो निर्णय लेने में कठिनाई होना, ये कुछ मानसिक और भावनात्मक संकेत हमने देखे। आगे चल के शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक संकेत भी हम देखेंगे।
1: और ये सारे संकेत जब आप बोल रहे थे, मुझे लगता है हम रिलेट कर पा रहे होंगे। किसी को लग रहा होगा ये होता है, किसी को लगता है ये होता है, बट अभी कारण समझ में आया कि वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो बैगेज के रूप में है मौजूद। तो हील सिर्फ उसको सिम्टम को नहीं करना है, उस प्रॉब्लम को करना है। श्रीनिधि जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने वही बैकपैक का एग्जाम्पल दिया आगे, तो आपको क्या लगता है कि आप यूथ को बहुत क्लोजली देखते हैं, जनरेशन चेंज हो गई है, अभी का जो यूथ है आपको लगता है वो थोड़ा कम कैरी करते हैं, ज्यादा कैरी करते हैं, क्या कुछ चेंज नजर आता है आपको?
2: मैं समझता हूँ, मैं यूजुअली इंटरजेनरेशनल टॉपिक्स पे कमेंट नहीं करना पसंद करता, क्योंकि ये मैंने अपने युवा साथियों से ही सीखा है, जो मेरे हम उम्र हैं और मेरे से छोटे भी हैं, उनसे मैंने ये चीज सीखा है। वो इस बात को बहुत बुरा मानते हैं जब उन्हें उनके जनरेशन के आधार पर कमतर आता जाता है कि अरे आपके जनरेशन से तो क्या ही उम्मीद है, अरे आपके जनरेशन तो क्या ही समझ पाएगी। हमारे जमाने में ऐसा होता था, जब ये चीजें उनको सुनने को मिलती हैं तो बिल्कुल असहज महसूस करते हैं, जैसे उन्हें अज्ञानी या उन्हें इग्नोरेंट लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है, या हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस करते हैं। हालांकि कहने का भाव वो नहीं होता, इसलिए मैं इंटरजेनरेशनल चीजों पे कमेंट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हर एक पीढ़ी के अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, अपने समय के अनुसार उनके पर्यावरण बदलते हैं, उनको जो स्टिमुलस मिलता है या जो चीजें उनको इनपुट्स के रूप में मिलती हैं, उसके आधार पर हर एक जनरेशन चीजों को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और लोग हालांकि ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जेन जी, मिलेनियल्स, जेन अल्फा, ये ठीक है कि हम बच्चों को किस समय पर वो पीढ़ी आई है उसके अनुसार उनके आसपास टेक्नोलॉजी कैसा था, वातावरण कैसा मिला है, परवरिश कैसी मिली है, उसके आधार पर हम इन चीजों को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये बात सत्य है कि इन चीजों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और पीढ़ी पर पड़ती है। मगर ये भी बात मैं मानता हूँ कि आज मैं ऐसे युवाओं को जानता हूँ जो जेन जी के कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे साथी में देखने को मिलता है कि वो लोग शराब नहीं पीते।
1: हाँ, एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या सिम्टम कुछ अलग है, जैसे दीदी ने सिम्टम बताया जो ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं उसके, क्या कुछ और साइंस दिखाई देते हैं, कुछ अलग तरीके के भी साइंस दिखाई देते हैं, क्या उसका फर्क पड़ता है या नहीं?
2: डेफिनेटली मैं समझता हूँ उसका प्रभाव तो पड़ता ही होगा। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आज हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ इश्यूज की राइज देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमारा ऑनलाइन बिहेवियर हो गया है कि हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर आश्रित हो गए, हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। वहीं अगर आप देखेंगे कि कोविड के समय पर भी जो ऐसे पीढ़ी के लोग हैं, जैसे मेरे माता पिता की उम्र के लोग हैं, उससे भी थोड़े और उम्र दराज लोग हैं, वो इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कोप कर पाए, क्योंकि उनको उस चीज की आदत है कि भाई वो सोशल इंटरेक्शन को ज्यादा महत्व देते रहे हैं, और वो कारणवश कोविड में वो नहीं कर पाए, मगर बाद में वो उन चीजों को उन्होंने तुरंत बाउंस बैक कर लिया उन चीजों। मगर हमारे युवा साथी, जो खासकर ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान अपनी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे या 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो वो 2 साल के लिए ऑनलाइन स्कूलिंग की, तो उनके सोशल स्ट्रक्चर टूट गए, तो उस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करने में आज डिफिकल्टी होती है। तो मैं समझता हूँ ये जनरेशन की बात से ज्यादा वो किस परिवेश और किस एनवायरमेंट में है वो चीजें ज्यादा मायने रखती है। इसका उदाहरण देने के लिए मैं ये चीज कहूंगा कि अगर भारत में ही ग्रामीण परिवेश के बच्चे होंगे, वो भले जेन जी क्यों ना हो, वो कुछ चीजों को बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे मुकाबले इसके कि जो शहरों में रहने वाले, बहुत ही अर्बन लैंडस्केप में रहने वाले बच्चे उन चीजों को बेहतर नहीं समझ पाएंगे। इसमें दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा आपने कहा परिवेश डिफरेंट है, तो कई बार एक्सप्रेशन करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। कई बार पुरानी जनरेशन चाहे शायद वो चीज सोच रही थी, अभी जनरेशन शायद वही चीज सोशल मीडिया में दिखने लगी है, मगर साइंस तो सब जगह है, हो सकता है वो थोड़े से बदल जाए, पर डेफिनेटली यदि आगे बढ़ेंगे हमारे पास जैसा आपने कहा बहुत सारी चीजें सोशल साइंस और क्या क्या है और भी टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, लेकिन क्योंकि इस एपिसोड में हम पहुंच गए हैं, हमारे समय हमें जहां तक इजाजत देता है वहां, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या कुछ ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं, हमने जो पहले स्टेप की बात की थी कि उसको हम समझ पाए, वहां पे कैसे खुद को ला सकते हैं एक पॉइंट पर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें उसको समझकर उसको अपने जीवन में इन्वॉल्व करने के लिए, शामिल करने के लिए सोच के लेवल पर कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता है। सोच के लेवल पर जो अभ्यास करते हैं उसे ही मेडिटेशन कहा जाता है या ध्यान कहा जाता है। सो हम अपने विचारों में किस तरह से सकारात्मकता ले आए ताकि हमारा ये जो बैगेज हम कैरी कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम रिलीज भी करते जाए और हम हील भी होते जाए। तो मैं अपने श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वे जहां कहीं भी हैं, रिक्वेस्ट है कि दो मिनट के लिए आप साइलेंस में किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाए। अगर वो स्थान बालकनी हो, कोई आरामदायक ऐसी जगह हो जहां से खूबसूरत नजारा दिख रहा हो, या अपने कमरे का एक कुर्सी जहां पर आप शांति से बैठ सकें, तो आराम से बैठ जाए। अपने शरीर को रिलैक्स पोजीशन में रखिए, गहरी और लंबी सांसें, गहरी और लंबी सांसों का ये अभ्यास हमारे माइंड, ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। इसलिए मेडिटेशन की शुरुआत गहरी और लंबी सांसें लेते हुए किया जाना चाहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। हर सांस के साथ अपने मन को, शरीर को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स फील करें। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप में विचार को दोहराएं, मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं खुद का स्वीकार करती हूं। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। कुदरत ने मुझे विचारों के साथ भावनाओं की सुंदर शक्ति दी है, उसमें कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं तो बहुत सारी सकारात्मक भावनाएं भी हैं। गहरी और लंबी सांस ले। मुझे खुशी है कि मेरी नकारात्मक भावनाओं की तुलना में सकारात्मक भावनाएं बहुत अधिक है। जो भी नकारात्मक भावनाएं आज तक मुझ पर असर कर रही हैं, आज मैं उनको अच्छी तरह से जानने की, समझने की कोशिश करती हूं। मैं अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूं। गहरी और लंबी सांस ले। जैसे ही मुझ में नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं, मैं अपनी अलमारी में से उन सकारात्मक भावनाओं को निकाल कर उनकी जगह, उनको स्थान देने का प्रयास करती और मेरा ये प्रयास मुझे सफलता दिलाता है। मैं अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक शक्ति में बदल सकती हूं। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। उससे भी ज्यादा मुझे परमात्मा शक्ति और ब्रह्मांड पर संपूर्ण भरोसा है। मेरी इस उपलब्धि के लिए मैं परमात्मा, प्रकृति और खुद का भी शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं आपका और श्रीनिधि जी का, दोनों का, कि हमें आप जैसे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं और स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, ये भी हमने समझा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हीलिंग के लिए हमने पहला कदम आज बढ़ा दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस कार्यक्रम से आपको वो मदद मिली होगी जो आपको जरूरत है, और इस वादे के साथ कि नेक्स्ट स्टेप्स को लेकर भी जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को दिल खोल के कहिए कि लव यू जिंदगी।

0: ये गाना गुजराती में जो गाया है, मुझे ऐसी लगने लगी है कि मैं कब प्रभु परमात्मा से मिलूं, और मैं जब तक प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक मुझे चैन नहीं।
1: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे,
2: क्या बात कर रहा है?
1: हाँ देख,
2: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
1: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
2: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
1: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं, क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
1: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: కుమారి ఈశ్వరి విశ్వవిద్యాలయ సాముదాయిక రేడియో రేడియో మధుబన్ 107.8 ఎఫ్ఎం పర్ కార్యక్రమ మేరా గాం మేరా అంచల్ యానీ మై విలేజ్ మై ఏరియా ఇస్ కార్యక్రమ కే తహత్ హమే బహుత్ ఖుషి హై
1: ఇస్ కార్యక్రమ కా మాధ్యమ సే ఆజ్ ఆప్కా పాస్ హమ్ పహంచ్ రహే హై ఔర్ ఆప్ సబ్కో విదిత్ హై రేడియో మధుబన్ ఏక సాముదాయిక రేడియో సాముదాయిక ద్వారా ఔర్ సాముదాయిక కే లియే ప్రస్తుతీకరణ హోతా హై तो सरकार का जो मंशा है, जैसे रेडियो बहुत सारा रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो है और कमर्शियल रेडियो है, और ये आपका रेडियो है, सामुदायिक रेडियो मीन्स बच्चों का रेडियो, बच्चों का भागीदारी इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से बच्चों का हुनर, बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज हम पहुँचे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेडुआ कला में पहुँचे। बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि हमेशा की तरह आज भी बच्चे भाग लेंगे, क्योंकि पहले भी 2 साल पहले 1 साल पहले भी आए थे यहाँ से, बच्चों का रिकॉर्डिंग किए थे, बच्चों का हुनर को, बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का भाव और भावना को जन जन तक पहुँचाए थे। तो आज पुनः उनको याद कर रहे हैं और बच्चे तो नए बच्चों को भी आज चांस मिल रहा है, वो बच्चे प्रमोशन होकर दूसरा क्लास को चला जाते हैं, और जो छोटे बच्चों को उनको भी तो लेना पड़ेगा, उनका भी भाव और भावना को पहुंचाएंगे। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा संस्था प्रधान श्रीमती रितु मैम को भी धन्यवाद देते हैं, उनका इशारा से, उनका तत्वावधान में, उनका गाइडेंस में, उनका देखभाल में ये कार्यक्रम हो रहा है। और सभी स्टाफ भी, कविता मैम, पूजा मैम, सभी मैम और साथ सर को भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम को, सहयोग देख ले, सभी बैठे हैं, सभी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। और ये कार्यक्रम को हमारा कविता मैम को कौन भूल पाएंगे, कविता मैम है ना, कविता मैम को जो ऑल इंडिया रेडियो में पहले थे, अभी यहाँ पर टीचर कर रहे हो, पार्ट टाइम जाते होंगे, तो उनको भी पहले लिए थे। मैम आपको स्वागत करते हैं, बच्चों को थोड़ा वार्म अप कराने के लिए आप अपना थोड़ा 2 शब्द बताइए, क्योंकि आपका आवाज़ को सुन के ये हमारा होने वाले आरजे वो भी अपना आवाज़ को बोलेंगे, लेकिन पहले अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हमारा आरजे का जो आवाज़ सुनेंगे, पहले आरजे थे, अभी पूर्ण हो के हम भी तो आरजे जो रेडियो में जो बोलते हैं उसको रेडियो जो कि मनोरंजन कराते हैं, तो हमारा मनोरंजन कराने के लिए सभी बच्चों के छोटे छोटे आरजे हमारा साथ आज एक दिन के लिए 1 घंटा के लिए आरजे बनेंगे। और मैम आपका परिचय।
2: मैं कविता राणा ऑल इंडिया रेडियो माउंट आबू 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करती हूँ। आज सर हमारे स्कूल में आए, आज से 3 साल पहले भी ये हमारे विद्यालय में आए थे जब मैं कक्षा 8वीं की अध्यापिका थी। आज पुनः ये आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने साथ वो हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करके जाते हैं
3: और बच्चों से नई नई चीज़ें उभरवाते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं हमारे बच्चों को प्रार्थना के लिए आमंत्रित।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता मैम को। कविता मैम हमें खुशी है क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो, हम तो कभी जा नहीं पाए, ऑल इंडिया रेडियो से आप बिलोंग करते, ये भी एक हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन का बात है। और आरजे जैसे नाम सुन, जैसे टीचर मैडम कहते हैं, आरजे जो रेडियो में भाग लेते बा, रेडियो में जो सर्विस करते हैं उनको आरजे कहते हैं। बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर भी है, वो तो बच्चे बाद में सीखेंगे, लेकिन जो बोलने वाले हैं उसको आरजे कहते हैं। तो हमारा छोटे से मुन्ने आरजे भी आए हैं, तो अपना परिचय देंगे, अपना नाम और क्लास के, क्योंकि कविता मैम बच्चों को हुनर देखा है। और कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो प्रार्थना सत्र से हम शुरू करते हैं, तो इस कार्यक्रम को प्रार्थना के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेडुआ कला का बच्चों का आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि प्रार्थना में जो दिल का तार, भाव और भावना माँ सरस्वती तक पहुँचता है। तो चलिए हमारा साथ 5 गुड़ियाँ हैं, परियाँ हैं और फरिश्ते हैं, तो उनको स्वागत करते हैं। हेलो, नाम बताइए।
4: सोनिया।
1: सोनिया, और कौन सा क्लास सोनिया?
4: कक्षा 6।
1: हाँ, क्या आवाज़ है, मैंने बोला था ना आवाज़ में दम होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ ही उनका पहचान होगा, क्योंकि ये तो वीडियो नहीं है, ये ऑडियो है। आवाज़ जो सुनेंगे रेडियो में, आह क्या मधुर आवाज़, सुर लय का ताल। हमारा क्या नाम बताया था?
4: सोनिया।
1: सोनिया, हर विद्यालय में जाते हैं ना, हर स्कूल में सोनिया और सुरेश, सोनिया और सुरेश सब स्कूल में मिलेंगे। और सोनिया आगे बढ़ चढ़े, उसका नाम जो दिए हैं, हमारा लीडर भी सोनिया आज, और सोनिया उनका दोस्त भी बहुत है। तो नाम बताइए।
4: पायल।
1: पायल, वाह।
4: रितिका।
1: रितिका, ओके।
4: दीपिका।
1: दीपिका, रितिका, एंड
4: मेरा नाम है अनिशा।
1: हाँ, ये हुई ना, मेरा नाम है, मैं हंसा नहीं, मेरा नाम हंसा है, मेरा नाम बोल रहे, बहुत अच्छा, इसमें ही कुछ ज्ञान भरा हुआ है, मैं बताऊंगा। मेरा नाम, मैं हंसिका नहीं बोल, मैं पवित्र नहीं, मेरा नाम पवित्र है, ऐसे मेरा नाम और मैं अंतर है, जानेंगे, लेकिन शुरुआत हो गया और हमारा साथ। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं आज का कार्यक्रम, छोटे छोटे बच्चे फरिश्ता होकर उनका आवाज़ सुनो, क्या दम है, चलिए सुनते हैं।

0: हम चले नहीं रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूलो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सही में शक्ति दाता से हमें शक्ति लेते हैं, और सर्वशक्तिमान जब हमारा साथ है तो डरने की क्या बात है ना बच्चे? डरेंगे क्योंकि हमारा साथ सर्वशक्तिमान है, शक्ति हमें मिलता है और हमें बहुत खुशी है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा सभी मालिक हमारा साथ है, हमारा कार्यक्रम अच्छा होगा क्योंकि हम सब अच्छे हैं। चलिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चे के लिए जोर से क्लैपिंग बच्चे, क्योंकि ताली बजाने में पैसा नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है, लेकिन खुशी मिलता है कि नहीं बच्चे? और चेहरा पूरा गोला फूल जैसे खिलता है कि नहीं? हाँ, इसलिए ताली समय समय पर बजाना चाहिए जब हमको खुशी लगेगा, और है ना, और हमारा बच्चियों के लिए भी खुशी लगेगा, लगा खुशी। अच्छा बड़े होकर क्या बनेगी तुम?
2: पुलिस।
1: बहुत चोर तो डरेगा आज, भागेगा पूरा चोर, जब भ्रष्टाचार करेंगे कोई अन्याय करेंगे तो भागेगा पुलिस हमारा। पुलिस कभी देखे हैं बच्चे? पुलिस का काम क्या होता है? चोर को पकड़ते हैं। अच्छा, और अच्छा काम करते हैं, चोर को पकड़ना भी अच्छा काम है। और बड़े होकर हमारा पुलिस बनेगी, नन्नी मुन्नी पुलिस जरूरी, तो रेडवा का लगा स्कूल के बच्चे को याद करेंगे, वो बच्चे वहाँ बड़े होकर पुलिस बनेगा। और नेक्स्ट सोनिया, तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
3: मैडम।
1: मैडम, हाँ टीचर। मैडम कितने मैडम है? मैडम 8। वाह, ताली बजा भाई, इतने मैडम हमारा स्कूल में, वाह। क्योंकि बच्चे को भरपूर कर देते हैं, जहाँ स्कूल में मैम लोग रहेंगे, मैडम लोग रहेंगे तो, और सर लोग रहेंगे तो बहुत भरपूर करेंगे बच्चों के लिए, बहुत खुशी का बात है। इसलिए तो मैंने बोला बच्चे बहुत आशीर्वाद ले रहे हैं शुरू से ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम सुनेंगे और एक प्रस्तुति, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल। सबको खुशी लगा
3: जी?
1: खुशी लगा
3: जी?
1: ऐसे मौका मिलना चाहिए है ना, कोई डर लग रहा है?
3: नहीं।
1: कोई झिझक
3: नहीं,
1: क्योंकि आपका साथ सब लोग है। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलिए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कड़ी ब्रेक का पहले हम गीत सुन रहे थे प्रार्थना के रूप में, और रेडियो प्रोग्राम आप सब सुन पा रहे हैं, खासकर राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय रेडवा कला का बच्चों को आवाज। तो अभी नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए हमारा साथ देसी, जो कि आदिवासी गीत जो होता है ना, बहुत मिठास होता है, बड़े चढ़ हिस्सा लेते हैं। बड़ों को जब गीत गाते हुए देखते हैं तो छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं, लेकिन आज छोटे बच्चे को देखकर छोटे बच्चे सीख जाएंगे ना बच्चे। हाँ, छोटे बच्चे गा रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए प्रेरणा होगा। और जब आदिवासी गीत में जो मिठास है, जो शुद्धता, जो भोलापन आज देखने को मिलेगा। और सेम टीम को हम पुनः स्वागत करते वंस मोर, और एक बार हो जाए, ठीक है? ओके, सभी नाम का साथ धन्यवाद देते सोनिया एंड पार्टी। ओके, ग्रुप रेडी? ओके, गीत गाने के लिए आदिवासी गीत।

0: चलिए बहुत अच्छा, किंतु अचानक में पहुंचे इस विद्यालय में, बच्चों का कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर कोई सूचना नहीं था, फिर भी अचानक में जो पार्ट बजाए, जो प्ले किए, कम बात नहीं, छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे तो माइक से दूर रहते, और रेडियो में बोलना ये मासी का घर नहीं है, माँ कुछ बोलेगे तो मासी के घर में चला जाते है, लेकिन यहाँ पर बच्चे मासी का घर सोच कर पूरा रेडियो में प्रोग्राम, हाँ जी, और इसका श्रेय तो सभी स्टाफ को जाता है, और सभी ने उसको प्रोत्साहन देते, छोटे छोटे बच्चे भी अपना आवाज को दिए हैं, ये कम बात नहीं। और क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या नाम बताया?
1: रितिका।
0: रितिका, क्या बात, रितिका तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैडम।
0: मैडम बनेगी, मैडम का काम क्या होता है?
1: बच्चों को पढ़ाना।
0: हाँ, बच्चों को पढ़ाना होता है, मैडम का काम बा शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना होता है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, कल पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे तब तो पढ़ाएंगे, है ना
1: जी?
0: हाँ जी। और तुम क्या बनेगी?
1: डॉक्टर।
0: हाँ, क्या बात है भाई, डॉक्टर, पुलिस और मैम, यहाँ तो भरपूर है। और बच्चों का उमंग उत्साह देखो कितना सुंदर से, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर में इतना भावना है, लक्ष्य है, तो लक्ष्य जब रखेंगे तो लक्षण दिखाई देना चाहिए, और उसका माँ बाप को भी

0: धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप का भी सहयोग रहता है और उस विद्यालय का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन माता पिता भी कम नहीं, साथी सहयोग, उनका परिवार दोस्त लोग भी सहयोग देते, जिसका चलते वो आगे बढ़ पाएंगे और ऐसे ही डॉक्टर बनते हैं। छोटे बच्चों का इच्छा रहता है, इसके बाद बड़े होकर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर बन जाते हैं, है ना, बन जाएंगे ना
1: जी।
0: हाँ, तुम्हारा घर में कोई डॉक्टर है? नहीं, नहीं घर में। फिर भी आपको कैसा लगता है हम डॉक्टर बनेंगे, कौन बताया?
1: अच्छा लगता है।
0: अच्छा, डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। और डॉक्टर बनेंगे तो सुई देना पड़ना, बट डॉक्टर का काम क्या होता है? किसको देते हैं बच्चे? मरीज को, जिसको बीमारी है उसको सुई लगाते, लगाते कि नहीं? कौन कौन सुई लगाए, हाथ उठा दे, कभी सुई लगाया? कोई नहीं लगा, बहुत अच्छे सब स्वास्थ्यवान है, कोई किसका बीमारी नहीं हुआ, डॉक्टर का काम कुछ नहीं पड़ेगा। जहाँ पर सभी स्वास्थ्यवान है वहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा साथ और एक गुड़िया है, नाम बताओ?
1: पायल।
0: पायल बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैम।
0: मैम बनेगी, बहुत अच्छा। छोटा मैम के लिए ताली बजा दो भाई, अभी से ही मैम बन गए। देखा तुम्हारा मैम के लिए कितना देखो ताली बजा रहे। अच्छा, मैम बनना है, पढ़ाई करना है, ऐसे थोड़े मैम बनते हैं। मैम कैसे बनते हैं, अभी हमारा मैम से जानेंगे। मैम कैसे बनते हैं, आपका नाम बताए, मैम बने आप?
2: मेरा नाम डिंपल कवर है।
0: डिंपल जी,
2: मैं इधर स्कूल में गणित पढ़ाती हूँ।
0: मैम आप कैसे मैम बने?
2: पढ़ाई करके, डिसिप्लिन रह के और बहुत सारा मेहनत करके।
0: हाँ,
2: सारे बच्चे ऐसे ही मेहनत करके, डिसिप्लिन रह के, पढ़ाई करके और बहुत उमंग ऐसे ही रखना हमेशा।
0: देखा, सुना मैम का टिप्स, विद्यार्थी जीवन में मेहनत, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब तक अपना लक्ष्य तक मैम तक नहीं पहुंचे तब तक पढ़ाई करना। और दूसरा बात सर, पढ़ाई तो करना ही है, और बड़ों का बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए?
3: मानना चाहिए।
0: ए सुना बच्चे, बड़ों का बात मानना
3: मानोगे कि नहीं?
0: जोर से सर, आपको रेस्पेक्ट दे रहे, आपका बात, बड़ों का बात मानना चाहिए,
3: बड़ों का आदर करना चाहिए, करोगे कि नहीं?
0: सर आप कैसे बड़े बने?
3: हम तो बहुत मेहनत करके।
0: हाँ, मेहनत करने से बड़े बनते हैं, है ना बच्चे? अभी तो बच्चे छोटे, पढ़ना पड़ता है और अच्छा काम करना पड़ता है,
3: कर्म करना पड़ता।
0: जो बड़ों का बात मानेंगे बहुत अच्छा बनेंगे, वो किसका बात मानना नहीं पड़ेगा आगे जाकर। अभी बच्चे मानेंगे, आगे जाकर मनाएंगे सभी को, सबको मना रहे। हाँ। आपका बात सब मान रहे कि नहीं?
3: मान रहे।
0: हाँ, आपका शुभ नाम?
3: दुर्गालाल।
0: और क्या पढ़ाते सर?
3: मैं फिजिकल टीचर।
0: फिजिकल टीचर, अरे वाह, फिजिकल टीचर के लिए जोर से ताली बजा भाई, हमारे फिजिकल टीचर हमको फिट करते हैं। सर फिट नहीं रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इसलिए स्वास्थ्य होना जरूरी है। सारी एक्सरसाइज कराते हैं और अनुशासन सिखाते हैं हमारा पीटी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। सभी का आवाज गुलदस्ता जैसे बन रहा है, हमारा मैम का आवाज, बच्चों का आवाज, बड़ों का आवाज और बाकी मैम भी है तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। ये तक बच्चों का तुतली तुतली आवाज का साथ हमारा गुलदस्ता, बच्चे बहुत अच्छा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए एक का बाद एक का बाद आवाज को रोक नहीं पा रहे, और हमारा मैम और सर को भी हम चांस दे रहे आज, क्योंकि बच्चों के साथ आज बच्चे सर भी बच्चे मैम भी बच्चे बन जाते हैं, और बच्चों के साथ हम भी बच्चे बनेंगे तो उनका आवाज को उनका भाव और भावना को हम ले पाते। और छोटी सी परी और छोटे सी परी दो परी आई है तो हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। हमें खुशी है इस तरह बच्चों को मंच मिल रहा है, और इसका श्रेय तो सभी स्टाफ को जाता है, क्योंकि जब भी आते हैं अचानक में आते तब भी हमें चांस मिलता है। तो हमारे साथ आके गुड़िया है। हेलो गुड़िया, क्या नाम है?
1: पूनम।
0: ओ पूनम, वाह क्या सुंदर नाम है। पूर्णिमा पूरा भरपूर है, पूर्णिमा चांद, पूर्णिमा हमारा पांच है, पूर्णिमा रात में हमारा चांद पूरा महकता है, पूरा चांदनी का पूरा बिखरते हुए आज हमारा पूर्णिमा आए, और उनका दोस्त भी क्या नाम, हेलो नाम बताइए प्लीज।
1: सुमन।
0: सुमन जिसका मन इतना सुंदर है, सुमन मन को सुमन करना है। हमारा सुमन और पूनम दोनों आज मिलकर इस कार्यक्रम को सजाएंगे। क्या प्रस्तुति करेंगे मुझे मालूम नहीं, वो खुद बताएंगे। कौन सा क्लास?
1: दूसरी।
0: ओ दूसरी क्लास, अरे
1: दूसरी,
0: दूसरी वाह, दूसरी क्लास का बच्ची भी आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे। बहुत खुशी लग रहा है, आज माइक मिल रहा है उनको, आज उनका आवाज हो जाएगा, बच्चों का आवाज सुनेंगे तो उनका मम्मी पापा दोस्त लोग और मैम लोग बोलगा रहे थे हमारे पूर्णिमा का आवाज है, और इस तरह बच्चों का आवाज सुनेंगे तो नामांकन में भी वृद्धि होगा, बच्चे पढ़ाई का साथ साथ इस तरह आकाशवाणी में आते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं, शुरू करो।

0: पूर्णिमा और सुमन को भी सहयोग दिए,
1: सभी के लिए धन्यवाद। बहुत जय सभी बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, और खासकर छोटे छोटे बच्चों को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलिए और एक प्रस्तुति रेडी है तो हमारे साथ सभी होनहार बच्चे रेडी है सोनिया एंड साथी और इस कार्यक्रम को सभी बच्चे भी देख रहे सुन रहे और हमारा रेडियो कार्यक्रम जहां तक पहुंच रहा है इंटरनेट का माध्यम से एफएम का माध्यम से लिंक का माध्यम से एप्लीकेशन का माध्यम से सुन पा रहे पूरा भारत के कोने कोने से सुन रहे और हमारा बच्चे आदिवासी बच्चे है लेकिन कम नहीं है उनका झिझक नहीं है झिझक दूर करके आए कोई शर्म नहीं करते कोई आवाज में भी बुलंद है तो सभी को पुनः स्वागत करते हैं सोनिया एंड पार्टी को और एक गीत के लिए क्योंकि रेडियो मधुबन इस तरह मंच देता है जिस मंच का माध्यम से अपना भाव भावना हुनर और बोलने का जो तरीका है स्वर लय का साथ पूरा जब उनको मिलेगा भाई डांस करो तो डांस करो क्योंकि हमारा रेडियो तो डांस का नहीं है वो तो दृश्य नहीं है वो तो श्रवण है सुनने के लिए तो सुनने के लिए हमारे साथ सभी रेडी है श्रोता है तो सुनते हैं अगला प्रस्तुति सोनिया एंड पार्टी।

0: बच्चे ताली बजाकर खुश कर दिए, और ऐसे होना चाहिए। प्रभु याद में सुनते हमारा साथ, इस कार्यक्रम को देख रहे, हमारा मैम को भी स्वागत करते। मैम का भी आवाज कैसे हम भूल पाएंगे, सभी का आवाज ले रहे तो हमारा मैम भी बैठे। मैम इस तरह कार्यक्रम में हमारा जो रिपोर्ट भी दे उनका हाथ में है, सर्विस रिपोर्ट देख रहे थे, तो सर्विस रिपोर्ट जो कि 2015 से 2025 तक का रिपोर्ट हमें जो आसपास सेवा की है उसका रिपोर्ट देख रहे थे। मैम अपना परिचय देंगे
1: जी। मेरा नाम नसीम बानू है, मैं इसी विद्यालय में हिंदी पढ़ाती हूँ।
0: और क्या कहना चाहेंगे जी, रिपोर्ट देखे तो इस तरह कार्यक्रम का, और क्या ऐड करना चाहते हैं बच्चों के लिए?
1: देखिए इस तरह की रिपोर्ट से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे आगे आके अपनी आवाज और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं।
0: और क्या होना चाहिए कार्यक्रम में, कुछ सुधार के लिए हम माने क्या कर सकते बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जो कार्यक्रम अचानक में हम आते हैं और बच्चे अपना भागीदारी देते हैं, बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं हर कार्यक्रम में, तो पढ़ाई का साथ साथ बच्चों का ये भी एक्टिविटीज जो मिलता है।
1: ऐसी कोई प्रेरणादायक कहानी हो, कविताएं हैं जिससे बच्चे गाए और आगे आके कुछ सीखे जो इनसे प्रेरणा मिल सके।
0: मैडम जैसे पेड़ लगा, जैसे आपका विद्यालय में हम जब भी आते हैं बहुत हरा भरा लगता है, हम दो बार पेड़ भी लगाए इस स्कूल में, तो आज वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, हमें उसको देखकर खुशी होता है। कहीं उस समय लगाए थे उस मैडम का हाथ से। और पर्यावरण कितना आवश्यकता है, तो पर्यावरण का ऊपर में क्या कहना चाहेंगे, पर्यावरण को हम कैसे बचाएंगे? आप तो बचाते हैं लेकिन जो नहीं बचा रहे उसको क्या कहेंगे? पेड़ लगाओ,
1: पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और जो लगे हुए पेड़ है उनकी बस बच्चों को देखभाल करने के लिए कहेंगे, और ऐसे ही प्राकृतिक जो और भी पेड़ है आसपास उनको लगाने के लिए प्रेरित करेंगे, और बच्चों को यही कहेंगे कि सर इनकी देखभाल कीजिए, और तो क्या कह सकते हैं।
0: जैसे पर्यावरण नाम सुनते तो आपका मन में पर्यावरण का परिभाषा क्या होता है, पर्यावरण किसको कहते हैं?
1: देख पर्यावरण के अंदर हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है उसको हम शामिल करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, इनको
0: सजीव निर्जीव सभी हमारा पर्यावरण में
1: सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं।
0: जैसे पांच तत्व भी आता है
1: जी, वायु, हवा, पानी, ये सब शामिल होते हैं।
0: समय उसको शुद्ध, आज शुद्ध तो लग रहा है?
1: नहीं अभी थोड़ा इतना शुद्ध नहीं है,
0: इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध कैसे होगा मैम आपका विचार में?
1: सर ऐसे है कि लोगों में देखो एक तो जागरूकता लाई जा सके, और रैलियां और स्व जागरूकता सबसे पहले जरूरत है।
0: स्व जागरूकता, स्व उन्नति, स्व एडमिनिस्ट्रेशन, स्व को जब जानेंगे तो अपना परिवेश को ठीक रखे।
1: ये अपने अंदर से होना चाहिए सर, ऐसे कोई बाहर से बोले कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन जब अपने अंदर ऐसे भावनाएं आएगी कि नहीं हमें करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है, ये अपना काम समझ के हर कोई करेगा, तो सर इससे
0: बहुत अच्छा बात आपने बताया, क्योंकि जो स्व खुद को कंट्रोल करना बा खुद का हाथ में रखना, स्व निरीक्षण, स्व उन्नति, स्व से करो,
1: दूसरों को कहने से पहले जो काम अपन खुद करते तो उसका सर दूसरों के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है।
0: कौन का पहले करके देखा हो,
1: करके पहले खुद करो फिर दूसरों को कहेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसे। और बाकी अपन नहीं करे और बच्चों को कहे या किसी और को बोले कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा।
0: सही बात बताए, क्योंकि जैसे महात्मा गांधी का एक खिस्सा है, गुड़ बच्चों को नहीं खाने के लिए बोल देंगे, पहले खुद छोड़ना सीखा है ना, एक कहानी है गुड़, महात्मा गांधी को गुड़ छोड़ाने के लिए कोई बच्चों का था, एक कहानी का माध्यम से उसको पहले खुद प्रैक्टिकल में लिया।
1: कोई भी काम करो तो खुद प्रैक्टिकल पहले करो, फिर दूसरों को कहेंगे तो शायद ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वही कहना है बस। पर्यावरण से ऐसा है कि हमारे आसपास के शायद ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एक ही पेड़ उसका भी यदि अपन ख्याल रख रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हो और शायद वो बड़ा होके छाया दे रहा है, तो शायद ये बहुत बड़ी सफलता होगी।
0: आज पेड़ का महिमा
1: पाए, कम से कम एक पेड़ कर पाए तो भी वो बहुत बड़ी सफलता।
0: देखिए आज पेड़ कोई करंट नहीं रहेगा तब हम पेड़ के पास आकर बैठे, गुरुकुल जैसे पहले गुरुकुल में क्या कर नीचे बैठकर प्रकृति का साथ अब रहते थे। बहुत अच्छा बात बताया, और प्रकृति हमारा मित्र जैसे हो, उनको देखभाल कर, खाली पेड़ लगाना बड़ा बात नहीं, लगाने के बाद उसको संरक्षण करना, पूरा
1: उसकी देखभाल करना ज्यादा बड़ी बात है, टाइम से टाइम उसको पानी देना, फिर किसी पशु पक्षी से खाने
0: उसको बना सुरक्षा करना बहुत जरूरी है।
1: नहीं कि पेड़ लगा के छोड़ दिया,
0: उसको बचाना ठीक से,
1: बचाना बहुत
0: जरूरी।
1: पेड़ लगाने के बाद ज्यादा बड़ा काम होता है कि उसकी देखभाल करो।
0: हाँ जैसे बच्चे पैदा तो हो जाते, इसका पास को पढ़ाई लिखाई कितना ध्यान देते माँ बाप, तो उस तरह हमें माँ बाप सोच कर पर्यावरण को रक्षा करेंगे तो कर रहे हैं, और ऐसे नहीं कर रहे, और जो नहीं कर रहे उस माध्यम से जरूर सीख लेकर अपना एक जन्मदिन में हो चाहे माता पिता का कोई भी डेट में आपने एक पेड़ लगाए,
1: भी अवसर पे
0: एक पेड़ लगाना जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति की ओर हम जाएंगे। हमारा मैम भी, और एक मैम है तो उनको भी स्वागत करेंगे, और हमारा रितु मैम को भी कौन भूल पाएंगे, उनका भी आवाज लेंगे, वो उसको लास्ट में वो आएंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति सभी बच्चों का साथ हम रूबरू हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को हमारा लीडर है मैम आपका परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम खुशबू यादव है, मैं डूंगरपुर से हूँ।
0: और बाप रे, डूंगरपुर बहुत दूर से आया, डूंगरपुर और हमारा आबू रोड, तो आप दोनों को देखे होंगे, उधर भी देखे इधर भी देखे, यहाँ का माहौल, यहाँ का बच्चों का पढ़ाई, उनका नामांकन, बच्चों का भोलापन और डूंगरपुर का और आबू रोड का, क्योंकि आप डूंगरपुर से आए, सिलेक्शन होकर आए और फास्ट पोस्टिंग है आपका।
1: हाँ, फर्स्ट पोस्ट।
0: अरे बाप, फास्ट पोस्टिंग के लिए ताली बजाओ मैम के लिए, यहाँ पर पहला बार। वाह, बहुत अच्छा, डूंगरपुर से आए आपको पढ़ाने के लिए, कितना खुशी का बात है। और उनका नाम ही खुशबू, आज खुशी फैलाएंगे, खुश रहना और खुशी बांटना ये बहुत बड़ी काम है, इसको कुछ नहीं तो भाई खुशी तो दो। और हमारा खुशबू मैम इतने दूर से आए बच्चों का साथ मिलकर, अपना पहला पोस्टिंग यहाँ पर है और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है,
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: तो क्या विशेषता देखा डूंगरपुर और आबू रोड में? आप बच्चों को पढ़ते थे कभी? अभी तो मैम बन गए, ये बच्चे भी मैम बनेंगे बोल रहे थे। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ का और वहाँ का में?
1: बस ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा भोलापन है और मेरा इनसे मिलना लिखा हुआ था जो इतने दूर पोस्टिंग हुई है।
0: क्या बात, बहुत अच्छा बात बोले, इनका साथ मेरा हिसाब किताब लिखा है जिसका चलते मुझे यहाँ पर आना पड़ा, ये एक मेरा हाथ में नहीं, इनके मैं डूंगरपुर और यहाँ पर आबू रोड, ये हिसाब किताब होता है जिसका चलते यहाँ पर हिसाब को चुप्त करने के लिए, हिसाब देने के लिए और हिसाब लेने के लिए पहुंच गए यहाँ पर। ये भी खुद को बहुत महसूस करते भाई, हमारा हिसाब किताब मेरा लेखा जुका यहाँ पर, लेखा जुका, लेखा किसके पास रहता है? यमराज का पास रहता है भाई, सबका लेखा जुका उनका पास रहता है, किसका कहाँ पर पोस्टिंग होगा वो ऊपर वाला उसको वहीं पर भेजता है, इसलिए बच्चों का साथ आज मैम खुद मान रहे भाई मैंने डूंगरपुर से इसलिए आया, मेरा लेखा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर हमें पहला पोस्टिंग है, लेकिन हमेशा के लिए रहेंगे नहीं, चला जाएंगे ऐसे न रहेंगे
1: नहीं सर, वो पता नहीं हो तो अब तक रहना ही है जब तक पोस्टिंग,
0: लेकिन लिखा होगा तो हम लिखा होगा तो जाएंगे ना।
1: हाँ, लिखा हुआ होगा तो
0: ये बात बोलना है ना भाई, लिखा हुआ तो इसलिए आए और लिखा होगा तो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जाना मेरे हाथ में, लिखा होगा तो कहेंगे लिखा पर छोड़ दिए, लिखा मैंने हमारा भाग्य, जहाँ पर हमारा दाना पानी लिखा हुआ है वहीं पर हम पहुंचेंगे, जैसे कि रामायण में हम सुनते हैं ना मैम, जटायु तब आएगा जब सीता चोरी
1: होगी,
0: जब तक सीता चोरी जटायु तो आएगा नहीं, क्योंकि इस तरह हमारा हिसाब किताब जहाँ पर जहाँ लिखा होगा, जैसे आज रेडियो मधुबन को हिसाब किताब यहाँ लिखा था, इसलिए मैंने सभी बच्चों से मिलकर है ना, लेखा को मानते हैं ना बच्चे, हमारा भाग्य को मानते हैं कि नहीं, लेखा जो था हमारा यहाँ पर था, इसलिए हमें लेखा को पूरा आगे बढ़ाने के लिए मैम क्या कहना चाहेंगे? इतने बच्चे आज कुछ प्रस्तुत करेंगे, छोटे से बच्चे जो आपको याद होगा, कौन सा जो बच्चों को मन में आता है, जैसे छोटे छोटे कविता होता है ना, जैसे मछली जल की रानी हो, गुड़िया रानी, कितने सारे गीत, तो आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं?
1: मैं हिंदी पढ़ाती हूँ।
0: बच्चे एक कविता सुनाएंगे, बच्चे मैम को भी उमंग उत्साह आएगा मैम।
2: गुड़िया मेरी रानी है, लगती बड़ी

0: गुड़िया मेरी रानी है।
1: गुड़िया हमारा सभी गुड़िया आज रानी बन गए, तो राजा कौन बनेंगे बच्चे? कौन कौन राजा बनेंगे हाथ उठा? गुड्डा, गुड्डिया तो रानी बन गए, गुड्डा हाथ उठा। गुड्डा जितना बैठे सभी, गुड्डा हमारा राजा है, हाथ उठाओ। हाँ हाथ उठा दिए। अभी हमारा गुड़िया रानी है ना, एक एक रानी है, बहुत अच्छा काम किए। मैम क्या कहेंगे, हमारा गुड़िया रानी बनना चाहते है? रानी और राजा एक शब्द आया, रानी और गुड़िया। तो आप तो गुड़िया थे, अभी तो मैम बने, तो आप भी मेहनत किए ना?
2: बहुत मेहनत किए।
1: क्या मेहनत किए?
2: बहुत मेहनत किए, छोटे से पढ़ाई किए, बड़ों की बात मानी है।
1: तो और आज यहाँ तक पहुँचे, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? आप जो मैम बने, इसका धन्यवाद किसको देना चाहते हैं?
2: ये मेरे, मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आभार।
3: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

0: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 ईयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: हाँ अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आए, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी,
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल के।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं,
0: में
1: कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। माना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था, 3-4 मंजिली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे, और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसे खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते हैं, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़े नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2

0: तीन बरस मना म्युनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना पूना से आई थी, तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्युनिसिपल स्कूल में रही थी दो तीन बरस। तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, मना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। म्युनिसिपल स्कूल में कभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
1: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
0: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी मैं। मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडीज स्कूल में जाने लगी मैं।
1: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
0: पढ़ाई में मना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
1: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
0: सर्विस जाती थी।
1: अच्छा, सर्विस की थी।
0: हाँ।
1: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
0: खेल बिल पीटी ऐसा होता था, ले जिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
1: तो आप भी रहते थे?
0: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था ले जिम बिजिम।
1: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे, गीत संगीत कविताओं वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
0: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
1: गाने का शौक था आपको?
0: हाँ, गाना बिना गाती थी।
1: किस तरह के गाने आप गाते थे?
0: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को। पहले से पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
1: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
0: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
0: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़े करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
1: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
0: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
1: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
5: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
4: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
5: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
4: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
5: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे, है ना,
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है, इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना, इसीलिए।
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था, और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे, उस समय भी गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे।
1: था। हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक, उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे, केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी, पूरन
0: अच्छा,
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं, रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी, उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: थे। 2 बरस तक की,
0: अच्छा,
1: पगार
0: और
1: 400 रुपये था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपये? अच्छा,
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना, क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15 साल 17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद, तो इतने समय पहले 400 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी, सोना 140 रुपये तोला। तोला
0: जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद वही कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का।
1: तो छोड़ के बम्बई में आई, उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बम्बई में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: हाँ, बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी, और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी उस माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई, और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई, क्योंकि सास को दोनों दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई, और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई।
1: बचपन से, ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरा माँ आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधु।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम आप बॉम्बे में 3 बेटियां

0: आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
1: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उनको। वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
0: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का भी शौक है ना? तो आप क्या क्या करते थे घर में?
1: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था।
0: सिलाई का
1: हाँ,
0: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
1: पूना में किया था।
0: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप? और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
1: हाँ, आती थी। छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
0: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले? अच्छा,
1: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
0: जी। और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
1: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया
0: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
1: है। हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
0: तो पूरे आपका ग्रुप था?
1: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना, भजन गीत सिखाते थे हमको।
0: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे? अच्छा,
1: सत्संग नहीं इतना किया हम।
0: तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे, तो
1: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
0: उस समय क्या फीस लेते होंगे?
1: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
0: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
1: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
0: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
1: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे। 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
0: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
1: 1-2 बरस तक गई।
0: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
1: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
0: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन, जैसे आप सीखे साल 2 साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला? अच्छा,
1: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
0: तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल 2 साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
1: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते। भीमसेन जोशी, ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
0: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
1: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज ऐसे।
0: अच्छा, पर सारे मराठी में।
1: हाँ,
0: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
1: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
0: अच्छा, गाना अच्छा लगता था लेकिन आपने कभी बनाया नहीं,
1: नहीं,
0: कभी कोशिश नहीं की?
1: याद भी नहीं है।
0: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
1: बाजू वाले एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको। वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
0: अच्छा, पड़ोस की बेटी को। और
1: हाँ,
0: आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
1: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं में, 13वीं तक गई, और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
1: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
0: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
1: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
1: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
1: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
1: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए, और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
0: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
1: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
0: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
1: नहीं, उसने नहीं किया।
0: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
1: शादी की उसकी, और अच्छी तरह रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया उसकी शादी की, दूसरी ने भी फोन किया उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
0: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
1: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
0: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
1: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: वो कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव, और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: तेजश्री।
0: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
1: जी हम बड़े हैं।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आप किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
1: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया, और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेली प्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
0: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
1: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं

0: अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण बेकरी आइटम मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
1: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
0: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
1: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
0: जी देखो, ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है, तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
0: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
0: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना, तो ये मेरी सदिच्छा है।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
2: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
1: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए?
2: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
1: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
2: दो साल हुए।
1: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
2: आबू तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है।
1: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
2: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
1: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
2: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मना।
1: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
2: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रहे हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
1: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं, तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति। आज 12 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में विशेष बाबा याद के चार्ट को बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें याद की यात्रा में रहने का पूरा अटेंशन देना है, और अगर नहीं दे पाते हैं तो उसका मुख्य कारण ढूंढो और अपने आप को ठीक करें और बाप की याद में निरंतर रहने का अभ्यास करें। बाबा कहते हैं, चलते चलते माया की प्रवेशता भी हो जाती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, देह अभिमानी बन पड़ते हैं और इसलिए अनेक भूले होने लगती है, उल्टे कर्म भी कर लेते हैं, पतित बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते निरंतर याद में रहना है। मान लो कि अगर कोई क्रोध करता है तो बाबा कहते तुम बच्चों को उस वक्त मुख में मुलहरा डाल देना है, बाप की याद में रहना है, उस व्यक्ति से कोई भी प्रकार का डिबेट डिस्कशन नहीं करना है, अंदर में यही समझे कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। ये अभ्यास बार बार करते रहे। दूसरी महत्व की बात बाबा ने समझाई है कि बच्चे इस समय वृक्षपति बाप इस संसार में आते हैं और तुम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। इस बृहस्पति की दशा से ही तुम जीवन मुक्त बन जाते हो और अपने स्वराज्य में भी उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे नहीं कि ये दशा सिर्फ एक दिन के लिए है, नहीं, जब बृहस्पति की दशा बैठती है

तभी बाबा कहते तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। इसीलिए याद में रहने की अच्छी प्रैक्टिस बढ़ाओ ताकि बृहस्पति की दशा निरंतर तुम्हारे ऊपर रहे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। आज की मुरली से प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, बाबा कहे योग पर अटेंशन नहीं तो देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं, माया उल्टा कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें स्मृति में रखो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। इस गीत में बाबा की बहुत सुंदर महिमा गाई गई है, इसलिए बाबा कहते ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं और आकर के क्या करते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। क्या क्या महिमा है? तो बाबा कहते उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। बृहस्पति की दशा है वह भी बेहद की है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहां ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है। आम सारी दुनिया, लेकिन भारत खास जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार, अपने अपने समय अनुसार नीचे उतरेंगे। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पाठ मिला हुआ है। राजाएं में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक। नाटक में राजा से लेकर प्रजा तक हरेक का अपना अपना पाठ है। सबको अपना अपना पाठ बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। पूरा संगम युग हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा चलती है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं, याद से दशा अच्छी बैठती है। जितना याद में रहेंगे उतना बृहस्पति की दशा अच्छी बैठती है।
अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। बाबा का याद नहीं करेंगे तो गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी है एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं। बाबा कहते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं। पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। गिरने का कारण माया की प्रवेशता का कारण, बाबा कहते पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता हूं। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। सत्य नारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्र को मानते हो। मनुष्य पूछते हैं तुम शास्त्र को मानते हो, बोलो हाँ। हम शास्त्र को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। या तो हम मानते हैं ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना ही उतरती कला, तभी तो भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से सदगति होती है। तो जरूर है भक्ति द्वारा नीचे उतरते गए, सीढ़ी एकदम नीचे उतर गए तब आकर के वो भक्ति का फल मिलता है। ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से ही की जाती है। बाबा कहते रक्षा हमेशा दुश्मन से ही की जाती है ना। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूं। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है, अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं। कला तो कम होती जाती है ना, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। सतयुग का आरंभ नई दुनिया से, फिर त्रेता 25% कम कहेंगे, नए से 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने हैं।

श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी, कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। श्री कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते, तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो जाओ। बाबा कहते, इनके घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो, उनके साथ झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते, बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, अर्थात याद में रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अवल दिन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देते हैं। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो, बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते, कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। बाबा सावधान करते, बच्चे कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको भी पता नहीं, शिव बाबा का किसको भी पता नहीं। कहते भी है, क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग है, आयु कम जास्ती हो न सके, चारों भाग बराबर है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते, ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते, देह सहित ये सब कुछ भूल जाओ। बाबा कहते हैं, देह सहित ये सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास रखो। आत्म अभिमानी होने का अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है, हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं, विलायत वाले सेंसिबल है। वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे

आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, बिजली घर बने हुए हैं, मुर्दे को बिजली के ऊपर रखा तो खत्म हो जाता है। ऐसे बॉम्ब फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते तूफान भी, प्रकृति के तूफान भी ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया, यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पड़ रहे हो, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। बाबा को भी रहम आता है कि माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहां रक्त की नदियां बहनी है। सतयुग में दूध की नदियां बहती है, वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में रक्त की नदियां, नई दुनिया में दूध घी की नदियां। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहां तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती है, सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, यह किया, वो सब साक्षात्कार होते हैं, बतलाते हैं। हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं, ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नोंद है। शुरू शुरू में बाबा ने बहुत खेल पाल बच्चों को कराया। बाबा कहते इनसे कुछ मिलता नहीं है, बहलाते हैं। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है। बाबा को भी वंडर लगता माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है नहीं। रहम आता है बाबा को, तो भी आज है नहीं। तब बाबा कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसको भी पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि है ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है,
रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है शिव बाबा के, हर एक देश में अलग अलग नाम बहुत है, सिवाय एक बाप के और किसी के भी इतने नाम है नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं, बबुल उस उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है, बबुलनाथ पर बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते मैं बिंदी हूं स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी लगा देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वह अर्थ नहीं जानते, तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है, अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है, पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में दो बाप और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप है। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, वह सब सुख में है, तो बाप को याद करने की भी दरकार नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। बाबा कहे तुम तीनों बापों को जानते हो, और सारा ज्ञान भी कितना सहज समझने का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा कौन सा है? ये मैपन है। ये सबसे महीन और सुंदर धागा है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे।